परले दर्जे का झूठा और बर खुद गलत है। हमने अपने पैगंबर से कहा, कल ही इन्हें मालूम हुआ जाता है कि कौन परले दर्जे का झूठा और बर खुद गलत है। हम ऊंटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं। अब जरा सब्र के साथ देख कि इनका क्या अंजाम होता है। इनको जिता दे कि पानी इनके और ऊंटनी के दरमियान तकसीम होगा और हर एक अपनी बारी के दिन पर आएगा। आखिरकार उन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बीड़ा उठाया और ऊंटनी को मार डाला। फिर देख लो कि कैसा था मेरा आजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़े वाले की रौंदी हुई बाढ़ की तरह भुस होकर रह गए। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है। अब है कोई नसीहत कबूल करने वाला?

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। निहायत मेहरबान खुदा ने इस कुरान की तालीम दी है, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं और तारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं। आसमान को उसने बुलंद किया और मीजान कायम कर दी। उसका तकाजा ये है कि तुम मीजान में खलल न डालो, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी न मारो। जमीन को उसने सब मखलूकात के लिए बनाया, उसमें हर तरह के बकसरत लजीज फल हैं। खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं। तरह तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी। बस ऐ जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इंसान को उसने ठीकरी जैसे सूखे सड़े गारे से बनाया और जिनको आग की लपट से पैदा किया। बस ऐ जिनो इंस, तुम अपने रब के किन किन अजायब कुदरत को झुटलाओगे। दोनों मशरक और दोनों मगरिब सबका मालिक परवरदिगार वही है। बस ऐ जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को छुटलाओगे। दो समंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हायल है जिससे वो तजावुज नहीं करते। बस ऐ जिनो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन करिश्मों को झुटलाओगे। इन समंदरों से मोती और मूंगे निकलते हैं। बस ऐ जिनो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन कमालात को झुटलाओगे। और ये जहाज उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। बस ऐ जिनो इंस, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। हर चीज जो इस जमीन पर है फना हो जाने वाली है और सिर्फ तेरे रब की जलील व करीम जात ही बाकी रहने वाली है। बस ऐ जिनो इंस, तुम अपने रब के किन किन कमालात को झुटलाओगे। जमीन और आसमानों में जो भी हैं सब अपनी हाजतें उसी से मांग रहे हैं, हर आन वो नई शान में है। बस ऐ जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन सिफात हमीदा को झुटलाओ।

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صلی

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नेहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। एक जमाने की बात है कि एक आदमी था जिसे सफर करने का बहुत शौक था। वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता रहता था, नए नए मकामात देखता और हर जगह की कहानियां सुनाता। उसकी जबान पर हमेशा अपने सफर की कामयाबियों की कहानियां होती थीं, और वो ये दावा करता था कि उसने कई बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। उसका सबसे पसंदीदा किस्सा था जो वो रोज के शहर के बारे में सुनाता था। रोज एक खूबसूरत शहर था जो अपने अजीम तामीरात और दिलकश मनाजिर के लिए मशहूर था। इस आदमी का कहना था कि उसने शहर में एक ऐसी छलांग लगाई थी जो कभी किसी ने ना लगाई थी। वो सबसे ये कहता फिरता था कि उसने उस शहर की बुलंद तरीन चट्टान से छलांग लगाई और दरिया में जा गिरा। उसका ये दावा था कि उसकी ये छलांग इतनी बुलंद थी कि गोया उसने आसमान को छू लिया था। वो इस बात को बार बार दोहराता और लोगों को कहता, मैंने तो रोएस में वो छलांग लगाई थी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसका ये किस्सा सुनकर लोग हमेशा हैरत में पड़ जाते थे और उसकी बहादुरी की तारीफ किया करते थे। वो लोगों से ये भी कहता कि लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो अकेला ही खुद इस अजीम कारनामे का गवाह था। वो इस बात पर फखर करता था और ये दावा करता था कि उसका ये कारनामा हर किसी के लिए एक सबक था। एक दिन एक गांव में इसका सामना एक नौजवान लड़के से हुआ। वो लड़का बहुत ज़हीन और सवाल करने वाला था। जब इस आदमी ने उसके सामने रुदेस में अपनी छलांग के बारे में बात की तो वो लड़का चुप नहीं रह सका। बाबा जी, आपने जो छलांग लगाई थी वो क्या वाकई में इतनी बड़ी थी? लड़के ने बड़ी बेवकूफ़ी से सवाल किया। उस आदमी ने बड़े फख्र से आगे से उसे जवाब दिया, हाँ हाँ भाई, वो छलांग इतनी बड़ी थी कि किसी ने भी आज तक ऐसी छलांग नहीं लगाई। मैं उस छलांग से दरिया में जा गिरा था और दरिया के दूसरी तरफ पहुंच गया था। लड़का चौंक कर बोला, मगर क्या आप उसे दोबारा करके दिखा सकते हैं? क्या आप अभी भी वो छलांग लगा सकते हैं? आदमी ने ये सवाल सुना तो उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए हैरानी की एक लहर दौड़ गई। फिर उसने एक एम्बेरस सी हंसी देते हुए कहा, देखो भाई, ये तो एक ऐसी बात है जो मैंने अपने शबाब यानी यंग एज में की थी। अब मेरा जिस्म इतना ताकतवर नहीं रहा कि वही छलांग मैं दोबारा से लगा सकूं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं भाई कि वो छलांग बहुत बड़ी थी और वो छलांग मैंने ही लगाई थी। दुनिया की सबसे बड़ी छलांग थी वो। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे तो लगता है कि आपका दावा सिर्फ बातों तक ही महदूद है। आपने जो कुछ कहा वो सिर्फ जबानी बातें हैं। आपने जो किया वो हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ अफसाने हैं। आदमी ने उसकी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और फिर वो गुस्से में बोला, तुम मुझसे छोटे हो समझे? तुम क्या जानो किसी बारे में? ये सब मेरी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। चलो यहाँ से निकलो, तुम्हें इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन लड़के ने एक लम्हे के लिए भी हिम्मत न हारी। वो बोला, अगर आपका कारनामा वाकई इतना बड़ा था तो आप इसे साबित क्यों नहीं कर सकते? क्या आपने वाकई वो छलांग लगाई थी या सिर्फ वो लोगों को सुनाने के लिए कहानी ही है? आदमी चुप हो गया और कुछ देर तक उस लड़के को गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। वो नौजवान लड़का बहुत जहीन था और उसने इस आदमी

सिर्फ कहानियां थी और वो अपने उन दावों को अमली तौर पर बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने ये तस्लीम किया कि उसका दावा सिर्फ जबानी था और उसकी हकीकत कुछ भी नहीं थी। उसकी कहानियां एक फर्जी दास्तान बनकर रह गई थीं। उस छोटे से लड़के के सवालों ने इसके जमीर को झिंझोड़ कर रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि असल कारनामे तो वो हैं जो आप हकीकत में अंजाम देते हैं, ना कि वो जो सिर्फ आप जबानी तौर पर बयान करते हैं। ये आपके अमल और आपकी हकीकत होती है जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करते हैं, ना कि सिर्फ आपकी कहानियां और दावे। हमें अपनी कामयाबियों को हकीकत में साबित करना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज बात होगी इकोनॉमिक टर्म इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की। देखो, ये दोनों ही वर्ड्स आपने डेफिनेटली सुन रखे होंगे। आई एम श्योर आप इन दोनों ही टर्म से रूबरू होंगे। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, जैसे मुझे होता था जब मैं स्कूल डेज में, जब मैं पढ़ती थी, बिजनेस स्टडीज जब करती थी, तो मुझे भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझने में थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन हो ही जाता था। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ हद तक आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन हाँ, चलिए एक बार वापस से हम इसको दोहरा लेते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हों, वो स्टूडेंट्स जो बिजनेस स्टडीज का हिस्सा हों, फाइनेंस इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो शायद उनके लिए भी एक शॉर्ट रिविजन हो जाए। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, आई मीन जो इकोनॉमिक टर्म जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो है इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इकोनॉमिक्स में इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दो अहम कॉन्सेप्ट हैं जो किसी मुल्क के इंटरनेशनल ट्रेड को दिखाते हैं। इम्पोर्ट्स का मतलब है वो माल या सर्विसेज जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से खरीदता है। इम्पोर्ट इज खरीदना। जबकि एक्सपोर्ट का मतलब है वो माल या सर्विसेज जो एक मुल्क दूसरे मुल्क को बेचता है। इम्पोर्ट इज, बताइए, सोचिए, बताइए मुझे। वापस से दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ ही गए हो, आप बड़े समझदार लोग हो। वेल, बेचना और खरीदना अपनी सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कहलाता है। और ये वन टू वन नहीं, ये गवर्नमेंट एक कंट्री दूसरे कंट्री को जब बेचते हैं तो, और जब खरीदते हैं तो, ठीक है, तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है। इम्पोर्ट ये है कि जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क से खरीदता है, वही एक्सपोर्ट ये है जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क को बेचता है प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज। चलिए इम्पोर्ट की मीनिंग को थोड़ा सा और जो है वो डिफाइन करते हैं। इम्पोर्ट का मतलब है किसी भी मुल्क का दूसरे मुल्क से माल यानी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का खरीदना। ये एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी लोकल प्रोडक्शन की कैपेसिटी या क्वालिटी किसी चीज की डिमांड को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती। इम्पोर्ट से मुल्कों को वो चीजें मिलती हैं जो उनके पास नहीं है या जिनकी प्रोडक्शन उनके लिए थोड़ी सी महंगी हो सकती है या उस तरह के स्किल्स उनके पास नहीं है जिसे खरीदने में उनके ज्यादा पैसे लग सकते हैं। तो बेहतर है कि उन चीजों को, उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को इम्पोर्ट कर लिया जाए। वहीं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है किसी भी मुल्क का अपने माल या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज दूसरे मुल्क को बेचना। ये किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज हासिल होता है। जब एक मुल्क अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है तो उसे दूसरे मुल्क के पैसे मिलते हैं जो कि उसकी इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। देखिए, इसके इस्तेमाल पर भी बात करते हैं। इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का इस्तेमाल किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है। गवर्नमेंट्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करते हैं ताकि ट्रेड बैलेंस बना रहे। ट्रेड बैलेंस क्या है, चलिए ये भी मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रेड बैलेंस का मतलब है कि एक मुल्क का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो क्या है। अगर एक मुल्क ज्यादा इम्पोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट करता है तो इसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, जो कि इकोनॉमी के लिए, यानी उस मुल्क की इकोनॉमी के लिए नुकसान।

0: संदेह हो सकता है। इसके मुकाबले अगर एक मुल्क ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है तो इसे ट्रेड सरप्लस कहा जाता है, जो एक इकोनॉमी के लिए, एक मुल्क की इकोनॉमी के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। देखो, इसके डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट्स भी हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का असर किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पर बड़ा गहरा और डायरेक्ट होता है। सबसे पहले ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो दिखाता है। जब एक मुल्क अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाता है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को फरोग मिलता है। ज्यादा एक्सपोर्ट्स का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाते हैं। वहीं पर फॉरेन एक्सचेंज की बात की जाए तो एक्सपोर्ट से मुल्क को फॉरेन करेंसी हासिल होती है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होती है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाते हैं, जो कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बड़े अहम है। वहीं इससे कंज्यूमर चॉइसेस भी डिफाइन होती हैं। इंपोर्ट से कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइसेस मिलती हैं। जब एक मुल्क इंपोर्ट्स को अलाउ करता है तो लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दस्तयाब होने लगते हैं, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाते हैं। और उनके पास थोड़ी ज्यादा चॉइसेस भी होती हैं, मतलब ये लूं कि वो लूं। वहीं पर देखा जाए तो ट्रेड पॉलिसीज पर भी इसका असर पड़ता है। गवर्नमेंट्स अक्सर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स और कोटास लगाते हैं, ताकि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये पॉलिसीज कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी असर डालती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर भी इसे समझाती हूँ। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट का एग्जांपल बाद में, पहले इंपोर्ट पे आ जाते हैं। तो बहुत से मुल्कों को ना ऑयल की जरूरत होती है, तेल की जरूरत होती है, जो वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया को ऑयल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, तो वो इसे मिडल ईस्टर्न मुल्कों से इंपोर्ट करता है। वहीं पर साउथ कोरिया और जापान से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टेलीविजन्स खासकर इंपोर्ट किए जाते हैं। ये प्रोडक्ट लोकल मार्केट में बहुत पॉपुलर भी हैं। वहीं अगर फूड आइटम्स की बात की जाए, अगर किसी मुल्क में खाद्य की कमी है तो वो दूसरे मुल्क से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स इंपोर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान हर साल बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिडल ईस्टर्न मुल्कों से इंपोर्ट करता है। वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही मजबूत है, कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। जी हाँ, जैसे कपड़े अच्छे हैं तो ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते भी हैं, जैसे कि यूएसए यूरोप को गारमेंट्स और फैब्रिक एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान। वहीं कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इंडिया बहुत से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस, वीट, मसाले और दूसरी चीजों को एक्सपोर्ट करता है। ये प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड में है। वहीं कुछ कंट्रीज सर्विसेज जो है वो दूसरी कंट्रीज को बेचते हैं। यूएसए से टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे कि आईटी सॉल्यूशंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इससे यूएस की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का एक बेहद बड़ा और अहम मजबूत हिस्सा है। ये ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को फरोग देता है, बल्कि कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइसेस भी फराहम करता है। गवर्नमेंट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने की जरूरत है, ताकि ट्रेड बैलेंस बना रहे और लोकल इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। वरना सारी चीजें बाहर से ही आएंगी तो लोकल इंडस्ट्री या लोकल इंडस्ट्री मार्केट पूरी तरह से ठप नहीं हो जाएगा। इसलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझना किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अहम होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी कुछ हद तक इन दोनों टर्म्स को समझ पाए होंगे और किस तरह से ये टर्म्स हमारी डे टू डे लाइफ को भी मुतासिर करते हैं। वेल, मैं उम्मीद कर रही हूँ आज के इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को मैं भरपूर तरीके से आपको समझा पाई होंगी। वेल, अभी के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाजत लूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इकोनॉमिक टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स इकॉनमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत में आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सुन्नतों से रोशनास कराते हैं जो हमारी जिंदगी को ईमान, अखलाक और वक़ार से मुजय्यन करती हैं। तो आज हम जिस सुन्नत पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है हया। हया ईमान का जेवर है। जिस दिल में हया नहीं वो गुनाहों के करीब हो जाता है और जिस दिल में हया हो वो बुराइयों से बचा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान की शाख करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली नबुवतों के कलिमात में से ये भी है, जब तुम्हें हया न रहे तो जो चाहो करो। यानी अगर दिल से हया निकल जाए तो इंसान बुराइयों में पड़ जाता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं। सबसे आला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे अदना रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाना है और हया ईमान की एक शाख है। तो सामीन, अपनी गुफ्तगू, लिबास और रवैये में हया अपनाना, ऐसे आमाल से बचना जिन पर अल्लाह और बंदों के सामने शर्मिंदगी हो, बच्चों नौजवानों को हया की अमली तरबियत देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ईमान का एक अहम शोबा, एक अहम शाख करार दिया है। तो सामीन, आज की सुन्नत थी हया। आइए हम सब अपनी जिंदगी को बाहया बनाएं ताकि ईमान की शाख बाकी शाखों को सवार दे और हमारी दुनिया व आखिरत नूर और इज्जत से भर जाए।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी

0: डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

FM 107. Time check. Time check. गुड मॉर्निंग और टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01

दोस्तों हो ना हो मुझे यकीन है आपने दो दिन मुझे मिस तो किया होगा। वैसे देखा जाए तो मैंने भी आपको ठीक ठाक तरीके से मिस किया, तो बताइए आप अपना हाल चाल, किस तरह से आपने अपने दो दिन स्पेंड किए। वैसे आज एक नया वीक और एक नया वीक कहूँगी, और साथ ही ये जो मंथ है यानी जुलाई का मंथ है, इसका एकदम लास्ट वाला ये वीकेंड है। तो बस इसके बाद जो है वो एक और नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से कहाँ कब दिन बदल जाते हैं, महीने जल्दी से गुजर जाते हैं और साल निकल जाते हैं, हमें और आपको पता ही नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लान करते ही रहते हैं, अब शुरू करेंगे तब शुरू करेंगे, ना अब होता है ना तब होता है, पता नहीं कब होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। लेकिन हाँ, हर रोज़ एक चीज़ जो होनी चाहिए और जो होती है वो एक तो आपका हमारा साथ होता है। समर मॉर्निंग्स का आगाज़ होता है, उसी से आपकी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। आई डोंट नो कितने सारे लोगों की जो है वो मॉर्निंग की शुरुआत समर मॉर्निंग से होती है, बट हाँ मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमारे साथ जुड़े तो रहते ही हैं। और हर रोज़ जैसे मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक नया दिन जो है वो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद देता है, एक नई एनर्जी के साथ हमें और आपको आगे बढ़ने का एक मौका देता है। बाहर अगर देखें हम तो भाई सूरज है, अपनी रोशनी बिखेर रहा है, कह रहा है कि आओ यहाँ पर हर आदमी सिर्फ जो है शिकवा शिकायत ना करे, इस दिन को भी इंजॉय करे। तो बस फिर क्या है, बस यही करना है, चाय उठानी है, कॉफ़ी या जो भी आप इंजॉय करते हो उसे लेना है, तैयार होना है, और हाँ बाकायदा पॉजिटिव नोट पर एकदम फ्रेश होने के लिए हमारे साथ जुड़ जाना है। और जैसे आप जानते हैं अगले कुछ घंटे मैं तो आपके साथ रहने वाली हूँ, यानी 3 घंटे आपके साथ रहूँगी, इंटरेस्टिंग बातें हम और आप मिलकर तो करेंगे ही। और फिर आपने वीकेंड्स पे क्या किया वो मुझे बताइएगा, ज़रूरी नहीं कि आपने जो है वो वीकेंड्स ही इंजॉय किया, आई मीन टू से कि आपकी वेकेशन हो, छुट्टी हो, तभी आपने इंजॉय किया, मतलब कुछ भी किया, कुछ स्पेशल किया नहीं किया, या फिर रिलैक्स किया, सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा हील किया, या व्हाट्सएवर वो मुझे बताइएगा, मैं भी आप पूछे ना पूछे मैं भी आपके साथ अपनी बात ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ वो लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ना जो सुबह सुबह उठते हैं और बाकायदा उनके एक रूटीन सेट होता है मॉर्निंग का, पता है कैसे, सुबह उठे मॉर्निंग वॉक पे गए, वापस आए, थोड़ा सा रिलैक्स किया, शावर लिया, एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया, और फिर एक अच्छी सी तैयारी करी अपनी ऑफिस की, और फिर अपने ऑफिस पे गए। तो देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड एकदम मॉर्निंग का उनका स्केड्यूल होता है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपका स्केड्यूल मॉर्निंग का ऑर्गेनाइज्ड है तो डैम श्योर इसमें बहुत

0: द चांसेस है, लेट्स से मोर देन 80% चांसेस हैं कि आपका जो दिन है ना वो बहुत ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको खुद बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो बस यही अच्छी अच्छी बातें लेकर आज भी मैं आ चुकी हूँ। मुस्कुराइए, थोड़ी सी पॉजिटिव सोच लाइए और ये जो खूबसूरत सी सुबह है इसे इंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी के हर एक नए मोड़ पर हमें एक नई कहानी लिखने का मौका मिलता है। और वो लाइन है ना, ज़िंदगी मिले ना दोबारा वाली, तो बस आज अभी इसी वक्त इस पल को जीना है। और वो कहते भी है ना कि लोग, बड़ा प्यारी सी एक लाइन है कि यू नो क्या कुछ इस तरह से, चलिए मैं उसका थोड़ा सा खुलासा मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एग्जैक्टली मुझे लाइन तो इस वक्त याद नहीं आ रही कि कामयाबी भी ना उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर सुबह नए जज्बे और नए हौसले के साथ उठते हैं। तो कल क्या हुआ, जस्ट लीव इट एंड फॉरगेट इट, आज क्या करना है इस पर फोकस होना चाहिए। और मेरा तो फोकस आप पर ही है, बिल्कुल। आप कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे हैं बताइए, 666-22-107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बतिया सकते हैं अपना हालचाल। मेरा तो मैं बताती ही रहती हूँ, लगातार आपको बताती भी रहूँगी। इसके अलावा थोड़ी देर बाद जो है हम अपना क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्क्लोज करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन तो नहीं कहना चाहिए, उसे टॉपिक कहना चाहिए जिस पे आप और हम मिलकर जो है वो डिस्कशन करते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिलकर एक टॉपिक को एक्सप्लोर करें एंड देयर वी नीड टू कम टू अ गुड कंक्लूजन, जो हमेशा ही हम करते हैं। तो आज भी यही करने वाले हैं। वहाँ पर कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए हमारा जो है वो कॉल करने का नंबर है 4434377। तो यहाँ ज़रूर जो है वो हाजिरी लगाइए, जुड़िए, मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा जी, कुछ गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आने स्टार्ट हो गए हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ये मुझे कहा है रशीद जी ने। सरफराज जी गुड मॉर्निंग कहते हुए, वेरी गुड मॉर्निंग। किसी ने हाई कह के छोड़ दिया है, इनका नाम RNB लिखा हुआ है। ओके, इसके साथ उमुल है, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल मॉर्निंग टू यू टू। ये मैसेज है हमें शिराज मलिक जी का। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं और भी मैसेजेस हम आपके थोड़ी देर में शामिल करेंगे, बट बिफोर दैट इट्स अ मैंडेटरी ब्रेक। यहाँ पर असकार जो है सुबह के वो सुनते हैं, वापस आएंगे तो कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
4: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی, ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
1: ने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीस टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ एंड 6:22 ऑन द क्लॉक। वापस आ चुके हैं, आपका हालचाल हो गया, मेरा हालचाल हो गया, और अब एक बंदा जिसका हालचाल मुझे लेना ही लेना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। एंड यू नो, हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, पता है कौन? मौसम।
1: मौसम का हालचाल।
0: तो चलिए मौसम की बात करते हैं, और आज मौसम कैसा रहने वाला है? अगेन गुस्से में है, मेरा मतलब है सनी और गर्म रहने वाला है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पर मिनिमम टेम्परेचर

कुछ ज्यादा ही हमें महसूस हो रही है लेकिन दिन के दौरान ह्यूमिडिटी में कमी थोड़ी आएगी और रात के वक्त इजाफा और हो सकता है. एक चीज और आपको बताएं कि यूवी लेवल जो है वो है 7 व्हिच इज अगेन वेरी हाई, जिसका मतलब ये है कि दोपहर का जो वक्त है उसमें सूरज की जो रेज है काफी स्ट्रांग रहेंगी. तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं देन अपने सनग्लासेस यू नो कैप्स एंड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. और हाँ, हवा जो है उसकी बात करें तो बेचारी हवा का तो बहुत ही बुरा हाल है. हवा की रफ्तार इज 8 किलोमीटर पर आवर, जो दिन के दौरान कुछ हद तक और थोड़ा सा बढ़ सकती है. वहीं पर अगर मैं सूरज की बात करूँ तो सनराइज आज हुआ सुबह 4:57 पर एंड सनसेट होगा शाम में 6:22 पर. तो एक क्विक रिविजन ले लेते हैं. आज का टेम्परेचर मैक्सिमम इज गोना बी 42 और आपको महसूस होगा बाय द वे 50 जैसा लगेगा. टेम्परेचर मिनिमम इज 35 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 63%. वहीं पर यूवी इंडेक्स की बात की जाए तो इट्स 7 विच इज वेरी हाई एंड मौसम आज सनी रहेगा. और बस अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली धूप से आपको बचना है. अपनी सेहत का तो ऑफकोर्स आपको ख्याल रखना ही रखना है. पानी तो मैंने आपको कितना पिलवाया और कितना कहा भी है और कहती भी जा रही हूँ, हमेशा ही हम सब कह रहे हैं तो भाई मैं थोड़ा सा पानी का ख्याल रखिए. क्योंकि होता क्या है कि हम जो है ना काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं. और हाँ, एक चीज़ और है कि चाय पे चाय ले रहे होते हैं तो गर्मी का मौसम है, हाइड्रेशन जो है वो अपनी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिहाइड्रेशन से आपको बचना है तो इसके लिए पानी एंड देयर वी हैव फ्रेश जूसेस एंड देन ऑफकोर्स जो हेल्दी ड्रिंक्स हो सकते हैं, छाछ है, लस्सी है, इन सब का इस्तेमाल कीजिए. एंड हाँ, टी और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए. इस इस्तेमाल से पानी की कमी भी आपको महसूस होने लगती है. तो देर हैज़ टू बी गुड बैलेंस. आप पीजिए, चाय कॉफ़ी भी लीजिए बिकॉज हम सब जो है वो इस तरह से वी आर लाइक क्वाइट एडिक्टेड टू इट. तो बड़ा मसला हो जाता है कि अगर हमें सुबह चाय ना मिले या कॉफ़ी ना मिले, कुछ लोग कहते हैं तो मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता अगर सुबह सुबह चाय ना मिले. तो ये भी मसले होते हैं लोगों के साथ. वैसे आपके साथ है कि यू आर लाइक बैडली एडिक्टेड कि सुबह सुबह चाय चाहिए ही चाहिए, कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा जो है मेरी आँख ही नहीं खुलेगी, ऐसा होता है क्या? देखो मैं बड़ी फ्लेक्सिबल हूँ उस मामले में. मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मसला नहीं है कि मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती कि मैं जब तक चाय ना लूँ मेरी आँख ही नहीं खुलेगी या मेरा एकदम मूड ही नहीं बनेगा काम करने का. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. आई एम नॉट लाइक एडिक्टेड टू टी और कॉफ़ी. हाँ, कुछ लोग हैं मेरे घर में भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यू नो स्ट्रिक्टली बेड टी चाहिए, चाहे कितनी गर्मी हो, कुछ भी हो. तो ये भी एक अपना इशू है. बताइएगा क्या आप भी उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो. अच्छा, यहाँ पे कुछ गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस भी आ चुके हैं. ये हमारे साथ गुड मॉर्निंग कहते हैं, सलाम भी कहते हैं. मोहम्मद अशरफ जी जो हैं वो फिलहाल जुड़ गए हैं. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. एंड नवाबुद्दीन सऊदी अरेबिया से हमें सुनते हुए, बहुत दिनों के बाद आज आपका चैनल जो है वो काम कर रहा है. अच्छा, इज इट? ओहो, इतने दिन तक हमारा चैनल आपको वहाँ सुनाई नहीं दे रहा था. हो सकता है कुछ सिग्नल इश्यूज रहे हों, बट ग्लैड दैट अब आप हमें सुन पा रहे हैं. और वहाँ भी मौसम कैसा है? गर्मी है. वैसे है तो वहाँ भी उतनी, बट कुछ मेरे फ्रेंड्स जो अभी उमरा से आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ ज़्यादा महसूस हो रही है कतर में. तो बताइए वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, कैसा है, थोड़ी कम गर्मी है या नहीं है? तो यहाँ पर सलाम कहते हुए जुड़ गए हैं मुजाहिद जी हमारे साथ. और कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसा ही बंदा ऐसा हूँ जो बिना चाय के बगैर मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती. हाँ, कुछ लोग तो हैं दे आर लाइक बैडली एडिक्टेड. उनको लगता है कि उनकी मॉर्निंग्स हो ही नहीं सकती अनलेस एंड अंटिल उन्हें एक अच्छी सी चाय मिले, एंड वो भी बड़ा मग भर के. बिलीव मी, द गुड साइज ऑफ द मग कई बार मुझे डरा देता है. इतनी ज़्यादा कौन चाय पीता है? इट्स लाइक अ टी, थोड़ा सा पियो लेकिन भर के कुछ लोग पीते हैं. तो चलिए मुझे आप बताइएगा ज़रूर, आप भी क्या उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टी लवर्स, टू ऑल द कॉफ़ी लवर्स, मैं भी कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, पीना चाहिए. आपको भी एक स्टार्ट चाहिए, पूरा दिन आपको काम करना है तो जो चीज़ अच्छी लगती है ज़रूर पीजिए, जस्ट फॉर अ फन एंड दैट टू ऑन अ वेरी लाइट नोट. बस जानने की कोशिश. यहाँ पर एक और मैसेज है और इनका नाम है, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, और कहते हैं इन्होंने चाय की फ़ोटो भी भेजी है मुझे कि ये चाय पी रहे हैं. चलिए, आपकी सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग. चाय आपने पीना शुरू कर दिया है. और यहाँ पर मैसेज है लियाकत जी का, गुड मॉर्निंग कहते हैं. कहते हैं कि मेरा भी मैडम सुबह एक कप चाय ज़रूरी है. सुबह एक कप चाय इनको भी लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट. सलाम नाजिर जी, वालेकुम अस्सलाम. कादिर अब्दुल हादी जी का मैसेज है, एंड वन ग्रीन टी ओनली. वाओ, यू आर अ वेरी हेल्दी साइड. ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है वो

ग्रीन टी से मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं. गुड गुड, मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए. थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर है. कुछ लोग तो बड़ी प्रॉपर वाली शुरुआत करते हैं, सुबह 10-20 चीज़ें खा रहे होते हैं सुबह ये खाना है. कुछ लोगों को देख के मेरी ऐसी हंसी, मतलब हंसना तो नहीं चाहिए. मैं अब बता रही हूँ, जो हमारे घर में कुछ एल्डरली हैं तो उनका क्या है कि अभी जो है मेथी के पानी का टाइम हो गया, अजवाइन के पानी का टाइम हो गया, फलानी सुबह 5-6 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पानी पीना, तो ये वाकई अच्छा है. और फिर उनकी एनर्जी लेवल्स और मैं अपनी एनर्जी लेवल्स कंपेयर करती हूँ तो फिर मुझे उन्हें हंसी आती है, मुझे रोना आता है. पहले मुझे हंसी आती है कि इतनी सारी चीज़ें सुबह उठ के पीना भाई कितना आपके लिए कितना चैलेंजिंग है. बट देन आई रियलाइज कि हाँ, जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, शी इज़ लाइक सुपर एक्टिव, बिल्कुल एकदम चार्ज, एंड आई एम लाइक सो डल, सो एग्जॉस्टेड. तब मुझे समझ में आती है अहमियत उन सारी चीज़ों की. तो अपनी मॉर्निंग का जो रूटीन है या अपना मॉर्निंग का जो स्केड्यूल, उसे बहुत प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लान करना चाहिए. हम लोग तो बस उठे, निकल लिए और हो गया, अब देखा जाएगा, बस अब थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा चार्ज हो जाए, फिर जाके लगता है. लेकिन हाँ, प्रॉपर मॉर्निंग्स आर ऑलवेज गुड. टी इज़ लाइक अ बूस्टर इन द मॉर्निंग फॉर हिम. Who is he? इनको देख लेते हैं. उसामा बिन शफीक जी. ओके, सो हाँ, नहीं, पीपल आर क्वाइट एडिक्टेड. आई डोंट वांट टू से दैट एडिक्शन, इट्स लाइक कि वो अपने आप को थोड़ा सा चार्ज करते हैं एंड दे यूज टू बी दैट. और हम लोग भी हमारी भी शुरुआत होती है वो वाली. देखो, ग्रीन टी इज सच अ गुड वर्जन, सच अ हेल्दी थिंग. बट हम लोग का क्या है, वो दूध एंड ऑल दैट मिक्स करके वो चाय चाय ही लगती है. कुछ लोग कड़क कहते हैं, मैं तो खैर डिप वाली चाय ज़्यादा पसंद करती हूँ. बट हाँ, कड़क के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं और अपने कुछ नुकसान भी हैं. लेकिन हाँ, वो एक अपना एडिक्शन भी है और एक शौक भी है. नूर मोहम्मद जी हमारे साथ. मैं सुबह की शुरुआत फुर्सत से करता हूँ. कभी सुरवत से करता हूँ. फ्रूट्स खाता हूँ, खजूर खाता हूँ. ये सुरवत क्या हो सकता है भाई, मैं समझी नहीं. मुझे प्लीज़ वॉइस नोट भेजिए, क्या कहना चाहते हैं. ओ लुक एट दिस, कादिर अब्दुल हादी जी का ब्रेकफास्ट देखो. ओह माय गॉड, एप्पल्स हैं, एवोकाडो भी है. अच्छा, एवोकाडो बड़ा फैशन में आ गया ना. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है वो ब्राउन ब्रेड का ही इस्तेमाल किया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा एग. क्या बात है, मतलब आपका तो बिल्कुल इंग्लिश वाला ब्रेकफास्ट लग रहा है. यू नो, इतना टेम्पटिंग खा चुके हैं, ये खाने जा रहे हैं, चलिए इंजॉय कीजिए. लेकिन बहुत ही टेम्पटिंग वाला है. इसमें मेरे मतलब का तो कुछ भी नज़र नहीं आया, मुझे एप्पल भी इतने समझ में नहीं आया. अरे लुक एट हिम, कुछ लोगों के देखो कितने हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट आर कमिंग. ये बंदे कौन है, इन्होंने तो सिर्फ स्टार लगा रखा है यहाँ पे. इनका नाम पता नहीं क्या नाम होगा, बट इन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है, सलाम कहा है, लास्ट में आपके नंबर है 798. सामी है, उन्होंने अपना नाम जल्दी से लेके भेज दिया. तो सामी यहाँ पर बड़ा ही हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. आई कैन सी द चिया पुडिंग, नहीं वो चिया सीड्स का भी कुछ है इन्होंने डाला है. स्क्रम्बल एग्स हैं. माय गॉड, अमेज्ड. मैं तो यहाँ पर सिर्फ बोली बोल रही हूँ, आप लोग तो एक्चुअली इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में. दैट्स नाइस. देखिए, मॉर्निंग जो है, हाँ, चिया सीड मिल्क है उन्होंने बोला. वेरी नाइस, वेरी हेल्दी. और सुबह जो है वो इसी तरह की चीज़ें लेना चाहिए. मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा एक ऐसा प्रॉपर वाला स्टार्ट होगा एंड यू नो, मैं एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट को जो है बड़ा सोच समझ के ऑन अ वेरी हेल्दी साइड स्टार्ट करूँगी. देन आई डोंट नो हाउ आई लैंड इट अप, किस तरह से मैं लैंड कर जाती हूँ टुवर्ड्स पराठा. लेकिन एक आध पराठा, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग की शुरुआत ही वैसी हुई है कि वो देसी नाश्ते, तो वो हम लोग इतना यूज टू है फॉर दैट. मुझे लगता है सुबह ठीक से अगर मैं कार्ब्स ले लूँगी तो बाकी दिन मैं शायद उतना नहीं खाऊं. बट आई नीड लाइक पराठा या कुछ ऐसा सॉलिड मुझे सुबह चाहिए. और मुझे कभी ओट्स वगैरह समझ ही नहीं आया, इतने लोगों ने मुझे सजेस्ट किया. मुझे मैं हमेशा कहती रही कि सच अ हेल्दी वर्जन, तुम क्यों नहीं लेती. मैंने मुझसे कभी खाया ही नहीं क्या. समबडी सजेस्टेड मी कि आप दलिया खाओ. मैंने एक दिन बनवाया, उसके बाद मैंने दूसरों को खिलाया, मुझसे वो नहीं खाया गया. तो आई एम समबडी लाइक हु लव्स लाइक पराठा हो या फिर कुछ नहीं तो मतलब रोटी हल्की सी घी लगी हो, कुछ ऐसा हो जो मेरा फेवरेट हो. क्योंकि मॉर्निंग्स में मुझे लगता है कि फेवरेट ब्रेकफास्ट जो है आपके मूड को सेट करता है. तो गो फॉर इट इन द मॉर्निंग. बाकी आप अपने और मील्स में जो है वो थोड़ा सा एहतियात कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ से ये एक और प्यारा सा मैसेज है.
कर की इंद्रा जी सऊदी अरेबिया से हमें सुनते हुए ओके वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सऊदी अरेबिया से थैंक यू सो मच बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज कुछ लोग हमारे साथ सऊदी अरेबिया से जुड़ रहे हैं दैट्स वेरी नाइस एंड डेली यही होता है मैं सिर्फ डिनर एंड ब्रेकफास्ट बाकी नो मील बस टू मील्स अ डे माय गॉड और आपका बाय द वे डिनर किस वक्त होता है अभी तो इतनी जल्दी आपका ब्रेकफास्ट हो गया तो डिनर कौन से टाइम पे आप करते हैं और इतना लंबा बीच में कुछ नहीं लेते और यू लाइक स्टिक टू फ्रूट्स और यू स्टिक टू समथिंग एल्स कुछ तो खाते होंगे इतना लंबा गैप तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं हो गया ना तो कुछ ना कुछ और चाय तो बिल्कुल नहीं कभी कभी चाय तो बिल्कुल नहीं कभी कभी पीते मैं सामीर जी आप तो बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल सेट किया है खुद के लिए भी आप बहुत ही और हफ्तों हो जाते हैं हाँ चाय का तो मुझे भी खैर उतना शौक नहीं है बट आई कांट लिव विदाउट माय पराठास इन द मॉर्निंग ये बात सच है मुझे चाहिए कुछ ना कुछ काम ऐसे एकदम सॉलिड वाला सुबह सुबह स्पेशली आई इंडल्ज इन पराठास मुझे मज़ा आता है खाने में अब आपको जो भी लगे लेकिन हाँ हफ्तों हो जाते हैं नहीं खाता हूँ ओ माय गॉड सामी प्लीज़ डू टेल मी कि आपका डिनर का एग्जैक्टली क्या टाइम है बिकॉज अभी आप ब्रेकफास्ट करें इट्स ऑलमोस्ट 6:34 इन द मॉर्निंग तो अभी डिनर का आपका टाइम क्या रहता है हमें इतना लंबा गैप हो जाता है तो हम श्योर भूख तो लगती होगी तो फिर किस तरह से अपनी भूख को सब्साइड करते हैं सेटल करते हैं वो यू डू डू लेट मी नो यहाँ पर मैसेज भेजिए शायद मैं भी किसी दिन इस तरह का बहुत ही 11:30 p.m.

0: बट कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर पाते कुछ नहीं हो पाते, बट आई एम ग्लैड टू सी कि कुछ हमारे लिसनर्स जो हैं वो हैट्स ऑफ तरीके मतलब वाकई उन्हें सल्यूट करूँगी. एक अच्छा प्रॉपर बैलेंस ब्रेकफास्ट एंड दैट टू एट अ वेरी राइट टाइम, और अच्छे दिन पे अच्छे नोट पे अच्छे खाने के साथ हेल्दी चीज़ों के साथ शुरुआत करना, ये हमें सबको अडॉप्ट करना चाहिए फॉर श्योर. अच्छा यहाँ पे अब मैं जो छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आऊँगी तो कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करूँगी, और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेरा टॉपिक भी है उस पर भी बात करेंगे. और टॉपिक पे आपको बात करने के लिए आपको डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ना भी होगा कॉल के थ्रू. नंबर है 4434377.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है. आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें. तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक. ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
3: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है. हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं. आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं. कीप क्रॉसिंग क्लियर. ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें. इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है. ट्रैमवे लुक बोथ वेज. ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है. क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है. ट्रैम ओनली लेन. ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं. ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं. शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स. ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें. कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर. ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें. अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीब टू हैबिट,
5: हदीब टू हैबिट.
4: दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
3: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो. याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें. अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते. आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है. फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है. सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है. ड्राइव सेफली.

0: क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: Right guys, very good morning and welcome back. आप सुन रहे हैं Summer Mornings. मैं हूँ नाजिया आपके साथ और आज है 26th of July. तो चलिए जानते हैं कि 26th of July को दुनिया भर में कौन से खास डेज जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। वैसे आज जब मैं पढ़ रही थी ना तो मैंने देखा कि आज के दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी मीनिंगफुल ऑब्जर्वेंसेस हैं। जो सबसे मीनिंगफुल मुझे लगा वो है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। जी हाँ, आज का दिन जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट की अहमियत को समझाने और उनकी हिफाजत के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये ख़ास करके जो मैंग्रोव दरख्त है ना, ये आपने देखे ही होंगे कि समुद्री किनारों को इरोजन से बचाते हैं। तो यहाँ जो है वो लाइफ वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देने का, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही एक हेल्दी सिस्टम को बनाए रखने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। और शायद ये चीज़ हम और आप उस तरह से एक्नॉलेज नहीं करते और शायद हम और आप उस तरह से अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये दिन जो आज है 26th ऑफ जुलाई, ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज की देखभाल अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, इसके साथ आज एक और इंटरेस्टिंग सा डे है और ये बड़ा ही अच्छा दिन लगा मुझे पढ़ के कि इट्स लाइक नेशनल आंट एंड अंकल डे। आंट इज़ कोई भी आपके हो सकते हैं, या खाला या पप्पी और मे बी कोई और रिलेशन में आपका है। तो आज का दिन जो है वो आपकी जो प्यारी आंटीज हैं या जो आपके जो अंकल्स हैं उनके नाम है कि वो किस तरह से हमारी लाइफ में कभी प्यार लेकर आते हैं, कभी किसी तरह की रहनुमाई करते हैं और कभी खुशियाँ किस तरह से हमें उनके थ्रू मिल रही होती हैं, किस तरह से वो हमें जब डांट पड़ी होती है तो बचा लेते हैं, जब हमारी पिटाई हो रही होती है तब हमें बचा लेते हैं। तो इस तरह के जो मौके हैं वो हम उन चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। तो आज का दिन स्पेशली उन्हीं आंट और अंकल्स के नाम है, उन आंटीज और अंकल्स के नाम है जिनका आप पर्टिकुलरली कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, या फिर आपके पास उनके उनसे रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत सी कोई याद है या यादें हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं। आज का दिन इस फॉर देम। इसके अलावा है एक दिन नेशनल ऑल और नथिंग डे। बताओ, नथिंग डे, ये दिन बेसिकली नथिंग होने के साथ साथ हमें इंस्पायर कर रहा है कि हम अपने गोल्स को अपनी लाइफ में अगर हमने सेट किए हैं या फिर हमारी जो ड्रीम्स हैं ना उन्हें पूरे कमिटमेंट के साथ उन्हें पूरा करें। और इसका मैसेज ये है कि अगर आप कोई काम करें तो पूरा करें और पूरी मेहनत के साथ करें और उसे कंप्लीट करें। जब तक कंप्लीट ना हो आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। कहीं ना कहीं हाफ हार्टेड से जब आप किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं ना तो शायद आप कामयाब नहीं होते। जैसे मैं हूँ, हाफ हार्टेड से मैं कोशिश करती हूँ कि आई सेट माय वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन, बट दैट इज़ अगेन हाफ हार्टेडली मैंने ये चीज़ें सोची हैं तो शायद मैं उतना स्ट्रॉन्गली उस पर कर नहीं पाती। बट इफ़ यू आर लाइक कमिटेड, जैसे हमारे कुछ लिसनर्स हैं, चाहे कादिर जी, कादिर अब्दुल हादी जी का मैसेज था, चाहे सामी जी का मैसेज था, यार एक दो और लिसनर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, तो मतलब उन्होंने दिखाया कि हाँ हमने इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो दैट इज़ एक्सेलेंट और वो उनकी हेल्थ के लिए है। और मैं पढ़ भी रही थी ऑफ एयर कि यहाँ पे सामी जी ने बताया कि उन्होंने 5 kg वेट, जो अपना वजन था, वेट भी 5 kg लूज किया है। सो लुक एट दिस कि मॉर्निंग में खाते हैं एंड देन ही इज़ लाइक टू मील्स अ डे, जो कि सिर्फ मॉर्निंग और रात में एंड इन बिटवीन कुछ नहीं, एंड दैट्स हाउ उन्होंने अपना वेट भी काफ़ी कंट्रोल कर लिया। तो बस आज की जो ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेंसेस हैं वो हमें कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं कि हम जो हैं वो अपने डेडिकेशन और कमिटमेंट से बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में, आसपास के लोगों की लाइफ में, एंड देन इसका हमारी फ्यूचर लाइफ पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है. वहीं आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि आप अपने इन्वायरमेंट की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कब उठाएंगे, जब आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी. नहीं, साथ के साथ हमें उठानी है. और हाँ, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए डेडिकेशन और कमिटमेंट, इस पर तो बने ही रहना है. ये वैसे आज का सवाल नहीं है, ये आज का मुद्दा भी नहीं है, ये एक थॉट है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा. और इस पर हमें जो है वो काम कैसे करना है, ये आपको सोचना है. वैसे सोचना क्या है, आप स्टार्ट कर ही चुके हैं किसी ना किसी तरह से. हम हर कोई जो है अपनी तरह का, अपने आप में मैं तो कहती हूँ वी ऑल आर लाइक एनवायरमेंट एम्बेसडर्स. किसी ना किसी तरह से हम कॉन्ट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं और हमें करना भी है. अच्छा, यहाँ पे कुछ और मैसेजेस हैं. शहजादा जी हैं, क्या हाल चाल है, हम हैं आपके साथ. एंड कहते हैं चाय जो है वो लाजमी चाहिए सुबह और एक शाम में. चलिए फिर भी ठीक है, आप तो सुबह शाम ही ले रहे हैं, जो इतना जो ठीक है सुबह शाम ले रहे हैं. और कुछ इतना नहीं पी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक वॉइस नोट है, मैं अभी सुन लेती हूँ फिर बताती हूँ क्या कहा है. काकी जी डे टू डे. अच्छा जी, ये बात भी है. अच्छा दिन आंटी, हाँ आंटी से काकी का दिन याद आ गया. हाँ काकी तो याद आ गई बीच में मुझे भी. अच्छा, इसके अलावा एक और प्यारा सा मैसेज है. अरे बड़ी अच्छी बात बताई क्या दोस्तों, आज हमारे साथ सऊदी से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं. तो आज इनका मैसेज है और इनका नाम है सऊदी से हमें सुनते हुए. मैडम बड़ा अच्छा लग रहा है, इनका नाम है नसीम. थैंक यू सो मच. एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ आपकी मॉर्निंग की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और इंशाल्लाह आपका दिन भी बहुत अच्छा होगा. एंड हाउ इज़ द वेदर देयर इन सऊदी, ये भी बताइएगा. इसके अलावा एक और गुड मॉर्निंग वाला मैसेज है. वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये है इमरान. तो गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ ही रहे हैं, इस पर भी बात हो रही है. अब धीरे से आराम से जेंटली आज के टॉपिक की तरफ भी आना चाह रही हूँ मैं. थोड़ा सा एक छोटा सा सोच ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आऊँ तो फिर इस टॉपिक पे बात करती हूँ. और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे इंशाल्लाह जब हम बताएंगे, तो हमारा नंबर लिख लीजिए 4434377.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ.
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज With RJ सर्वर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
0: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है. जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं. साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है. पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है. अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खासतौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों. इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए. अक्सर साइक्लिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है. हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है. हेलमेट्स सिर्फ साइक्लिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं. अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है, इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
0: ओनली ऑन FM 107।

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड 6:52 ऑन द क्लॉक। अब हम जो है वो आज का अपना टी टेबल टॉक उसकी तरफ भी आने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा बाकायदा सेगमेंट है जहाँ पे हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, हम डायरेक्टली जम कर जाते हैं। आज मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना आपको बताया कि ये प्रॉपर एक सेगमेंट है जिस पर अब मुझे लगता है कि मुझे हॉट की भी बनवानी चाहिए। तो शकीब भाई, आज आप और हम मिल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक जो लोकल अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये बहुत ही कमाल की अपडेट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, और वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कतर के पब्लिक वकथॉटिशकाल ने जो है वो कतर साइंटिफिक क्लब के साथ मिलकर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के 5वें एडिशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। और ये प्रोग्राम जो है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हुआ एंड 23 जुलाई तक जारी रहा, और इसमें 40 सेकेंडरी स्कूल्स के लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया, स्टूडेंट्स ने मतलब हिस्सा लिया। और इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद है कि यंग स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग की दुनिया से पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाए, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी स्किल्स जो है, या फिर टीम स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स जो है, उन्हें किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स को सिर्फ बुक से नहीं बल्कि जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं और जो रियल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट है उसका एक्सपीरियंस करवाया गया, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। वहीं प्रोग्राम ने स्टूडेंट्स को ये समझाने में भी मदद दी कि इंजीनियरिंग जो है वो कतर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फ्यूचर ग्रोथ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और इस मौके पर फातिमा अल-कुबैसी, जो कि एक्सटर्नल रिलेशन सेक्शन की हेड हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं यंग लोगों में इन्वेस्टमेंट करने और उनके जो फ्यूचर है उसके लिए तैयार करने के लिए और उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और मज़ीद बेहतर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स की स्किल को डेवलप करते हैं, उनके जो करियर इंटरेस्ट हैं उसे भी डिस्कवर करने और कहीं और ज़्यादा एक्साइट करने में यूज़फुल होते हैं फ्यूचर के लिए। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह सकती हूँ इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ कतर में होते हैं, और ये प्रोग्राम्स हमें याद दिलाते रहते हैं कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो कल के इनोवेटर्स हैं, वो कल के लीडर्स हैं, वो कल के इंजीनियर्स हैं, वो कल के रिसर्चर्स हैं। तो जब यंग जनरेशन को सही गाइड किया जाए और उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग का उन्हें भरपूर मौका दिया जाए तो वो मुल्क की तरक्की में डेफिनेटली एक अहम रोल तो प्ले करेंगे ही करेंगे। तो आज की ये जो लोकल न्यूज़ थी वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है मैं बड़ी एक्साइट हो जाती हूँ। और कतर किस तरह से अपने यंग टैलेंट को एम्पावर कर रहा है और फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है, इसके लिए हैट्स ऑफ। और ये सारे प्रोग्राम्स और इससे और भी अच्छे मज़ीद बेहतर प्रोग्राम्स जो

हैं वो जारी रहेंगे, इन फ्यूचर भी आप सुनते रहेंगे। अच्छा तो चलो आज की लोकल न्यूज़ भी हो गई, अब बहुत सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं, 5 मिनट बचा है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद मुझे लगता है मैं फिर अपने इस टॉपिक पे आ जाऊँ, या व्हाट यू से आ ही जाऊँ। नहीं चल थोड़े से मैसेज वगैरह ले लेती हूँ, फिर 5 मिनट के बाद ही मैं आ जाती हूँ इस टॉपिक पर। ओके तो दिस इज़ नाज़ी जी, दिस इज़ माई डिनर। भाई लोग इसको डिनर बोलते हैं। खादिर अब्दुल हादी जी ने जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैलड की पिक्चर भेजी है, जिसमें जो है लेटस है, कैरेट नज़र आ रही है, क्यूकम्बर मुझे नज़र आ रहा है, ऑलिव ग्रीन नज़र आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं मेरा डिनर है एंड दिस इज़ माई लंच। चलो लंच में कुछ तो है, दाल चावल नज़र आई मुझे और सब्ज़ी नज़र आई, पर बड़ा ही टेम्पटिंग आपका लंच है ना, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा स्टील में भी खाना आपने स्टार्ट कर दिया, ये भी बहुत अच्छा है। स्टील या प्लास्टिक का तो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, जितने भी लिसनर्स हमारे कोशिश कीजिए या तो स्टील या तो फिर आप ग्लास, इस तरह की ही आपकी जो है वो कटलरी होनी चाहिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसी तरह के आपकी प्लेट्स वगैरह या बाउल्स वगैरह जिसमें भी आप खाना डाल के खाते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। चाय के बगैर मैडम मेरा गुजारा नहीं होता सुबह सुबह, ये कहा है मंसूर जी ने, और गुड मॉर्निंग कहा है, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैंने कहा ना, ये कुछ लोगों की मॉर्निंग की शुरुआत ही नहीं हो पाती, उनकी जैसे आँख ही नहीं खुल रही होती है जब तक उन्हें प्रॉपर वाली चाय ना मिल जाए। बेड टी वाला तो खैर पता नहीं कोई है कि नहीं है, निकल के आएगा बाहर तो पता चले। मुझे बेड टी का तो अभी मुझे नहीं मालूम कि कौन ला के आपको सर्व करेगा, आपको खुद ही अपने आप ही सर्व करनी है, तो उसके लिए तो बेड से उठना ही उठना है। लेकिन हो सकता है कुछ लकी लोग हों जिनके पास ऐसे लोग हों जो उन्हें बेड पे आके ही सर्व कर रहे हों टी, तो वो भी ट्रेंड था वंस अपॉन अ टाइम, सुनती थी, अब तो मुझे पता नहीं। अच्छा यहाँ पर एक और मैसेज है, वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैडम मैं तो बहुत ज़माने से, अच्छा वो उस वाली बात पे बता रहे हैं कि जो आपने बताया ना कि आपकी एक आंटी, मैंने बोला था ना कि वो सुबह में उनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रिचुअल है, वो मेथी का पानी, अजवाइन का पानी और ये पानी वो पानी, बहुत सारी पानी वगैरह पीती रहती है सुबह, तो ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। हाँ मुझे मालूम है, और मैंने तो खुद बोला यहाँ पे, एडमिट किया भाई कि वो मुझसे सुपर चार्ज रहती है पूरे दिन, मतलब यहाँ नहीं है, जब मैं गई हुई थी अपनी छुट्टी पर तो मैंने देखा कि मतलब इतना सारे पानी, इतनी सारी चीज़ें, एंड और मैं बड़ी हैरान हुई जब उन्होंने एक पानी का स्टार्ट किया, फिर ये मैं पीती हूँ, फिर 10 मिनट के गैप से फिर ये वाला पानी पीती हूँ, फिर मैं ये खाती हूँ, फिर मैं कच्चा लहसुन खाती हूँ, एंड फिर मैंने पहले सोचा आई वॉज लाइक इतनी सारी चीज़ें कितने आप एफर्ट्स लगते हैं, परेशान नहीं हो जाती है नॉल, बट मैंने खुद कंपेयर किया उनको अपने आप से, तो देखा कि मेरी एनर्जी लेवल्स और उनके एनर्जी लेवल्स में लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क, और एज में भी हम दोनों के आई एम क्वाइट यंगर, मैं बहुत यंग हूँ उनसे और वो मुझसे बहुत ज़्यादा यंग इसलिए लग रही हैं एनर्जी वाइज, कि वो पूरे दिन में वो थकती वकती नहीं आसानी से, पैदल बाजार भी चलो ये करो, हम लग नहीं पैदल तो नहीं जा सकती मैं किसी हाल में, मतलब देखो, और शायद वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि वो उस रिचुअल को उस ज़माने से फॉलो कर रही हूँ। तो ये हम सब जो है ना थोड़े से काहिल है, मतलब मैं हूँ अपने बारे में कहूँगी कि मैं थोड़ी सी लेजी हूँ कि हाँ ऐसे करूँगी कर लूँगी उसके फ़ायदे, हाँ मुझे भी पता है, मैं लिसनर्स को भी बताती हूँ बट मैं खुद नहीं अमल कर पाती हूँ। आई जस्ट होप, प्लीज़ प्रे फॉर मी, आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं भी ये सारी चीज़ें शुरू कर दूँ। नाज़िया जी हाउ आर यू, आई एम गुड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। रमेश यादव जी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा किसी ने बड़ा ही हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट भेज दिया,

अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये जावेद बाजवा जी ने बहुत ही कमाल धमाल का ब्रेकफास्ट, ये तो जबरदस्त ब्रेकफास्ट है इतना ज़्यादा मैंने देखा वीडियो थोड़ा सा, बहुत ही कमाल का ब्रेकफास्ट है ये, कहाँ आपको सुबह सुबह मौका मिल जाता है, घर तो नहीं लग रहा है, दिस इज़ डेफिनेटली रेस्टोरेंट, कहाँ पर है और सुबह आप कैसे जा पाते हैं, बहुत ही अच्छा वाला ब्रेकफास्ट और चीज़ें हेल्दी ही हैं, आपने भी जितनी चीज़ें शेयर की। सलाम, यहाँ पे कहते हैं ये भी हमारे साथ मियां बख्श जी जुड़े हैं सऊदी से, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हैं वो सऊदी से जुड़ रहे हैं, सलाम कहते हैं तमाम सुनने वालों को, सलाम कहते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अच्छा लगता है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एंड मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मैं 2-3 लिसनर्स को सऊदी से उनके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू फॉर योर मैसेज। और एक और प्यारा सा मैसेज है असलम जी का, कहते हैं कि मैडम मेरी मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो गर्म पानी और लेमन से, हनी से होती है, फिर मैं मेथी का पानी लेता हूँ थोड़ी देर बाद, फिर जो है मैं भी बहुत ज़माने से कच्चा लहसुन ले रहा हूँ, जो जिसका फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है। बहुत सारे हेल्दी मॉर्निंग रूटीन्स जो हैं वो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, कि बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ही अच्छा वाला प्रॉपर वाला एक रूटीन फॉलो करते हैं। दोस्तों मेरे लिए दुआ कीजिए मैं भी इस रूटीन को फॉलो कर सकूं। चलिए यहाँ पर जो है हमारे स्टूडियो क्लॉक पे 7 बज रहे हैं, एक घंटा कहाँ निकल गया आपके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला। अब हम अपने शो के सेकेंड आवर में एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर इस सेकेंड आवर में और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, एंड यस ऑफ कोर्स अब हम टॉपिक को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आपको हमारा नंबर लिख लें जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, नंबर है 4434377।

FM 107. Time check. Time check. राइट गाइस, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टोरी क्लॉक में बज रहे हैं 7:03.

0: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ एंड 7:15 ऑन द क्लॉक। तो आज का जो हमारा टीटीटी, मेरा मतलब है टी टेबल टॉक, उसकी तरफ आ जाते हैं। और आज जिस सवाल पर हम आपसे चाहेंगे जवाब, आपकी आपकी ओपिनियन चाहेंगे, आपका पर्सपेक्टिव, या आप अपनी राय हमारे साथ, या हम इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहेंगे, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए, कुछ लोग जो है ना, वो लाइफ में ये मानते हैं कि अगर हमें कामयाब होना है या कामयाबी हासिल करनी है तो ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोगों को लगता है नहीं, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल मैं कहूँगी कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, चाहे हम स्कूल में थे या फिर ऑफिसेज में भी, इट्स क्वाइट कॉमन। या फिर आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में खड़े हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है कोई भी फॉलो करते हैं, तो वहाँ भी इस सवाल का मतलब घुमा फिरा के ये सवाल आ ही जाता है हमारी लाइफ में। और ये सवाल जो है वो अपने आप में इसलिए इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि दोनों के अपने गुड जो हैं वो प्रोज एंड कॉन्स हैं, और दोनों जो हैं उसके अपने गुड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए पहले तो इस टॉपिक को ही एक्सप्लोर करने से पहले उस मुद्दे पे आ जाएं जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं। आज मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि अगर आप नेचुरली टैलेंटेड हैं तो आप आसानी से कामयाब हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं और ये मानते हैं कि नेचुरली टैलेंटेड होना इनफ नहीं है, और शायद अगर आप टैलेंटेड हैं भी लेकिन अगर आप मेहनती नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, तो आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। तो मैंने कहा चलिए आपसे पूछ लेते हैं कि कामयाबी के लिए आपके हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? इज इट लाइक हुनर, या फिर आपको लगता है मेहनत? और आप किसको पिक करेंगे, क्यों, हुनर या फिर मेहनत? आई मीन टू से, व्हाट मैटर्स मोर फॉर सक्सेस, इज इट लाइक टैलेंट और हार्ड वर्क? आप इन दोनों चॉइसेस में से किस चॉइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? एंड प्लीज़ लाइक लिटिल बी ओपन, आप मुझे रिलेट भी कर सकते हैं कि कभी किसी टाइम में आपके हार्ड वर्क की वजह से आपको एक बड़ा अचीवमेंट मिला, या यू कैन रिलेट कि नो, मैं हार्ड वर्क करता रहा या करती रही एंड डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे उस तरह का अचीवमेंट नहीं मिल पाया। एंड आई हैव सीन क्वाइट नंबर ऑफ पीपल जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, दे डोंट वर्क टू हार्ड लेकिन फिर भी वो अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को। या कोई और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट आल्सो यू कैन शेयर विद मी। नंबर इज 4434377। एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग शहजादा जी, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मबरूक इसके लिए बोला ना,
0: हाँ?
1: मेरी गाड़ी जो दो बार पार्किंग में फेल हो गई थी, अब फाइनली एक पॉइंट में जिसमें फेल किया था उसको फिर प्रिपेयर करा के वापस से रेडी करके वापस से इंटर किया हूँ। और हाँ? काफी लंबे महीने, तो मैं बोला इससे बेहतरीन मौका क्या होगा कॉल करने का।
0: चलिए लेकिन नाइस, मबरूक मुझे कहना चाहिए फिर तो, ये फाइनली आपकी गाड़ी जो है वो क्लियर हो गई, पास हो गया, आपको मिल रहा है तो आसानी, अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो आप मुझे शहजादी जी बताएंगे कि आपके हिसाब से कामयाब होने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, हुनर या फिर मेहनत?
1: हुनर, मेहनत, टैलेंट वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन इसमें सबसे मेन अहम रोल है ना, जहाँ तक मेरा मानना है, डिसिप्लिन।
0: डिसिप्लिन,
1: डिसिप्लिन। अभी जैसे आप कहीं सर मतलब ऑडिशन के लिए जा रहे हो, आप में कूट कूट के टैलेंट बढ़ा है और आपको मतलब टाइम दिया गया है ना, तो वहां पर आप, हाँ वो भी आपका मतलब एक टेस्टिंग होता है कि ये कभी पहुंचा। और फिर आपको ऑडिशन के लिए जो टाइम दिया था उसके 6 घंटे बाद आपको बुलाया, वो भी एक एग्जाम है, वो भी एक टेस्ट है कि कितना पेशेंट, कितना सबर है इसमें। तो नहीं चले गया ये, बस ऐसी बुलाया था, बस ऐसी कुछ, तो अभी 6 इतने घंटे हो गए, हम इरिटेट हो जाते हैं ना सभी से एकदम से, ये कहीं है ना हमको ना बेवकूफ बना रहा है, चलो छोड़ो। लेकिन वहां पर आपकी ये जो डिसिप्लिन है, आपका जो सबर है और आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपकी जो जिद है ना, जिद कि नहीं मैं तो ऑडिशन दे के ही जाऊंगा, तो मैं इस पे फोकस करूंगा क्या डिसिप्लिन। आपको जो बोला गया है ना, जहाँ पर पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, आप उसको पहले पहुंच जाओ। आप अपना पॉइंट नहीं, आप डिले नहीं करवा रहे, आपको सात का टाइम दिया था, आप तो सात दस पे आए, दस मिनट में तो काफी कुछ कैंडिडेट आ गया, अभी तो नो चांस है, बेस्ट ऑफ लक ऐसा भी बोल सकते हो। तो जहां तक हाँ ये टैलेंट और मेहनत तो लाजमी है, जिसके पास टैलेंट है तो जाहिर सी बात है ऐसे टैलेंट तो नहीं आ गया ना, उसने तो कितनी मेहनत किया होगा,
0: बिल्कुल से।
1: और एक टारगेट एचयू का उसका ये भी होगा ना, अपना सोच भी होगी कि नहीं यार मेरे पास इतना कुछ है यार, मैं इसको क्यों नहीं इसको प्रमोट करूं, इसको कहीं क्यों नहीं इसको आगे लेके जाऊं, और मैं भी एक फेमस हो जाऊं ना, तो मेहनत आ जाती है ना उसमें, मेहनत के बगैर तो नहीं होगा ना। लेकिन इसके अलावा जहाँ तुमको जाना है, जिस स्टेज पे खड़ा रहना है, जहाँ पे परफॉर्म करना है, तो डिसिप्लिन तो मस्ट बी, यू हैव टू गेट इट।
0: बहुत ही अच्छी बात कही शहजादा जी, और मैं भी आपकी बात के साथ पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड भी है। मतलब डिसिप्लिन का मतलब ही क्या है कि रोज के आपके काम, चाहे आपका दिल नहीं भी चाह रहा है, फिर भी आप उन्हें टाइम पे कर रहे हैं, है ना, यही आपकी लाइफ का डिसिप्लिन है। मतलब टाइम पे उठना, सोना, एक्सरसाइज करना, या जो भी आपने अपने लिए सेट किए हुए हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ करना दिन भर की, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं। सिर्फ हार्डवर्क भी इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्डवर्क तो ये है कि आप 10 घंटे काम कर रहे हैं फिर 10 दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन ये है कि हर रोज 4 घंटे कर रहे हैं उसके लिए, तो दैट इज लाइक सम। हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए आप क्या बोल रहे थे।
0: हाँ नहीं, मैंने कहा आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट ऐड किया कि डिसिप्लिन भी बहुत मैटर है, हार्डवर्क तो है ही, मेहनत तो हम मानते ही हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको लगातार मेहनत करना सिखा देता है, तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट आपने रेज किया, बहुत ही अच्छी बात है
1: जी। और इसके अलावा कोई आपको कब अप्रिशिएट करता है मालूम है, जब आप यानी वो कुछ आपके बगैर कुछ काम में समझ लो अटका है, एग्जाम्पल एक मैकेनिक ले लो कि उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया और उसकी फला आधे घंटे पौने घंटे बाद उसकी मीटिंग है, अब कैसे पहुंचूंगा, मैकेनिक आएगा जब तक करेगा, तो अगर आप वहां पे कुछ कर जाते हो ना, क्या क्या उसकी गाड़ी भी मतलब अपने उसकी ब्रेक डाउन गाड़ी भी सही कर दिया और वो वक्त पे पहुंच भी गया, तो वो आपका मतलब है ना, वो आपको शाबाशी मिलती है वहां पर, क्योंकि आपने मतलब बड़ा मतलब इससे मेहनत से और बड़े दिल से मतलब देखिए, क्योंकि आपको फीलिंग होना चाहिए कि इसका फ्लाइट नहीं मिस हो जाए या इसकी ट्रेन मिस ना हो जाए, इसको कैसे भी पहुंचना चाहिए, हालत में पहुंचाना चाहिए इसको, तो वो चीज है ना। एक बार मेरी लाइफ में हुआ ना ऐसा, मैं इंडिया में था ना, तो जो मैंने यही मतलब मेरे को ये था कि मैं बराबर पहुंच जाऊंगा, बराबर है ना पहुंच जाऊंगा टाइम पर, और इतना टाइम है अभी, लेकिन मैं जो मुझे जाना था हैदराबाद, तो आगे फैमिली निकल चुकी थी, सब लोग हाँ निकल चुके थे, तो मैं बोला मैं आ रहा हूँ, चलो मैं तो पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सा ये करके मैं पहुंच रहा हूँ, तो वो लोग बैठ गए, गाड़ी लग गई, गाड़ी में बैठ गए, मैं लोकल ट्रेन से जा रहा था, तो किसी वजह से लोकल ट्रेन है ना थोड़ी सी लेट और डिले हो गई, उसको कहीं ना रुकना पड़ा, यानी उसने कुछ ना 10-15 मिनट खा गया, तो मेरे को फोन पे फोन आना शुरू हो गए कि आप मतलब पहुंचे नहीं अभी, सब लोग बैठ गए सब, और टाइम इज ओके टाइम ओवर, और गाड़ी मिल चुकी है, और मैं दौड़ते दौड़ते जब लास्ट उसका डब्बा जा रहा था और मैंने रनिंग किया था नहीं मिली, तो फिर अभी सेकेंड ऑप्शन किया, इसका फर्स्ट स्टॉप था बॉम्बे से एक आगे ना एक कल्याण बोल के उसके बाद लोनावाला, उसके बाद पूना, तो वहां से जो अपना जंक्शन से जो बाहर जो टैक्सी शेयरिंग में चलती है ना बॉम्बे पूना बॉम्बे पूना, वो मैं पकड़ा, कैब वो पकड़ा, वो भी शेयरिंग में था, अब वो भी बंदा ऐसे कि जब तक सिटिंग पूरी नहीं होगी जब तक वो चलेगा नहीं, बहरहाल सिटिंग पूरी हो गई, चला तो फिर हम मतलब जाएंगे तो बीच में एक खंडाला घाट पड़ता है, वो घाट है ना क्रॉस करने के बाद आता है, तो मैं ड्राइवर को बोला यार मेरी गाड़ी मिस है, मेरे को उसको पूना में पकड़ना है हैदराबाद एक्सप्रेस, तो बोला मैं कोशिश करता हूँ, तो गए, तो अगर घाट खाली मिल गया ना ट्रैफिक नहीं रहा तो हो जाएगा, यकीन करें वो बंदे ने मेहनत किया, मैं जैसे उसने मेरे को ड्रॉप किया और वो ऐसे लोकेशन पे ड्रॉप किया ना कि मैं जब स्टेप चढ़ के प्लेटफॉर्म पे आया और गाड़ी खड़ी थी सामने,
0: तो मैंने ये तो जब भी मेट, अच्छा जब भी मेट पहले ही बन जाती, ये अच्छा हुआ
1: किया गाड़ी को, उसके बाद जो है अपना सब लोग खुश हो गए एकदम से कि वो लोग पहले गए थे फैमिली सब है ना, बोले और फिर मेरे को डांट भी पड़ी और ऐसा लेट हो और ऐसा लेट हो इसी मर्जी से ना, तो इस तरीके से ना बहरहाल
0: आपको एक लेसन मिला और आई थिंक आपने उसके बाद ऐसा कभी नहीं किया होगा।
1: नहीं
0: बिल्कुल नहीं रहा। एक बार फ्लाइट में
1: काउंटर बंद हो चुका था बोर्डिंग का, उन्होंने फोन किया तो पता चला कि प्लेन का दरवाजा भी बंद हो गया, तो बोलता नहीं। और सेकेंड डे संडे है, मंडे को मेरे को मगरिब तक पहुंचना है। पहले ऐसी था ना सऊदी में, मतलब जो वैकेशन का लास्ट डे छुट्टी होता ना, उसके बाद डे चेंज होता है, तो और संडे था तो संडे को तो रिकन्फर्म तो नहीं होगा टिकट, पहले रिकन्फर्म होता था टिकट। फिर भी मंडे की मॉर्निंग की ना मेरे को एक दूसरी वाया फ्लाइट मिली, तो मैं असर तक मतलब पहुंच गया था सऊदी अरब। मगरिब में वो वीजा एक्सपायर हो रहा था, अगर मगरिब हो जाती ना डे दूसरा लगता तो नहीं मिलती।
0: आप भी ऐसी ऐसी चीजें कर रहे होते कि अभी मैं एक्सपायर होने वाला, अभी चीज एक्सपायर होने वाली, बस अभी के अभी 5 मिनट बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे मार्जिन लेके चलते हैं भाई लाइफ में थोड़ा थोड़ा, याद रखिए थोड़ा सा लिया कीजिए मार्जिन, थोड़ा पहले से चीजें प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइज करना। और अभी आपने माशाल्लाह डिसिप्लिन की बात की, ये एक खुद एक एक एग्जांपल हो सकता है डिसिप्लिन लाइफ गुजारने का, कि हर चीज़ आप अपनी ऑर्गेनाइज करें, थोड़े से पहले से चीज़ों को देखें समझें। लेकिन चलिए खैर, एंड आपका अच्छा रहा वहाँ का, तो ये बड़ी बात है।
1: और सब लिसनर को सलाम व आदाब, स्पेशली सबको और जावेद भाई को भी।
0: जरूर जी जरूर, अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली, और वो भी आप सबको सलाम कहते हैं और आप सबके प्यार को जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं।
1: अच्छे अच्छे लेटर, अच्छे अच्छे जो तहरीर होती है ना डेली मॉर्निंग में वो, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल।
0: चलिए जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल। अपना ख्याल रखिए शहजादा जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, आज हमारा जो टॉपिक है जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपके हिसाब से कामयाबी के लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे शहजादा जी ने डिसिप्लिन ज़रूर ऐड किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आपकी कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, लर्निंग माइंड सेट्स हैं, प्रोग्रेसिव माइंड सेट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली ऐड हो सकती है। बट लेट्स स्टिक टू लाइक वट यू believe is talent or hard work, इन दोनों में पहले बात करते हैं, क्योंकि ऐसे हम थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लोर अच्छे से कर लें। बाकी चीज़ें जो आपकी ट्रेड्स हैं वो तो हैं ही, ये है कि ऐसा एक तो टैलेंट है नेचुरली, एक ये है कि आपके पास वो टैलेंट है नहीं, लेकिन हार्ड वर्क से आप उस टैलेंटेड पर्सन से भी आगे निकल गए। यू नो व्हाट आई रियली वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, वो आज हम चाहते हैं कि उस पर हम ज़रूर बात करें। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप शिमोन?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: मेरे ख्याल से एक आध बार शायद पहले भी इस टॉपिक के ताल्लुक से शायद आपने जहाँ तक ध्यान आ रहा है बात हुई है,
0: हो सकता है कुछ आसपास हो, कुछ टॉपिक्स तो आपस में इंटरलिंक भी है और कहीं ना कहीं मिल भी जाती है चीजें।
2: तो मेरी मेरा मानना तो इस ताल्लुक से यही है कि टैलेंट तो डेफिनेटली होता ही है लोगों के अंदर, और वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट देर इज नो अदर ऑप्शन टू हार्डवर्क। हार्डवर्क मैं चूंकि आपने ये बात कही, मैं इन दोनों पे ही स्टिक करूंगा। आई विल नॉट
0: डाइग्रेस, आई वुड अप्रिशिएट प्लीज, नाइस,
2: नहीं आई विल नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द यू नो टॉपिक। तो उसमें जो है जो हार्डवर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। अच्छा, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत हार्डवर्क करें तो फिर आप किसी टैलेंटेड आदमी से आगे निकल ही जाए, ये भी पॉसिबल, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है।
0: सही,
2: तो आप उसमें, आप कोई इंसान ऐसा इंसान है कि जिसमें जो बहुत जो टैलेंटेड है और उसने थोड़ा सा उसके अंदर हार्डवर्क भी किया रही और उसने वो फोकस किया, तो वो ही हैज मोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो फास्टर। तो इस ताल्लुक से तो मैं यही मानता हूँ कि टैलेंट तो अपनी जगह है ही, बट हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं।
0: हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं. लेकिन आपने ये भी एंगल ऐड किया कि पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर कोई बंदा टैलेंटेड है वो शायद उतना हार्डवर्किंग नहीं भी है बट वो भी कामयाब होगा. और आप डिस्पाइट ऑफ बीइंग लाइक यू डूइंग लॉट्स ऑफ हार्डवर्क बहुत सारे एफर्ट्स आप डाल रहे हैं फिर भी हो सकता है ऐसे चांसेस हो कि आपको लगे कि आप कामयाब नहीं हो सके.
2: हाँ बिल्कुल. असल में क्या है ना कि लाइफ इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट हैज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच विद इट राइट. तो हम एक हालांकि आपने इसको दो ही में करा है और हम दो ही में रहेंगे और टैलेंट और लेकिन जिंदगी सिर्फ इन दो से नहीं है, बहुत सी चीजें हैं आपके अराउंड. लाइक इट्स लाइक ये जैसे ऐसा है जैसे कि आप कुछ सब्जी बना रही हैं राइट. तो अब सब्जी में जो है वो सिर्फ उस सब्जी का काम नहीं है खाली, उसमें मसाले भी जाएंगे, तेल में पानी भी जाएगा, उसके अंदर और बहुत सी चीजें भी जाएंगी, फिर यू नो राइट अमाउंट ऑफ कुकिंग भी जाएगी उसमें, राइट टाइम भी जाएगा उसमें. अगर आपने टाइम कम रख दिया या ज्यादा रख दिया तो भी वो अच्छी नहीं बनेगी. तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें जाती है. लेकिन सब्जी जो है वो अपनी जगह उसके बिना नहीं बन सकती, सब्जी के बिना
0: आप
2: तो आप जो है वो
0: जी जी मैं ये पूछ रही थी अगर मान लीजिए मैं आपको छोटी सी ऐसी सिचुएशन रफली मेरे जहन में आई कि मान लेते हैं दो लोग हैं एक रेस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है. एक आपके हिसाब से देखा जाए तो नेचुरली एक बहुत ही फास्ट रनर है जो सब जिसको सब जानते हैं कि ही और शी इज अ फास्ट रनर. वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बंदा ऐसा है जो ब्लो एवरेज है लेकिन हर रोज प्रैक्टिस करता है एज कम्पेयर टू दैट फास्ट रनर. अब आपके ख्याल में इस रेस में कौन जीतेगा, आपके प्रेडिक्शन क्या होगी?
2: नहीं देखिए पहली बात तो ये है कि मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, रीजन नहीं क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि मैं उन दोनों में हूँ नहीं, मैं वहाँ पर रही सिंपल रीजन.
0: नहीं अगर बाहर से बहुत ही जनरल से
2: बाहर से अगर देखिए आप सपोज देखिए जैसे आपने एग्जाम्पल ली, अब जैसे आप देखिए अफ्रीकन जो मेल्स है ना या फीमेल्स है ना उनकी बिल्ट जो है वो इस तरीके से होती है कि दे आर यू नो मोर प्रोन टू विन इन मैराथन्स या शॉर्ट रेसेस ऑल्सो ठीक है. अब वो लोग जो है अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे एज कम्पेयर टू द एशियन सब कॉन्टिनेंट एथलीट रनर्स तो वो जीत जाएंगे वो ठीक है. आप जो है किसी भी एशियन सब कॉन्टिनेंट के रनर एथलीट को कितनी भी प्रैक्टिस कराइए खूब कराइए बहुत करेगा वो ठीक है. लेकिन अगर उस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एथलीट ने रनर ने अपने टैलेंट पे जिस तरीके की उनको अल्लाह ताला ने एक वो नेचुरल है वो उसमें कोई वो नहीं है उन्होंने थोड़ी भी मेहनत की तो वो जीत जाएंगे फॉर श्योर.
0: सही. अच्छा मैंने शायद गलत एग्जांपल दे, एक और तरीके से मैं आपसे ये बात पूछती हूँ. मान लेते हैं एक प्रेजेंटेशन होनी है, दो बंदों को प्रेजेंटेशन जो है वो देनी है. एक जो हमेशा से बहुत ही अच्छा है व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंट है, गुड कमांड है लैंग्वेज पे, चीज़ें भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है. बट दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो बहुत हार्डवर्किंग है, जो बहुत ही यू नो प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ या बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी कर रहा है और हर रोज कर रहा है. वहीं पे ये वाला बंदा जो है क्योंकि उसको पता है कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, आई एम वेरी गुड एट प्रेजेंटेशन, तो उस तरह की तैयारी नहीं करता कि भाई आई नो एवरीथिंग. दूसरी तरफ वो बंदा लगातार तैयारी कर रहा है कि मुझे अपना बेस्ट देना है. अब आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी, दोनों से कौन बेहतर प्रेजेंटेशन पेश कर पाएगा?
2: I would like to, you know, quote here this, you know, a very famous tale we had been listening from the childhood. Jo khargosh aur kachhuwe ki jo kahani
0: hai na. Right.
2: So,
0: right.
2: So, wo cheez phir yahan par aati hai ki ab jo cheez, ab jo aapne example diye na, to usme kya hai, ek insaan ne apne talent ke upar bharosa karke wo baith gaya, wo kuch kar hi nahi raha. ये चीज अब गड़बड़ हो गई यहाँ पर. अदर गए वो उसके अंदर वो टैलेंट नहीं था लेकिन उस इंसान ने जो है वो मेहनत करता रहा, लगातार मेहनत करता रहा, फोकस करता रहा, लगातार फोकस करता रहा, डिसिप्लिन रहा, सब कुछ रहा, तो डेफिनेटली वो जीतेगा.
0: मतलब आप कहते हैं कि अगर टैलेंटेड इंसान मेहनत ना करे और एवरेज

0: शिमन जी, मुझे लगता है कि टैलेंट, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, ये भी एक टैलेंट है.
1: वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो फोकस्ड है रोज सुबह उठ के, वो दिन में वो एक ही चीज रोज कर रहे हैं ना, उस पे अपना पूरा लगा रखा है, टाइम मेहनत वगैरह सब उसी पर लगा रखी है उन्होंने.
0: टैलेंट वेरी वेल सेड. बहुत मजा आता है मुझे आपसे बात करके. आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ना कुछ आपसे पूछते एक्स्ट्रा ऐसे रहती हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से टॉपिक को एड्रेस भी करते हो. कुछ नया हमें सीखने के लिए आपसे मिलता है.
1: हम लोग एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं, मैं भी सीखता हूँ बहुत कुछ. एक और चीज थी वो ये कि क्या आप अपने शो के ताल्लुक से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी लेती हैं?
0: आई डोंट माइंड. जहाँ तक कंस्ट्रक्टिव, आई रियली डोंट माइंड.
1: ओके, नो द थिंग इज दैट कि नाजिया, अक्सर ऐसा होता है कि टॉपिक होता है ए, और टॉपिक में हम पहुंच जाते हैं ए से बी सी डी ई एफ जी एच ओ तक पहुंच जाते हैं, राइट?
0: तो
1: देन टॉपिक पे क्या होता है कि हम ए पे तो खाली बात कर पाते हैं एक मिनट, और जी तक हम पिछले 20 मिनट बात हो जाती है.
0: नहीं, ये आप ही का नहीं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं. आई रिफ्रेन यू नो रीडिंग दोस, तो देखते हैं हम उस पे किस तरह से थोड़ा सा काम करेंगे. विल ट्राई अवर बेस्ट.
1: नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह. सी, हम सब लोग जैसे ही, जो भी आपके लिसनर्स हैं सारे, आप लोग
0: बिल्कुल. और जब हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो सिर्फ टॉपिक पे ही नहीं, वो अपनी भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर हैं और हमसे बात करना, यू नो, कहीं ना कहीं दे फील लाइक कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ जुड़े हैं, इसलिए हम उनसे बात और भी कर रहे होते हैं. देवी टाइप की थोड़ा सा वो उसको भी टच कर लें, टॉपिक को भी हमारे, तो दैट वे हम कभी कभी बी से जी तक पहुंच जाते हैं. That's how. But जरूर ज़हन में रखें. चलिए, but thank you so much. Have a very great morning and a great day ahead.
1: आप अपना ध्यान रखें, इंशाल्लाह. Have a good day.
0: थैंक यू, टेक केयर, बाय. वालेकुम अस्सलाम. ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे साथ शिमोन जुड़े, उनसे मैंने जुड़ने के साथ उनसे बहुत सारी तरीके से सवाल को जो है वो रखा, एंड इट्स रियली सो नाइस कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे बात की और लगातार हमारे साथ अपने बहुत ही अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर भी किए. एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कौन है हमारे साथ? Hi Aju, how's your morning going?
2: Morning is going good, but weather is very harsh today. Humidity is too much.
0: Oh yeah, it is. That's true.
2: We are reaching almost 52 to 53.
0: You'll feel like 52, 53. Yeah, it is.
2: No, it's a real humidity. Ah. 52, 53.
0: And it will go up to 63, 65. So just imagine.
2: No problem. Only, only two points. That's enough for stop our work.
0: Okay. So, would you like to share your perspective on today's topic? And today we are trying to explore what matters more for success. Is it like talent, or you believe it's a hard work?
2: I believe dono hona chahiye.
0: Acha, dono.
2: Lekin aapka
0: zyada kisko aap paise denge?
2: No.
0: Okay.
2: Everyone have two eyes, right? आपका वन आई ब्लाइंड है तो आप क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता. तो मेरा हिसाब से थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल इज बहुत और इम्पोर्टेंट. थियोरिटिकल नॉलेज इज द बेसिक फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स, हाउ टू अंडरस्टैंड द थियोरी एंड द फंडामेंटल. But the practical experience is how to implement the fundamental and the practice in real world. So ye dono mein farak zyada hai. Aapko theoretical knowledge mein aapko fundamental mein aapko mil jayega, same as well aapko uska principle bhi mil jayega. But in real world condition, if you are executing some principle, maybe you will feel some conflicts. So mera kyaal se dono hona chahiye aapko pehle theoretically strong hone ka, aapko understand the principle and the fundamental.

0: देन आप बचपन से उसको एक्सिक्यूट करने के लिए जो सोचने का, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एथलेट बनाने के लिए आई वॉन्ट टू बिकम एथलेट, आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल एंड द बेसिक फंडामेंटल.
1: That means you have to be talented. This is what you're saying. And then comes the hard work, huh?
0: Yeah, then come to the hard work. If you don't know the basic principle, everyone know how to the engine was working, right?
1: Scientist is such a big thing. Let's keep it like very simple. For example, मुझे एक अच्छा cook बनना है. And my cooking skills are like absolute on the scale of 1 to 10. It's like 1. ठीक है? I'm not talented. ठीक है? Now, I'm quite consistent. Putting a lot of efforts, बहुत सारा hard work कर रही हूँ. आपको क्या लगता है कि I'll be able to reach at 10? I'm not talented.
0: No, you will not reach 10.
1: अच्छा, मेरी बहुत सालों की मेहनत के बावजूद भी नहीं?
0: No, sometimes the hard work accepts from some areas, okay?
1: Okay.
0: Some criteria. You want to put more hard work because will be become a success. So you want to become dono cheez mein aapko hona chahiye, hard work bhi hona chahiye, uska fundamental and principle dono bhi hona chahiye. Here you will be become as a perfect chef. Aapko see, chef means not only for cooking food. Chef means how to arrange the table, how to arrange the food, and how the partition. This is veg, this is non-veg, and this is salads, and this is vegetarian, this is diet food. We have to distribute the food as the fundamental way. आपको अच्छा से खाना बनाने के लिए आता है, लेकिन वो आपको सर्व करने के लिए नहीं आता है, उसको कैसे प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं आता है. So, hard work sometimes नहीं चलेगा. So, मेरा ख्याल से आपको दोनों में होना चाहिए. आपको पहले उसका प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल, ये दोनों में आपको स्ट्रांग होने का. उसके बाद आप रियल वर्ल्ड में एक्सप्लोर करके देखने का. रियल वर्ल्ड में कैसे एक्सप्लोर करने का, आपको हार्ड वर्क करने का. आप पहले ये शो करने के टाइम बोला स्कूल में बच्चों लोग को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने का वो अच्छे पूछा ना.
1: वो एक न्यूज़ बताई मैंने जी.
0: हाँ ओके, ये स्कूल में ये होना चाहिए. स्कूल में आपको बेसिक फंडामेंटल एंड बेसिक नॉलेज आपको टीचर्स से मिल जाएगा, लेकिन टीचर्स कभी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को नहीं बता देगा. इसलिए टीचर्स एंड थोड़ा इफेक्ट देने का वो बच्चों लोग को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस देने के लिए. तो फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग सबको मालूम है, ये दिस इज ड्रॉइंग, दिस इज प्रिंट आउट, सबको मालूम है, लेकिन वो ड्रॉइंग कैसे करने का वो स्कूल से आपको सीखने का, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको सीखने का. तो आपको हार्डवर्क फेल नहीं होगा.
1: You know what? It reminds me of a quote, a quotation. My ma'am, every time she used to say one thing, that hard work beats talent when talent doesn't work hard.
0: Exactly. But to some extent,
1: you are right. We need both.
0: Mera lifetime experience hai, abhi, now this world is like a competition. Everyone running for success.
1: True.
0: So, आपको एक टैलेंट पर्सन है, एक नॉन टैलेंट पर्सन है, उसको अच्छा से प्रेजेंटेशन करने के लिए आता है, इसको काम में एक्सप्लेन करने के लिए आता है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, मे बी दे वॉन्ट गेट अ जॉब. एक आदमी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन हाउ टू एक्सप्लेन द जॉब डजंट नो, ही डजंट गेट द जॉब. सो आजकल द नाउडेज द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, एवरी वन फॉलोइंग लाइन फॉर बिकम अ सक्सेस एंड बिकम अ become successful. So आपको क्या करना चाहिए, आपको थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों में स्ट्रांग होने का. आप पहले थियोरेटिकली स्ट्रांग हो जाओ, उसको उसके हिसाब से आप हार्ड वर्क करो.
1: सही. एंड अजू जी, आई हैव सीन फ्यू पीपल, दे आर नॉट दैट मच टैलेंटेड, बट आई हैव सीन हाउ दे यू नो दे ट्राई टू पोर्ट्रे देमसेल्व एज इफ दे आर वेरी टैलेंटेड.
0: For example, some places they don't want practical experience. They want अब उसको आपके पास नॉलेज है नो प्रॉब्लम दे कैन हायर बट रियल वर्ल्ड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज फर्क है
1: Right, so there has to be a good balance and combination of talent and hard work.
0: The combination should be balanced.
1: Yeah, right. So, very well said.
0: You will not struggle anywhere, anytime. You will not struggle.
1: Yes.
0: So, dono mein balance rakhne ka, so your life is going smooth.
1: Nice, fantastic. Thank you so much. Thank you for your call and pleasure talking to you. Have a great day ahead. Yeah. Take care.
0: Thank you.
1: Bye. तो दोस्तों बड़ा मजा आ रहा है मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी करती जा रही हूँ आप लोगों के साथ कि आपको क्या लगता है आपको ऐसा लगता है वैसा लगता है लेकिन या वी डू रिस्पेक्ट आप सबकी ओपिनियन सबकी ओपिनियन से हमारी हुई अपनी अच्छी ओपिनियन फॉर्म हम कर पाते हैं तो आज हमारा टॉपिक इज वेरी सिंपल इज अ टैलेंट और हार्ड वर्क आप किसके साथ जाएंगे एंड क्यों एंड वी हैव अ कॉलर हेलो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुमी है राइट
2: बिल्कुल काफी टाइम से बाद आपसे बात हुई है
1: यस यस यस कहाँ थी इतने टाइम से सुमिया
2: वेकेशन पे
1: सो आपने प्लान नहीं किया अपने वेकेशंस वगैरह
2: नहीं बिल्कुल
1: भी नहीं हाँ चलो ठीक है यही एंजॉय कीजिए अपने वेकेशंस
2: बिल्कुल
1: तो सुमी आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इज हुनर या मेहनत टैलेंट और हार्ड वर्क कामयाबी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है अच्छा दोनों
2: ओके क्योंकि जो टैलेंट है ना वो आपको गॉड गिफ्टेड है
1: दैट्स अ गिफ्ट
2: सही अगर हार्ड वर्क और टैलेंट दोनों मिल जाए ना तो जिंदगी बन जाती है
1: बहुत सही कहा टैलेंट एक गिफ्ट है दैट्स राइट
2: इसकी बात हो रहा है ऐड कर दे लक
1: अच्छा
2: तो फिर तो क्या ही बात हो
1: आप वाकई मानती हैं कि लक का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बहुत इम्पोर्टेंट रोल ओके नाइस बहुत अलग सी सोच एंड डिफरेंट एंड आई अग्री टू दिस कि हाँ टैलेंट तो भाई एक गिफ्ट है अब कुछ टैलेंट ऐसे हैं जैसे अब मैं कहती हूँ कुछ लोगों को बहुत अच्छी आवाज मिली है
2: ना आपको हार्ड एक सीढ़ी चढ़ना पड़ती है और वो सीढ़ी का पहला स्टेप आपके पास अगर आपके पास कोई टैलेंट है और ये चीज पता है आई थिंक अगर इंसान को ना अपना टैलेंट बहुत पहले पता हो जाए ना तो उसकी लाइफ बहुत इजी हो क्योंकि वो उस हिसाब से अपना करियर चूज करेगा फिर उस फील्ड में जाएगा जब वो उस फील्ड में जाएगा ना जब उसके पास हुनर है वो हार्ड वर्किंग है तो उसके पास आइडियाज अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी चीजें होंगी
1: ये बहुत अच्छा कहा सुमी बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरा टैलेंट किस चीज का है हम पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम किस चीज में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है हमें वाकई नहीं समझ में आ रहा होता है दिस इज समथिंग अमेजिंग काफी एक्साइटिंग बात कही आपने
2: बात कही है ना कि आप भाई कुकिंग करें बहुत हार्ड वर्किंग है आप बिरयानी बनाए उसका हार्ड वर्किंग लेकिन कुछ सिंपल जैसे आपके अंदर हुनर है आपको पता है कि भाई बेसिक सी चीजें हैं आप ये डाल के भी अच्छा बना सकते हो इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है कि चावल 3 घंटा पहले भिगोए मसाले बनाए हैं ये करें अगर हुनर है आपको आता है आप कर सकते हो 2-3 घंटे में कर सकते हो उससे एक चीज और आपकी टाइम सेविंग भी होगी अगर आपके पास हुनर है
1: हाँ ये है ये पॉइंट के साथ मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करती हूँ वक्त बचता है क्योंकि अगर आप टैलेंटेड है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्रॉस चेक नहीं करनी पड़ेंगी आप टैलेंटेड है तो आसानी से कर लेंगे लेकिन कई बार बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को मैंने देखा उनका डाउनफॉल भी बुरा होता है क्योंकि फिर वो उस तरह के कंसिस्टेंट नहीं रहते वो मेहनत नहीं करते वो उस चीज़ को पॉलिश नहीं करते
2: वो सोचते हैं कि हमारे पास
1: ये तो है ही हाँ वही ना
2: है ही मेरे पास तो जब चीज़ है ना तो उसको पॉलिश करना चाहिए तो मतलब संभाल के रखना चाहिए और मतलब मैं एक चीज ये भी कह सकती हूँ कि अब हमारे जो अम्मी अब्बा थे हमारे जो पेरेंट्स थे हो सकता है उन्होंने वो चीज नहीं हमारे अंदर से वो निकाली हो वो खूबी नहीं निकाली हो लेकिन एज अ पेरेंट जो आजकल की जनरेशन है तो हम एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों का टैलेंट खुद ढूंढे ना कि हमारा बच्चा भी ड्राइंग में अच्छा है आर्ट में अच्छा है वो बच्चे को बचपन से पता चल जाता है कि किस चीज में जाना चाहता है
1: बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त बहुत ही अच्छी बात कही आपने और ये चीज़ इस चीज़ से मैं भी आपके साथ इत्तेफाक रखूंगी कि मान लीजिए किसी की बहुत अच्छी आवाज़ है और वो रियाज नहीं करता तो क्या वो अच्छा सिंगर बन पाएगा शायद नहीं है ना, आवाज तो बहुत अच्छी है, टैलेंट तो मिला है ऊपर वाले की तरफ से, बट अब हम उसे पॉलिश ही नहीं कर रहे, उस पर

0: काम ही नहीं कर रहे हैं, तो शायद हम कामयाब ना हो पाए।
1: भी टैलेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे पास ये अच्छी चीज थी, मैंने इसका यूज नहीं करा, फिर मैं अब इसका यूज करूँ तो वो एक फिर बहुत
0: बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया। कभी ना कभी टॉपिक को अलग से रखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। मैंने यहाँ नोट कर लिया है कि हम अपने टैलेंट को कैसे पहचाने, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और वाकई हम लोग नहीं पहचान पाते और बहुत लास्ट में समझ में आता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ग्लैड कि आप फाइनली मेरे साथ जुड़ी है, एंड प्लीज मेक श्योर कि आगे भी आप जुड़ती रहेंगी इंशाल्लाह।
1: जरूर। मैंने आपको कितना मिस करा, मैंने सागर भाई का सुना, मैंने कहा आज तो लग रहा है जो नाजिया नहीं है इसमें, तो मैंने कहा नहीं मुझे मजा नहीं आएगा सुनने में।
0: आइए मैं रिकॉर्ड करके भेजती हूँ सर।
1: जी जरूर, उनको भेजिएगा।
0: हाँ मैं भेजूंगी ये बात, तो वो फौरन कहेंगे हाँ ये तो आप लोगों का चलता है, फीमेल फीमेल एक साइड हो जाती हैं। मैंने कहा आप फिर भी आपकी साइड भारी रहती है हर हाल में, हम दो तीन उधर हो जाए। ये तो है, ये तो रहता है। बट इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड कि आगे भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे जरूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, इट वाज रियली अमेजिंग। ख्याल रखिए अपना। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। यहाँ इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है, हमारे साथ सुमी जुड़ी और उन्होंने इतने अच्छा पॉइंट ऐड किया जो मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा कि हम कई बार अपने टैलेंट भी नहीं पहचान पाते, हमें समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर से टैलेंट है कौन सा। हम मेहनत भी कर रहे होते हैं और शायद वज़ाया भी हो रही होती है, उस तरह के हमें रिजल्ट भी नहीं मिलते जो हम चाहते हैं कि हम अचीव कर लें। तो आइडेंटिफाई करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इस पर भी बात होगी। बट बिफोर दैट हमारे साथ एक कॉलर कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भैया?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये टॉपिक पे ये जितने भी डिस्कस हो रहे थे ना, जो भी डिस्कशन किया, मेरा मिसाल ऐसा है जैसे वो क्लासरूम में बिल्कुल वो जो नालायक तरीन बच्चा होता है ना, बिल्कुल एकदम जिसको नहीं मालूम कुछ,
0: अच्छा,
2: और कोने में जाके बैठता है ना बिल्कुल सर छुपा के, ऐसे मैं अपने आप को वही महसूस कर रहा था कि माशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा और हम लोग ये प्रोग्राम से सीख भी रहे माशाल्लाह। ये FM 107 जो है हमारे लिए एक एकेडमी है और वो एकेडमी में हम लोग माशाल्लाह, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं वो बच्चा हूँ जो क्लासरूम में सबसे पीछे जाके बैठता है, मैं वो बच्चा।
0: और पता चलता है वो सबसे कामयाब निकला, वो सबसे कामयाब हुआ, पीछे जरूर बैठता है, सुना होता है सब कुछ।
2: सॉरी मैं बहुत काफी टाइम से लगा हुआ था, लेकिन टाइम मेरे साथ बिल्कुल 3 मिनट से सिर्फ।
0: अच्छा चलिए प्लीज आप कहिए क्या कहना
2: चाहते हैं। इसमें सिर्फ इसमें टैलेंट और हार्ड वर्किंग, इसमें अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो ये बिल्कुल आप हार्ड वर्क जो जितना चाहे करें या टैलेंट उसमें जितना भी हो, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो, ये नहीं, मतलब एक बच्चा है क्लास में या एक प्लेयर है कोई या एक सिंगर है जो भी है बाहर हाल, अगर वो एक काम कर सकता है और उसमें इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी के सामने आके वो बात करे या गाना गाए या बाहर हाल जो कुछ काम भी है, अगर वो ना करें तो वो मेरे ख्याल में टैलेंट और वो जो हार्ड वर्किंग है वो काम नहीं आता। सबसे पहले इसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है।
0: कॉन्फिडेंस चाहिए, सही।
2: मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ और ऐसा है ना कि एक बच्चा होता है, बच्चा कौन है कि मेरा अपना बच्चा है, एक बेटा है माशाल्लाह, वो एक दिन यूनिवर्सिटी से कॉल आई हमारे भाई के लिए कि ये अपने बच्चे को थोड़ा समझाओ।
0: अच्छा।
2: तो भाई ने बोला कि क्या हुआ, क्या बदतमीजी कुछ किया? बोलते नहीं कुछ बदतमीजी नहीं की, मसला मैं जब भी टीचिंग करता हूँ कुछ पढ़ाता हूँ तो अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो ये सीधा उठ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं सर ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो अच्छा। उसने बोला कि इसमें कोई गलत तो नहीं है मेरे ख्याल में? बोलते नहीं वो बाकी बच्चे जो है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चा आया घर में, बेटा जब घर में आया तो हमारे भाई उसको बोलते हैं कि आ जाओ उधर, बोलते बाबा मुझे मालूम है मेरा कंप्लेंट हुआ है, बोलते नहीं कंप्लेंट नहीं, मैं पूछता हूँ कि क्यों आप ऐसा करो, बोलते वो बोले बाबा, वो हमारे भाई को बाबा बोलते, बहरहाल वो बोले बाबा मसला ये है कि अगर एक की चीज गलत हो और वो उसकी यानी उसको ठीक ना करे उसी टाइम पे, उसको करेक्ट ना करें, तो ये बच्चे जो जितने

0: भी सारे, मुझे तो मालूम है हो सकते इसमें 10 बच्चों को नहीं मालूम, बाकी को मालूम है 10 बच्चों को, वो 10 बच्चे उसको गलत तरीके से आगे फिर लेकर के जाएंगे। वो बोला बेटा आपकी बात सही है लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करो। बोलते नहीं बाबा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब ये कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। और वो जो है आज तक उसने कभी ट्यूशन नहीं किया, वो ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को
1: सिर्फ
0: इसलिए उसमें टैलेंटेड नहीं, वो कॉन्फिडेंस है।
1: और कॉन्फिडेंस भी कैसे आ रहा है क्योंकि उसको चीजें समझ में आ रही है, उस तरह से अटेंशन दे रहा है, ध्यान कर रहा है।
0: मैं कहता हूँ उसमें डर नहीं है,
1: डर भी नहीं है।
0: एक चीज की डर अगर हो ना तो एक बंदा है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और वो उसमें अगर डर हो वो आगे कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं।
1: सही बात है। और ये मिसाल तो मुझे ड्राइविंग की क्लासेस से मिलती है, कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने क्लासेस लेते हैं, कितना सीखते हैं, कितने कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप फेल।
0: जी जी जी बिल्कुल। एक लेडी मुझसे पूछ रही थी, एक लेडी मुझसे पूछ रही थी कि आप, मैं गाड़ी चला रही हूँ तो आप मुझे, आपको डर नहीं लगता है मुझे, मैं फर्स्ट टाइम चला, मैं बोला मुझे डर नहीं लगता, डर तो आपको लगना चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो, मैं तो मेरी तो जिंदगी गुजर गई गाड़ी।
1: नहीं वो ये पूछना चाह रही थी आपको डर तो नहीं लग रहा है कि मेरे साथ आप बैठे हुए हैं।
0: नहीं नहीं उसको ये मतलब, नहीं वो बोल रही थी कि आपको स्टूडेंट के साथ डर नहीं लगता जब आप स्टूडेंट को सिखाते हो, तो मैं बोला नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता, स्टूडेंट को डर लगना चाहिए। बहरहाल डर जो है अक्सर वो डर की वजह से, यानी मतलब ये कि कॉन्फिडेंस ना हो तो वो हार्ड वर्किंग और ये काम नहीं आता। शहजादा सलीम साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की उसके बाद भी जो, और ये हमारी ये बहन है इसने भी बहुत अच्छी, मैं सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ।
1: हाँ मैं भी कहूँगी सबने कुछ ना कुछ एक अलग एंगल ऐड किया आज के टॉपिक पे, एक सा रिपीटेटिव नहीं था। या
0: जी जी लेकिन हार्ड वर्क और टैलेंट, टैलेंट के साथ अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो ये दोनों काम नहीं आते।
1: सही तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट दोस्तों, आई थिंक हम पूरे एक घंटे से इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अभी और भी कॉल्स मेरे पास आ रही हैं। थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं छोटा सा, वापस आते हैं तो इसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। गाइस एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ और हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:04। हाँ जी, अब हम जो है अपने शो के थर्ड आवर में एंट्री ले चुके हैं और इस थर्ड आवर में आते आते हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि वाकई लिटरली आई एम एंजॉइंग इट। दिस मॉर्निंग आई एम रियली एंजॉइंग दिस टॉपिक। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जितने कॉलर्स आ रहे हैं दे ऑल आर इंटेलेक्ट्स, अपने आप में कुछ ना कुछ एक नया ऐड कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और कॉलर्स के साथ भी यहाँ जुड़ जाते हैं एंड लेट्स सी वो क्या कहना चाहते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के हवाले से। हेलो।
2: हाँ जी,
1: हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं गाबा जी आप?
2: जी ओके, रिपोर्ट मैडम।
1: ओके, रिपोर्ट क्यों कह रहे हैं? एक्सीलेंट, मैं बिल्कुल ठीक। हाँ, यस, दैट्स द स्पिरिट। तो एंड हाउ वाज योर वीकेंड, कैसा गया आपका वीकेंड?
2: वीकेंड परफेक्ट था मैडम।
1: अच्छा था, नाइस।
2: जी बिल्कुल
1: गुड। तो लेट्स स्टिक टू टॉपिक, कुछ लोग कहते हैं आप टॉपिक से भटक जाती हैं। सो आज हम पूछ ही रहे हैं व्हाट मैटर्स मोर, कामयाबी के लिए आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? डू यू बिलीव इट इज टैलेंट और यू बिलीव इट्स अ हार्ड वर्क?
2: इस पे मैं जरूर बात करूंगा, पहले मेरा क्वेश्चन है मैडम छोटा सा।
1: अच्छा, प्लीज पूछिए
2: मैडम। ये जो आप डिसेंट एनर्जी के साथ अपना कोई भी प्रोग्राम हो आप उसको करते हो ना मैडम, जिस डिसेंट एनर्जी के साथ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के हर

0: अच्छा नहीं, मैं आज डिसेंट की डेफिनेशन आपकी आज मैं जानना ही चाहूंगी।
1: अच्छा जी जी जी, पहले डेफिनेशन दूंगी या पहले आप बताओगे?
0: आप बताइए क्या बेहतर रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं रिवील हो जाएगा।
1: चलो मैं इन शॉर्ट में दे देता हूँ मैडम।
0: अच्छा, है ठीक है,
1: टाइम नहीं खराब करता।
0: हाँ,
1: मैडम देखिए, आप किसी भी टॉपिक पे बोलने लगते हो ना, कोई भी टॉपिक हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, जैसे ही मैडम आप शुरू करते हो ना, शुरू से लेके एंड तक आपकी जो फ्लुएंसी है वो बिल्कुल सेम ही रहती है, और बिल्कुल भी मैडम एक भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं होता। मेरे को ऐसे लगता है जैसे आप बिल्कुल बिल्कुल मैडम जैसे आप एक्सप्लेन करते हो ना, तो उसको सुन के मेरे को यही लगता है भी उतने टाइम में मैडम का फोकस सिर्फ उसी चीज पे है।
0: ये मेरा हार्ड वर्क भी है, ये कह सकते हो, टैलेंट तो नहीं है लेकिन हाँ मैं मेहनत, थोड़ी सी रिसर्च और सारी चीज़ें करती हूँ। एंड थैंक यू, आपने इस चीज़ को पहचाना। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इतनी इन डेप्थ जाके समझ पाए कि यू नो आरजे की ये मेहनत या इस तरह का उसका उसकी फ्लुएंसी या उसका काम। बट आई अप्रिशिएट कि आप जैसे लिसनर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा, सो थैंक यू।
1: मैं चाहूँ तो 10 से 15 इसमें से टॉपिक निकाल के आपको दे सकता हूँ इसी बात में से, मगर वो बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।
0: पर कभी ना कभी इस पे बात करेंगे जब थोड़ा हमारे पास टाइम होगा।
1: धीरे धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल जी।
0: थैंक यू, लेकिन आप जो है मुझे लगता है आपके ऑफिस में आप जो है सबके फेवरेट होंगे, फॉर द रीजन कि आप यू नो यू सो काइंड, यू सो हम्बल, यू सो पॉजिटिव, एकदम पूरा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मैंने हमेशा आपकी देखी टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स थिंग, हर चीज़ को लेकर। सो इट्स क्वाइट अप्रिशिएटेबल अबाउट यू, बहुत अच्छी बात है। एंड प्लीज़ अपने आप को ऐसे ही रखिएगा, चेंज नहीं कीजिएगा। आज की इस दुनिया में जैसे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हो गए हैं, सेल्फ सेंट्रिक हैं, इगोइस्टिक एंड ऑल दैट, यू आर अ जेम इन योर सेल्फ, सो ग्रेट।
1: बस मैडम जैसे भी है, बस क्या है मैडम, कोई किसी को हराने वाली दौड़ में कभी भी शामिल नहीं हुए।
0: Wow.
1: बंदे कम रखे हैं जिंदगी में मगर मैडम ऑल आर जेम
0: सॉलिड है। हाँ ये बात है, लाइक कम फ्रेंड्स हो लेकिन आपके अच्छे फ्रेंड्स हो
1: जी, बिल्कुल
0: बहुत अच्छी बात, बेहतरीन, जबरदस्त। तो अब बताइए मुझे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैडम मैं ना पहले टैलेंट और हार्ड वर्क को लेके मेरी दिमाग में एक तीसरी चीज और आई थी, वो है जैक।
0: सॉरी,
1: अगर आपका जैक से आता है, जैक जैक आपकी पहुंच है।
0: अच्छा ओके
1: जी जी, अगर आपकी सपोर्ट है
0: तो
1: फिर मैडम मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 4-5 बंदों की।
0: जी जी,
1: तो मैंने देखा मैडम, देखिए शाहरुख खान जी कितने फेमस एक्टर हैं, सनी देओल को देख लीजिए आप, सैफ अली खान को देख लीजिए, जब मैं उनके बच्चों को देखता हूँ तो उनमें वो टैलेंट नहीं है मैडम। हार्डवर्क वो लोग भी कर सकते हैं, थिएटर में भी जा सकते हैं, मगर जो इनबिल्ट टैलेंट होता है ना वो उनमें नहीं है।
0: नाइस एग्जांपल आपने काफी अच्छा दिया है, देखिए टैलेंट भी तो होना चाहिए।
1: जी मेरे दिमाग में यही बात आई भी, इनसे बड़ा जैक किसका होगा बॉलीवुड में मैडम।
0: सही बात है, इनके पास तो सारे रिसोर्सेस हैं, सब कुछ है, और एक बड़ी एग्जांपल और मिसाल है अभिषेक है, अमिताभ बच्चन जी,
1: अमिताभ बच्चन मैडम, सचिन तेंदुलकर जी,
0: हाँ देख लीजिए और क्या, बिल्कुल
1: देख लीजिए।
0: तो सही बात है कि ठीक है आप हार्डवर्क कराओ, लेकिन फिर वो एक शौक भी होता है, कई बार उस तरह का आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आप उसमें लगे हैं। जैसे सुमी जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर टैलेंट क्या है, कोई कह देता है आपको तो, हाँ हमें खुद को नहीं मालूम है कि हमारा क्या टैलेंट है, और पूरी लाइफ कुछ लोग पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रह जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, कभी इधर हाथ मारते उधर हाथ पैर मारते ही रहते, उन्हें समझ में आता कि मेरा रियल टैलेंट है क्या जिसमें मैं एग्जैक्टली काम करूं और मैं एक्सेल करूं।
1: एक्चुअली चक्कर पता क्या है नाजिया जी, हम देसी लोगों की जो जिंदगी है ना तो मैडम शुरू ही स्ट्रगल से होती है। ये नहीं कि आप फाइनेंशियली वीक हो मैडम, नो। अगर आपके पास पैसा भी है ना मैडम तो आप शुरू से वो चीजें देखते हो भी, अपना मेरे पिताजी की मेरे चाचू के साथ नहीं बन रही, मेरे दादू के साथ नहीं बन रही,
0: बिल्कुल।
1: तो ये हम देसी लोगों की यही प्रॉब्लम है मैडम, हम लोग डे वन से ही स्ट्रगल से जूझते हुए आ रहे हैं और हम लोग इतना इस चीज में खो जाते हैं ना मैडम, अपना टैलेंट पहचानने का हमें मौका ही नहीं मिलता।
0: ये बहुत ही अच्छे, बड़ी प्रैक्टिकल बात कही आपने, और ये हर कोई मेरे ख्याल से रिलेट करेगा। इतने इश्यूज हैं, इतनी चीज़ें हैं कि हमें वाकई अपना टैलेंट समझने का ही नहीं टाइम मिलता, और ना कोई उस तरफ हमारा ध्यान लेकर जाता है। That's right.
1: जी बिल्कुल, और मैं मैडम दूसरी तरफ एक और कंफ्यूजन में हूँ।
0: हाँ जी,
1: मैं बहुत सारे बंदों को देखता हूँ, उनके पास टैलेंट भी है मैडम,
0: हाँ।
1: मगर वो प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास,
0: हाँ ये

0: तो मैं देखता हूँ मैडम, हमारे ना गांव में क्या पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग आते थे खेल दिखाने के लिए. उनमें से एक खेल होता था मैडम, साइकिल का खेल.
1: अच्छा, ये क्या होता है?
0: वो बंदे तकरीबन, मैं बताता हूँ आपको, वो बंदे तकरीबन 5 से लेके 7 दिन तक एक ही गांव में रुकते थे. और उनका एक स्पेशल बंदा होता था जिसने 5 या 7 दिन साइकिल के ऊपर ही रहना है मैडम. इवन ब्रश करना है, सोना है, चेंज करना है, सब कुछ साइकिल के ऊपर ही करना है उस बंदे ने. अगर आपने उसको पकड़ लिया, उनका उनका चैलेंज था मैडम, अगर किसी ने पकड़ लिया तो हम लोग उसको इतना पैसा पे करेंगे. तो मैडम देखिए वो बंदे में कितना टैलेंट होगा.
1: और सोता भी उसी पे है, साइकिल पे.
0: सोता भी साइकिल पे ही है. यस,
1: बहुत चैलेंजिंग है. तो कोई दिन रात मॉनिटर करता था कि ये कुछ क्या कर, आधी रात में 3 बजे रात के लोग देखते रहते थे?
0: बिल्कुल मैडम, गांव में लोगों को आदत होती है ना, कभी खेत में चले गए, कभी कहीं पे. उनका चैलेंज था मैडम, खुला चैलेंज, आप हमें पकड़ो.
1: देखो कैसे कैसे. अब वही है कि हर इंसान का अपना, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने साथ जो है जुल्म करने जैसा है. व्हाट डू यू थिंक
0: मैडम? बस क्या है मैडम, जहाँ पे रोटी की बात आ जाती है ना नाजिया मैडम, तो वहाँ पे बंदा फिर नहीं देखता मैडम ये चीजों को. आप दूसरी गेम देख लीजिए, मौत का कुआ.
1: हाँ देखो, मुझे कभी
0: देखो,
1: नहीं अच्छा
0: मैडम उसमें कितना तकड़ा रिस्क है उसमें.
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. और कुछ लोगों की वाकई जाने गई भी है, ऐसा नहीं
0: बहुत
1: है. एक्सीडेंट्स बहुत बहुत हुए, पूरी लाइफ बेड रिडन हो गए, क्या क्या चीजें हैं. बट देखिए अब अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं. वही बात है जो आपने कहा, मजबूरियां.
0: मैं साइकिल वाले का आपको लिंक भेजूंगा. और मैं दूसरी बात मैडम और करना चाहता हूँ.
1: हाँ जी.
0: देखिए मैडम, जब मैं टैलेंट को मैं देख रहा था कि बंदे में टैलेंट भी जरूरी होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ मैडम, जैसे अपने इंडिया में इतने सारे शोज चलते हैं खतरों के खिलाड़ी, इंडियाज गॉट टैलेंट मैडम, उसमें इन बंदों को जगह मिलनी चाहिए
1: एक्चुअल में ना. बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपने कही. हमेशा सबसे अलग कहते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल कहते हैं, और कुछ ना कुछ हमें भी सोचने का मौका मिलता है टूवर्ड्स लाइक कि हाँ ये अप्रोच, ये सोच भी हो सकती है और उसे हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. थैंक यू सो मच गाबा जी, थैंक यू फॉर योर कॉल. बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ नाइस डे अहेड.
0: थैंक यू मैम,
1: थैंक यू जी, टेक केयर, बाय. तो भाई जितने कॉलर्स आ रहे हैं आज, तो मुझे लग रहा है कुछ ख़ास ब्रेकफास्ट किया है सबने, कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट, एक नया एंगल हमारे साथ ऐड करते हुए. एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हेलो,
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. अभी थोड़ी देर पहले आपका ही, आपकी बात हुई अमिताभ बच्चन ही, हमने कहा कि अमिताभ बच्चन अभिषेक जी को देख लीजिए. आपकी आवाज अमिताभ जी से मिलती है ना,
2: थोड़ा बात करेगा. हाँ, वो कब से कॉल लगाने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हुआ. हाँ.
1: आपकी आवाज में जो बेस है माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए आपके फैन है लिसनर्स हमारे, आपको याद करते रहते हैं, सलाम भेजते रहते हैं.
2: वालेकुम सलाम, मैं उन सबको भी सलाम पेश करता हूँ. और वालेकुम सलाम, और शहजादा सलीम भाई का मैसेज मैंने सुना था.
1: अच्छा,
2: और मुझे उनकी मोहब्बत है. तो बाकी ये है कि माशाल्लाह रईस भाई और शहजादा सलीम भाई और शमून साहब को मैं नहीं जानता, और गावा साहब को मैं नहीं जानता, सिर्फ आवाज सुनता हूँ. इन सबको सुनने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि यार क्या हमें कॉल करना बनता है या नहीं बनता.
1: अरे नहीं, बनता ही बनता है. आप भी कुछ एक अलग बात रखेंगे. और आज तो इतना अच्छा इत्तेफाक हुआ है, जितने कॉलर्स हैं किसी एक ने भी बात वो रिपीटेटिव वाली बात नहीं की, हर एक ने कुछ अलग ऐड कर दिया. एंड आई एम श्योर आप भी कुछ बहुत अलग और डिफरेंट ऐड करेंगे. आप हमेशा ही करते हैं.
2: इतनी नॉलेज तो नहीं है उनकी तरह माशाल्लाह, जिस तरीके से जिस एक आवाज को लेके मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, बाकी कुछ नहीं.
1: नहीं नहीं, नहीं ऐसे मत कहिए. सो टैलेंटेड, आपके साथ टैलेंट भी है, हार्ड वर्क भी हमने आपका देखा है, एंड ऑफ कोर्स यू आर ब्लेस्ड विद द ब्यूटीफुल वॉइस. ये अपने आप में टैलेंट है, ये वाकई गिफ्ट है. अब ये हर किसी के पास अच्छी आवाज है. कुछ लोग सोचते हैं हम सिंगर बन सकते हैं, अरे क्या गाना ही तो है. बट यू नो गाने में बहुत सारी डिटेलिंग है जो हम नहीं समझ पाते, लोगों को नहीं समझ, ये कुछ टैलेंटेड लोग ही हैं जिनको ऊपर वाले ने टैलेंट दिया, बट हाँ उसे आप पॉलिश भी कर रहे हो, उस पर भी आप हार्डवर्क करें, काम करें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है अच्छी आवाज़ भी आपकी एक पॉइंट पर आके आपका साथ ना दे, है ना?
2: एग्जैक्टली। अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा, खैर मेरा एक दफ़ा इत्तफाक, खुशकिस्मती मेरी कि मेरा जब FM 107 पे इंटरव्यू हुआ
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: वो जिस शख्सियत ने इंटरव्यू किया था उनका नाम नाज़िया है।
1: जी जी जी, माशाल्लाह। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था आपसे जब 1&1 हम लोग इन पर्सन मिले थे और ये इंटरव्यू हुआ था।
2: और आपको ये भी अंदाजा है कि उस दिन मेरी तबीयत काफी नासाज थी, गला खराब और बुखार,
1: फिर मैंने आपको बहुत परेशान किया था, ये गा दीजिए वो गा दीजिए।
2: अच्छा तो हुआ क्या कि उसमें आपने एक क्वेश्चन मुझे किया था कि मतलब आपके उस्ताद कौन है, तो मैंने एक ही जवाब दिया था कि जावेद बाजवा का उस्ताद जावेद बाजवा खुद है। वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि आज तक मैं किसी इंसान, देखिए इल्म तो सीखना चाहिए जो भी है वो कोई भी हो, लेकिन आज तक मैं किसी के पास नहीं गया, ये मेरा एक अल्लाह ताला का तोहफा है, गॉड गिफ्ट है जो मुझे अल्लाह ने दिया। तो जिसको हुनर आप कह सकती हैं, लेकिन हुनर को पॉलिश करने के लिए मैंने इसके लिए पापड़ भी बेले और मेहनत की है मैंने।
1: एक वक्त ढूंढ रही थी जिनको
2: मैं दूर से देखा करता था कि यार मुझे चांस मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खुद बुलाते भी हैं, वक्त की बात है।
1: देखो मैं आपको ही ढूंढ रही थी, कोई आके कहे कि मैं टैलेंटेड हूँ लेकिन मैंने फिर भी बहुत मेहनत की, तब जाके कामयाबी मिली।
2: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो थोड़ी सी मेहनत हमने की है और अलिफ बे मैंने किसी से सीखा नहीं, लेकिन स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस में 110% देता हूँ मैं, वो मैं दे सकता हूँ, तो ये भी एक गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। बहरहाल मैं अपने उस पॉइंट, माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी प्यारी बातें लोगों ने की, अब यकीन करें मैं वो ही, हमारी एक बहन ने बड़ी अच्छी बात की पहले फोन करके, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब मेरे पास तो बड़ा सिंपल सा ये है कि हुनर और मेहनत
1: दोनों
2: ये है, तो मतलब दो लफ्ज हैं लेकिन इन दोनों की बहुत अहमियत और दोनों का साथ बेहतरीन है। नाजी जी इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि सिर्फ हुनर बगैर मेहनत के इंसान कुछ अरसा अच्छा कर सकता है लेकिन ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये।
1: सही रहा, बिल्कुल सही रहा।
2: सिर्फ मेहनत बगैर हुनर के इंसान मुकम्मल सीखते सीखते हुनर भी हासिल कर लेता है और कामयाबी के इम्कान भी बढ़ जाते हैं उसके।
1: बहुत अच्छा का, यानी आप कह रहे हैं कि एक्चुअल में टैलेंट और हार्डवर्क एक टीम की तरह है, टैलेंट आपको शुरुआत करवाने में मदद करता है और हार्डवर्क आपको आपकी वाकई मंजिल तक पहुँचाता है, तो ये दोनों चीजें हैं। राइट,
2: हुनर और प्लस मेहनत, हुनर और प्लस मेहनत ये कामयाबी का एक मजबूत और अहम तरीन फार्मूला भी है।
1: बिल्कुल सही, टैलेंट एक सीड है, एक बीज है, और हार्डवर्क क्या है कि आप उसको पानी दे रहे हैं, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, आप उसे नर्चर कर रहे हैं, तभी तो पेड़ वो बढ़ेगा, है ना?
2: बिल्कुल एग्जैक्टली। लास्ट में ये बात जरूर करूंगा कि मेहनत जो है नाज़िर जी, मेहनत हुनर को भी पीछे छोड़ देती है अगर हुनर मेहनत ना करे।
1: यही मैं जब से सबसे पूछ रही हूँ, कह भी रही हूँ, आप पहले शख्स हैं जिसने पूरा 100% मेरी बात के साथ, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि टैलेंट एकदम धरा रह जाता है अगर आपके अंदर ना हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी नहीं है, आप मेहनत नहीं करना जानते हैं, आप जो है अपने स्किल्स को पॉलिश करने में नहीं लगे हैं, तो भले ही से आप कितने भी टैलेंटेड हो वो एक टाइम के बाद ऑब्सलीट हो जाएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। बाकी मैं सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर ऐसे ऐसे आप भी मतलब जो टॉपिक्स लेके आते हैं, आप यकीन करें कि हमें फील होता है कि हम स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं और टीचर हमें पढ़ा रही है। मैं रियली आई स्वेयर, मैं कसम खा के बात करता हूँ,
1: हम लोग देखिए पढ़ पढ़ा नहीं रहे, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करके थोड़ा अपने आप को, अपनी नॉलेज को हल्का सा एक डिस्कशन होना चाहिए, ये भी हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज है, जहन पे थोड़ा सा हम लोग जोर देते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं और कुछ एक नया एंगल निकल के आता है, तो वो हमारे लिए हमेशा के लिए लर्निंग होगी। आप कहीं भी किसी भी गैदरिंग में होंगे तो आप इस टॉपिक पे बात होगी तो आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, तो है ना? ये सारी चीज़ें हम याद तो कर नहीं रहे हैं, सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में स्टोर हो रही हैं, तो उतने exactly एफर्ट्स नहीं लग रहे बट मजा भी आ रहा है, चीजें भी हमारी नॉलेज का हिस्सा बनती जा रही हैं।
2: तो ये एफर्ट तो मेरी लगी है वो शहजादा सलीम भाई की कॉल के बाद, तब से मैं कभी ऑफिस से यहाँ भाग रहा हूँ एफर्ट से लग रही है।
1: अच्छा मैं आपका, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे ना इस पे हाय हेलो लिख के भेज दिया कीजिए कि मुझे कॉल कर लीजिए, तो मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगी, है ना, आपको इतना परेशान तंग होने की जरूरत नहीं होगी।
2: मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। पता क्या होता है आपको, मतलब मेरे काम के हवाले से मुझे ये नहीं पता कि विद इन सेकंड मैं अगर यहाँ पर तो नेक्स्ट सेकंड में कहाँ पर हूँ। हाँ ये भी आप मतलब मेरा काम भी ऐसे ना जरा, तो इंशाल्लाह ताला आई विल डू माय बेस्ट इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़िर,
1: जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। आप भी अल्लाह हाफिज़। आज तो कमाल ही हो गया, मुझे लगता है मुझे सारे लिसनर्स को ना एक मुझे अवार्ड देना चाहिए। अभी लोग कहेंगे पुराने तो दे दीजिए, मैम मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों, मैं फटाफट सारे जवाब दे दूँ आपको। तो खैर, लेकिन आज जितने भी कॉलर्स आए मुझे इतना अच्छा लगा है कि हर किसी ने कुछ अलग ऐड किया, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं तो जब से कर रही हूँ मैं सभी सुन रही हूँ जवाब, तो कोई भी ऐसा जवाब नहीं है कि एक ही जैसा आया हो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई नई बात, कोई नया एंगल ऐड ज़रूर किया। एक और कॉलर यहाँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, फाइनली आरिफ जी की एंट्री हो गई, कैसे हैं, हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग, कैसी जा रही है आपकी सुबह?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
1: मॉर्निंग कैसी जा रही है? बड़ा मजा आ रहा है आज तो सुबह से, एक बड़ा अच्छा टॉपिक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, टैलेंट और हार्ड वर्क, आप क्या कहेंगे?
3: मैं बोलूंगा हार्ड वर्क विद टैलेंट।
1: या ऐसे तो नहीं कहेंगे कि टैलेंट विद हार्ड वर्क,
3: हाँ दोनों कह सकते हैं, टैलेंट विद हार्ड वर्क या हार्ड वर्क टैलेंट।
1: अच्छा, मतलब दोनों चीजें हैं,
3: इसको टाइम के साथ अपडेट भी करना चाहिए अपने आप को।
1: टाइम के साथ दोनों को बेहतर करना, और वो बेहतरी कैसे आएगी? मेहनत से।
3: हम लोग अपडेट नहीं करेंगे तो नए नए तरीके, मतलब दुनिया तो उधर ही झुकी थी, नहीं हम लोग तो उसी को रखे हुए हैं, मतलब को जैसे सबने कितनी अच्छी अच्छी बात कही हार्डवर्क नहीं है तो टैलेंट धरे के धरे रह जाएगा, हार्डवर्क आगे बढ़ जाएगा। और ये
1: बहुत सारे
3: एग्जाम्पल
1: है, सिंगिंग में, एक्टिंग में। बिल्कुल सही कहा आपने, बेशुमार। मतलब सिंगिंग की तो हमने बात की, ये मान लीजिए किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है नेचुरली, लेकिन वो मतलब वॉइस ट्रेनिंग नहीं करते, रियाज नहीं करते, डिसिप्लिन जो उनका खाने पीने का पैटर्न से फॉलो नहीं करते, तो अच्छी आवाज़ से उनकी कामयाबी की गारंटी नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता।
3: अभी एक मैं सिंगर का नाम लूंगा, नेहा कक्कर, उनकी आवाज में उतनी जो होनी चाहिए कम कम नहीं है, पर उन्होंने जो हार्ड वर्क किया उनकी वजह से वो उनके गाने सुने जाते हैं, चलते भी हैं गाने।
1: हाँ बहुत चलते हैं, बहुत सुने जाते
3: हैं। जो टोनी कक्कर है उनका भी लोग कितना भी उनको ट्रोल करे पर सुन तो रहे हैं ना लोग,
1: ज्यादा ज्यादा सुन रहे हैं, और उनकी थोड़ी सी अलग सी वॉइस है, यूनिक वॉइस है।
3: जो टैलेंट अरिजीत के पास है, अगर वो है हार्डवर्क ना करे, अपने आप को अपडेट ना करे, नए तरीके के गाने का सिर्फ एक ही टोन में गाते चला जाए तो लोग बोर होने लगेंगे, या फिर वो होता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, और वही बात देख लीजिए ना आप कितने स्पोर्ट्स पर्सन, एक फुटबॉलर है वाकई आप देखिए नेचुरली टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग मिस करता रहे, प्रैक्टिस ना करे, तो क्या उसकी वैसी परफॉर्मेंस आएगी? नजर नहीं आएगी।
3: जैसे मैं एक नाम ले लूंगा आपको, वो उसको नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बोला जा रहा था, 300 उनको नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर तक बोल दिया गया था, पर वो उनका डिसिप्लिन नहीं था, उनके साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी हो गई, और वो प्रैक्टिस सेशन अटेंड नहीं करते थे, प्रैक्टिस पे नहीं जा रहे थे, तो उनका अभी वो
1: वही बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब ठीक है आप टैलेंटेड हो, लेकिन हार्ड वर्क कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो ऊपर है।
3: अभी भी वो खेलता है ना तो उसका खेल गजब है, पर जो डिसिप्लिन चाहिए आपको, हार्ड वर्क चाहिए, वो नहीं है,
1: वो नहीं आ रहा है। बहुत सही, वेरी वेल सेड, बहुत ही अच्छी बात कही आरिफ जी, एंड जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिए, एंड बाय द वे आर यू डन विद योर ब्रेकफास्ट, आपका हो गया ब्रेकफास्ट? आपने सोचा क्या, तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, नजर लगाती रहती है ब्रेकफास्ट, अब मैं करके ही कॉल करूँ।
3: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है ना, अच्छा पूछना चाहिए।
1: नहीं मैं पता है रिलेट कर रही होती है, पता है मैं आपके साथ इसलिए रिलेट करती हूँ, आपको भी पराठे अच्छे लगते हैं, मुझे भी लग रहे होते हैं मुझे लोग कह भी रहे होते हैं कि आज के टाइम में पराठे कौन खा रहा है भाई, तो मैंने कहा हाँ कुछ लोग खा वही ना आप भी खा रहे मैं भी खा रही हूँ वही चीज़
4: खाने को कौन मना कर सकता है
1: हेल्दी ब्रेकफास्ट का ट्रेंड है यू नो बहुत हेल्दी लोग खाते हैं बट हम लोग अपना भैया देसी खाते हैं

0: देसी आदमी है, उसको चाहे भी खाएंगे तो वो काम करने के लिए वो जो
1: प्रोटीन चाहिए वो ताकत होगी
0: ना। मैंने सरवर मिर्जा की
1: पराठे की ताकत है। सरवर मिर्जा यू वोंट बिलीव सैलेड्स खा रहे हैं, कह रहे हैं ये मेरा आजकल चल रहा है हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट, और फिर मैंने देखा छुप छुप के पराठे खा रहे हैं। ये मैंने कहा अनहेल्दी का इनका सेशन चल रहा है अलग से। हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम भी खा रहे हैं अनहेल्दी, या जो भी आपको लगता है अनहेल्दी तो नहीं कहना चाहिए, बट हम ट्रेडिशनल अपना देसी ब्रेकफास्ट करते हैं क्या है ना।
0: वो जब तक नाश्ता खाने के जैसा ना हो तब तक वो कहां हम लोग देसी होएंगे नहीं।
1: या दैट्स नाइस ट्रू। देसी कैसे लगेंगे, हम लोग हैं दिल से देसी यहां पर एफएम 107 दिल से देसी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंजॉय रेस्ट ऑफ योर डे, अपना ख्याल रखिएगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। ऑल राइट, आज तो हमें बैक टू बैक कॉल आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं हमें कॉल कर लीजिए, इस टॉपिक को एंड करना चाह रहे हैं हम, एंड फिर अपने दूसरे सेगमेंट अपने गेम सेगमेंट की तरफ हमें आना है। चलिए एक और लास्ट कॉलर के साथ यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम, चलें लास्ट कॉलर ही सही मिली
1: इस टॉपिक पे। नहीं वैसे लास्ट नहीं, इस टॉपिक पे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप जुल्कनैन जी? और पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते आप कहाँ थे?
2: पूरे हफ्ते भी यहीं थे, बस लेजीनेस कह लें कि मैंने आपको कॉल नहीं की। बच्ची मेरी आई है बेटी छुट्टियों से,
1: अच्छा नाइस,
2: फ्रॉम जॉर्जिया, तो वो उन्होंने वो कहते हैं कि बस रातों को उनको सुलाना उनके साथ फिर जागना, तो काफी टाइम हो जाता है तो इस सेंस में। लेकिन आज मैं सुबह उठा, मैंने कहा यार आज तो सुनना चाहिए, शी हैज एक्सीलेंट, वो कोई ना चुन के टॉपिक लेके आती हैं, और उसके अलावा भी बाकी लोगों से डिस्कशन भी सुन रहा था, बहुत मजा आ रहा था, और सरप्राइजिंगली इतनी कॉल टू कॉल मिल रही है, एवरीबॉडी ईगर टू टॉक टू यू, यानी हर बंदा जो है ना, और एक्सीलेंट, और वो जो हमारे वो भाई आपस आप कुछ कह रहे थे, बड़ी सही बात है, आई एम टोटली एग्री। आपके पास टैलेंट है, एफर्ट है, फिर आपके पास उसको यूटिलाइज करने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए। और एक और चीज़ ऐड करना है कि अगर आप कहीं टॉप पर पहुंचते हैं तो आपकी जो स्टेप या सीढ़ी हैं ये भी आपको जंप करने के लिए ये भी सोचना पड़ेगा, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच करते हैं इन द राइट वे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कहते हैं ओहो मैं यहाँ से रिजाइन करके अब मैं दिल से देसी ज्वाइन करने जा रही हूँ, इज इट राइट और नॉट?
1: क्या मैं टैलेंटेड हूँ, क्या मैं उस तरह हार्ड वर्क कर पाऊंगी, ये एक सवाल होना चाहिए।
2: नहीं, यू हैज बीन सेलेक्टेड बट यू हैव आपने अब के मैंने अब उसको जिसके ऊपर हूँ एग्जिस्टिंग इसको छोड़ के आई हैव टू अडॉप्ट के मैं इसको सेटिस्फाई कर लूंगी, इसको मैं मैनेज कर लूंगी। ऑफ कोर्स यू आपके पास इतना फिर कॉन्फिडेंस आता है, और कई दफा आप देखें लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं यार पहले वाली जॉब बड़ी अच्छी थी, वहाँ लोग बड़े अच्छे थे, ये मैंने क्यों छोड़ दी। ये वाकई ये बहुत रिस्की होता है, और मैंने बहुत सारे लोग मेरे अपने रिलेटिव्स भी हैं यार हमने उसको छोड़ के, यानी उन्होंने हमें सब्ज बाग दिखा दिए या उन्होंने बता दिए इस तरह है, तो उन्होंने मुझे कुछ सैलरी ज्यादा दी, उसके बाद कैब काम खत्म हो गया।
1: और जुल्कनैन जी मैं आपको बताऊँ, सबसे चैलेंजिंग पार्ट पता है क्या होता है? सीखना, लर्निंग इज नॉट अ चैलेंजिंग पार्ट, मुझे लगता है अनलर्न करना जो आप सीख के आए हुए हैं वो बहुत चैलेंजिंग है। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अनलर्न करना ही है। लर्निंग इज ऑलवेज एक्साइटिंग पार्ट, बट अनलर्न करना बहुत चैलेंज, क्योंकि आप इतने यूज टू हैं उन सारी चीज़ों के कि आप चाह के ना चाह के वो आपकी हैबिट बन चुकी हैं। अब कैसे आप उससे निकलें और कितनी जल्दी आप छुटकारा ले पाते हैं, इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा।
2: हाँ, इसको सही आप कह रही हैं, ये जो आपकी न्यू एडॉप्टेशन है, और इनिशियली आपके टीचर्स आपके अंदर एक जो करंट या एक आपके अंदर वो जो पोटेंशियल डाल देते हैं ना, ये मैं इसलिए को रिलेट कर रहा था कि फॉर सम रीज़न कॉलेज में मैंने कुछ स्टडी करने के बाद फॉर सम रीज़न मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो मैं किसी काम पे लग गया, तो मैं जिस काम पे लग गया तो मैं कहा मेरे टीचर मुझे ये नहीं कहते थे आई एम द ब्राइट स्टूडेंट, वो मुझे आइडियलाइज करते थे ही विल बी बिकम सम प्रोफेशनल लाइक दिस, मैं

0: ये क्या बन रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे मुझे मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे आई हैव टू स्टडी अगेन, या मुझे यानी दिस इज नॉट माई ड्रीम्स. तो वो जो टीचर्स की बातें मेरे दिमाग में रहती थी वो मुझे ना बहुत वो करते हैं इंटेंसिफाई कर देते और मुझे ना बेचैन करती थी, और इसकी वजह से फिर मैंने जैसे भी हुआ मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की.
1: Wow.
0: नहीं, ये मेरा ड्रीम नहीं है, ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है.
1: I'm really amazed and let me tell you कि आपने वापस से पढ़ाई शुरू की.
0: जी मैंने पढ़ाई,
1: क्योंकि लोग ये हार्ड डिसीशन लेते ही नहीं हो कहते अरे अब तो मरने के लिए, अरे अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया. बहुत कम लोग हैं, इट्स लाइक रेकरिंग 1% आई हैव सीन, जो वापस से इनिशिएट करते हैं कि नो मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगी और मैं अपनी इस चीज को कंप्लीट करूंगी.
0: बस जी मैंने शॉप शुरू कर दी तो लोग कह रहे थे जी आपका बिजनेस है, आप इसको तरक्की करें. अब वो बिजनेस भी इटसेल्फ देखें किस तरह होता है, वाइप अप हो गया कि वो ख़त्म हो गया. तो मैं कहता हूँ वाकई आपको अच्छे टीचर मिले और आपकी फीलिंग हो कि नहीं अल्लाह ताला, देखें अल्लाह ताला ने हर एक को ब्लेसिंग दी है, ये तो सवाल ही नहीं होता. अल्लाह ने हर एक को दिया है कि वो उसको उसको यूटिलाइज करे और उसके ऊपर मेहनत करे,
1: तो मेहनत करे.
0: ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज डे बाई डे रिड्यूस होती जा रही हैं. अब नौकरी के बजाय सैलरीज या इन चीज़ों के बजाय वो थोड़ा सा अपना पोटेंशियल के ऊपर भी करे, यानी वाकई आ रहा है. अब यूरोप में आप देखें फ्रीलांसर स्पेशलाइज, और यहाँ पर भी आप अपनी अपने जो भी स्किल्स हैं इस तरह के हों कि आप सर्वाइव कर सकें, और लास्ट में अगर किसी के पास भी दे आर ऑन एग्रीकल्चर या लैंड है, प्लीज भाई उसको मत बेचो, उसको संभाल के रखो.
1: आने वाले टाइम
0: जमीन से मोहब्बत करो और जमीन आपसे मोहब्बत करेगी, खाने को भी देगी, रहने को भी देगी.
1: सही कहा. और जैसा कि फूड सिक्योरिटी
0: और इतनी वैरायटीयां हैं, इसमें लर्न करें, यानी आप ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे फूड्स भी हैं कि जहां ये चीज आप 10 रुपए की बेच रहे हैं वहां 100 रुपए की भी आप बेच सकते हैं. ऐसी चीजें हैं, डिस्कवर करें मल्टीपल चीजें.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स
0: है
1: एग्रीकल्चर को
0: लेकर,
1: उससे अब जो है डिपेंडेंसी, पहले था कि रेन पे है एंड ऑल दैट, अब वो भी जरूरत नहीं रही. तो बस थोड़ा सा आपको अवेयरनेस की जरूरत है.
0: सोलर पैनल आप ऐड करके एनर्जी को ले सकते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे. अफ्रीका में लोगों ने देखे उन्होंने सोलर को किस तरह यूज किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कॉन्टिनेंट तो अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत ब्लेसिंग है.
1: यहाँ तो धूप कितना लंबा टाइम तक रहती है,
0: भी है, रेनिंग भी आती है. आप सिर्फ इनको मैनेज करें, पानी को भी संभाल के रखें. बल्कि इंडिया के किसी गांव में देखा था, उन लोगों की पूरी खेती तबाह हो गई. उन लोगों ने कहते हैं बारिश का पानी तकरीबन मोर देन यानी हाफ ईयर से ज्यादा उन्होंने मैनेज करना सीख लिया. एंड ऐसे एग्जांपल्स हैं
1: हार्वेस्टिंग
0: रेन वाटर को. उन्होंने एक एक घर ने कहा हम एक एक बूंद बचाएंगे. तो अल्लाह ताला कभी किसी के मेहनत को जाया नहीं करता.
1: ये तो आपने बहुत अच्छी लाइन, एकदम परफेक्ट लाइन कही. अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, वो आपकी नीयत देखता है. और आपका अगर टैलेंट है और मेहनत नहीं है तो शायद हो सकता है वो टैलेंट उसमें जंक लग जाए.
0: और उसके अलावा इसमें भी कोई शर्म नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो मैं कहूँ नाजिया आई डोंट नो, प्लीज मुझे आप बता दें या समझा दें. आई नो वेल,
1: दिस इज व्हाट वी से प्रोग्रेसिव अप्रोच. हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वी आर नॉट रिजिड. और हर चीज हर एक को पता हो ये कभी हो ही नहीं सकता.
0: हाँ, तो मैं अभी बच्चों को 7वीं-8वीं तक पढ़ाता रहा. आगे के जो उनके चैप्टर या एडवांस हो गए तो उनका वे और डिफरेंट करिकुलम, तो मैंने कहा मैं एक सिंपल आपको पढ़ा सकता हूँ लेकिन आपका अकॉर्डिंग टू एग्जाम या उनका क्या किस वे में दे एग्जाम या दे लर्निंग पॉइंट. अब बिल्कुल वो करते हैं ना येस और नॉट और MCQs वगैरह आ रहे हैं, और आपने टू द पॉइंट यानी इसमें भी मार कीजिए. आपने गलत लिख दिए, इतने गलत नहीं लिखने, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी वेस्ट हो रहा है. आपने लिखना है तो यू हैव, जो आपकी सिचुएशन है आप उसके हिसाब से पढ़ें. हाँ मैं आपको बेसिक पढ़ा दी, आपने इस चीज़ को कर लिया. मैंने बेटे को नहीं, मैं अब्बा जी हूँ मुझे सब कुछ आता, बिल्कुल नहीं मुझे इतना कुछ आता है, इससे आगे फिर आपको खुद मैनेज करना है.
1: राइट बिल्कुल सही बात है. कन्विंस करने से ना बच्चे जो है वो आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं.
0: बिल्कुल, ही लर्न वेरी गुड. फिर हमने कोई टीचर ढूंढा तो उसने कहा, फिर उसने मुझे गाइड भी किया, मुझे समझाया, मुझे पता चला. अच्छी बात है.
1: That's nice.
0: तो इसी तरह है, एक दूसरे की हेल्प करें. देखें वॉलंटियर लोग काम करते हैं सबसे ज्यादा. देखें लोग मदद करना अपनी जगह पे है, लेकिन एक जॉब में एक दूसरे की मदद करना ये बड़ा मुश्किल काम
1: है.
0: बड़ा
1: मुश्किल.

0: देंगे बताइए।
1: हाँ, ये भी होता है, कोई मेरे ऊपर भी ना गिरे।
0: वही ना, मुझे अपनी फिक्र है, मेरी हड्डियां कमजोर है काफी। ये तो सच है। जैसा कला, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अब कभी कभी आपको टाइम मिले तो जरूर जुड़िएगा, है ना?
1: नहीं नहीं, मैं टाइम नहीं मिले, कॉल लग जाए तो मैं मिलाऊंगा। मुझे सबकी कॉलों का भी बहुत मजा आया है।
0: राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हाँ बिल्कुल, स्टार्ट से सबने बहुत अच्छा एड किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मुझे इस टॉपिक को कंक्लूड करना, बट बैक टू बैक इतने सारे लोग जो हैं वो लोग कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी मुझे कर रहे हैं कि प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी। तो आज चलिए थोड़ी देर और इस टॉपिक को एक्सप्लोर ही कर लेते हैं ढंग से, है ना? चलिए एक और कॉलर मेरे साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं थोड़ा सा लेट बैठी हूँ, मैं असल में दूसरी तरफ थोड़ा बिजी हो गया और थोड़ा शोर शराबा था, तो हम बोले कि अगर कॉल लगाएंगे भी तो बात हो नहीं पाएगा सही से, और डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा मैं क्या आज टॉपिक क्या आपने छेड़ा और क्या मतलब है आज हम तो यार संडे के दिन, सैटरडे के दिन आप लोग मतलब स्किप कर जाते हो ना, तो बस थोड़ा सा बड़ा अधूरा सा फील होता है।
0: हाँ वही मैंने आते पूछा, आपने मुझे याद किया कि नहीं याद किया दो दिन?
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम मिस करते हैं, इतना मिस करते हैं कि कभी कभी तो हम लगा के वो नहीं समझ आता, हम बल्कि चैनल चेंज कर लेते हैं एक दिन के लिए। हाँ कोशिश, हाँ नहीं तो सुनते ही नहीं है, स्किप कर देते हैं, रेडियो नहीं सुनते हैं एक दिन।
0: अरे हम भी आपको मिस करते हैं, पता है हम लोग को भी अपने लिसनर्स की याद आती है सुबह सुबह, स्पेशली
2: करते हैं हमारे भाई जी, फोन करते हैं हमारे दोस्त लोग, समझ लो कुछ ना कुछ अपनी अपनी बातें करके। अभी लास्ट कॉलर में भी भाई ने मतलब बहुत बेहतरीन अंदाज में बयान किया, और हमारे जावेद साहब माशाल्लाह
0: आज आप रईस जी लेट जुड़े, वरना आप इस टॉपिक को सुनते तो आपको मजा आता। एक एक कॉलर ने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ऐड किया आज, मुझे बहुत मजा आया इस टॉपिक पे, और हर किसी ने कुछ अलग अलग कुछ ना कुछ बोला कि ये और हो सकता है, ये और हो सकता है। इट्स रियली अमेजिंग, मजा भी आ रहा है, वैरायटी है ना आपके पास,
2: एक ही वैरायटी में सारे सारे एक ही फूल हो जाए अगर बागात में मजा नहीं रहता, सारे सारे की खुशबू और मिल के जब ये होता है
0: इस तरीके से,
2: शहद की मक्खियाँ होती है, तमाम तमाम वैरायटी के फूल को लाके वो जमा करके फिर वो एक खूबसूरत सा एक मतलब ये मशरूम बनता है। उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने मतलब सबको अपने अपने जहन का, और सबको भाई हक है। एक था प्रोग्राम चलता था, शायद आप नहीं आई थी, उसमें अंदाज अपना अपना था कि क्या था, उसमें शायद आयशा मुजाहिद किया करती थी, तो उसमें भी बड़ा अच्छा लगता था शायद ख्याल
0: अपना, ख्याल अपना,
2: ख्याल
0: अपना,
2: थोड़ा जहन से निकल गया, ख्याल
0: अपना अपना अपना, जी जी जी,
2: उसमें भी लोगों को अपना हक दिया जाता था कि मतलब वो अपने
0: एक टॉपिक पे क्या ख्याल
2: तरीके से अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: बड़ा अच्छा लगता था,
0: मजा आता
2: था। हमारी जो हमारी बहुत फेवरेट थी उनका अंदाज गुफ्तगू, आयशा जी बहुत बेहतरीन उनका अंदाज
0: गुफ्तगू,
2: शायद अब चली गई है कि अल्लाह ताला जहाँ भी रखे उनको बखैर रखे,
0: बहुत ही अच्छा, बड़ा मजा आता था, और स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था सुनने में।
2: सारे लोग अपने मतलब अपने अपने हिसाब से सबके अंदाज होते हैं,
0: जी जी जी जी। अच्छा हाँ, आज हम रईस जी आज नहीं, आज हमारा टॉपिक है, हमने कहा उस पर भी आपकी राय ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कामयाबी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, हुनर या फिर मेहनत?
2: भाई हुनर हमारे पास लाख रहे नाजिया जी, और अगर हम उसको कोशिश ना करें, अब हम गाड़ी गाड़ी लाख से अब हम मतलब गाड़ी स्टार्ट ना करें, गियर ना लगाएं, और मतलब स्टेयरिंग ना मतलब ये करें, और रोड पे मतलब बहुत से हालात सिचुएशन आते हैं, अगर हम उसको उस पे जद्दोजहद ना करें तो अपने से तो नहीं चलेगी ना। हम लाख मतलब स्किल रखें अपने अंदर, वो मजा नहीं है जब तक हम लोगों का, असल में हम लोग फार्मर के घर में पैदा हुए, तो हमारी पूरी इतनी जद्दोजहद मतलब मिली है, हम तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे फादर पहले बैल से खेती मतलब उनका मतलब मजदूर रख के डबल डबल हल चलाए जाते थे, चार चार बैलों का, तो मतलब हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री रखा फावड़े से चलाना, और मतलब पहले

0: मशीन नहीं होती थी पानी की, तो उसको मतलब अपने हाथों से दो दो दो बंदे दो तरफ रस्सी पकड़ के और खेत में पानी पहुंचाना और तरह तरह का, मतलब उनका जद्दोजहद पूरा बिना जद्दोजहद किए आजकल तो बहुत आसानी हो गया है माशाल्लाह। अब तो सारे मशीन ये हो गई हैं, अवेलेबल हो गई हैं कि जो किसानों के लिए भी अगर आपके पास जमीन है सब कुछ है तो बड़ा आसानी कर दिया गया है, उसमें टेक्निकल चीजें बहुत सी आ गई हैं, तो जद्दोजहद बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। मेहनत आदमी को, हाँ मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत करना और उससे हारना नहीं चाहिए बंदे को जितना। और आप देखें कि काम करने से कोई बंदा कमजोर नहीं होता है, मैं देखता हूँ कि जिस हाथ से आप ज्यादा मेहनत करते हैं वो हाथ सबसे ज्यादा कवि होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है, ये भी एक बात है सारे लोगों के उसमें है कि जिस हाथ से हम जिसको हम ज्यादा बचा के रखते हैं वो कोई ताकतवर चीज उठाने के लिए वो हमारे काम नहीं आता है, बल्कि जिससे ज्यादा हम मेहनत करते हैं जिस हाथ से उस ताकतवर वजन चीज उठाने के लिए वो हाथ ज्यादा हमारे काम आता है। आप ये मतलब सबको ये इस बात का अंदाजा है, तो मेहनत करने से बंदे के अंदर मतलब बहुत सी तरह तरह की ये काबिलियत पैदा होती है और मेहनत से कभी बंदे को मतलब ये नहीं करना चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए और अपने उसको भी जरूरत के हिसाब से वो सारी चीजें इस्तेमाल करना, लेकिन मस्त है मेहनत, मेहनत भी हाँ उससे बंदे को हाँ हमेशा मतलब ये करते रहना चाहिए, ना कि खाली दूसरों को ऑर्डर लगा के हुक्म लगा के ये कर लो वो कर लो, इसमें मजा नहीं,
1: ये मजा नहीं है, मेहनत करो खुद भी थोड़े काम करो सही।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब मेहनत करोगे तो उसमें आदमी को बिल्कुल सुकून भी मिलता है। मेरे मेरा आदत था, मैंने आपको एक बार बताया था कि मैं तकरीबन 10 साल तक करीब करीब मैं, क्योंकि मुझे सेटिस्फाई नहीं होता था, मैं अपने हाथ से मेहनत करके और मैं अपने कपड़े को अपने उसको सामान को खुद में सेटअप करता था, कभी कभी तो इधर से उधर मेरा रखा हुआ, तो भैया बच्चे हो गए छोटे तो बोलते थे भाई अब आप बच्चों को तो नहीं ये कर सकते ना, बच्चे इधर से उधर उधर से उधर कर देते थे, तो अपने हिसाब से अगर आदमी अपना मत सेटअप करके रखता है और अपने हिसाब से सारी चीजें, तो दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंड रहना चाहिए बंदे को,
1: मेहनत करना तो चाहिए ही चाहिए। और फिर ये क्या जो मेहनती होता है वो फिर टैलेंटेड भी बन जाता है, मेहनत करके चीजें एक्सप्लोर करते करते उसमें बहुत सारे और टैलेंट समझने की सलाहियत और चीजों को और एक्सप्लोर करने की बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने की वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो मेहनत इस प्री रिक्विजिट पर शुरुआत के लिए तो चाहिए,
0: अगर वो जी अगर वो तमाम चीजों से लड़ना स्वीकार करे जो किया रहता है, मतलब ये कहा मतलब एक शेर दिया ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो सिख क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, वो बच्चे जो बच्चे घुटनों के बल चलने वाले हैं बेचारे उनको क्या पता है कि मतलब हमारे वो करने वाले आप मतलब सारी चीजें उनको दुनिया की चीजों से क्या लेना देना है, बस बस साथ साथ में यही कहूंगा
1: कि
0: भाई उनको तो बस अपनी दुनिया से उनका अपना पेट भरा रहे अपना ये किया रहे, उसके लिए ज्यादा मतलब नहीं है उनको ना, वक्त आने से उनको अंदाजा मिलता है
1: बिल्कुल,
0: तो जो खुद अपना जब अगर आप उस मैदानी जंग में खुद जाओगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि सारी चीजें कैसे होती हैं और उसका क्या तरीका है, और दूसरों को भी बताओगे जब तुम्हारे अंदर काबिलियत रहेगा सलाहियत रहेगा मुश्किल से निकलने का, तुम्हारे अंदर कभी मुश्किल आ जाता है बहुत से, हमेशा आसानी नहीं होता है, ये गाड़ी रोड पे हम चलते हैं तो बहुत से ट्रैफिक में कभी फंस गए कभी तरह तरह के उसमें आ गए, तो ये चीजें वो बंदा उसके अंदर सब्र करना भी सीख जाता है सारी चीजें कि भाई खाली रोड हमारा तो नहीं है ना, सारे लोगों का सबको हक है, तो अब जो खाली बैठ के खाली ऑर्डर लगा के और सारी चीजें करना है उसमें उसके अंदर वो कुवत नहीं रहता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह रईस जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, अपना ख्याल रखिएगा,
0: तमाम लोगों को हमारे दोस्तों को सलाम आदाब, ओके सलाम अलैकुम,
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी,
0: जारी रखें आप सुनते हैं,
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, यहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं वो जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं लगातार हमारे साथ, और पता नहीं हमारे पास अभी गेम सेगमेंट का टाइम बचा है कि नहीं बचा है, तो कल मुझे लगता है थोड़ा सा पहले से और स्टार्ट कर देती हूँ मैं, एक और कॉलर एंड आई थिंक इट्स गोना बी लाइक लास्ट, और इसको फिर हम कंक्लूड करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं नूर जी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, समथिंग 40 टाइम कॉलिंग,
0: 40
1: बस अब मैं जा ही रही थी मैसेजेस की तरफ, तो कभी ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज आप लोग कर दिया कीजिए तो हम खुद आपको कॉल कर लें। हाँ शायद टॉपिक ऐसा चल रहा है कि लोग जो है ना उस पर कुछ ना कुछ ऐड करने चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ओ थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह।
0: मतलब तो यही है जब आप कोई घर बनाते हैं अगर उसको पेंट करते हैं तो उसमें एक कलर से कोई पेंट नहीं करता है, वैसे मैक्सिमम 3 या 4 कलर तो लाजिम रहता है, कोई बॉर्डर हो गया, कोई वॉल का पेंट अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है पेंट में कामयाबी तो के लिए इंसान को हर चीज जरूरी है, पहला हुनर सबसे पहला पसंद जो वो जावेद भाई ने किया जो डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका में ट्रस्ट, खुद के ऊपर भी विश्वास रखो और उसके ऊपर भी विश्वास रखो कि मेरे को जो काम दिया गया है वो काम मैं अपनी ईमानदारी से करूं और उसको इतना विश्वास ही दो कि आपके ऊपर वो इतना टेस्ट करे कि आपके होना रहते हुए आप उसके काम बखूबी कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और इसमें मैं एक किस्सा में जोड़ना चाहूंगा। एक कंपनी था,
1: अच्छा
0: उसमें एक बंदा बहुत टैलेंट था, उसके ऊपर इतना बोझ था कि अकेला हर काम कर सकते थे।
1: अच्छा।
0: एक दिन वो अपने कंपनी को बोला, मतलब जिसका कंपनी था जो मेन आदमी था, कि मैं इस कंपनी से रिजाइन दे रहा हूँ। वो बोला क्यों? बस मुझे काम नहीं करना है। उसके पास गुरु आ गया, वो सोचा मुझे कामयाबी मिल चुका है। उसने कहा ठीक है आप रिजाइन दोगे मुश्किल नहीं, उसको इतने पैसे दिए जाओ तुम मतलब घूम के आओ, 1 महीने के तुम्हें छुट्टी मिला। तो बेचारी घूम के आया तो कंपनी वाले ने सोचा 1 महीने में इसके ना रहते हुए भी मेरा कंपनी वैसा ही चला है जैसा ये चलाता था। तो कंपनी वाले को यकीन हो गया इसके पास जरूर आ गया है, तो सीधा बोला आप हर हिसाब पकड़ो और आपकी जरूरत मुझे नहीं है। इसको पता चल गया था कि इसके रहते हुए भी मेरा कंपनी वैसा ही चल रहा है जैसा अभी नहीं है। तो बस इंसान तो सबसे बड़ी कामयाबी तो मेरे हिसाब से अभी तक किसी को ऐसा नहीं मिला है कि मैं हर चीज से कामयाब हो गया हूँ, पर इंसान की गुरूर है ना बहुत मतलब इंसान को तबाह कर देता है। मैंने एक किस्सा सुना था और मैंने भी देखा भी था यूट्यूब में, ये हकीकत है। अगर आप 10 आदमी है 1 आदमी नहीं अभी आता है ना कंपनी में काम करने के लिए उतना ही काम होता
1: है ना। हाँ तो ये जो कोई सोचता है ना कि मेरे बगैर ऐसा हो नहीं सकता और मैं ही बहुत टैलेंट मैं ही चला रहा हूँ, तो नहीं, हर अच्छे से अच्छे शख्स का वो भी आसानी से कोई दूसरा शख्स रिप्लेस कर लेता है।
0: अभी दुनिया में सुनने में आ रहा है या हकीकत है कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान एलन मस्क है, ओके, लेकिन वो भी अपने आप से कामयाबी नहीं समझता है, वो भी कामयाब नहीं होता, मैं और कामयाब हूँ। कामयाबी क्या चीज होती है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया।
1: कामयाबी है मुझे मतलब लगता है सुकून है और ऐसे लोगों को तो बड़ा मुश्किल से ही शायद सुकून मिल पाए और ये सुकून तो मिलेगा नहीं।
0: सुकून में
1: है नहीं कभी भी नहीं, अरे कभी नहीं, वो तो खुद ही ओपनली कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरे जैसा कोई भी बने। उसने तो ये तक कहा कि मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे जैसे ना बनो, तो पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में और जो चीज़ें उनमें कितना ज़्यादा परेशान है, हमें सारी तौर पर चीज़ें नहीं पता चल रही हैं। हाँ
0: जहाँ तक मेरी सोच है
1: जी
0: मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास की जैसा कामयाब कोई नहीं है, ना उम्र ना ना देश का टेंशन ना गरीबी का टेंशन, कमाओ खाओ बस करो बस।
1: अरे सबके अपने टेंशन है पता है आपको, हर आदमी जो बेचारा किसी ना किसी टाइप के टेंशन में, उसको वो स्टेटस मेंटेन करने का बड़ा टेंशन है
0: जी।
1: अभी वही हर आदमी के पास टेंशन है
0: जी। मैं एक चीज देखा नहीं था अभी आज का रोलांडो का एक कोको कला का बोतल साइड किया, पानी का बोतल उठाया, उसका कितना बिलियन डाउन किया एक्सीडेंट के अंदर में, वो कितना डिप्रेशन में किया होगा। तो अमीर होना मतलब कामयाबी नहीं है इंसान को। सबसे बेहतरीन जो जावेद भाई ने कहा मैं उस बात बहुत 100% एग्री करता हूँ, इंसान को डिसिप्लिन और विश्वास ये दोनों चीज कामयाबी है।
1: सही बात है, सुकून आपकी असली कामयाबी है, लेकिन हाँ जो भी आप समझते हैं जो आपके पास टैलेंट है उसके लिए मेहनत कीजिए, ये भी बड़ा जरूरी है, ये नहीं कि आपने छोड़ दिया। दुनिया कितने लोग कामयाब हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी यानी एक तो रोज करते रहना और हार्ड वर्क पे बहुत जोर देते हैं
0: वो जरूरी है। मेहनत करो।

0: करो। हाँ, और अभी मैं कहूँगी सिर्फ हार्ड वर्किंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्मार्ट वर्किंग इज इम्पोर्टेंट। तो अभी थोड़ा स्मार्टली वर्क करना भी आज के टाइम में बड़ा इम्पोर्टेंट है।
1: लंबा बात करूंगा लेकिन
0: कल आप जल्दी क्यों नहीं आते, आप ये बताइए मुझे।
1: कल जल्दी, कल मेरा डे ऑफ है ना,
0: कल जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आज इतना मज़ा आ रहा है, इतने सारे लोग, इतने सारे कॉल्स भी और मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस टॉपिक को जल्दी से हमें कंक्लूड करना है। आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड किए, और अगर आप मुझसे पूछें कि टैलेंट और हार्डवर्क में ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट, तो ये मेरा अपना बिल्कुल पर्सनल परसेप्शन है, बिल्कुल पर्सनल है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक ना रखें, बट मेरा खुद का मानना है आई गो फॉर हार्ड वर्क। और जैसे मैंने कहा आज के टाइम में इट्स स्मार्ट वर्क। टैलेंट आपको अच्छा स्टार्ट तो दे सकता है, लेकिन हार्ड वर्क वो है जो आपको फिनिश लाइन तक लेकर जाता है। इसीलिए अगर आप खुद को टैलेंटेड नहीं भी समझते हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं तो टैलेंटेड उस तरह नहीं हूँ, बेचारे परेशान होते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ याद रखिए कि रोज़ थोड़ी सी मेहनत, कंसिस्टेंसी, जैसे शहजादा जी ने कहा डिसिप्लिन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आगे ले जाएंगी। टैलेंट आपको यकीनन थोड़ा सा मौका तो देता है कि आपको मौका मिलता है, विजिबल हो जाते हो कहीं भी, लेकिन हार्डवर्क आपको मौका देता है कि आप कामयाब हो, आवाज सस्टेन करो। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर रोज़ अपने आप को आज से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज मैं क्या हूँ और कल और बेहतर कैसे हो सकता हूँ या कैसे हो सकती हूँ, इसके लिए आपके एफ़र्ट्स लगते हैं, और उन्हीं एफ़र्ट्स को हम हार्डवर्क भी कहते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को यहाँ कंक्लूड करेंगे, पर जानने से पहले कुछ लोगों के मैसेजेस हैं। जैसे वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं, प्लीज़ कॉल मी तूबा। तूबा आज तो आपका मैंने मैसेज, आई एम सो सॉरी लेट दिखा, बट कल करती हूँ मैं आपसे। और मियां बख्श जी अगेन हमें सुनते हुए सऊदी से, इन्जॉय करें हमारे शो को, थैंक यू सो मच। उस्मान है और कश्मीर है, मुजफ्फराबाद सिटी कश्मीर, उन्होंने बच्चे की अपनी पिक्चर भेजी, हाउ ब्यूटिफुल, इतना अच्छा व्यू और आपका बेटा माशाल्लाह। इसके साथ गुड वाली मॉर्निंग मुझे भेजते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, जस्ट इट्स रिटन ए वेरी गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और सही बात है, सारे टैलेंट सभी लोगों के साथ इत्तेफाक रखते हैं, टैलेंट विच इज़ इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिकल लाइफ, दैट्स राइट। अयूम पार्कर जी का ये मैसेज था और बहुत खूबसूरत मैसेज। तौफीक जी हमें सलाम कहते हैं अलवकरा से, एंड यूसुफ जी थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ दोनों ज़रूरी हैं, किसी के पास टैलेंट है लेकिन हार्डवर्क ना करे तो उसके टैलेंट किसी काम का नहीं। इसी तरह से ऑफकोर्स दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर टूडे। यहाँ पर है रिस्क जी, गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुल नफीस जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कॉल मी नूर जी ने कहा था अभी देखा। जुलकर नैन जी थैंक यू सो मच। जसविंदर जी ने, गाबा जी बेस्ट कॉलर, यस। और सैयद हुसैन जी थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। यहाँ पर आरिफ अंसारी जी ने कुछ और भी बहुत सारी बातें हमें लिख के भेज दी हैं, बट अभी जो है हमारे पास टाइम हो गया है कि आपसे इजाज़त लें इस वादे के साथ, इंशाल्लाह कल वापस आपकी हमारी मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है समा मॉर्निंग, सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हाँ आप में बहुत टैलेंट है, बस एक्सप्लोर कीजिए और मेहनत करते रहिए। एंड हाँ, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: की खाम तेल पाइपलाइन नेटवर्क के लिए 16 अरब डॉलर की तारीखी लीज और लीज बैक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये कुवैत की तारीख की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी करार दी गई है। सामीन, खबरों के इस मरहले में समाप्त कीजिए स्पोर्ट्स न्यूज।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
2: कतर की अंडर 18 बास्केटबॉल टीम फीबा एशिया कप गल्फ क्वालिफायर्स में सऊदी अरब के खिलाफ अपना डेब्यू शुरू करेगी। दोहा में जारी इस टूर्नामेंट में कतर समेत 5 खलीजी टीमें शरीक हैं। टॉप की 3 टीमें एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि दोहा में शुरू होने वाले फीबा अंडर 18 एशिया कप गल्फ क्वालिफायर्स के इफ्तिताही रोज ओमान ने कुवैत को 59 के मुकाबले में 62 से शिकस्त दी, जबकि बहरीन ने सऊदी अरब को 54 के मुकाबले में 62 से हराया। इब्तदाई मरहले के बाद ओमान और बहरीन पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त हैं। कतर की कौमी टेनिस टीम ने किर्गिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 से शिकस्त देकर डेविस कप एशिया ओशियाना ग्रुप 4 के फाइनल मरहले में जगह बनाई और ग्रुप 3 में तरक्की हासिल कर ली। एशियन हैंडबॉल फेडरेशन ने अंडर 19 एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप का शेड्यूल जारी कर दिया है। उर्दन में होने वाले इवेंट में कतर अपनी मुहिम यानी डेब्यू का आगाज 20 अगस्त को बहरीन के खिलाफ करेगा, जबकि बाद में उज़्बेकिस्तान, जापान, सऊदी अरब और चाइनीज ताइपे के खिलाफ मुकाबले होंगे। और वन चैंपियनशिप और विजिट कतर ने 3 साल मुआहदे की तजदीद का ऐलान किया है, जिसके तहत 2027 से कतर में आलमी मार्शल आर्ट्स मुकाबले दोबारा मुनक्किद होंगे। इवेंट्स में एमएमए, मोए थाई, किक बॉक्सिंग और सबमिशन ग्रैपलिंग के आलमी खिलाड़ी शरीक होंगे, जिससे कतर की आलमी खेलों के मरकज के तौर पर हैसियत मजीद मजबूत होगी। स्पोर्ट्स न्यूज में आज के लिए इतना ही, और अब समाप्त कीजिए न्यूज हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
0: वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से कल दोहा के दौरे पर आए मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर बदर अब्दुलती ने मुलाकात की। मुलाकात में कतर और मिस्र के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत कतर ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुतादिद फलस्तीनी देहात पर इजरायली आबादकारों के हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें फलस्तीनी आवाम के खिलाफ तशद्दुद में इजाफे की इजरायली पॉलिसी का तसलसल और बैन अल-अक़वामी कानून और इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस की खुली खिलाफवर्जी करार दिया है। दोहा में वजारत बल्दिया और सूक वाकिफ इंतजामिया के इश्तराक से मकामी खजूरों के 11th सालाना मेले का आगाज हो गया है, जो 10th अगस्त तक सूक वाकिफ में जारी रहेगा। पुलिस एकेडमी में पुलिस ऑफ टुमारो प्रोग्राम समर 2026 के 7th एडिशन के 3rd और 4th ग्रुप की ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मजमूई तौर पर 400 तलबा ने प्रोग्राम मुकम्मल किया। सामीन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन नूर, सोशल मीडिया से इंतखाब आलम और न्यूज रूम से इस्माइल खान और मुझे यानी सफा सफदर को दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक के लिए फी अमान अल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने

0: जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज कतर फुटबॉल टीम के हेड कोच, यहां फुलेन लोप्तगी के बारे में मैं बात करूंगा। फुलेन लोप्तगी

0: फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं और उन्हें 2025 में कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने टीम की क्यादत सौंपी। पहले ये स्पेन के हेड कोच थे, उसके बाद रियल मद्रिद के कोच भी थे एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसी वजह से कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने समझा कि ही इज़ द बेस्ट मैन टू गाइड कतर फुटबॉल। उन्होंने पहले स्पेन की कौमी टीम एफसी पोर्टो, रियल मद्रिद, सीविया और प्रीमियर लीग के क्लब्स को कोच किया है। कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें 2027 एएफसी एशियन कप तक के कॉन्ट्रैक्ट पर मुकर्रर किया है ताकि टीम को दुनिया के बेहतरीन मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सके। विच मीन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद लोपतेगी का नेक्स्ट चैलेंज होगा अगले साल जो सऊदी अरब में होने जा रहा है एएफसी एशियन कप। लोपतेगी अपनी टैक्टिकल समझ, डिसिप्लिन और पोजिशन बेस्ड फुटबॉल के लिए मशहूर है। स्पेन की कौमी टीम के साथ उनका रिकॉर्ड काफ़ी मजबूत रहा है जहां उन्होंने कई अहम फतूहत हासिल की। कतर में उनका मकसद एशियन चैंपियंस की बुनियाद पर एक मजबूत और मुनज्जम टीम तैयार करना है। उनकी क्यादत में कतर ने 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन हासिल की और इसी तरह से कतर सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम हैज क्वालिफाइड फॉर द फुटबॉल्स मेगा प्लेटफॉर्म दैट इज़ द वर्ल्ड कप। लोपतेगी ने स्क्वाड में तजुर्बेकार खिलाड़ी जैसे अकरम अफीफ, अलमोइज़ अली और पेड्रो मिगल पर भरोसा किया है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो कतर को इंटरनेशनल सतह पर मजीद मुस्तकाम और मुकाबले के काबिल बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से न सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम जानेंगे कि हम अपनी समाअत को लंबे अरसे तक कैसे महफूज रख सकते हैं। बहुत ज्यादा शोर वाली जगहों पर एयर प्लग या कानों के हिफाजती आलात जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में, तामीराती मुकाम या किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ मुसलसल शोर हो, तो हिफाजती हदायात पर जरूर अमल कीजिए। बच्चों को भी ज्यादा ऊंची आवाज में मोबाइल, टैबलेट्स या वीडियो गेम्स इस्तेमाल ना करने दें। कान साफ करने के लिए रुई की जो एक पतली सी तीली होती है या कोई नुकीली चीज कान के अंदर ना डालिए, क्योंकि इससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कान में दर्द हो, रतूबत हो या अचानक कम सुनाई देना शुरू हो जाए या चक्कर आना शुरू हो जाए, तो खुद से कोई भी इलाज करने के बजाय आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग भी वक्त के साथ साथ समात को मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए मुतवाजन गिजा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद और जो सिगरेट से परहेज है, ना सिर्फ दिल बल्कि कानों की सेहत के लिए भी फायदा मंद है। बुजुर्ग अफराद और शोर वाले माहौल में काम करने वाले अफराद को वक्तन फवक्तन अपनी समात का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, ताकि किसी भी मसले की तशखीस जल्द हो सके। याद रखिए, समात एक कीमती नेमत है। सिर्फ चंद आसान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके हम अपनी और अपने बच्चों की समात को कई सालों तक महफूज रख सकते हैं। तो अपनी आवाज़ की सतह कम रखिए, शोर से बचिए और अगर समात में कोई तब्दीली महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद समात और तंदुरुस्त जिंदगी अता फरमाए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो

0: के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी,
1: आसान हो जाएगी।
0: सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ख्वातीनो हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। सामईन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो ना सिर्फ अपने दौर का मशहूर इल्मी शख्स था, बल्कि उसकी सोच और तहकीकात ने आज तक दुनिया के इल्म पर गहरा असर डाला है। हम बात करेंगे इब्न खल्दून के बारे में, जो एक अरबी इल्म में माहिर और तारीख दान थे। तो चलिए हमारे इस दिलचस्प प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां हम बात करेंगे इब्न खल्दून के लाइफ और उनके इल्म की अहमियत पर। दोस्तों, इब्न खल्दून का असल नाम अबू जैद अब्दुल रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दून था। वो 27 मई 1332 को तुनीशिया के शहर इफ्रीकिया में पैदा हुए। आज के जमाने में जिसको हम आम तौर पर तुनीशिया ही कहते हैं। इब्न खल्दून ने अपने इल्म से दुनिया के चंद सबसे अहम और कौमी तारीख को समझने के तरीकों को बताया। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बहुत मुश्किल सफर तय किया, लेकिन उनकी सोच और तहकीकात ने इल्म और तारीख को एक नया रास्ता दिखाया। इब्न खल्दून ने अपने इल्मी सफर का आगाज कौमी तारीख और सोच के हवाले से किया। वो सिर्फ तारीख दान ही नहीं, बल्कि सोशियोलॉजी और फिलॉसफी के पहलुओं पर भी अपनी तहकीकात करते थे। उनका काम ना सिर्फ उस वक्त के इल्म से आगे था, बल्कि आज भी उनकी थ्योरीज और नजरियात इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका सबसे मशहूर काम उनकी किताब मुकदमा है। ये किताब एक कौमी तारीख का ऐसा जिस्मानी और जहनी सफर है जो ना सिर्फ इल्म की दुनिया को मालूमात फराहम करती है, बल्कि तारीख और मुआशरे की समझदारी में भी एक नई सोच का आगाज करती है। तो आइए सामीन, अब नजर डालते हैं जो मुकदमा उन्होंने लिखा था उसकी अहमियत पर। तो मुकदमा, जिसको इब्न खल्दून की सबसे अहम किताब माना जाता है, इस किताब में उन्होंने सबसे पहले इल्म तारीख को एक तारीखी और इल्मी नजरिए से देखा। इब्न खल्दून ने यह बताया कि तारीख सिर्फ एक सूती वाकयात की वजाहत नहीं है, बल्कि उसमें चंद मसाइल भी शामिल हैं जो सामाजिक, सियासी और मुआशरती हालात के हवाले से रिश्ता रखते हैं। उन्होंने असाबिया यानी कौमी हम आहंगी और वक्त के साथ मुल्कों के गुरूब यानी डिक्लाइन की तहकीकात की। उनकी ये सोच और नजरिए आज भी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में बेहतरीन हवाले के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए सामईन, अब रुख करते हैं इब्न खल्दून की थ्योरीज की जानिब। इब्न खल्दून ने अपने मुकदमा में कई अहम थ्योरीज और आइडियाज दिए। उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि हर कौम का एक असली असर होता है जो उनकी तारीख और समाजी हालत का असर डालता है। उन्होंने अपने नजरियात में असाबिया का जिक्र किया, जो कि कौमी हम आहंगी का एक कॉन्सेप्ट है। उनका कहना था कि किसी भी मुआशरे की तारीख का राज उसकी असाबिया में होता है। असाबिया का मतलब है कि किसी कौम में उस वक्त तक एक जज्बा और भाईचारा हो जब तक वो अपनी कुदरती फजीलत और दोस्ती में मजीद ईमान लाए। इब्न खल्दून

के मुताबिक जब अजाबिया कमजोर होती है तभी मुआशरे में नफरत फितना और सियासी इंस्टेबिलिटी का सामना होता है। सामईन बात करें अगर इब्न खल्दून के सियासी नजरिए की तो इब्न खल्दून ने सिर्फ तारीख और मुआशरे को ही नहीं बल्कि सियासी सोच को भी बहुत गहराई से समझा। उनका ये मानना था कि सियासी असर और हुकूमत का असल बेस असाबिया पर होता है। अगर एक हुकूमत अपनी असाबिया को लूज कर दे या खो दे तो वो फिर लंबे वक्त तक कौम के लिए फायदा मंद नहीं रह सकती। उन्होंने अपनी तहकीकात में ये भी कहा कि एक सही हुकूमत वही है जो अपने लोगों को जस्टिस और बेसिक नेसेसिटीज फराहम करे, और जब हुकूमत अपने असली मकासद भूल जाए तो वो अपनी लेजिटिमेसी खो देती है। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 107। दोस्तों रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है, और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है। विदारत दाखला अपने इरादों का वाज़े तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके। रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग ना सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है। ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुँचाते हैं। FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। सामईन इब्न खल्दून का इल्म और उसका असर काफी असरदार रहा। इब्न खल्दून का काम सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के हवाले से एक मुस्तनिद जरिया समझा जाता है। उन्होंने मुआशरे और इंसानी फितरत को समझने के लिए जिस तरह से नजरियात दिए वो आज भी तालिबे इल्म और रिसर्चर्स के लिए एक मददगार रिसोर्स हैं। उनकी सोच ने दुनिया को ये दिखाया कि तारीख सिर्फ वक्त के गुजरने का नाम नहीं है बल्कि हर इवेंट और हर सूरत हाल का अपना एक असर होता है। उनका ये काम न सिर्फ इल्मी सर्किल्स में मशहूर हुआ बल्कि उनके आइडियाज ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सोचे समझे हुए इल्मी सोच को फरोग दिया। आइए सामईन अब नजर डालते हैं उनके सफर पे जो उन्होंने मिस्र की जानिब किया। अपनी कलात इब्न अल सलामा में इब्न खल्दून ने न सिर्फ मुकदमा का पहला ड्राफ्ट मुकम्मल किया बल्कि अपनी अजीम तारीखी किताब किताब अल इबार का भी एक हिस्सा लिखा जो मुस्लिम नॉर्थ अफ्रीका की तारीख पर बेहतरीन और आखिरी जरूरी वसीला है। ऐसे काम करने के लिए उन्हें कई दफा दूसरे किताबों और दस्तावेजात का हवाला देना पड़ता था। एक शदीद बीमारी ने आखिरकार उन्हें अपनी पनाहगाह छोड़ने का अकीदा दिया। उन्हें ट्यूनिस वापस जाने की इजाजत मिल गई जहां उन्होंने सिर्फ इल्म के काम में मशगूल होकर अपनी तारीख का काफी हिस्सा मुकम्मल किया। 1382 में 50 साल की उम्र में उन्हें मक्का के हज पर जाने के लिए मिस्र जाने की इजाजत मिल गई। और फिर वक्त गुजरते 40 दिन बाद इब्न खल्दून अलेक्जेंड्रिया पहुंचे और चंद ही दिनों में कैरो में थे जो उस वक्त और अब तक अरब दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार शहर था। उस पर इनका गहरा असर था और उन्होंने कहा, मैंने सोने का शहर देखा, दुनिया का बाग, कौम के मिलन की जगह, इस्लाम का महल,
और हुकूमत का।

का मरकज। उनकी कैरों के बारे में तवक्को वाज़े तौर पर पुरानी थी, क्योंकि उन्होंने कई मशहूर नॉर्थ अफ्रीकन उलमा के जवाब कोट किए जो उन्होंने उस शहर से वापस आने पर दिए थे। जिनमें से एक था, जिसने इसे नहीं देखा वो इस्लाम की ताकत नहीं जानता। दोस्तों, सन 1400 में तैमूर और उसकी फौज ने सीरिया का हमला किया और मिस्र के नए सुल्तान फराज उनसे मिलने के लिए निकले। अपने साथ इब्न खल्दून और दूसरे मशहूर अफराद को लेकर। थोड़ी देर बाद मुमलक फौज मिस्र वापस चली गई, जबकि इब्न खल्दून को मुहासरा शुदा दमास्कस में छोड़ दिया गया। हालात जल्द ही नाउम्मीद का शिकार हो गए और शहर के सिविल नोटेबल्स ने तैमूर के साथ तावुन करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने इब्न खल्दून से मिलने की दरख्वास्त की। इसके बाद इब्न खल्दून को शहर के दीवार से रस्सी के जरिए नीचे उतारा गया और वो दुश्मन के कैंप में कुछ 7 हफ्ते गुजार कर अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने इस वक्त की तफसीली वजाहत दी है। दोस्तों, तैमूर उनसे इज्जत के साथ पेश आया और तारीख ने अपनी तमाम दुनियावी हिकमत और अदबी तारीफों को इस्तेमाल करके उस शिद्दत पसंद फतह करने वाले को खुश कर लिया। शायद नए फतह के ख्वाब देखते हुए तैमूर ने नॉर्थ अफ्रीका की तफसीली वजाहत मांगी और इब्न खल्दून ने सिर्फ इस मामले पर एक मुख्तसर रिपोर्ट दी, बल्कि कैलिफेट और असाबिया पर भी एक वसी रिपोर्ट भी दी। इब्न खल्दून ने तैमूर की अच्छी नियत का फायदा उठाया। दमास्कस में फिर उनको छोड़ दिया गया सिविल मुलाजमीन के लिए अमन का पैगाम और अपने लिए इजिप्ट वापस जाने की इजाजत हासिल की। मगर इससे पहले उन्होंने शहर की लूट और उसकी अजीम मस्जिद में आग लगने का मंजर देखा। तैमूर के साथ तवद्दो और तोहफे का तबादला करने के बाद वो जनूबी रुख में रवाना हुए, लेकिन रास्ते में एक ग्रोह ने उन्हें लूट लिया और उनके कपड़े भी उतार लिए। बहुत ही मुश्किल से वो समुद्री किनारे तक पहुंच पाए, जहां इब्न उस्मान सुल्तान रूम का एक जहाज आया जो मिस्र के सुल्तान के लिए एक एम्बेसडर लेकर जा रहा था। उन्होंने इब्न खल्दून को गजा तक पहुंचाया, जहां उनका पहला और आखिरी ताल्लुक उस्मानी सल्तनत से हुआ। उनका बाकी सफर कैरो तक पुरसुकून गुजरा, जैसे के बाकी जिंदगी के साल भी पुरसुकून गुजरे। वो 1406 में वफात पा गए और बाब अल नसर के कब्रिस्तान में दफन किए गए, जो कैरो के एक अहम दरवाजे के बाहर है। दोस्तों, इब्न खल्दून की जिंदगी का सफर काफी मुश्किल था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई शहरों और मुल्कों का सफर किया, लेकिन उनकी आखिरत का सफर 19 मार्च 1406 का हुआ, जब वो कैरो मिस्र में इंतकाल कर गए। उनका काम आज भी इल्मी दुनिया में बहुत अहम है और उनकी किताबें अब भी मुख्तलिफ जमात में पढ़ाई जाती हैं। इब्न खल्दून का काम ना सिर्फ उनके दौर तक महसूस किया गया, बल्कि आज तक दुनिया के इल्मी रिसर्च और तहकीकात में इस्तेमाल करा जा रहा है। उन्होंने अपने काम से ये साबित किया कि तारीख को समझने के लिए सिर्फ वाकयात की नुमाइश नहीं, बल्कि उनका असर और उस वक्त का समाजी और सियासी कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है। इसलिए इब्न खल्दून को ना सिर्फ तारीखदान बल्कि एक ग्रेट फिलोसोफर और सोशल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए एफएम 107। दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे

खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। इब्न खल्दून अपने अदालती फराइज को बहुत संजीदा तौर पर लेते थे। उन्होंने ये दावा किया कि उनके फैसले सिर्फ हर मामले की बेस पर मबनी थे और उन्होंने इंसाफ के इदारों में जो बहुत सी बुराइयां फैल गई थीं, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की। उनका ये रवैया मिस्रियों को कुछ ज्यादा ही सख्त लगा होगा। उन्होंने कहा, ये मिस्री ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। खैर, मुश्किलात ने हर जगह से मुझे घेर लिया और हुकुमरान के साथ मेरा ताल्लुक खत्म होता गया। समईन, जिंदगी के आखिरी लम्हों में फिर एक दफा उन्हें चीफ जज बना दिया गया और उन्होंने अपना वक्त तालीम देने, लिखने और अपने मुकदमा को दोबारा से तहकीकात करने में गुजार दिया। उन्हें मक्का का हज करने का मौका भी मिला, जहां उन्होंने अलतौर से सफर किया और अपर इजिप्ट के रास्ते वापस आए। कुछ साल बाद उन्होंने दमास्कस और फिलिस्तीन के मुकद्दस शहरों का सफर किया। इस तरह उन्होंने मशरिकी अरब दुनिया के बारे में अपना इल्म और बढ़ा लिया। दोस्तों, ये दिलचस्प बात है कि उन्होंने हेब्रू में हजरत इब्राहिम का मकबरा और बेथलेम में चर्च ऑफ द नेटिविटी का दौरा किया। दोनों हजरत इब्राहिम और हजरत ईसा को इज्जत देने वाले पैगंबरों के तौर पर। तो दोस्तों, इब्न खल्दून को 1379 में एक कसर के इनकलाब में छोटी सी हिस्सादारी करनी पड़ी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उन पर दबाव था और बरकूक ने उनके साथ कोई दूसरी नफरत नहीं रखी। तो सामईन, हमने इब्न खल्दून के इल्म और उनके कामों पर एक गहरी नजर डाली। उन्होंने जो थ्योरीज और आइडियाज दिए, वो ना सिर्फ अपने जमाने में बल्कि आज भी इल्म और सोच को बढ़ाने में मददगार हैं। उनकी किताब मुकदमा ने इल्मी दुनिया को एक नए नजरिए से रोशन किया जो हर जमाने के लिए रेलेवेंट है। इब्न खल्दून ने हमें ये सिखाया कि इल्म सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं, बल्कि हर चीज को समझने का एक तरीका है जो ना सिर्फ फैक्ट्स बल्कि उनके असरात को भी समझता है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हमने इब्न खल्दून की इल्मो फिक्री दावत और उसकी तारीख को समझने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ
आपके लिए हाजिर खिदमत हैं।

0: हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो अगली मुलाकात तक के लिए साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए, सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360।
5: कतर बिजनेस 360
3: जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्ट।

0: इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
1: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीद। सुनिए हदीद टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है 11:01 और आपका टाइम हो चला है मेरे साथ जुड़ने का, यानी के
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: जी हाँ, टाइम हो चला है सन एंड साउंड का सफा के साथ जुड़ने का ऑन FM 107 और मेरा और आपका साथ रहता है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का साथियों, जिसमें हम खूब मस्ती मजा बातें शातें करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। तो भाई आज की गेम से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो हम गेम खेलेंगे वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, आपकी फरमाइश के तहत गेम चेंज की गई है। तो बताती हूँ, रुको ज़रा सब्र करो, पहले ये तो बता दूँ कि भाई मौसम का हाल चाल बता दूँ पहले, गेम का बता दूं पहले। अच्छा चलो, गोभी दें फूलों

गेम का बता देती हूँ. देखो हम जो है ना गेम 12 बजे के बाद खेलना शुरू करते हैं, थोड़ा मूड शूट सेट करते हैं ना, उससे पहले यहाँ वहाँ की बातचीत करेंगे, जैसे जैसे जैसे जिम में जाते हैं ना वर्कआउट करते हैं तो थोड़ी यहाँ की वार्म अप एक्सरसाइज होती है, वहाँ की वार्म अप एक्सरसाइज होती है और फिर हम मेन कार्डियो करते हैं. तो फिर ऐसे ही हम अपने शो को भी लेकर चलते हैं, थोड़ी यहाँ की बातचीत होगी वहाँ की बातचीत होगी और फिर हम अपने गेम की तरफ चलेंगे. तो गेम में आज हम खेलेंगे क्या, हम खेलेंगे उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये गेम है जो कि अच्छा मेरे ना दिल के बहुत करीब है, ये गेम बहुत करीब है. पता है क्यों? मामला ये है कि कुछ लोग मुसलसल जैसे एक होता है ना पत्थर पे चोट मारी जाती है मुसलसल, तो पत्थर क्रैक हो ही जाता है. तो आज मैं कुछ क्रैक चल रही हूँ, मुसलसल आते जाते जो मिलता है ना वो कहता है अरे भाई तुम लोग जो हो ना वो अच्छे हो, आरजेस बड़े अच्छे हो, एमए एमए करके बात कर लेते हो और मामला ख़त्म कर देते हो. मैंने कहा अच्छा तुम लोग को ये लगता है कि हम लोग एमए टेमए की बातें कर लेते हैं और बड़ा ईजी होता है बात करना बाबू? तो कहते हाँ बात ही तो करनी होती है और क्या करना होता है, बहुत ही तो करनी होती है और क्या ही, कोई कौन से कोई रॉकेट साइंस करनी होती तुम लोगों ने. तो भाई आज मेरा आप लोगों से इस हफ्ते का पूरे हफ्ते का, ठीक है जोर लगा लो एक हफ्ता दे दिया मैंने, इस पूरे हफ्ते का मेरा आज सबसे चैलेंज है, ओपन चैलेंज है. मैं फेंकूंगी एक वर्ड, ठीक है पर वो वर्ड कोई भी नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड होगा, कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा कि जो रॉकेट साइंस का हो. नहीं नहीं नहीं, एक बड़ा ही नॉर्मल सा वर्ड फेंकूंगी मार्केट में, आपकी कॉल आएगी, आपको वर्ड बताया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट. क्या ही कोई एक मिनट में कोई समझ रहे हो, एक मिनट क्या ही होता है कोई, उस एक मिनट तक उसी एक चीज के बारे में आपने बात करनी है, समझ रहे हो? जिन लोगों को लगता है ना कि भाई क्या ही कोई मस्त जिंदगी चल रही है हमारी, तो आओ जरा मार्केट में और बताओ एक मिनट तक जो आपको वर्ड दिया जाएगा उसके बारे में आप कितनी बात कर सकते हो वन मिनट के अंदर, ठीक है बगैर रुके. चलो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारी गेम का. अब आते हैं अपने हाल चाल जो हमारा चल रहा था उसके ऊपर. देखो भाई सीधी सी बात है कि जो है ना आज हम जैसे ही बातचीत शुरू करेंगे हमारे मैसेज सर्चेज तो चलते ही रहते हैं ना भाई. तो मैसेज कहाँ करेंगे, मैसेज के लिए आप चाहें तो हमें मैसेज के लिए नंबर हमारा है 666-22107 पे मैसेज कर सकते हैं. 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज. कोई भी दिन फुलना पहले तो सबसे पहले एक काम करो कि खुशबू वशबू लगाओ, संडे वाला दिन है, वीकेंड के बाद आए अच्छी अच्छी खुशबू आनी चाहिए, नहा धो कर यूं पप्पू बच्चे बनकर पहले तो अटेंडेंस लगवाओ. कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, 666-22107 पे करो मैसेज, ठीक है. और फिर दूसरी चीज ये कि जिस जिसका बात करने को दिल कर रहा है ये बताने को दिल कर रहा है वीकेंड कहाँ कहाँ अपना बर्बाद किया, कहाँ जिंदगी अपनी है ना वो खपाई है वीकेंड पर, तो वो करने के लिए आपने काम करना है 443-443-77 पे करनी है कॉल. क्या नंबर है? 443-443-77 पे कॉल करेंगे या वांगी ना वांगी गपशप करेंगे, ठीक है. और फिर थोड़ी देर बाद मुद्दे पर भी आएंगे लेकिन अभी फिलहाल नंबर शंबर मैंने बता दिए, अटेंडेंस अटेंडेंस लगवाओ जरा धूम धड़ाके से ताकि मुझे पता चले कितने लोग जाग रहे हैं और कितने लोगों को गर्मी ने अपनी लपेट में ले लिया है. तो भाई होश हवास में मैसेज किया जाए कि कितने लोग कहां कहां से सुन रहे हैं, ठीक है. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वेदर रिपोर्ट की तरफ, ठीक है. अब वेदर रिपोर्ट का तो हाल बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा था, यानी कि बिल्कुल क्या मस्त बर्बाद हो रहा हूँ मैं, क्या मस्त बर्बाद हो रही है जिंदगी वाला हशर चल रहा है. तो भाई अगर वेदर रिपोर्ट के बारे में बताया जाए टेम्परेचर आज का जो है हाईएस्ट जितना जाएगा वो कहा जा रहा है एज पर द रिपोर्ट, नॉट एज पर मी, एज पर द रिपोर्ट इट सेज के 43 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट जाने के इनकाम है और 39 डिग्री सेल्सियस मिनिमम पर आएगा, ठीक है. तो फील्स लाइक कहा जा रहा है कि भाई फील्स लाइक आप कह लें कि 45-46 का टेम्परेचर होगा और अभी चल रहा है जो टेम्परेचर चल रहा है वो 41 डिग्री सेल्सियस है, तो लेकिन वो फील्स लाइक 45 डिग्री चल रहा है. हवाओं के बारे में बात की जाए तो तहमुल में सब्र का दामन थामे में मतलब 13 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं. ह्यूमिडिटी हमारे सर पे चढ़कर नाच रही है, ताधई ताधई ताधई, यानी कि 31% तक चली गई है ह्यूमिडिटी.
तो उसके बाद

बारे में तो कोई बात ही ना करे, क्योंकि जितनी बात करेंगे उतना दिल दहलेगा। तो ह्यूमिडिटी, देखो खजूरों का भी तो टाइम आता है ना, पकती है ना खजूरें, उसके लिए ह्यूमिडिटी जरूरी होती है दिल को बहलाने को। ये ख्याल अच्छा है गालिब। अरे खजूरों से याद है, खजूर वाले फेस्टिवल में जाओगे? सूप आकिफ पे 10 तारीख तक लगा हुआ है, जाओगे? मैं सोच रही हूँ जाऊँ, मुझे अच्छी लगती हैं खजूरें। आपको, आपने से कितने लोगों को अच्छी लगती हैं? अच्छा भाई, और अगर देखा जाए तो और क्या कहा जा सकता है, यूवी रेज हाईएस्ट पर हैं। जिन लोगों को इस वक्त ख्याल आ रहा है उठकर के भाई चलो वॉकिंग शॉकिंग पे चलते हैं, तो मेहरबानी करके ना जाना, वेदर इज टू मच हॉट। और भाई हॉट है तो उसका मतलब ये सनी भी है, तो भाई समझ जाओ नॉट सो गुड फॉर वॉकिंग एंड फॉर एक्सरसाइजिंग आउटडोर। अगर इतना ही अपने आप को हेल्दी रखने का चल रहा है ना मूड, तो जाकर जिम में चले जाना, ठीक है, शाम में, वो भी अभी नहीं, अननेसेसरी आउटिंग नहीं करो ये मेहरबानी करके इस टाइम पर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और गोविंदा फुल्लो बात कर लेते हैं गर्मी से ही रिलेटेड, लेकिन अच्छी वाली बात। आप कहेंगे कैसी वाली अच्छी वाली बात? तो देखो गर्मी का मौसम जो है ना अपने साथ बहुत कुछ अच्छा भी लेकर आता है। जहाँ हम लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, हमें कमी वगैरह हो जाती है हाइड्रेशन की, वो तो हमारे अपने पर डिपेंड करता है कि हम पानी शानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं। अच्छा चलिए आज मैं आपको कुछ फ्री वाली चीज़ों के बारे में बता देती हूँ जो गर्मी के साथ आती हैं और वो अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो भाई जैसे फ्री का नाम सुनते हैं ना तो हमारे, तो वैसे हम देसी लोग हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। तो फ्री एक चीज़, आज का टॉपिक जो मैं शुरू करने वाली हूँ, वो टॉपिक नहीं सॉरी, मैं आज की एक मालूमात, मैं कहूँगी हमारा जो इन्फॉर्मेशन ट्रिविया है ना उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि आज इन्फॉर्मेशन ट्रिविया में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बिल्कुल फ्री मिलती है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग उससे ऐसे बच के भागने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमें उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। देखिए मैं बात कर रही हूँ धूप की। देखिए अब अगर आप सोचेंगे तो भाई आप कहेंगे धूप कहाँ से फ्री, सफाई, ये तो कतर में तो ऐसी धूप हो रही है कि जैसा कभी कभी लगता है जैसे हमारे घर का परमानेंट एड्रेस उसे मिल गया, हमारा एक परमानेंट एड्रेस मिल गया जो कि रेंट फ्री हमारे साथ ही चल रहा है। मैं मानती हूँ सब्र तहम्मुल रखें, मैं आपको धूप के बारे में एक चीज़ बताने लगी हूँ, वो ये है कि धूप सिर्फ पसीना गर्मी नहीं लाती बल्कि हमारी बॉडी के लिए बहुत कीमती तोहफा भी लेकर आती है। और पता है वो क्या है? वो है विटामिन डी, जिसकी वजह से विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट और सन से इतना रिलेटेड है कि इसको अक्सर औकात सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। मतलब ये कि नेचर का अपना एक सप्लीमेंट होता है जिसको किसी बॉटल की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है। अच्छा चलिए पहले तो आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ विटामिन डी ये चीज़ है क्या। जब सुबह की रोशनी होती है ना तो उसके अंदर एक चीज़ होती है यूवी बी रेज होती हैं जो कि हमारी स्किन पर पड़ती हैं सुबह सुबह की जो होती हैं अच्छी वाली, वो जो हम कहते हैं ना ठंडी धूप, वो ठंडी धूप के बारे में बात कर रही हूँ। वो चिलकती भड़कती धूप 12 बजे वाली के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सवा नेजे वाली धूप के बारे में नहीं, अच्छी सी ठंडी सी धूप होती है यूवीबी उसके अंदर रेज होती हैं। तो हमारी स्किन के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस शुरू हो जाता है उस यूवीबी रेज से। होता है कि स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल रिएक्शन के जरिए विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे कोलेस्ट्रॉल, अब कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते के साथ हम सब हवास बाख्ता हो जाते हैं। नहीं भाई देखो प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल से नहीं है, प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल नहीं देता पहले प्रॉब्लम जब तक कि वो अंडर कंट्रोल हो। भाई देखो हर चीज़ ना लिमिट में अच्छी लगती है। अब आपकी चाहे वो मोबाइल की स्टोरेज हो, अगर मोबाइल की स्टोरेज भी ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर अलम गलम चीज़ें स्टोर करना शुरू कर दोगे, तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में अगर रीजनेबल अच्छे लेवल में हो तो वो काम करता है, वो हमारे प्रॉब्लम का हल निकालता है। तो भाई होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल एक रिएक्शन करता है और उसकी वजह से हमारा विटामिन डी जो है वो काम करना बनना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि विटामिन डी करता क्या है? कुछ लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, वो कहते हैं हमें विटामिन डी की कमी हो गई है। अरे भाई सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम ये करता है कि हमारी हड्डियाँ मजबूत करता है। आप कहेंगे हड्डियाँ मजबूत तो कैल्शियम करता है? नहीं नहीं देखो मैं यहाँ पे साइंस समझाने नहीं आई, कैल्शियम को ज़रूरत होती है किस चीज़ की? कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है वो हमारी हड्डियों में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन उसके लिए उसे ज़रूरत होती है विटामिन डी की। हम साथ साथ हैं वाला सीन है ये कहते हैं हम बाजू में बाजू डाल के चलेंगे, तो विटामिन डी हमारे जिस्म को कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके बगैर हमारा कैल्शियम बिल्कुल नाकारा, ये जो पथरियाँ बन जाती हैं ना किडनी में कैल्शियम की, ये इसी वजह से कहीं ना कहीं बन रही होती हैं, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है बॉडी में और वो एब्जॉर्ब हो नहीं रहा होता, पड़ा रहता है। तो भाई कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियाँ कमजोर।

कमजोर हो सकती हैं, मसल्स में अक्सर उनका दर्द रहता है ना, पट्ठों में दर्द रहता है, हाँ ये सी की वजह से हो रहा है। तो साथियों विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनकी ग्रोथ, जो हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ होती है, ये आप कह लें कि मजबूती होती है, वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी विटामिन डी को आप हड्डियों का पर्सनल ट्रेनर समझ सकते हैं। जिम में आपका ट्रेनर कहता है ना भाई वेट उठाओ चलो, तो विटामिन डी कहता है कैल्शियम को कि चलो चलो एब्जॉर्ब हो। तो भाई अगर सूरज आपका दोस्त होता, मैं आपसे पूछूं कि सूरज आपका दोस्त होता तो उसके साथ क्या करते, उसको ऐसे भगा देते? नहीं भगाते ना, वो आपके काम का है ना, तभी तो आपका दोस्त है ना, तो उसको दोस्त समझें। आपके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों विटामिन डी का कनेक्शन सिर्फ बोन्स तक लिमिटेड नहीं होता, रिसर्च ये बताती है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करने में मदद करता है, आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि एक बहुत ही खूबसूरत सा हल्का सा ठंडी धूप होती है ना, जो उसके दौरान जब हम ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा हो जाता है, आप बालकनी में खड़े होते हैं, कहीं बाहर खड़े होते हैं, आप कहते हैं भाई मज़े की अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी धूप आ रही है, और ये वाकई में हमारे मूड को एनहेंस करता है। लेकिन ये और बात है कि 5-10 मिनट बाद जब हमें रियलिटी का चपेट पड़ता है और हमें अपने बिल्स और अपनी जो है ना पेट्रोल के खर्चे याद आ रहे होते हैं, दिमाग रिफ्रेशमेंट से परे हट जाता है, वो एक अलग बात है। तो भाई ये याद रखें कि धूप हमेशा बुरी नहीं होती, जो ठंडी और अच्छी धूप होती है ना, सूरज भी अच्छे के लिए ही आता है। उसको वो जो एक ठंडी और मीठी धूप होती है ना, जो शाम के टाइम होती है या सुबह के टाइम, फजर के बाद की थोड़ी सी एक टाइम होता है उसके बाद होती है, तो उसके अंदर अगर आप 10 से 20 मिनट सिर्फ सेफ सनलाइट एक्सपोजर काफ़ी होता है आपका, 10 से 20 मिनट काफ़ी होता है। और ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टोन पर, आप मौसम जो है उस पर डिपेंड करता है, आप किस जगह पे रहते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और डायरेक्ट सनलाइट आपको कितनी मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई सनलाइट एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, उसको अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो भाई बहुत सारी बातें हो गई। अब एक काम करते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कि आज से ये नहीं करना कि विटामिन डी की मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करनी हमने कोई, अच्छी सी जो मीठी सी ठंडी सी धूप होती है सुबह के फजर के टाइम की बात की या मगरिब से पहले की, जो वो अच्छी खासी धूप खा लो 10-15 मिनट 20 मिनट, तो विटामिन डी आपका अच्छे से काम करेगा। ये जो हड्डियों की और मसल्स की पेन के बारे में बात कर रहे हो तो ये इसकी वजह से होता है। अफसोस की बात ये है कि हम लोग इतना इंडोर रहने लगे, और ख़ासतौर पर हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके बारे में कहूँगी कि सिक्योरिटी का काम करते हैं, गार्ड्स का काम करते हैं, तो उनकी रात की शिफ्ट होती है, जिन लोगों की रात की शिफ्ट होती है ना उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है विटामिन डी इट्सेल्फ। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें कि अपनी रूटीन ऐसी सेट करें कि आप सुबह सुबह की धूप थोड़ी सी अवेल कर सकें। लेक्चर मेरा बहुत लंबा हो गया है, जाते जाते ये बताऊंगी कि अगर खाने में भी इनटेक करना चाह रहे हैं तो खाने में फैटी फिश हो गई, ये अपना एग योक हो गया, फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको ज़रूर मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया करें, ये आपकी जान के लिए अच्छे हैं, हड्डियों के लिए अच्छे हैं, आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो भाई विटामिन डी को कंट्रोल में रखो, बनाते रहो विटामिन डी। और फिलहाल के लिए सफा जाने लगी एक ब्रेक के ऊपर, नहीं ऊपर नहीं मतलब ब्रेक पे बोल बोल के हाल होता है। तो भाई लेक्चर खत्म हुआ, टीचर ने क्लास डिसमिस की, अब एक छोटे से ब्रेक के ऊपर चलेंगे, ब्रेक पे चलेंगे, छोटे से ब्रेक पे चलेंगे, पे बोल बोल के हाल होता है, छोटे से ब्रेक पे चलेंगे भाई, और ब्रेक के बाद वापस आकर मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दे पे किस पे? मुद्दे पे बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो केसरिया सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे मुद्दे पे। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: तो फिर भाई चाहे कुछ भी हो, सफा ने तो वो करना है जो सफा ने करना है। और फिलहाल सफा ने आपको वेलकम बैक करना है। आप सुन रहे हैं FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफा। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 11:23। और भाई हमारे पास अटेंडेंस किस किस ने लगवा ली हो, अटेंडेंस जितने सारे लोगों की अटेंडेंस, किस किस का नाम बोलूंगी मैं, चलें सबका नाम बोलने की कोशिश करती हूँ। पहले तो कौन है, यूसुफ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग सफा जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की रजा में राजी हैं। यूसुफ भाई आप बताएं, हैप्पी संडे मॉर्निंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? होप गुड। भाई मैंने ना इस वीकेंड पे हमेशा की तरह दे सोई हूँ मैं। ओ भाई मैं इतना सोई हूँ कि आखिर में मेरे घर वालों ने तौबा कर ली। मतलब मैं पता नहीं क्या मैं जब से छुट्टियों से वापस आई हूँ ना, पता नहीं क्या हिसाब चल रहा है। सुबह 4 बजे मैं सो रही हूँ, या आप कह लें कि जल्दी से जल्दी अगर मैं सो सकती हूँ ना तो फजर पड़ने के बाद सो रही हूँ, और फिर उसके बाद अगर छुट्टी है तो शाम के 4 बजे उठा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, आप बहन की कैपेसिटी देख रहे हैं सोने की। सुबह 4 बजे बंदा सोए और शाम को 4 से 5 बजे उठे, वो भी तब जब घर वाले धक्के दे देकर उठाएं कि खुदा ना खास्ता हो के चली गई हो, कट लिया है टिकट ऊपर करवा लिया तुमने, तो वो उन अपनी तसल्ली के लिए झंझोड़ते हैं मुझे कि भाई हो ना। मैंने कहा हाँ हूँ। बस कुछ यही हिसाब चल रहा है। सुबह के 4 बजे सोती हूँ, सुबह के 6-7 बजे ऑफिस आ जाती हूँ, ये हाल चल रहा है। मतलब नींद, और नींद ऐसी आ रही है कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब अगर मुझे कोई रोलर कोस्टर राइड पे बिठा देना तो मैं रोलर कोस्टर में बैठकर सो सकती हूँ, मुझे नींद इतनी आ रही है। लेकिन जैसे ही खुदा ताला की नेमतों में से एक चीज़ है बेड आपका, आप जैसे ही बेड पे जाके लेटोगे ना नींद नहीं आएगी आपको। आंखें आपकी बस पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आंखें बंद हो रही होंगी, दिमाग शट डाउन हो रहा होगा, लेकिन नींद नहीं आएगी, ये वाला हिसाब चल रहा है बस आजकल। कुछ तरीका है अपने आप को दुरुस्त करने का तो मुझे बता दो भाई, कुछ शेयर कर लो कुछ, मैंने तो बड़ी कोशिश की है, हार मान ली। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ? आरिफ अंसारी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल हैं गोबिंदे फुल्लो? मैं अच्छा हूँ, बस आप अच्छे हैं ना तो हम भी अच्छे हैं फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़रूरी खबर ये है कि आपको बता दिया जाए कि एक सॉन्ग, वाह वाह शैम्पी वाह, शो शो शुरू नहीं हुआ अभी और रिक्वेस्ट आ गई है। चलें ठीक है, कुछ ना कुछ करके इसका ही बंदोबस्त कर ही लिए, इस मर्द की भी दवा ढूंढ ली जाएगी। अच्छा भाई क्या है आपको ये क्या है, क्या जाता है कि देखिए इन्होंने बहुत खालिस हिंदी लिख दी है, सूचित किया जाता है कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाए। जोक्स अपार्ट, नहीं आप टेंशन नहीं लें, ये देखिए अभी मैं यूं करके लिस्ट में ढूंढूंगी आपकी रिक्वेस्ट जो है ना, अभी यूं करके ढूंढी जाएगी, इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट। इन्होंने एक असल में गाना छोटा मोटा सा रिक्वेस्ट किया है, तो हम इस गाने के ऊपर तवज्जो दी जाएगी ज़रूर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई और क्या है हमारे पास, और कौन है हमारे पास, क्या है नहीं कौन है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो चलें इससे पहले कि किसी और से बात की जाए और किसी और के मैसेजेस पढ़े जाएं, एक काम करती हूँ, एक आज का सवाल थ्रो करती हूँ मार्केट में, ठीक है। आज का सवाल ये है, गोविंद यहाँ पुल्लों खुशबू लगा के आ जाओ, तो हम आज के आज के सवाल के बारे में बात करने लगे। देखो ज़रा सोचो, दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं, इतना तो मुझे ही पता है, इतनी तो साइकोलॉजी मैंने भी पढ़ ली, साइकोलॉजी में आपकी बहन ने बैचलर्स किया है तो इतनी तो मुझे

पता है साइकोलॉजी, ठीक है? तो भाई देखो, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं. अगर आपके दिमाग के अंदर कोई एक सोच आती है ना, तो एक बंदा तो वो होता है जिसका मेरे वाला मामला होता है. मतलब ये कि उसके दिमाग में ना एक ऐसा मूड होता है जिसमें आप कह लें कि वो अपने आप से बात कर रहा होता है. मतलब ये कि उनके दिमाग में डेली रूटीन की, फॉर एग्जाम्पल डेली मीटिंग होती है, ठीक है, मीटिंग है, तो उसके अंदर आपको आवाज़ें आती हैं. अच्छा असिस्टेंट ये कहेगा, अच्छा मीटिंग में जाऊंगा तो ये कहूंगा, अच्छा बॉस ये कहेगा, और वो सारी आवाज़ें आपके दिमाग के अंदर होती हैं. लिटरली ऑडियो चल रहा होता है आपके दिमाग में, हर चीज़ का जो आने वाली होती है, हर चीज़ का जो पिछले गुजर गई होती है. मतलब लिटरली आपके दिमाग में जो कोई भी सोच होती है ना, वो ऑडियो पे चल रही होती है. विजुअल एंड ऑडियो दोनों चल रहा होता है साथ में. ऐसा जैसे आप सिनेमा में मूवी देखते हैं. ये पहली किस्म है लोगों की, जो मेरे साथ भी होता है. मैं अपने आप से बातें करती हूँ, रहने दो, एक्सपर्ट की राय चाहिए होती है तो मुझे अपने आप से बात करनी पड़ती है. दैट इज जोक्स अपार्ट. और दूसरे किस्म के लोग पता है क्या होते हैं? दूसरे किस्म के लोग कुछ ऐसे होते हैं कि चार्ली चैप्रन चलता है उनके दिमाग में. आप कहेंगे चार्ली चैप्रन कैसे चलता है? भाई देखो, चार्ली चैप्रन के टाइम पर ना ऑडियो नहीं था, सिर्फ वीडियो चलती थी, सिर्फ वीडियो. कुछ लोग लिटरली ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन सोचता है इसी तरीके से, बहुत अलग तरीके से सोचता है. उनके दिमाग में कन्वर्सेशंस नहीं चलती, उनके दिमाग में सिर्फ इमेजेस फ्लिप होती हैं. उनके दिमाग में आवाज़ें नहीं होती, सिर्फ इमेजेस, आइडियाज और फीलिंग्स आती हैं. जैसे दिमाग में एक साइलेंट सी मूवी चल रही हो कोई, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे वो चार्ली चैप्रन होता है या वो टॉम एंड जेरी के कार्टून होते हैं. डायलॉग नहीं होते लेकिन कहानी पूरी पूरी समझ में आ रही होती है. तो भाई आज का मुद्दा ये है, जब आप अकेले होते हैं और सोच रहे होते हैं कुछ, कोई भी सोच हो, कोई पास्ट में से हो, कोई फ्यूचर में से हो, कोई अभी की सोच हो, तो आपका दिमाग किस मोड पे काम कर रहा होता है? ऑप्शन वन, रेडियो स्टेशन ब्रेन पर, कि भाई हर वक्त किसी ना किसी की कमेंट्री चल रही होती है. मेरे दिमाग में तो बहुत शोर होता है भाई, मुझे तभी मैं कहती हूँ मुझे रेस्ट की जरूरत है, मेरे दिमाग में बहुत शोर होता है. दूसरा ऑप्शन ये कि आप बिल्कुल चार्ली चैप्रन सिनेमा स्क्रीन पर चल रहे होते हैं, आपका ब्रेन तस्वीरें, आइडियाज और इमेजेस चला रहा होता है, ठीक है? तो मुझे आप बताएं कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, रेडियो स्टेशन मोड पर या चार्ली चैप्रन सिनेमा मोड पर. आपने करना यह है कि आपने मुझे यह मैसेज भेजना है 666-22107 पर, 666-22107 पर आपने मुझे मैसेज भेजना है, या चाहें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर. क्या नंबर है? 443-443-77 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. अच्छा, मैं सोच रही हूँ गेम का जो मुद्दा है ना, वो 12 बजे से पहले शुरू कर लिया जाए. मैं कहती हूँ कि अभी जो मुझे कॉलर शुरू में कॉल करेंगे ना, उन्हीं से गेम खेल ली जाए, साथ साथ मुद्दा भी पूछ लेंगे और गेम भी खेल लेंगे. और गेम हमारी ये चल रही है कि जो कॉलर जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो चाहें तो मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं 666-22107 पर कि आई वॉन्ट टू प्ले द गेम. मैं आपको कॉल कर लूँगी, अगर बैलेंस का कोई मसला हुआ हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको कॉल कर लेंगे हम, ठीक है? गेम ये है आज की कि आई विल थ्रो अ वर्ड, मतलब ये कि मैं आपको एक वर्ड दूंगी, नॉर्मल लाइफ का वर्ड है, कोई रॉकेट साइंस का वर्ड नहीं होगा. आपने उस एक वर्ड के ऊपर एक मिनट बात करनी है, सिर्फ एक मिनट, ठीक है? और वो कुछ भी हो सकता है. आपने बस तरीके से ये जानते हुए कि आप रेडियो पे ऑन एयर हैं, आपने उस वर्ड के बारे में बात करनी है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड थ्रो कर दिया मार्केट में, आलू. अब आलू के ऊपर आपने एक मिनट तक बात करनी है. कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई आरजेएस का काम तो बिल्कुल कद्दू की तरह सिंपल है, पोटैटो की तरह बिल्कुल मजे का. तो आज मैं लोगों से ये रिहर्स कराना चाहती हूँ कि आखिर मामला क्या है, एक मिनट तक कैसे बात कर सकते हो. एक मिनट तक कोई बस बात कर जाए किसी, फॉर एग्जाम्पल हो गया आलू, फॉर एग्जाम्पल हो गया बंदर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हो गया गाड़ी के ऊपर, ठीक है? मैं एक वर्ड दूंगी और आपने उसके ऊपर एक मिनट तक बात करनी है. कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77. कुछ भी फनी बोलो, कुछ भी मजे का बोलो, बोलो बस एक मिनट तक, अपने दिल की भड़ास निकाल लो एक मिनट तक, ठीक है? एक मिनट तक आपने, गेम का रूल यही कि एक मिनट तक आपने उस वर्ड के ऊपर बात करनी है. 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज. मुद्दा ये है
कि आपके जब आप अकेले होते हैं और आप सोच रहे होते हैं तो आपके दिमाग में किस मोड पर चीजें चल रही होती हैं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ या सिर्फ चार्ली चैप्लिन की तरह तस्वीरें और आइडियाज इमेजिन कर रहे होते हैं। तो भाई हमें कॉल करें 4434377 पर और चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं 6622107 पर। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, आपको सोचने पर थोड़ा सा सोचें, आप सोचें, सोचने में मजबूर करके जा रही हूँ। एंजॉय करें अपनी सोच को और फिर जब सोच चुके तो मुझे 4434377 पर कॉल करें या 6622107 पर मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आंखों के सागर पे चलते हैं। भाई मुझे ये गाना बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था, या तो फ्यूजन का गाना, ओ भाई जब ये निकला था ना गाना, तबाही मचाई थी इस गाने ने, तबाही। फ्यूजन बैंड वॉज ऑसम। आंखों के सागर, वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर करें, दिल से फील करें। आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्क के मामले में आजमाया न जाए तो तीन काम कीजिए। नंबर एक, जो कुछ मिल रहा है उसे महज अल्लाह की अता समझिए, ना कि अपनी काबिलियत का नतीजा, और साथ ही अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिए। नंबर दो, जिनको कम या नफातुला रिस्क मिल रहा है उन्हें हकीर न जानिए, और ना उन लोगों से असर कीजिए जिन्हें छपर पाड़ रिस्क मैसर है। ये सब राजिक की अपनी तकसीम है और उसके भेद वही जानता है। और नंबर तीन, जितना हो सके अपने रिस्क में दूसरों को शामिल कीजिए। ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम शामिल कीजिए, और याद रखिए कि सबसे ज्यादा हक रहम के रिश्तों यानी बहन भाइयों का है।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
5: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा, और इस वक्त FM 107 की घड़ी में कितने बज रहे हैं भाई? 11:47 हो रहे हैं। हाँ, 11:47 हो गए, 46 बोलने लगी थी लेकिन उसी वक्त 47 हो गए। तो भाई इस वक्त 11:47 हो रहे हैं। क्या हो गया मुझे, क्या हो गया है? वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अच्छा भाई, 11:47 हो रहे हैं ऑन द क्लॉक और आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन FM 107। और भाई आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपने मुझे ये बताना है कि आप किस किस्म के दिमाग वाले शख्स हैं। आप दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनके दिमाग में जब वो कोई सोच आती है या जब कोई आप कह लें कोई इवेंट, कोई कुछ भी, कोई प्लानिंग चल रही होती है तो वो ऑडियो और वीडियो दोनों में चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सोचा कि आपने कल एक मीटिंग पे जाना है या शाम को आपने एक मीटिंग पे जाना है। अब आपके दिमाग में सेक्रेटरी भी आएगा, आपके दिमाग में बॉस भी आएंगे, विजुअल में आ रहे होंगे, और फिर उसी के साथ साथ आपके दिमाग में ऑडियो कमेंट्री भी चल रही होगी।

0: कि भाई अच्छा जो असिस्टेंट है वो ये बात करेगी या जब मैं जाऊंगा तो फलाना बंदा ये बात करेगा और मेरा बॉस ये बात करेगा और यू कैन एक्चुअली हेयर देम इन योर माइंड इन दैट ऑडियो थिंग. दूसरे किस्म के लोग ये होते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ तस्वीरें आती हैं, सिर्फ इमेजेस. उनका दिमाग ना बिल्कुल चार्ली चैप्लिन माइम वाले मोड में चल रहा होता है, उनको सिर्फ तस्वीरें आती हैं. तो आप कौन से वाले मोड पर काम करते हैं, आपका दिमाग कौन से वाले मोड पर काम करता है? दोनों में से एक ऑप्शन आपने मुझे बताना है. मैसेज करें 666-22107 पर, 666-22107 पर. चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल. और जिस जिसको अभी तक मेरा सवाल समझ में नहीं आया तो वो थोड़ा क्लियरली सुन लो ना, ऑडियो बढ़ाओ ना, अपना ऑडियो बढ़ाओ, दिमाग का नहीं इधर ये रेडियो का, सुनो समझो. दो ऑप्शंस हैं, कैसी सोच आती है आपको, विद ऑडियो एंड वीडियो आती है या ओनली विद वीडियो आती है, समझ रहे हो? इन शॉर्ट भाई मुझे तो ऑडियो वीडियो दोनों चलता है, दोनों दोनों. मैं तभी कहती हूँ मेरा दिमाग बहुत बिजी रहता है. मेरा दिमाग ना बहुत बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. अच्छा मुदस्सिर भाई ने मुझे एक मैसेज किया बड़ा कंसर्निंग सा. मुदस्सिर भाई कहते हैं मेरे कानों में ना बहुत शोर होता है 24 घंटे, मुझे ये तंग करती है चीज़ और मुझे बहुत तकलीफ होती है इससे. मुदस्सिर भाई ऑन अ सीरियस नोट, मजाक की बात नहीं है, इसको ENT वालों को चेक कराएं. एक कंडीशन होती है कान की जिसके अंदर ना कान का लिक्विड का इशू हो जाता है, उसकी वजह से भी बजिंग की और आप कह लेंगे बेलिंग की साउंड आती है बहुत ही भयानक किस्म की, वो बहुत तकलीफ दे चीज़ होती है, उसको चेक कराएं ENT वालों के पास, स्पेशलिस्ट के जनरल फिजिशियन के पास जाएं, जनरल फिजिशियन आपको ENT वालों के पास भेजेगा और वहां से प्रॉपर चेकअप कराएं, इसका ट्रीटमेंट होता है. एंड जोक्स अपार्ट, ठीक है, और एक कॉलर की तरफ चलते हैं. कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम
0: जी. कौन है हमारे साथ और कैसे हैं आप? वैसे मुझे तो पता है कौन है.
1: कौन है हमारे साथ? लस्सी वाला.
0: कौन सा वाला, कौन सा वाला?
1: लस्सी
0: वाला. अरे भाई,
1: अरे भाई,
0: अरे भाई आपका तो नाम ही मैंने वही रख दिया, अरे भाई लस्सी वाले. ये सेट है, अरे भाई ये सेट है, अरे भाई लस्सी वाले,
1: गोभी के फूल वाले.
0: हाँ बस सही है, अब हम एक दूसरे को ऐसे याद रखेंगे, सफा गोभी के फूल वाली, अरे भाई लस्सी वाले. ये सही है, ये अच्छा है, ये अच्छा हो गया, बस सही हो गया. अब मैं मोबाइल में भी आपका नाम ऐसे ही सेव करती हूँ, आरिफ भाई लस्सी वाले. फिर सवा को ये कहेंगे. चले आरिफ भाई, ये बताएं वीकेंड कैसा गुजरा?
1: वीकेंड तो नहीं था, तो काम सफल, मैंने कल छुट्टी मारी थी.
0: अरे वाह,
1: थोड़ा टैक्स ज्यादा था इसलिए कल मैंने छुट्टी मारी.
0: अल्लाह ताला आपको शिफा दे. वैसे एक बात है, एक बात है, छुट्टी मारने का ना अपना ही मजा होता है.
1: तो होता है
0: छुट्टी मारने का अपना ही मजा होता है. अरे भाई जिंदगी में और चाहिए क्या, बस हमें नींद,
1: थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा प्यार.
0: देखिए जब पैसे की बात करते हैं ना, थोड़ा सा नहीं बोलते, पैसे की बात करते हैं, कहते हैं बहुत सारा, बहुत सारा. डॉलरों में, डॉलरों में
1: बहुत सारा पैसा, बहुत सारा बोलेंगे तो
0: नहीं. देखिए ना, बहुत सारा बोलेंगे तो थोड़ा सा आएगा तो मामला सेट हो जाएगा, थोड़ा सा बोलेंगे तो और भी थोड़ा सा आएगा ना.
1: ज्यादा ज्यादा सब.
0: हाँ हाँ, ये बात
1: सब में ज्यादा ज्यादा मैं फिर से डाल दे रहा.
0: हाँ ठीक है ठीक है, सब सब सा, ज्यादा सारी नींद, ज्यादा सारा पैसा, ज्यादा सारा सुकून. भाई देखे मामला ये है कि अल्लाह ताला की जात देखकर मांगे, अपने हम लोग अपनी औकात देखकर नहीं, अल्लाह ताला की जात देखकर मांगे तो वो अल्लाह ताला देने वाला है भाई,
1: देने वाला तो
0: वो देने वाला है, बस
1: देने वाला तो उसके पास कमी क्या है. उसके
0: हाँ,
1: पास
0: बस ये बात होनी चाहिए दिमाग में. अच्छा ये तो बताएं आरिफ भाई,
1: थोड़ा सा
0: काट दी. हाँ ज्यादा ज्यादा ज्यादा ज्यादा. हाँ ज्यादा ज्यादा. आरिफ भाई ये तो बताएं, ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं कि ये जो दिमागी ख्याली पुलाव का जो मामला है, ये आपके दिमाग में कैसे पकता है? सिर्फ ऑडियो नजर आता है आपको या नहीं, सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है?
1: बहुत अच्छा करता हूं.
0: अच्छा मतलब आपको ऑडियो और वीडियो दोनों में सोच चल रही होती है?
1: हाँ, मैं एकदम ऑडियो थोड़ा क्लियर भी नहीं होता ना, वीडियो एकदम क्लियर चलता है.
0: अच्छा मेरे दिमाग में ऑडियो बिल्कुल क्लियर चलता है भाई, मतलब मैं बर्तन भी धो रही हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक सिनेरियो आएगा तो वो बिल्कुल क्लियर कट चल रहा होगा और मैं अपने आप से बातें करने लग जाऊंगी इतनी शिद्दत से कि सामने वाला खुदा ना खास्ता अगर मुझे देख ले तो कहेगा कि ये क्या अपने आप से बातें कर रही है, इसको डॉक्टर की जरूरत है.
1: इसको रांची लेके जाना चाहिए.

0: ना सामने वाला डर जाए कि क्या हो गया. मैं कहा मैं ऑडियो ऐसा चलता है भाई, वीडियो चलता है लेकिन वीडियो इतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं देती वीडियो पर, लेकिन चलता है.
1: जो मेरी इमेजिनेशन है ना वो बहुत अच्छी है मेरे मेरे हिसाब से.
0: हाँ
1: उसके भी मेरी इमेजिनेशन है ना.
0: सही. अच्छा कुछ लोगों का ये सिनेरियो है कि कुछ लोग कहते हैं हमें आवाज नहीं, हम आवाज से नहीं सोचते. बड़े मतलब दिलचस्पी की बात है. मैं हैरान होती हूँ. मुझे शायद कोई कॉलर में से कोई एक आधा ऐसा मिल जाए तो मैं सिर्फ तजस्सुस से मुझे ऐसे लोगों से बात करने का जिनको ऑडियो नहीं समझ में आती दिमाग में.
1: अच्छा विजुअल क्लियर नहीं होगा वो चलेगा, पर वोकल तो एकदम क्लियर होगा.
0: हाँ ऑडियो. अच्छा ऑडियो से याद आया, आज हम पता है गेम खेल रहे हैं और हमारे गेम का मुद्दा पता है क्या है. गेम हमारी कुछ ऐसी है कि अगर ऑडियो इतना ही अच्छा है तो चलो से आजमाते हैं. ठीक है मैं आपको एक बड़ा रैंडम सा डेली यूज का कोई एक वर्ड दूंगी. ठीक है
1: okay.
0: आपने एक मिनट तक उसके ऊपर बात करनी है.
1: ये तो मेरे से स्कूल में नहीं हो पाया, टीचर नहीं करा पाया मेरे.
0: अरे कुछ भी बोलेंगे, बस ये है कि फ्लुएंसी रखनी है. कुछ भी बोलो भाई लेकिन फ्लुएंसी रखो. देखते हैं आप कितनी देर तक बात कर लेते हैं. ठीक है और बड़ा रैंडम सा वर्ड डेली लाइफ का. ठीक है लिखना थोड़ी है भाई, लिखना थोड़ी है, बोलना है. बोलने को कुछ
1: डर क्या की जीत है
0: ये बात डर के आगे जीत है. मैंने पिछले दिनों एक रील देखी, मुझे किसी ने दिखाई तो उसके अंदर वो कहता डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे क्या है, डर के आगे और ज्यादा डर है. हाँ तो एक काम करते हैं एक मिनट का टाइम शुरू करते हैं. ठीक है और मैं आपको एक वर्ड देने की कोशिश करती हूँ. आपको क्या वर्ड दिया जाए, रैंडम सा, रैंडम सा. चले आप पहले प्लेयर है ना तो आपको क्या लगता है आप किस चीज के बारे में ज्यादा बात कर पाएंगे, या मैं अपनी तरफ से चूज करूँ.
1: आप ही बताइए मैं क्या चूज करूँ.
0: चले ठीक है मैं आपको एक वर्ड देती
1: हूँ और नहीं बोल पाऊंगा तो वो और ज्यादा बेइज्जती है.
0: चले चले चले एक एक एक रैंडम वर्ड आलू. आलू के ऊपर आपने बात करनी है. ठीक है एक मिनट तक. देखिए आपको आरजे बनने का मौका मिल रहा है, आरजे बनने का मौका मिल रहा है. आलू, आलू के ऊपर बात करो भाई. ठीक है एक मिनट का टाइम आपको मिलता है. 1 2 3 स्टार्ट.
1: ओके आलू बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में.
0: हाँ.
1: आलू से आलू पराठा बनता है. हाँ. आलू से आलू सब्जी बनती.
0: हाँ.
1: है
0: ठीक है.
1: ऐसे ऐसे रैंडम है ना.
0: हाँ, हाँ, रैंडम रैंडम.
1: ओके ओके आलू के साथ गोभी बहुत अच्छा लगता है.
0: हाँ.
1: आलू आलू के साथ कुछ भी बना सकते हैं आप.
0: ठीक है
1: चिकन में डाल सकते हैं, बिरयानी में डाल. हाँ. सकते हैं. मेरे को
0: आगे आगे आगे एक मिनट है. आरजे आरजे आरजे आरजे एक मिनट. आलू
1: मेरे को हंसना नहीं आता.
0: हाँ, आलू आलू
1: आलू आलू के साथ तो क्या हो सकता है, आलू का भरता अच्छा लगता है.
0: हाँ ठीक है
1: आलू का चिप्स बना सकते हैं जो सब खाते हैं. बस
0: भाई
1: हो गया ना
0: दो 45 सेकंड हुआ है भाई. नहीं नहीं हो पाया. चलो चलो ट्राई किया, ट्राई किया हमने, ट्राई किया. अब समझ में आया, अब समझ में आया इतना होता है लेकिन गुड एफर्ट.
1: रील में एक मिनट कितना जल्दी गुजरता है मालूम है. बोलने का आया तो एक मिनट कितना पहाड़ लग रहा है.
0: लेकिन एक बात है आप तो मास्टर शेफ बन गए भाई, मास्टर शेफ. किसी को आज ये पूछना था ना कि खाने में क्या बनाना है तो उसने आरिफ भाई से आइडिया ले ही लिया होगा.
1: एक एक रील थी याद है मेरे को, मैंने थोड़ी दिन पहले रील देखी थी, गजब वायरल हुआ था वो भी. खाने में क्या है, कुछ नहीं है आलू बना देता हूँ. तो कुछ नहीं है आलू डाल देता हूँ.
0: सही है
1: बहुत ही वायरल हुआ.
0: हाँ आलू का पता है, आलू जो है ना वो सौतेली सब्जी है. जिसको
1: आलू
0: किसी के साथ भी वो जो आजकल बड़ी बेवफाई वाली सब्जी वाली रीलें चल रही है ना, आलू किसी के साथ भी सेट हो जाता है. दिल फेंक है आलू, दिल फेंक,
1: दिल फेंक. हाँ
0: चले भाई
1: सबको अपना मान के चल रहा है.
0: चले भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आलू के अलावा किसी और वर्ड के ऊपर. ठीक है चलो जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज.
1: एक एक एक जी जी मैंने को शेयर करना था
0: जी,
1: खुशी की बात है.
0: हाँ जी, हाँ जी माशाल्लाह.
1: मैं वो अभी इंस्टाग्राम पे जो अभी वो फाइनल हुआ ना फीफा का, उस पे कितने गिवअवे चला रहे थे बहुत सारे.
0: सही
1: मैं ज्वेलरी शॉप का भी गिव आया, मैंने उसमें कमेंट किया था कि स्पेन फाइनल जीतेगा.
0: सही
1: और वो लोग गोल्ड कॉइन दे रहे थे.

0: सही,
1: तो उसमें मैं विनर बन चुका हूँ, पर अभी मिला नहीं।
0: माशाल्लाह,
1: अभी उन्होंने मैसेज किया था मेरे को, तो मैंने अपना डिटेल्स चेंज
0: कर। माशाल्लाह, आरिफ भाई क्या कहा था, पैसा मांगो ना तो ज्यादा मांगना,
1: ज्यादा मांगना।
0: कौन सा वक्त कबूलियत का होता है कुछ पता नहीं, तो अच्छा मांगो, ढेर मांगो, ठीक है?
1: ओके,
0: माशाल्लाह, मुबारक मुबारक मबरूक। और ये बस ये टेस्ट कर लीजिएगा, ये चेक कर लीजिएगा कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑथेंटिक जो है वो अकाउंट था कि नहीं था, ठीक है?
1: ऑथेंटिक है, क्यों? उसने उन्होंने कुछ नहीं मांगा, फीस उस कुछ नहीं है, बस
0: उन्होंने बोला
1: है कि अपना डिटेल दे दो, तो मैंने भेज दिया था।
0: चलें भाई, अपने अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मबरूक मबरूक अल्फ मबरूक, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह,
0: तो भाई इंसानी दिमाग को ये समझना चाहिए कि देखो चादर देख कर नहीं मांगो, ये एक्सपेक्ट करो कि चादर बहुत बड़ी है, जिससे मांग रहे हो उसकी माशाल्लाह से सुभानअल्लाह से जात बहुत बड़ी, वो देने वाला है, देगा, मांगो मांगो, जितना मांगना है मांगो उससे, वो देगा। चलो भाई एक और कॉलर लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मेरे भाई, कौन बात कर रहा है?
2: हमजा
0: भाई, मैं बोलने वाली थी, ऐसा लग रहा है हमजा भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: ये बताएं वीकेंड पे, अच्छा मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा है, वीकेंड पे कौन कहाँ गया? क्योंकि मुझसे पूछा गया था वीकेंड पे कहाँ जाया जाए, मैंने कहा चुप करके घर पे बैठो। आप लोग वीकेंड पे कहाँ गए थे?
2: मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पूरा दिन पूरा कतर घूमता हूँ।
0: अच्छा ठीक है, ओके, तो वीकेंड पे?
2: नहीं, मैं हमारा वीकेंड नहीं होता ना मैं।
0: अच्छा, आपकी जॉब ऐसी वीकेंड नहीं होता, चले अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखें ऐसे पॉजिटिव, पता है एक पॉजिटिव बात बोलती हूँ कि मेहनत के बाद इंसान जब सख्त मेहनत करता है ना, तो अल्लाह ताला उसे डबल ट्रिपल अजर देता है उसका।
2: हकीकत बात है।
0: तो अभी मेहनत कर लें, क्योंकि जो लोग इस उम्र के इस हिस्से में मेहनत नहीं करते ना, फिर वो आगे जाके बहुत भुगतते हैं।
2: तो आगे जाके बहुत परेशानियां देखनी पड़ती हैं।
0: तो या परेशानी अभी भुगत लो जब हड्डियों में जान है, या तब भुगतना जब हड्डियों में जान नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हड्डियां सलामत हैं, जान है तो जहान है, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ये बताएं कि आपके दिमाग में क्या चलता है और कैसे चलता है?
2: मैं आपको ये बता रहा था कि पहले एक जना मिसाल चल रही होती थी कि मर्द और घोड़ा जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता।
0: ये भी एक मिसाल है,
2: मीन्स के काम वगैरह करने के मामले में बूढ़े नहीं होते।
0: सही, चलें ठीक है। ये हम ये किसकी दादी अम्मा ने कहा था?
2: वल्लाह आलम किसकी दादी अम्मा ने कहा था, मिला बड़े
0: से। सही। तो
2: अरे आपका सवाल का जो जवाब है, मैं ना एक अलग ही किस्म का बंदा हूँ।
0: सही।
2: और मेरे फोन में जो है ना वो पेपर वर्क चल रहा होता है।
0: पेपर वर्क मतलब मुझे थोड़ा समझाएं, थोड़ा सा
2: मीन्स के ऐसा होता है ना, ऑडियो में मेरे पास सीन चल रहा होता है ना, वीडियो में चल रहा होता है मेरे पास सीन, ये चल रहा होता है की हाँ ये जो है वो मैं जी सोच के बैठा होता हूँ, जिसका हम लोग नोट डाउन नहीं करते पेपर्स पर।
0: और ये टू डू लिस्ट
2: जी,
0: टू डू लिस्ट कहते हैं ना उसे हम लोग, कि वो एक
2: मेरा वो काम चल रहा होता है, अच्छा ये काम हो गया, ये मैंने लिस्ट कर दिया, अच्छा इसके बाद ये वाला काम होना है तो इसके लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, फलां जगह है वो लिस्ट कर दी, ठीक है फलां जगह है वो लिस्ट कर दी। या
0: अच्छा ये किस्म के वीडियो टाइप में ही आ जाता है ना, कि आपको एक लिस्ट दिखाई देती है अपने दिमाग में।
2: हाँ, ये कह सकते हैं।
0: हाँ, ऑडियो नहीं आता आपको? अरे भाई सोच में मजा कैसे आता है ऑडियो के बगैर। मैं तो जब तक छह बातें अपने आप से ना कर लूं मुझे तो सुकून ना आता।
2: बाल सफेद हो जाते हैं,
0: तभी तो मेरे सफेद है, तभी तो मेरे बाल सफेद है, इतना सोच नहीं वैसे। अच्छा मतलब आपको वाकई में कोई ऑडियो सुनाई नहीं देता कि आप अपने आप से कोई बात कर रहे हो, या कोई ऑडियो चल रहा पीछे, अच्छा ये वाला काम खत्म कर लिया, अच्छा ये खत्म हो गया, अच्छा कुछ भी नहीं, बस एक लिस्ट आती है यूं करके वीडियो में।
2: क्या होता है कि मैं वो वाला काम है कि तवक्कल अल्लाह चल रहा हूँ बस, ठीक है जो होगा देखी जाएगी।
0: अच्छा,
2: बोलती है यार आप जना इंस्टेंट इनिशिएट लेते हो, यानी कि उसी टाइम आपने ऐसा नहीं किया करो, कम से कम कुछ ना कुछ प्लान रखा करो।
0: सही।
2: मैं उसको बोलता हूँ कि यार वो ऊपर वाली जात बैठी हुई ना वो बहुत बेहतर करती है। ठीक है, उसने हमारे लिए
0: जिसको ये चीज आ जाए ना

0: हैंडल करना, तो भाई वो तो चीता निकला जिसको ये चीज अल्लाह तवक्कल।
1: मेरी तकरीबन 27 प्लस एज है
0: माशाल्लाह।
1: तो अभी तक जितने भी फैसले हैं ना मेरे सिर्फ यही रहे कि ठीक है एट द टाइम हुआ है, ठीक है सही है ओके बस चलो जाना है कहीं उसी वक्त प्रोग्राम बना है चलो जी ठीक है। पीछे अगर किसी को बताना तो फोन कर दिया हाँ भाई मैं जा रहा हूँ मैं इतनी देर बाद आ जाऊंगा।
0: सही सही सही सही। अच्छा ये एक फैक्ट है कि कुछ वैसे अगर अगर थॉरली देखा जाए तो एक एज के बाद ना इंसान को फिर ये चीज जिसको नहीं समझ में आती वो बड़े खसारे में रहता है, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है तो वो बेहतर से बेहतरीन होता चलाता है कि बिल्कुल ऐसे हो जाओ जिंदगी में, बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि जैसे टूटा हुआ पत्ता होता है ना शाख से वो दरिया में बहरा होता है। क्योंकि एक प्लानिंग आपकी होती है, एक प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है, प्लानिंग वही काम करेगी जो अल्लाह ताला की है।
1: बिल्कुल देखिए हमें शुरू से ये भी बताया गया ना कि अल्लाह पाक जो है वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: कब बुरा चाहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मामला ये कि अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, तो इंसान परेशान ही वही होता है जिसको तवक्कल समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल राय है। अच्छा ये तो बताएं गेम खेलेंगे, गेम गेम गेम
1: गेम खेल लेते हैं। गेम है क्या आज आपका?
0: भाई आज आप हमारा इस हफ्ते का गेम बड़ा ही मजे का है। लोग मुझे इतने सालों से बोलते आते हैं, जब कोई मिलता है ना, अगर किसी को पता चल जाए ना, मैं आरजी हूँ वैसे मैं बताती नहीं लोगों को, लेकिन जब किसी को पता चल जाए ना तो लोग कहते हैं अच्छा आपका तो काम बड़ा ही मजे का होगा, बड़ा ही आसान होगा आपके लिए। तो मुझे जो है ना एकदम से पता नहीं क्या, मुझे समझ में आता मैं कौन सी दीवार पे सर मारूं। लोगों को लगता है एक मिनट के लिए बात करना बड़ा आसान काम होता है, और लॉजिकल बात करना, लॉजिकल बात करना, ये नहीं कि आपने कुछ भी, क्योंकि जब आपको चार लोग सुन रहे होते हैं ना तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजन और भी दुगना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है मेरे ख्याल से।
1: लोगों के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हम नॉर्मल साइकोलॉजी के हिसाब से वो कहा जाता है ना कि इंसान सारों के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकता, यही बात है।
0: हाँ।
1: लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान अकेले में अपने आप से बात नहीं कर सकता जल्दी, क्योंकि अपने आप से बात करने के लिए बहुत बहुत जो है ना वो समझ लें कि कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए जिसके लिए अक्सर वो, हाँ सीरियसली, क्योंकि जिसको भी अक्सर अगर आपने सुना होगा डिबेट डिबेट के लिए अगर किसी को के लिए बोला ना तो उनको बोलते हैं जी शीशे में अपने आप को देख के बात करो।
0: सही सही, बहुत मुश्किल काम है,
1: बात नहीं कर सकते।
0: सही ये बात है, ये बात है।
1: टोटली 5 मिनट भी आप अपने आप को शीशे में देख के आप अपने आप से बात नहीं कर सकते।
0: हाँ लेकिन हम 5 मिनट की बात नहीं करवा रहे ना, हम सिर्फ 1 मिनट की बात कह रहे हैं। मैं आपको एक रैंडम वर्ड दूंगी ठीक है, और आपने उस रैंडम वर्ड के ऊपर 1 मिनट तक बात करनी है ठीक है। अभी हमारे पास जो प्लेयर होकर गए हैं आरिफ भाई, उन्होंने तकरीबन 40 सेकंड बात की है, और कुछ भी बोले, कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसा सोबर डिसेंट जो आपको पता हो रेडियो कंटेंट में आ सकता है। आपको यूं समझ लें कि 1 मिनट के लिए मौका मिला है आरजे बनने का।
1: नहीं ये आरजों का काम नहीं है।
0: चले अपने अपने दिल से, अपने दिल से इस एक वर्ड के ऊपर आपने 1 मिनट अच्छे से बोलना है ठीक है।
1: ओके
0: ये मद्देनजर रखते हुए कि आप ऑन एयर हैं और आपने तमीज के दायरे में रहते हैं। समझ रहे ना, एक वर्ड के ऊपर आपने अच्छे से बोलना है ठीक है।
1: जब भी तमीज के दायरे में रहते हैं
0: भरपूर कोशिश है। चले भाई
1: आप तरफ से किसी का दिल ना दुखे।
0: चले ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये इंसान को बात करने से पहले ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए। चले आपका 1 मिनट शुरू होता है नाउ, एंड योर वर्ड इज चॉकलेट।
1: चॉकलेट, चॉकलेट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि चॉकलेट शुरू में तो बहुत अच्छी लगती थी, फिर एक कहानी पढ़ी जिसमें डाइजेस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, और जो है उसमें पढ़ा तो उसमें एक बच्ची ने अपने एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि चॉकलेट जो है उसको हम कड़वी टॉफी कहते थे।
0: सही,
1: क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा डार्क टेस्ट जो होता है या कड़वाहट महसूस है, तो खाने के 5 सेकंड बाद आपका मुंह जब कड़वा होता है ठीक है। तो उसने अपनी कहानी एक्सप्लेन की हुई थी, कहते हैं कि मुझे अल्लाह पाक ने बस बचाया, मैं आगे थी किसी के बहकावे में, तो उसने मुझे सबसे पहले ना चॉकलेट दी।
0: सही।
1: और मेरे चॉकलेट को ना पसंद करना कड़वी टॉफी कहने के उस बहकाव पे, तो मैंने वो चॉकलेट उससे लेकर रख तो ली बट मैंने खाई नहीं।
0: सही।
1: इसके बहाव पे मैं बच गई, और उसके उस दिनों में बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिन पर यही पता था कि चॉकलेट के अंदर जो है वो ऐसी चीजें मिला के जिससे बच्चों को अगवा

0: करेगा।
1: अरे भाई एक मिनट हो गया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव बात थी ये, मजाक के अलावा आई लाइक इट।
0: हकीकतन पड़ी थी मुझे उसके बाद, मैं चॉकलेट को रियलाइज किया था कि वाकई यार ये तो कड़वी होती है।
1: अच्छा
0: कड़वी फील होती है।
1: अच्छा आपने पहली चीज तो ये कि एक मिनट पूरा कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और आपने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और एक एक एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं भी आपको ये बता दूं कि चॉकलेट जो है ना वो एक्चुअली में स्वीट नहीं होती, चॉकलेट बिल्कुल ऐसे टेस्ट की होती है जैसे कॉफ़ी होती है, कड़वी कड़वी। और एक ज़माने में इसको एज अ कॉफ़ी ही, जैसे वो लिक्विड मशरूब होता है ना वैसे उसको इस्तेमाल किया जाता था। बाद में यूरोप से लोग आए, कॉफ़ी बीन्स लेकर गए, उन्होंने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो कॉफ़ी को मिल्क के साथ चीनी के साथ मिलाकर दिया जाने लगा। लेकिन हाँ एक्चुअल में चॉकलेट का टेस्ट वो कोका बीन्स कहते हैं उन्हें, कोका बीन्स, वो बीन्स से बनती है, कोका बीन्स बनती है। तो भाई वेरी गुड, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी और ये भी बहुत एक इन्फॉर्मेटिव अच्छी बात थी कि हाँ बच्चों को बहलाने पुसाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट्स दी जाती हैं। That is right. It was a very informative thing. Impressive, impressive, bhai. Nice, nice, impressive, bhai. Hamza bhai, set chal rahe ho. Yaad hai bachpan ki kahaniyan?
0: Haan, but main se badi do sisters hai, mashallah. Allah paak khush rakhe unka apne ghar pe. To wo jo hai na, jaise baat hai jab aapse bada koi hota hai na to wo aapse aage life mein chal raha hota
1: hai. Haan.
0: To
1: wo maine kahaniyan sunati hai na.
0: तो मेरे को बस वैसे ही शौक चढ़ा, मैं पढ़ता हूँ तो दो डाइजेस्ट पढ़े, तीसरी जो कहानी पढ़ी थी ना मैंने डाइजेस्ट की वो थी हॉरर कहानी।
1: सही
0: यकीन करें उसका ऐसा डर बैठा था ना कि मैंने उसके बाद अभी तक एक तो डाइजेस्ट को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। ये नहीं अब तो घर से निकल गया, लेकिन उन दिनों में मैं अपने घर के सेकंड फ्लोर पे भी, यानी कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर था हमारे पास, मैं अकेला फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था ना सेकंड फ्लोर पे जा रहा था, और मेरे वाले साथ इस बात को गुस्सा करते थे मुझ पर क्यों इतना डरता है।
1: अच्छा मजे की बात ये डाइजेस्ट मैंने भी पढ़े, मुख्तलिफ नामों के डाइजेस्ट हैं और बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत अच्छे, अभी भी मिलते हैं डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का जमाना अभी भी है, बस पढ़ने वाले कम हो गए। चले भाई हमजा भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रास्ते रोशन करे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अरे भाई अच्छा मजे के मजाक के अलावा अच्छा कंटेंट था हमजा भाई का, गुड कंटेंट, नाइस गुड कंटेंट, बन सकते हैं बच्चा आगे चलकर अच्छे काम करेगा। अच्छा एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, मैसेजेस भी आए हुए, मैसेजेस भी पढ़ती हूँ लेकिन पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ?
2: अजी
1: मेरे भाई मुझे आवाज नहीं आ रही।
2: अजू, अजू
1: हाँ अजू भाई कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अजू भाई ये तो बताएं इतने दिनों से कहाँ गुम थे?
2: रिपीट।
1: मैं तो जो हूँ ना वो फाइनल के बाद आपका वेट कर रही थी कॉल का। मेरे दिमाग में ऑडियो और वीडियो दोनों चल रहा था अजू भाई।
2: इसलिए मैं आपको फोन नहीं किया।
1: और मुझे ऐसा लग रहा था कि अजू भाई ने तभी फोन नहीं किया क्योंकि अजू भाई ने कहना है बस इसने जो है ना मेरी क्लास लेनी है, मुझे तंग करना है इसने। बट द थिंग इज मे द बेस्ट प्लेयर्स विन, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वन।
2: वेरी गुड रिटायरमेंट।
1: बट द मैच वाज वेरी स्लो, इट वाज स्लो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट डोंट यू थिंक, जस्ट नॉट टू ब्रैग अबाउट इट और से समथिंग अबाउट अगेंस्ट एनी टीम।
2: Honestly, बात करेगा तो अर्जेंटीना वाज प्ले वेरी ब्रूटल।
1: अर्जेंटीना ने ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ाई करने के लिए खेल रहे हैं, वो जीतने के लिए नहीं खेल रहे वो, एंड देवर पता नहीं क्यों। आपने थर्ड पोजीशन वाला मैच देखा था इंग्लैंड का?
2: इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस।
1: जस्ट एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर हम रखकर देखें, रिगार्डलेस टू विच कंट्री यू सपोर्ट इन स्पोर्ट्स, आपको क्या लग रहा था ऑनेस्ट ओपिनियन कि ये बताएं जरा कि दैट थर्ड प्लेस मैच वाज मोर एनर्जेटिक एंड गुड या आपको लग रहा था कि फाइनल वाला ज्यादा अच्छा था?
2: As you say, the third place match is very good.
1: The third place was very good. It was very good match, yeah. Honestly speaking. चलें जो हो गया,
2: it was very good.
1: जो हो गया जो भाई वो हो गया। जो हो गया वो हो गया, क्या कर सकते हैं, कौन सा ट्रॉफी हमें मिली है। हम थोड़ी घर में रखकर बैठे हुए।

0: दुख नहीं करने का जुबाई, दिस ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. ओके
1: बट नेक्स्ट टाइम मेसी नहीं आएगा ना.
0: मेसी नहीं आएगा ये और बात है. अच्छा मेसी का मुझे आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मेसी बट आई फेल्ट बैड फॉर हिम बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर रिगार्डलेस टू द कॉन्ट्रोवर्सीज ही वॉज हैविंग. ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर. चले देखते हैं क्या होता है आगे, क्या पता कोई अच्छा और प्लेयर आए. अच्छा भाई अच्छा ये बताएं जरा, I'm very curious to know when you think how do things appear in your mind, with audio and video or only in video or only in audio, how?
1: मेरे ख्याल से I'm not listening audio, I'm not listening video.
0: सिर्फ audio आता है दिमाग.
1: Reading, no, I'm reading books only.
0: हाँ books आती हैं आपके दिमाग में. मतलब for example let's create a scenario.
1: Audio, serious scenario. I was listening audio. Sometimes my mind goes to another way. Even if I'm watching video, so video में कोई अलग चीज आएगा तो मैं उसका अंदर चला जाएगा. But in reading books, मेरा mind वो book के अंदर रहता है, वो topic के अंदर रहता है. कोई disturbance feel मेरे को नहीं होता. क्योंकि मैं बचपन से I was reading so many books. Even in my cupboard, I was collected more than 300-400 books.
0: Wow.
1: So, for my personal think, मेरे को अच्छा लग रहा है, by reading a book is very good for me.
0: नहीं, देखिए, एक तो होता है ना, एक let's say you're reading a book. Now, when I read a book, I can actually visualize the content written in it. That once upon a time, there was this, and I can actually in my brain visualize the whole thing with audio, like what did the hero said or what did the what happened. So वो एक जैसे for example car crash भी हो रहा है तो मुझे वो car crash की आवाज आएगी दिमाग में.
1: No, the visual I can play with the video only, not in audio.
0: मतलब वो आपको दिमाग में सिर्फ ऑडियो आता है या ऑडियो वीडियो दोनों आता है?
1: वीडियो आता है.
0: वीडियो आता है.
1: ऑडियो मत, वीडियो आता है. ऑडियो आई एम रीडिंग सो
0: ओनली ऑडियो. हां जैसे वो टॉम एंड जेरी का होता है सीन, ऑडियो नहीं होता उसके अंदर. हां अच्छा मुझे ऐसा नहीं होता, दैट्स व्हाई टॉम एंड जेरी. मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी दैट पीपल कैन नॉट हियर एनीथिंग इन देयर माइंड. And that's why I think your personality, when I talk to you, it feels like you're a very calm person. It feels so when I talk to you. Very oriented and calm person. It feels like. So, हाँ शायद.
1: मेरा दिमाग उड़ गया तो मैं पूरा तोड़ पड़ देगा.
0: अच्छा ये अपने आपको मैनेज कर लेते हैं. जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं कि उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए. ठीक है, मेरे जैसे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी इतना शोर होता है. माय वॉल्यूम ऑडियो इज टू मच हाई.
1: बचपन से मेरा बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत चीज को तोड़ बोलता है.
0: चलो भाई,
1: मेरे को थोड़ा गुस्सा आएगा तो मैं 5 मिनट बैठेगा, उसका बारे में सोचेगा, फिर मेरा खुद के हिसाब से मैं काम हो जाएगा.
0: सो यू मैनेज योरसेल्फ बाय योरसेल्फ.
1: डेफिनेटली
0: गुड. Very good.
1: I don't want to anyone help. I just manage myself. I just leave me 5 minutes.
0: This is a life saving skill. Like apne liye bhi aur dusron ke liye bhi.
1: Plant mein bhi, family mein bhi, koi mera upar guzar kar raha to main, please give me
0: 5 minutes.
1: Main bar jayega.
0: हाँ, this happens to me also.
1: थोड़ा सोच के फिर वापस आके बात करेगा. Very calm.
0: If I don't leave the place or if the person does not leave the place, दिमाग शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है. अच्छा भाई, अज्जू भाई गेम खेलेंगे, 1 मिनट ओनली, 1 मिनट. ठीक है. नाउ द गेम इज दैट आई विल थ्रो अ वर्ड, आई विल गिव यू अ वर्ड, ओके, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट फॉर 1 मिनट.
1: ओके
0: हिंदी में बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं. ठीक है. ओके नाउ योर वर्ड इज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एंड योर वर्ड इज रेसिंग कार.
1: Racing car. Okay, racing cars. I like Mazda 787B. It's a very good racing car.
0: Mm-hmm.
1: One of the good design model.

0: for make from Chinese company Mazda. Actually, the Mazda engine is a rotary engine. And the last rotary engine won a World Cup.
1: Okay.
0: So it's a milestone achievement for the Japanese motor company.
1: Okay.
0: And the racing cars, the most expensive racing cars is Formula One racing cars. Like it's very big companies only can participate, like Ferrari, Red Bull, Mercedes Benz, like that. So they are making different type of engines, like V6, V8, V12, and the turbocharged internal combustion engine. There is so many variety of engines. So this racing car, personally, I feel my personal choice is a racing car is Nissan GTR RB12 Godzilla engine.
1: Arre bhai, ho gaya. 1 minute, oh, good, good. Achha, the thing is, very good. It was informative. But the thing is that I think I gave a guy a topic about cars. Ladkon ko gaadiyon ke baare mein kuch bhi chalega, bolenge. Gaadiyon ka pata hota hai. So nice, informative. Nice, nice, good, good, good, good. I like it. Good content.
0: Mera personal ek hobby hai racing dekhne ka.
1: Oh! So I triggered you on racing cars. Okay. Okay, that was your favorite topic already. Okay.
0: इधर का MotoGP भी नहीं देखा.
1: आपने देखा है कि नहीं देखा?
0: नहीं देखा.
1: देखा है अभी. You liked it?
0: I like it. I like MotoGP and WSBK, Formula One racing and rally racing also.
1: This is good.
0: And moreover, I was studying engines so much, reading books.
1: What
0: technology are using in the engines? Daily I am studying that engines.
1: Auto, kya kehte hain? Auto engineering kehte hain na? Auto engineering mein lage main bhai, nahi gaadi banayenge.
0: नहीं, मैं तो ऑटो इंजीनियर नहीं है, क्योंकि मेरे को एक दिल है वो.
1: यू लाइक इट, इट्स समथिंग यू लाइक.
0: आई लाइक इट.
1: यू एंजॉय रीडिंग अबाउट कार्स एंड गेटिंग नॉलेज अबाउट कार्स. गुड, नाइस इंटरेस्ट. चले मैं अज्जू भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू एंड यू आर द सेकंड पर्सन हु हैज एक्चुअली गिवन अस अ गुड कॉन्टेंट. वेरी नाइस,
0: थैंक यू.
1: चले जी, अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज.
1: तभी मैं कहती हूँ अपने कुछ तो शौक रखो. किस जिस चीज के बारे में शौक हो ना, उसके बारे में चीजें डिस्कवर करो, पढ़ो उसके बारे में, डॉक्यूमेंट्रीज देखो. अरे भाई, बड़ा मजा आता है जब आपको कोई किसी एक चीज में, पर्टिकुलरली आपको किसी एक चीज का शौक होता है ना, और आप उसके बारे में और पढ़ते हो और पढ़ते हो और जानते हो, वीडियोज देखते हो, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते हो, वहां से इन्फॉर्मेशन निकालते हो. तो आपको सिर्फ उसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं मिल रही होती, आपको और भी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में भी उसी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाती है. तो भाई, हमारा नंबर है 443-443-77 टू कॉल, 443-443-77 टू कॉल. और चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं 666-22-107 पर. यूसुफ भाई का मैसेज है. यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं, सफा जी, जब कभी मैं कुछ टॉपिक पे सोचने लगता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ ऑडियो चलता है और बस चलता जाता है सुबह होने तक. फिर ऑफिस में बहुत नींद आती है और लो फील करता हूँ टिल I must cover my missed नींद. अच्छा, मेरे दिमाग में ऑडियो वीडियो दोनों चलते हैं, पता है कैसा कैसा कैसा मामला है ये जी. चलो जी, 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल एंड 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम, कैसी हैं सफा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. कौन बात कर रहा है, कौन है हमारे साथ?
2: अब्दुल रऊफ. आज तो आप कराचियन की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसा ना होता.
1: देखे, आपने पहचान लिया. कहीं आप भी तो कराची से नहीं है
2: जी?
1: कहीं आप भी तो कराची से नहीं है?
2: नहीं नहीं.
1: देखे, हम जो है ना, अब अगर आप पंजाब साइड से हैं तो हम पंजाब साइड से भी हैं. हमारा ताल्लुक सिंध और पंजाब दोनों से है.
2: नहीं, आप हैदराबाद की हो तो मुझे पता है.
1: नहीं, मैं हैदराबाद की नहीं हूँ.
2: पटारो?
1: नहीं
2: नहीं
1: नहीं, मैं हैदराबाद की नहीं हूँ.
2: सफदर तो पटारो की थी.
1: अच्छा, उन्होंने कब चेंज किया? उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं. अच्छा रुक जाए जरा, मैं अभी शो खत्म होने के बाद अम्मा को कॉल तो मिलाऊं कि अम्मा ये कब हुआ था. ये कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला. क्या फरजाना सफदर को इस बात का पता है कि वो पटारो की है? मुझे लगता था वो कराची की.
2: आपके अब्बू होंगे वहाँ से शायद.
1: मुझे ऐसा लगता था मेरे अम्मा अब्बा कराची के, अच्छा इन्होंने धोखा दिया है मुझे, गलत इन्फॉर्मेशन दी है।
2: पूछे जाके उनको यार।
1: मेरा

0: पूरा बचपन पूरी जवानी इसी उबालगे में गुजर गई कि मैं कराची की हूँ. अभी बताती हूँ, अभी पूछती हूँ, भाई फोन रखे, मैं भी पूछती हूँ. तो भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैर जी.
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. रऊफ भाई, अब्दुल रऊफ भाई ये बताएं जरा, अब्दुल रऊफ भाई है ना, है ना?
1: जी
0: अब्दुल रऊफ भाई ये बताएं जरा, मेरा आज का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि मेरे साथ कुछ अलग हिसाब है. जब मैं लोगों को कहती हूँ ना, कुछ लोगों को कहती हूँ कि मुझे जब कोई ख्याल आता है ना, या ख्याल आए या कोई मीटिंग है या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, जब दिमाग में कुछ पकने लगता है तो मुझे ना ऑडियो और वीडियो दोनों सुनाई और दिखाई देते हैं. मतलब अगर मैं ये सोच रही हूँ कि कल मेरी मीटिंग है,
1: होते हैं ना, ये आदमी का जहन शार्प होता है तो वो सारा उसका एक पहले खाका सा बन जाता है.
0: हाँ.
1: तो जो इंटेलिजेंट लोग हों या यंग एज में तो ऐसे हो जाता है, लेकिन अमूमन उम्र बढ़ने के बाद लोग फिर डायरी का सहारा लेते हैं, नोट इट डाउन.
0: नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑडियो और वीडियो दोनों सुनाई और दिखाई देता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ वीडियो दिखाई देता है. मतलब उनको अगर फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं ना कि कल उन्होंने जू देखने घूमने जाना है, तो उनको बाकायदा जू की इमेजेस दिमाग में अपीयर होती हैं, लेकिन कोई ऑडियो नहीं चलता दिमाग में, कोई ऑडियो नहीं चलता.
1: ऑडियो तो फिर वही बंदा खुद ज्यूम कर लेता है कि शेर की आवाज इस तरह होगी. और
0: आपके साथ क्या होता है, आपके साथ आप कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि आपने म्यूजियम घूमने जाना है, तो आपके दिमाग में ऑडियो और वीडियो दोनों चलेगा या सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें आएंगी?
1: नहीं, वीडियो चलेगी.
0: वीडियो चलेगी सिर्फ.
1: जी, वो आदमी के जहन में आ जाएगा कि फलां म्यूजियम है, उसमें इस तरह की चीजें होती हैं, हिस्टोरिकल कुछ आइटम्स पड़ी होंगी और ये.
0: सही.
1: तो वीडियो तो आइडिया तो मुश्किल है.
0: और मेरे दिमाग में
1: ऑडियो उस सूरत में है कि आप किसी शो में जा रहे हैं, मूवी पे जा रहे हैं या किसी का कंसर्ट सुनना है आपने.
0: हाँ.
1: तो वो हो सकता है फिर ऑडियो भी आ जाके फलां सिंगर का ये गाना होगा, ये इस तरह गा रहा होगा. तो वो हो सकता है.
0: मेरे दिमाग में तो अगर मुझे कोई म्यूजियम का भी बोले ना, तो मुझे वो हवा की, वो जो सरसरी सी एक हवा आती है ना मेरे दिमाग में, वो भी चलती है. पता नहीं ओवर स्टिमुलेटेड दिमाग है मेरा, कुछ की क्या है.
1: चले फिर वो आपका एक एक्स्ट्रा,
0: पता नहीं क्या है वो, कुछ है, कुछ कुछ मामला है, कुछ कुछ पेज एक्स्ट्रा कुछ है. अच्छा एक और चीज ये कि हम गेम खेल रहे हैं और गेम में ये हो रहा है कि एक मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है, और एक मिनट के अंदर आपने बात करनी है. मैं आपको एक वर्ड दूंगी, उस वर्ड के ऊपर आपने एक मिनट तक बात करनी है. देखते हैं आप मैक्सिमम कितनी देर तक उस वर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं. मैक्सिमम मैक्सिमम एक मिनट है.
1: ठीक है,
0: ठीक है. तो भाई आपका वर्ड है, अच्छा पीछे से मुझे वॉच वॉच की आवाज है, डिमांड, ऑन डिमांड वॉच का वर्ड, वॉच नहीं. चले रेनबो के ऊपर बात कर लें, कौसो कदा. ठीक है,
1: कौसो कदा ये अफेयर होती है बारिश के रुकने के बाद और आसमान की एक तरफ होगी लेफ्ट या राइट, मशरक या मगरब की तरफ अपेयर होती है और इसके में सात कलर्स होते हैं.
0: हुँ.
1: और रेनबो दूध भी आता है जिसे हम पीते हैं चाय में.
0: सही.
1: और ये इसका और बड़ी रेयर होती है, मुमन हमेशा नहीं होती.
0: हुँ.
1: बारिश के बाद थोड़ा थोड़े से बादल हो और थोड़ा सा मतलब साफ हो तो फिर ये दिखाई देती है.
0: हुँ, हुँ, हुँ, हुँ.
1: और इसको कई शोरा ने भी अपने शायरी में इस्तेमाल किया है. और कौसे कजा के रंग, जब किसी ने आपने किसी चीज की रंगीनी जाहिर करनी हो तो कौसे कजा की मिसाल दी जाती है.
0: सही.
1: तो एक बड़ा खूबसूरत नजारा होता है. तो कौसे कजा अमूमन यहाँ तो अक्सर मुश्किल ही होती है, लेकिन अगर नजर आ जाए तो आदमी बहुत खुश होता है और दूसरों को बताते हैं कि देखो कौसे कजा नजर आ रही है.
0: सही.
1: तो कौसे कजा के रंगों में जो
0: चले भाई आपका टाइम टाइम हो गया, टाइम हो गया, एक मिनट हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस. बगैर रुके हुए यूं तसलसल में बात की इन्होंने. वेरी गुड हो गया भाई, वेरी गुड हो गया. अच्छा भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज.
1: ठीक है, आज आप अपने पूछें अपनी अम्मी अबू से कि मैं कहाँ की हूँ.
0: अब ये आपने मुझे एक और कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया. मैं तो अभी शो खत्म होते के साथ फोन घुमाऊंगी. आप देखें मुझे तो इतने जिंदगी के इतने साल यही बोलते रहे, मुझे डिलीमा में रखा. अब देखें मैं इनसे पूछती हूँ आखिर मैं हूँ कहाँ की. चले अल्लाह हाफिज. अरे ये एक और टॉपिक मिल गया लड़ाई करने को घर में, कि हमें तो कुछ और बताया था. हैं

हमें तो खत्म करा दीजिए हैं। अच्छा रेनबो के ऊपर बात हो रही थी तो मुझे रेनबो से याद आया, अक्सर ना हम रेनबो को आधा देखते हैं। क्या आपको पता है कि रेनबो का जो आर्क आप देखते हैं, ये जो एन बना हुआ होता है, इंग्लिश का जो एन होता है, हम इसको ऐसे ही देखते हैं ना आधा, लेकिन असल में रेनबो हमेशा पूरा गोल होता है कि नहीं होता, आपको ये पता है? रेनबो एक्चुअली में किसी ने सर्कल में देखा है, पूरा फुल सर्कल में। हमें जो नजर आता है वो हाफ सर्कल नजर आता है ना, असल में रेनबो जो है वो फुल सर्कल में भी नजर आता है। और इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह ये है कि जमीन हमारे व्यू को जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसका छुपा देती है, इसीलिए हमें सिर्फ ऊपर का ही कलर आर्क दिखाई दे रहा होता है। लेकिन अगर आप किसी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन वगैरह से देखें ना दूर का इमेज उसका, तो लिटरली आपको पूरा सर्कल रेनबो भी नजर आ सकता है। अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई इसी के साथ एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखो आपका पता नहीं, मैं बात कर करके थक गई हूँ, तो बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले लो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। मुझे पता है जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मसक्कली बुला रही है, मसक्कली कॉलें आ रही हैं और मैं कॉल लेती हूँ। लेकिन प्लीज रुको जरा, सबर करो, थोड़ा सा मसक्कली सुन लो यार। कितना मशहूर हुआ था ये, कितना मशहूर हुआ था, मसक्कली हर कोई गाता फिर रहा था। खैर आप सुन रहे हैं सफा के साथ साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम भाई, आरिफ भाई, आपकी मुलाकातें ख़त्म ना हो रही। हमने खैर हमें नहीं पता, अब आरिफ भाई ने फरमाइश की थी तो मैंने कहा चलो दे देते हैं आरिफ भाई को ये फैसिलिटी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मेरे साथियों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड ऑन एफएम 107, सफा के साथ हैं आप। और भाई आज का हमारा मुद्दा जो है वो ये चल रहा है कि ज़रा बताएं, जब आप व्हेन यू थिंक, डू यू थिंक इन ऑडियो एंड वीडियो, और व्हेन यू थिंक, यू आर थिंकिंग ओनली इन वीडियो वीडियो, बताएं ज़रा बताएं। ओके तो भाई हमारे कॉल करने का नंबर है 4434377, 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और हमें मैसेज करने के नंबर है 6662107, 6662107। उसी के साथ साथ गेम भी चल रही है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट वर्ड टिल वन मिनट। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال الصفا؟
1: الحمد لله زين تمام. How are you brother? علي واجد right?
2: No, no, علي واجد، علي وجداد.
1: علي وجداد sorry علي وجداد. Okay, yes. How are you?
2: Fine, how are you?
1: الحمد لله الحمد لله. Brother tell me, I have a question today.
2: في اليوم غنية شيء؟
1: No, not film. Like when you think, how do you think? You think in like movie, audio and video, or only in video video like Charlie Chaplin?
2: Yani, shouldn't you like movie, Anna?
1: Yes. No. When you think about something, like when you, how do I say it? Thinking. What do I call thinking in Arabic? Okay, I will try to think.
2: In Arabic.
1: What do I call?
2: Saif al-Rahman, يعرف وين Saif al-Rahman?
1: Saif al-Rahman is not.
2: زين عطني ميوزك عطني غنية مو مشكلة خلاص.
1: No, today okay. Today I have something else.
2: No problem, music, Ghana, no problem.
1: No, today no Ghana game.
2: شنو اليوم؟
1: We have I will give you word, okay, one word. You have to talk about that one word for 1 minute.
2: Okay,
1: done. Okay, I will give you word. What word should I give you? Guitar. You have to talk about guitar. You know guitar? Ding, ding, ding, ding, ding.
2: Guitar, yes. Guitar, music.
1: Yes, music. You have to talk about music for 1 minute. Anything then, you okay. want. Okay?
2: يعني,
1: your time.
2: Yani music, I say music, my guitar?
1: No. How do I say it in Arabic? Ant kalam, about music.
2: أنا والله ما أعرف شيء.
1: This is language barrier.
2: ما أعرف خلاص.
1: Okay.
2: خلاص.
1: Bye.
2: ما أدري شو السؤال اللي تقول ميوزك جيتار وما أدري ما أعرف.
1: You have to talk about music.
2: صفا اليوم أنت سؤال صعب. يعني اليوم سؤال يعني ما يعرف أنا ما أعرف شو السؤال والله العظيم.
1: This is
2: this music, Ghana, film, no problem.
1: No.

0: no, today it's not music.
1: خلاص next متى؟ Monday, Tuesday.
0: No.
1: I am call Tuesday, خلاص عشان مال music.
0: On for music, maybe on Sunday.
1: Then okay, اليوم same same before خدا جوا مال متى بتشن؟
0: Yes, Sunday, Sunday.
1: Sunday يعني خلاص okay.
0: Okay.
1: خلاص next إن شاء الله.
0: Okay. Bye bye.
1: Bye.
0: लैंग्वेज बैरियर आ गया भाई, लैंग्वेज बैरियर आ गया. मैंने सारी अरबी झाड़ने की कोशिश की लेकिन मुझे ना समझ में आया कि मैं इनको कैसे समझाऊं. चले भाई, अगर किसी और को लैंग्वेज का इशू नहीं हो रहा, उर्दू में ही बात करनी है, हिंदी में ही बात करनी है, तो भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर. 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल एंड 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज. और भाई एक कॉलर आए हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू. कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ मैं तो, बस हंस हंस के आई हूँ.
0: हाँ बस ये
2: आपकी जो क्लास लगी है ना अभी,
0: बस मैं क्या बताऊँ, अब मुझे अरबी सीखना लाजिम हो गया है. एक जुमला तो मुझे अरबी का आना ही चाहिए था. मेरी सारी की सारी अरबी जो है ना वो फेल हो गई, मैं एग्जाम में फेल हो गई,
2: निकल गई पूरी अरबी इंग्लिश बस समझाने में.
0: बस बहुत हो गया, अब मुझे जाकर ना एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी.
2: आज क्लास टीचर की क्लास ले ली.
0: देखिए मेरी लैंग्वेज एक्सपर्टीज जो है ना, मेरी रेज्यूमे में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुझे अरबी आती है. ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलती. रेज्यूमे में लिखकर भेज दिया मुझे अरबी आती है.
2: जो सरप्राइज विजिट होता है ना प्रिंसिपल का क्लासरूम में.
0: देखें अब जो है ना, बस अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ेंगे, आगे आगे आगे बढ़ेंगे.
2: मैं बहुत मजा.
0: अच्छा, मेरे ख्याल से अभी अगर मैं
2: जो बोलते हैं उनका बोलने का अंदाज भी बड़ा अलग ही है. बहुत मजा आता है उनको सुनने.
0: अरे उनकी बात सुनने मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन वो जो है ना वो बॉलीवुड की गेम खेलना चाह रहे थे.
2: उनका कॉल पहले ले अगर मालूम हो तो, या फोन मिला है उनको.
0: अब मैं कल पता है क्या करूंगी, मैं कल जो है ना लेकर बैठूंगी अरबी में एक पूरा सेंटेंस उनके लिए, मैं लिखवा कर आऊंगी कि इनसे इन्हें कैसे एक्सप्लेन किया जाए. बस मैं भी डेढ़ होशियार हूँ फिर. मैं कल अरबी में बात करूंगी इनसे. बहुत हो गया, चैलेंज एक्सेप्टेड. अच्छा,
2: उनको टाइम दे दिया ना कि अब संडे को आइए,
0: क्या पता वो फिर से कॉल कर ले. नहीं, मैं अरबी में ये भी बोलने को मैं बोलने की कोशिश करूंगी, इंग्लिश में बोलने की कुछ करूंगी कुछ, अगर कॉल आ गई तो. अच्छा, हमारे साथ मेरे ख्याल से आरिफ भाई हैं. ठीक, नहीं आरिफ भाई नहीं,
2: गेम खेल
0: लिया. आरिफ भाई है ना?
2: हाँ
0: सही. आरिफ भाई देखो जरा, आरिफ भाई अपना नहीं याद आ रहा? आप तो नॉन लैंग्वेज में 40 सेकंड करके गए हो जिस लैंग्वेज का पता है, और मेरा मजाक उड़ा रहे हो अरबी का. ठीक है आरिफ भाई, मिलो जरा, फिर बताते हैं आपको. फिर बताते हैं हम आपको.
2: इससे पूरा पहले हफ्ता मेरा मजाक उड़ाया है गाने पे,
0: अरे फोन रखो आरिफ भाई. चलो अपना ढेर सारा ख्याल रखें आरिफ भाई. अल्लाह हाफिज. देखो ये होता है शुगल, इनको जो है ना मिल गया मजा, मतलब मेरी क्लास लेने का मौका मिल गया इन्हें. अरे मेरी रेज्यूमे में थोड़ी ना लिखा है, तुम लोग की तरह मैं थोड़ी रेज्यूमे में लिखकर भेजती हूँ कि मुझे अरबी आती है. बट आई ट्राइड. चलिए भाई साथियों, अलविदा लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो है भाई हमारे बाद भी शो होता है लाइव, तो उनको भी गुंजाइश देनी है. तो भाई जाते जाते आप लोगों से सबसे ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा भाई, ये कहा जाएगा कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अच्छा, ये जो आज मैंने मुद्दा निकाला था, टॉपिक निकाला था, तो देखिए मामला पता है क्या है, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं. कंक्लूजन ये है कि आज हमें ये पता चल गया, जैसे मैं सोचती थी कि भाई लोग सिर्फ ऑडियो वीडियो में सोचते हैं, ऑडियो खाली वीडियो किसी के दिमाग में नहीं आता होगा, आज मुझे भी पता चल गया कि लोगों के दिमाग में खाली वीडियो भी आता है भाई. किसी के दिमाग में ऑडियो और वीडियो दोनों चल रहे होते हैं, मतलब कि

अंदर फुल कमेंट्री चल रही होती है और कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ वीडियो मोड ऑन रहता है, कोई आवाज नहीं होती, बस तस्वीरें होती हैं, आइडियाज होते हैं, इमेजिनेशन होती है, जैसे कि वो एक साइलेंट फिल्म नहीं चल रही होती चार्ली चैप्लिन वाली, लेकिन स्टोरी बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस के मुताबिक दोनों तरीके बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हम में से कोई भी एक्स्ट्रा ओवर कुछ भी नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि हर इंसान के सोचने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों का सिस्टम कुछ ऐसा काम करता है कि उनकी इनर वॉइस, जिसे हम कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में मोनोलॉग्स कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जब भी वो कुछ लोग ज़्यादा विजुअल थिंकिंग कर लेते हैं, उनके दिमाग में इमेजेस और जो सीन्स होते हैं ना वो ज़्यादा बनते हैं। दोनों ब्रेन्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कोई भी अप डाउन नहीं होता एक दूसरे से। और एक मज़े का फैक्ट ये कि आपका दिमाग सिर्फ जागते हुए ही नहीं सोते हुए भी यही काम कर रहा होता है। तो भाई आपको ख्वाब भी इसलिए आते हैं क्योंकि आपका दिमाग जाग रहा था, यानी ऑफिस बंद हो जाए, मोबाइल ऑफ हो जाए, लेकिन दिमाग फिर भी हमारा नाइट शिफ्ट पे ही रहता है। तो अगली बार जब आप किसी को ख्वाबों में गुम देखें ना, तो फौरन ये मत समझिएगा कि वो डे ड्रीम कर रहा है, हो सकता है उसके दिमाग में डायरेक्टर का कट चल रहा हो, कुछ पॉडकास्ट चल रहा हो, कुछ भी चल सकता है भाई दिमाग में, ठीक है। अगर कभी फ्यूचर में कोई मशीन ऐसी बनाई गई ना कि जिसके अंदर थॉट्स के स्पीकर हों, तो सबसे पहले मैं अपना वॉल्यूम कम करूँगी क्योंकि मेरा वॉल्यूम, मेरा लेवल जो ऑडियो का है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई चलता है भाई। तो भाई तब तक के लिए, जब तक के दिमाग की कोई ऐसी मशीन ना बनाई जाती जो कि ऑडियो कम कर सके, मुझे दीजिए इजाज़त, मुस्कुराते रहिए। याद रखिए, चाहे आपका ब्रेन ऑडियो पर हो या वीडियो मोड पर हो या दोनों के साथ अवेल करता हो फैसिलिटी, असली बात यह है कि उसकी स्टोरी हमेशा यूनिक होती है। हर दिमाग की स्टोरी हमेशा यूनिक होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल क्या ही रखेगा भाई। तो भाई इसी नोट पर साइनिंग आउट, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। और भाई जाते जाते कौन सा गाना लगाया जाए, क्या कहते हो, खसारा लगा दूं? मुझे तो खसारा लगाने को दिल कर रहा है, आपका क्या दिल कर रहा है सुनने का? मुझे खसारा सुनने का भाई, मुझे खसारा सुनना है, प्लीज लगा दूं खसारा। चलो एक खसारा लगाते हैं और आपको खसारे के साथ छोड़ते हुए जाते हैं, नहीं नहीं खसारे के साथ नहीं छोड़ते जा रहे, अच्छी अच्छी चीजों के साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 1:02 एग्जैक्ट।
2: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: समर स्पोर्ट्स में आप सभी का है इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है हाल चाल दोस्तों, बताइए जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे। और समर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में जहां पर आपको क्रिकेट की, फुटबॉल की, साइकिलिंग की सारी जानकारी मिलती है, यानी कि गर्मी में हो रहे स्पोर्ट्स की, खेल की सारी जानकारी आपको मिलती है। और आज भी हम इन्हीं खेल के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है जिम्बाब्वे और इंडिया के क्रिकेट मैच के दरमियान, विमेन अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, और उसके अलावा फार्मूला वन में क्या हो रहा है जो कि हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में कुछ चल रहा है, उसके अलावा मल्टी स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस शो में सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला घंटा, या कहें पहला मिनट, क्योंकि उसमें होता है सवाल। और ये सवाल आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को यकीनन पता होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है और समर स्पोर्ट्स में सबसे पहले यही पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, और सवाल के बाद होता है आंसर वाला राउंड, यानी कि आप जवाब दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के नंबर 6622107 पे, 6622107 पे आप हमें जवाब दे सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल पूछना, और आज का सवाल बड़ा ही आसान। ये इसका जवाब आपको 2022 में ही पता चल

गया होगा क्योंकि लोगों ने बहुत बार ऐसे यू नो बात करी भी होगी। सवाल यह है कि टोटल नेशनल टीम्स कितनी कम्पीट कर रही थी 2026 के टूर्नामेंट में जो फीफा का हुआ, 2026 फीफा का जो टूर्नामेंट हुआ इसमें टोटल कितनी नेशनल टीम कम्पीट कर रही थी। ऑल्दो ये एक हिस्टोरिक एक्सपेंशन है, यानी कि पहले इतनी टीमें नहीं खेलती थी, इस बार 2026 में पहली बार टीमें बढ़ गई हैं या घट गई हैं वो तो फिर आपको बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 666-22-107-666-22-107 पे आपको बताना है कि कितनी नेशनल टीमें कंपीट कर रही थी 2026 के फीफा टूर्नामेंट में जो यूएसए में दो कंट्रीज में हुआ। वेल ये भी एक सवाल हो सकता था लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये बताना है कि कितनी टीमें कंपीट कर रही थी। वेल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं धीरे से। सबसे पहले ये मैसेज है सलाम का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या हाल चाल। नाम आपने लिखा नहीं है और ना ही आपकी प्रोफाइल में दिख रहा है। उसके बाद खलील भाई, सलाम फजील भाई, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब, बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद जवाब भी लिखा है खलील बादशाह ने, लेकिन जवाब सही है पक्का श्योर। थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका जवाब 2022 के हिसाब से सही है लेकिन 2026 के हिसाब से ला गलत। देखते हैं और कितने लोगों को पता है इसका सही जवाब। इमरान खान ने सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा, मतलब थोड़ा बहुत तो क्रिकेट के अलावा भी लोग यू नो बाकी स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर पाकिस्तान के बारे में बात करो, भाई फुटबॉल का उनको कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में तो फुटबॉल बन के जा रही है भाई, जो पाकिस्तान में फुटबॉल बनी 2022 में वो यहाँ पर भी पहुंची। पाकिस्तान में तो फुटबॉल का गढ़ है, क्रिकेट का भी ऑब्वियसली, वहां पर कुक्का बुरा से लेकर कौन कौन सी बॉल नहीं बनती, सारी बॉलें बनती हैं, लेकिन फुटबॉल का भी पूरा गढ़ जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा फुटबॉल को फॉलो नहीं करता है। ऐसे कई लोग हैं जो फॉलो नहीं करते, लेकिन अब अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ कुछ लोग थोड़ा फुटबॉल को भी फॉलो करने लगे हैं और खासतौर पर वही लोग जो कतर में, सऊदी में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल का चलन ज्यादा है। जिनके बच्चे यहाँ पैदा भी हो रहे हैं ना, वो अब क्रिकेट को नहीं फुटबॉल को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, वो फुटबॉल ज्यादा देख रहे हैं, वो फुटबॉल ज्यादा खेल रहे हैं, वो फुटबॉल को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उनसे पूछिए, उनको 2 से 3 फुटबॉलर पता है, है ना, अभी अर्लिंग के बारे में पता है, एक वक्त पे मेसी है, नेमार है, और उसके अलावा रोनाल्डो के बारे में पता है, है ना। तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं अब लोगों को पता चलने लगे हैं, और खास तौर पे अगर बच्चों से पूछें तो बच्चों को और 8-10 नाम पता होंगे। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपकी नॉलेज है इसमें तो बिल्कुल जवाब जरूर दीजिए कि टोटल कितनी टीमें 2026 के फीफा टूर्नामेंट में खेल रही थी। महफूज ने भी जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। खलील भाई ने करेक्शन कर लिया है, ओके, बहुत ही उम्दा, बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही उम्दा। फिर उसके बाद मोहम्मद मुसद्दिक हैं और इन्होंने भी सही जवाब दिया, ठीक है। तो चलो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सही जवाब पर लोग रुख कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे पता चल रहा है। तो जिन्होंने अभी ट्यून इन किया, एक बार फिर से सवाल रिपीट कर देते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो हम बात करेंगे जिम्बाब्वे इंडिया के बारे में और फिर और भी समर के जो स्पोर्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं इस हफ्ते या आज जो खेले जाएंगे, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप नंबर नोट कर लें 666-22-107, ये है हमारा व्हाट्सएप का नंबर। सवाल है कि 2026 के फीफा टूर्नामेंट में टोटल कितने नेशनल टीमें खेल रही थी, कंपीट कर रही थी, ये आपको बताना है। 666-22-107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक,

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, the अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
0: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
2: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
3: Absolute cinema.
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही

0: घर पे होते हैं, पर डोंट वरी मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: सबसे पहले होता है एक सवाल जिसका जवाब आपको देना होता है हमारे व्हाट्सएप के नंबर 666-22107 पे 6662-2107। और जो आज का सवाल है वो बड़ा आसान है और इसका जवाब आपको 2022 में ही मिल गया होगा। सवाल ये है कि फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ 2026 का टूर्नामेंट हुआ, उसमें टोटल कितनी नेशनल टीम्स कंपीट कर रही थी, इसका जवाब आपको बताना है। नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी वो आप बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और अब बात कर लेते हैं जरा आज यानी कि 26 जुलाई को होने वाले बड़े ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स की, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। और जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का ये जो मैच है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज। क्यों? क्योंकि जिम्बाब्वे चाहती है कि एक तो एटलीस्ट T20 जीत जाए इंडिया से। ऑल्दो इंडिया की जो हार है वो इंग्लैंड से हुई, अलग अलग जगह जाने के बाद हो, चाहे वो इंडिया में ही हारने के बारे में बात हो, लेकिन जिम्बाब्वे से शायद जीतने के बाद। ऑल्दो ये तो बड़ी अजीब बात है, क्या रहे जिम्बाब्वे से जीत रहे। मैं देखो, मेरा तो मानना है कि कोई भी टीम बड़ी और छोटी नहीं होती, या फिर क्रिकेट में कोई प्लेयर बहुत कोई आला दर्जे का, जैसे विराट कोहली भी जीरो पे आउट हो सकते हैं और हर्षित राणा सेंचुरी मार सकते हैं, कोई बड़े छोटे की बात नहीं। ऑब्वियसली अगर देखा जाए हर्षित राणा तो विराट कोहली से कहीं मैच भी नहीं करते, लेकिन दिन दिन की भी बात होती है ना। एक बॉल बहुत अच्छी पड़ गई विराट कोहली को आउटस्विंग है ना फोर्थ स्टंप पे, और हर्षित राणा को स्लॉट पे ही मिलती रही। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत अलग कुछ यूनिक नहीं होता कि अरे ये फला क्रिकेटर है या फला खिलाड़ी है तो इनका ही दिन चलेगा। तो लेकिन जिम्बाब्वे क्या है कि पूरी ओवरऑल टीम अगर देखी जाए और इंडियन टीम देखी जाए तो इंडिया टीम को लोग हमेशा ऊपर इसलिए भी रखते हैं क्योंकि खेल को लेकर जो समझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में क्रिकेट की। लेकिन जिम्बाब्वे अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर मुजरबानी की बात कर लें वो ज़बरदस्त बहुत तगड़े हैं। तो जिम्बाब्वे का एक ही थॉट है फिलहाल के लिए कि एटलीस्ट एक मैच तो जीत जाए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया का भी इसलिए है कि भाई देखो फॉर्म तो एकदम जा चुकी थी पूरी इंडियन टीम की और कोई भी खिलाड़ी सही से रन नहीं मार पा रहा था, फिर टीम जीत नहीं पा रही थी T20 हो या फिर इंग्लैंड का ODI सीरीज हो, कोई भी मैच जीत नहीं पा रही। अब तो कम से कम जिम्बाब्वे का ये मैच जीतने के बाद या सीरीज जीतने के बाद एक रिदम पकड़ ले। फिलहाल 2-0 से जिम्बाब्वे से इंडिया आगे है और एक मैच जो है जिम्बाब्वे से जीतना भी चाहती है इंडिया से जिम्बाब्वे जीतना भी चाहती है। वेल लीड पर तो है, लेकिन सैटरडे को जो मैच हुआ है इंडिया ने 90 रन से एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है। आज सीरीज का आखिरी डेड रबर जो है मैच होगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, और ये मैच लोकल टाइम के मुताबिक 1 से शुरू होगा और इंडियन टाइम के हिसाब से 4:30 से। आप अगर देखना चाहें तो बस शुरू ही होने वाला है ऐसा समझें। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश 100 बॉल टूर्नामेंट के बारे में। ये 6th एडिशन है जो कि फुल स्विंग में चल रहा है, 21 जुलाई को शुरू हुआ था और आज डबल हेडर्स में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और बर्मिंघम फिनिक्स विमेंस मैच 11 और मेंस 2:30 शुरू होगा। ओल्ड ट्रैफोर्ड में होने वाला है ये मैच, और दूसरा जो है वो ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस लंदन स्पिरिट के दरमियान मैच होगा, विमेंस का 2:30 और मेंस का शाम को 6 से। ये ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा मैच। इस सीजन 3 टीम्स का IPL बैक्ड रीब्रांडिंग हुआ है ना। अब ओवल इनविंसिबल जिनको पता है उनको पता है ओवल इनविंसिबल जो है वो अब MI लंदन है, ठीक है, मुंबई इंडियंस लंदन वाला, ठीक है ऐसा समझो। और उसके बाद नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स अब सनराइजर्स लीड्स है और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स अब मैनचेस्टर सुपर जायंट्स बन गए। ये तो मतलब एकदम ही IPL वाला फील देगी। या फुटबॉल के बारे में अगर हम बात करें तो विमेंस अफ्रीका कप ऑफ नेशंस हो रहा है जहां पर 16 टीम भिड़ रही हैं, बड़ा टूर्नामेंट है और आज मोरक्को में ऑफिशियली शुरू हो रहा है। ग्रुप ए के ओपनिंग मैचेस में आज अल्जीरिया वर्सेस सेनेगल का मैच होने वाला है और ये मैच भी तगड़ा होने का क्योंकि शुरुआत है, ऑब्वियसली शुरुआत तो तगड़ी होनी भी चाहिए। और इसके बाद जो होस्ट कंट्री है यानी कि मोरक्को का सामना केनिया से होगा और शाम को 8 ये मैच शुरू होगा लोकल टाइम पर। यह टूर्नामेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी टॉप 4 टीम्स फाइनलिस्ट टीम्स को 2027

फीफा विमेंस वर्ल्ड कप ब्राजील का डायरेक्ट टिकट मिलेगा। तो अगर विमेंस अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में इन 16 टीम्स में चार टीम जो सेमीफाइनलिस्ट होंगी, वो चार टीम आसानी से बगैर कुछ करे क्वालिफाई कर जाएंगी 2027 में होने वाले, यानी कि अगले साल होने वाले फीफा विमेंस वर्ल्ड कप ब्राजील में जो कि होगा, डायरेक्ट टिकट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, और ये भी मेन रेस जो है आज होने वाली हंगेरियन सर्किट में। सैटरडे के क्वालिफाइंग सेशंस में मैकलेरन ने लैंडो नॉरिस ने पोल पोजीशन हासिल की थी, और फरारी के लेविस हैमिल्टन ने सेकंड पोजीशन क्वालिफाई की थी, पर उन्हें दूसरे ड्राइवर को ब्लॉक करने के लिए 3 प्लेस ग्रिड पेनल्टी मिली। तो ऐसा होता है कि आप अपनी रेस करें, किसी को ब्लॉक ना करें, है ना। तो अगर आपने ब्लॉक कर दिया इस वाले में फॉर्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में, अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो फिर आपकी प्लेस जो है वो नीचे कर दी जाती है, और यही हुआ लेविस हैमिल्टन के साथ। सेकंड पोजीशन क्वालिफाई की थी पर दूसरे ड्राइवर को ब्लॉक करने के लिए 3 प्लेस ग्रिड पेनल्टी मिली है, जिसके वजह से अब वो फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, और चार्ल्स लेक्लेयर अब फ्रंट रो में नॉरिस के साथ दिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, पूरा एक्चुअली सिनेरियो ही बदल देती है भयंकर। उसके अलावा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड में चल रहे इन खेलों का आज चौथा दिन है। आज काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के मेगा फाइनल्स होने वाले हैं, जहां मेडल्स के लिए बड़ी टक्करें होंगी। 3-3 बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स, स्विमिंग, नेटबॉल और वेट लिफ्टिंग के बड़े मैचेस आज शामिल है कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि हो रहा है ग्लासगो में। तो ये थी कुछ खास अपडेट्स। अब अगर हम बात करें, एक दो लोगों का मैसेज आया भाई कल क्या हुआ है, जैसे साबिर भाई का मैसेज आया कि कल कैसे कौन जीता कैसे जीता। अब देखो कौन क्या, इसमें तो बात ही बात है, ये तो पता ही चल गया है आपको कि कल क्रिकेट में इंडिया जीती है। लेकिन कल के मैच के बारे में बात भी होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कल बहुत दिनों बाद वो दो प्लेयर चले हैं जो बहुत दिन से चल नहीं रहे थे, जिनका कोई काम ही नहीं हो रहा था भाई। ऐसा लग रहा था कि यार ये अब टीम में क्यों है, सवाल उठने लगे थे ईशान किशन और तिलक वर्मा पे, क्योंकि ये स्कोर करके नहीं दे रहे थे। लेकिन सेकंड मैच में जिम्बाब्वे के स्कोर करके दिया और अच्छा खासा खेल का मुजाहरा किया दोनों ने। अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिया की, तो सूर्यवंशी ने 9 बॉल पर 20 रन बनाए, 222 के स्ट्राइक रेट से अपना काम कर रहे थे, लेकिन फिर रिचर्ड ने इनका विकेट लिया और मुजरबानी जो कि अच्छे बॉलर हैं इन्होंने कैच लिया। फिर शर्मा ने भी बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए, जल्दी विकेट, पहले दो विकेट जो है बहुत जल्दी गिर गए। फिर ईशान किशन ने संभाला, लेकिन अय्यर भी 20 बॉल पर 25 रन बनाना के आउट हो गए। उसके बाद आया तिलक वर्मा, ये भाई ने 30 बॉल यानी कि 29 बॉल पे 60 रन 206 के स्ट्राइक रेट से बनाए, और ईशान किशन ने 44 बॉल पे 81। ये दोनों पर एक बड़ा सवाल था कि ये दोनों परफॉर्म ही नहीं कर रहे, ईशान किशन भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे ना ही ओडीआई में, और ना ही तिलक वर्मा परफॉर्म कर पा रहे हैं T20 में, तो क्या होगा। लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किया इन्होंने, अगेन ये बात है कि यार थोड़ी और स्ट्रांग टीम होगी तो क्या होगा। उसके अलावा रिंकू सिंह 8 बॉल पर 12 रन बनाया, एक छक्का मारने के बाद, थोड़े बहुत सिंगल वगैरह करने के बाद फिर ये आउट हो गया, और शिवम दुबे 1 बाउंड्री के साथ 6 रन बनाया, और टोटल टीम का स्कोर 219 पर पहुंचा। और फिर जिम्बाब्वे की टीम जो है, पहले बेनेट ने ही स्कोर किया 32 रन, उसके बाद फिर 1, 12, 20, 0, 2, 24 कोई खास ऐसे रन नहीं बना पाया, और 129 रन पे ऑल आउट हो गई जिम्बाब्वे की टीम 17.5 बॉल खेलने के बाद। तो 18 ओवर में तकरीबन 129 रन पर ऑल आउट, और इंडिया का स्कोर 219 रन पर 5 विकेट। बात कर लेते हैं बोलर्स के बारे में, बोलर्स भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं कर रहे थे, लेकिन ठाकुर यानी कि यश ठाकुर, इन्होंने भी जो कि 27 साल की उम्र के हैं, 1998 की पैदाइश, अच्छा खेल दिखाया इन्होंने। 4 ओवर में 7 के इकोनॉमी से 2 विकेट लिए। फिर प्रिंस ने भी 7 की इकोनॉमी से 2 विकेट लिए, ऑल दो सिर्फ 1 ओवर डाला प्रिंस ने। बिश्नोई ने 5 की इकोनॉमी से 4 ओवर डाले, 20 रन खाकर 1 विकेट लिया। और फिर जिस पर मतलब भरोसा नहीं होता ना, वो विकेट लेकर चला जाता जो है अभिषेक शर्मा, लेफ्टी बैट्समैन, ओपनिंग करते हैं, 2.5 ओवर डाले, अगर देखा जाए पूरा 3 ओवर डाला और 3 विकेट लेकर गए 6 की इकोनॉमी से, क्या बात है। ये भी होता है क्या, 3 ओवर डालने के बाद 17 रन दिया, लेफ्टी बैटर। तो ये कमी दिख भी रही थी जो मुझे लग रहा है इंडियन टीम में ऑब्वियसली बहुत लंबे वक्त से है कि बॉलर

0: जो है वो मेन बॉलर्स ही बॉलिंग कर रहे हैं, अगर वो पिट गए तो आपके पास बैकअप क्या है? पहले बैकअप हुआ करता था, सहवाग भी बॉलिंग डालते थे, सचिन भी बॉलिंग डालते थे, फिर लेफ्टी एक और हमारे जबरदस्त कैप्टन इंडियन टीम के गांगुली, वो भी बॉलिंग कभी कभार डाला करते थे, तो बॉलर थे। अगर फास्ट बॉलर या स्पिनर पिट रहे हैं तो आपके पास बैकअप है, बट आज के दौर में बैकअप नहीं है आपके पास। तो अभी अभिषेक शर्मा धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया उन्होंने, तो बैकअप होना चाहिए, आपको आना चाहिए। आप कभी कभार जब उठाकर देखेंगे ना सिनेरियो, जब आप पूरा स्टेटस देखेंगे तो बुमराह के कम विकेट्स हैं बजाय सचिन तेंदुलकर के। खैर वो एक पूरा अलग ही सीन है, अगर आप उसे प्रॉपर देखेंगे समझेंगे वो पूरा अलग सीन है। लेकिन बॉलिंग ऑब्वियसली यार आप क्रिकेटर हैं, आपको सब कुछ करना आना चाहिए, फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग सब आनी चाहिए। वेल सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज का सवाल था 2026 का जो फीफा टूर्नामेंट हुआ उसमें टोटल कितनी टीमें कंपीट कर रही थी वो आपको बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 666-22-107। एक भी गलत जवाब नहीं आया, खलील भाई ने थोड़ा सा गलत कर दिया था शुरुआत में, लेकिन अब उसके बाद लगातार सही जवाब आ रहे हैं। ये जवाब है UH लिखा है, नाम नहीं लिखा है, मुझे ऊपर देखना पड़ेगा इनका नाम। सलाम लिखने के बाद भाई ने सफीर अहमद इनका नाम है, बिल्कुल सही जवाब है। सज्जाद हुसैन ने बिल्कुल सही बताया है, और मोहम्मद अब्दुल रहीम ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया, बहुत ही उम्दा। फिर SM लिखा है, मामून ने सही जवाब बताया है, एहतराम ने सही जवाब बताया है, 48 टीम्स। तो एक जवाब था 32 टीमें 2022 में खेल रही थी, लेकिन 2022 में इस बात पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि ये आखिरी बार है जब 32 नेशनल टीमें जो है वो कम्पीट कर रही हैं। वहीं मैंने आपको कहा था कि आपको 2022 में ही इसका जवाब पता हो गया होगा, टोटल 48 टीमें 2026 के टूर्नामेंट में कंपीट कर रही थी। 2022 में इसका जवाब ऑब्वियसली आपके पास होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का और बेहतरीन सा गाना सुनिए। वापस जब हम मुलाकात करेंगे तो आज ही करेंगे शाम को 4 बजे, आपके अपने मर्जी के गानों के साथ। गाने आपके अपने मर्जी के तैयार कर लीजिए, प्लेलिस्ट में क्या कुछ है, आपके लिस्ट में क्या कुछ है, रेड पेन लेकर टिक लगा दो, मुझे बता देना, मैं वो चला दूंगा। बस इतना ध्यान रखना थीम पर ही अपन स्टिक रहेंगे, ठीक है। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। एक बार फिर से बस अभी यूं गए थे और यूं आ गए साथियों। इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है 1:31, मतलब ये कि 1:31 ऑन द क्लॉक और टाइम हो चला है।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107, दिल से दीप।
1: देखो भाई, जो लोग हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हैरानी और परेशानी की कोई बात नहीं है। मामला ये है कि 2 दिन के लिए सफाई मिलेगी आपको इस केक रूम में और इंशाल्लाह 2 दिन के बाद आपको ये इत्तला आम दे दूं कि भाई अमिता वापस आ जाएंगी। तो भाई देखो, एक काम करते हैं, स्केप रूम शुरू करने से पहले अच्छे अच्छे गाने सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं और आपको आज के स्केप रूम में लेकर जाया जाएगा हिस्ट्री में। तो तैयार हो जाएं, थोड़ी सी अपनी कमर की पेटियां कस लीजिए और फिलहाल बादशाह को एंजॉय कीजिए। सफा आती है और आपके साथ खेलती है स्केप रूम।

0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं स्केप रूम विद सफा।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखिए।
0: तो साथियों आइए अपने स्केप रूम का सफर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सफा और आज हमने आपको फिर फंसा दिया है या आप फिर फंस गए हैं। देखिए हम आज आपको लेकर चल रहे हैं स्केप रूम के उस

स्टेडियम के एक अंधेरे हिस्से में खड़े हैं। आपके आसपास पुरानी किताबों का ढेर लगा हुआ है, अजीबोगरीब नक्शे और ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिन पर वक्त की गर्द जम चुकी है। आप थक कर एक पुराने बुक शेल्फ की तरफ जाते हैं और सहारा लेने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक पल के लिए सांस लेने के लिए। और फिर क्या होता है? फिर होता है धड़म करके एक क्लिक, एक अजीब सी आवाज आती है। आप जिस बुक शेल्फ के साथ टेक लगा के खड़े थे उसके पीछे छुपा हुआ एक पुराना पत्थर का लिवर एक्टिवेट हो जाता है। आप ये सोचने लगते हैं कि भाई ये क्या चीज है। अच्छा, जितनी देर में आपका दिमाग अभी ये प्रोसेस ही कर रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है, कि जमीन हिलने लगती है, आपके पैरों के नीचे का पत्थर का फ्लोर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है और अगले ही लम्हे धड़म से आप एक गहरी पुरानी और अंधेरी सुरंग में जा गिरते हैं। अब क्या होगा? अब तो आपके हर तरफ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वो भी इतना गहरा अंधेरा कि आप कोशिश करते हैं कि आप कुछ तो देख पाए। लेकिन इस अंधेरे में जब आप अपने मुंह के आगे अपना हाथ रखते हैं तो वो भी आपको मुश्किल से नजर नहीं आ रहा होता। आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे ये जगह हजारों साल से किसी ने देखी ही नहीं और किसी को नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। ये सुरंग बिल्कुल रोम के मशहूर कैटाकॉम्स जैसी लग रही होती है, जहां जमीन के नीचे पत्थरों के दरमियान पुरानी कहानियां और दिलचस्प बातें छुपी हुई होती हैं। अब क्या होगा? आप अपने आप को तसल्ली देने लगते हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास आपका दिमाग, आपकी ऑब्जर्वेशन और स्केप रूम का चैलेंज है। साथियों, इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलने के लिए आपको तीन पुराने राजों का जवाब ढूंढना होगा। हर सही जवाब आपको रोशनी की ओर करीब ले जाएगा और अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपको और भी गहराई में फंसना हो सकता है। तो भाई, हमारे साथ तैयार हो जाइए, अपनी सोच के दरवाजे खोल दीजिए और अगर आपको लगता है कि आप इस अंडरग्राउंड में से बाहर निकल सकते हैं तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी आप वैसे वैसे हमें आंसर देते चले जाइएगा 666-22-107 पर, और देखते हैं आज के इस एस्केप रूम से कौन सा चैंपियन बाहर निकल सकता है। तो चलिए साथियों, अब एक अपना प्रॉपर वाला असल चैलेंज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वक्त आप घिरे हुए हैं, गिर गए हैं एक खामोश और अंधेरे टनल में। इतना अंधेरा, इतनी अंडरग्राउंड सुरंग कि वहां पे खड़े होना भी मुश्किल है। इतना गहरा अंधेरा है कि आप अपना हाथ अपने चेहरे के सामने भी नहीं देख सकते। आप आहिस्ता आहिस्ता दीवार को टच करते हैं, सहारा लेने की कोशिश करते हैं कि शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए। और अचानक आपकी उंगलियों को एक छोटी सी लकड़ी की शेल्फ महसूस होती है। क्या है ये? कोई ऐसी चीज तो नहीं जो मेरी बाहर निकलने में मदद कर सके? आप हाथ आगे बढ़ाते हैं और वहां कुछ छोटा सा आपको महसूस होता है, कुछ ऐसा जैसे आप फील करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सूखी हुई

ये कोई चीज है आपकी उंगलियों के दरमियान, ये कोई सूखी हुई चीज आ जाती है, क्या है ये? क्या ये आपकी मदद कर सकती है? पहला सवाल आपके जहन में ये आता है कि फंस तो मैं गया हूं, लेकिन क्या ये चीज मेरे लिए रिसोर्सफुल है? शायद यही आपकी सर्वाइवल की पहली उम्मीद हो। अगर आपको इस अंधेरी सुरंग में आगे का रास्ता देखना है तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा साथियों, जो बात मैं, जो क्लू मैं आपको देने लगी हूं उसको आपको सुलझाना होगा, क्योंकि यही वो पहला क्लू है जो आपकी मदद करने वाला है इस सुरंग से, अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने में। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे इस क्लू को। मैं लकड़ी की एक छोटी सी स्टिक हूं, मेरे सर पर एक चमकदार झिलमिलाता हुआ हिस्सा है, मैं जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन खाती हूं, लेकिन जैसे ही मुझे पानी पिलाया जाता है मैं मर जाती हूं। क्या हूं मैं? जरा सोचिए, मैं लकड़ी की एक छोटी सी स्टिक हूं, मेरे सर पर एक चमकदार झिलमिलाता हुआ हिस्सा है, मैं जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन खाती हूं, लेकिन जैसे ही मुझे पानी पिलाया जाता है मैं मर जाती हूं। सोचिए, क्या आप इस पहेली को समझ पा रहे हैं? अगर आप इस पहेली को समझ पा रहे हैं साथियों, और अगर आप इस एस्केप रूम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने जवाबात हमें टेक्स्ट कीजिए 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने जवाबात हमें भेजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है ये क्या चीज है जो आपकी उंगलियों के दरमियान एकदम से आ गई, और यही वो चीज है, यही वो पहली चीज है जो आपको बाहर निकलने में मदद करेगी, क्योंकि इस पुरानी सुरंग की हवा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है और आपको रोशनी तक पहुंचना है। समझ रहे हैं ना? 666-22107 पर मैसेज कीजिए और बताइए कि क्या है ये चीज। गौर से समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप हमें अपने जवाबात भेजते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आकर आपके जवाबात मौसूल करेंगे। तब तक के लिए हमारा ऑक्सीजन इतना है भाई कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। सुनते रहें FM 107 पर स्केप रूम सफा के साथ।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Aapne suna hame on air. Now follow us on Facebook and Instagram at FM 107 Qatar. Dil se Desi.
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस सब कुछ मिलेगा यहाँ कुछ मिलेगा यहाँ ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है MOI वीकली अपडेट आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर डोंट मिस इट
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: एब्सोल्यूट सिनेमा,
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: साथियों इस वक्त FM 107 की घड़ी में बज रहे हैं ठीक कितने बज रहे हैं भाई 2:01 और आप सुन रहे हैं सफा के साथ।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
2: तो भाई वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एस्केप रूम विद सफा और यहाँ पर आज हम एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। जाने से पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भाई देखिए सिनेरियो ये था कि आप गहरी सुरंग में फंसे हुए हैं और इतना गहरा अंधेरा है कि वहाँ पर आपको अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे, अपने खुद के हाथ, इतनी गहरी अंधेरे वाली सुरंग में आप फंसे हुए हैं। और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और वो सवाल कुछ ऐसा था कि मैं लकड़ी की एक छोटी सी स्टिक हूं, मेरे सर पर एक चमकदार झिलमिलाता हुआ हिस्सा है, मैं जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन खाती हूं लेकिन जैसे ही मुझे पानी पिलाया जाता है मैं मर जाती हूं, क्या हूं मैं? तो हमें आपके जवाब मौसूल हुए हैं एहसान, अब्दुल रहमान, यूसुफ भाई, रमेश, जकी, मोहम्मद, मुशीर आलम, इन सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जवाब है मैटस्टिक। मैं मैटस्टिक हूं और जैसे ही ये मैटस्टिक आपके हाथ आती है आगे की कहानी स्केप रूम से बढ़ने की हम शुरू करते हैं। देखिए जैसे ही ये मैटस्टिक हाथ आती है आपको भी समझ में आ गया कि ये माचिस है, आप कोशिश करते हैं इसको जलाने की और जैसे ही जलाने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी लौ इसमें से रोशन हुई, उसकी वजह से पूरी की पूरी सुरंग में रोशनी फैल गई। आपको इस जलती हुई मशाल की वजह से पूरी की पूरी सुरंग अब बाकायदा दिखाई देने लगी, जिस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक लंबी गहरी रस्तों वाली सुरंग, बहुत लंबा चौड़ा हॉलवे आपको दिखाई देने लगा जो हर तरफ जा रहा था। कुछ रास्ते पुराने पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे इसमें से और कुछ तो इतने गहरे हैं कि उनका कोई अंजाम नजर ही नहीं आता, मतलब आप जहां तक देखें वो नजर आ रहे हैं। लेकिन रुक जाइए, रुकिए जरा एक मिनट रुकिए, ये कैसी आवाज है, कैसी आवाज है ये? आप सांस लेते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई और भी आपके साथ साथ सांस ले रहा है। आप रुकते हैं, थोड़ा घबराते हैं, आप फिर से सांस लेते हैं, आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं भाई, आपको डर लग रहा है कि ये क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है ये? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ना ना ना ना ना, ना। ये कोई भूत नहीं है। देखें इस मामले में अपना दिल थामे, अपनी अपनी सोच को उजागर करें, ये साइंस का कमाल है। जब आपकी आवाज इन सख्त पथरीली दीवारों से टकराती है ना तो एक साउंड वेव वापस आती है। हाँ, वो साउंड वेव लौट कर आपको फिर से सुनाई देती है जो कि आपको थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि आप घबराए हुए हैं। अब इस ही को आगे लेकर आपने आगे बढ़ना है क्योंकि भाई ये एस्केप रूम है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, वक्त बहुत कम रह गया है हमारे पास। तो हमारा दूसरा क्लू इस जगह से बाहर निकलने का ये है, जरा गौर से सुनिएगा, ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई मुंह नहीं होता लेकिन हमेशा आपके सवाल का ये जवाब देती है, आपको हमेशा इससे जवाब मिलता है। इसका कोई मुंह नहीं होता, इसका कोई जिस्म भी नहीं होता लेकिन हवा के साथ साथ ये जिंदा हो जाती है। एक दफा फिर से गौर से सुनिएगा, इस चीज का कोई मुंह नहीं होता लेकिन हमेशा आपको ये जवाब देती है। इसका कोई जिस्म नहीं होता लेकिन हवा के साथ साथ ये जिंदा हो जाती है। जब भी आप आवाज लगाते हैं तो दीवारों से टकराकर ये वापस आती है, और ये वही चीज है जो आपका दूसरा क्लू है, आपकी मदद करने वाली है यही चीज इस एस्केप रूम से बाहर निकलने में। तो जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए 666-22-107 पर। जरा सोचिए एक ऐसी चीज जिसका मुंह नहीं होता लेकिन वो आपको जवाब देती है, जिसका कोई जिस्म नहीं होता लेकिन वो हवा के साथ साथ जिंदा हो जाती है, क्या है ये चीज? 666-22-107 पर मुझे मैसेज करके बताइए। वक्त बहुत कम रह गया है तो जरा जल्दी पैनिक मोड में मत आइए, क्योंकि पैनिक में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, उसे हर साइंटिफिक लॉजिकल चीज समझ में नहीं आ पा रही होती। लेकिन आप ये काम कर सकते हैं, जरा साइंस की लॉजिक लड़ा कर देखें। खामोश अंधेरा टनल जहां पे एक पिन की आवाज भी हो तो आपको फौरन सुनाई दे दे, वहां पथरीली दीवारों में आपको अपनी सांस की आवाज भी टकरा कर वापस सुनाई दे रही है, क्या है ये चीज जो आपकी मदद करने वाली है इस सुरंग से बाहर निकलने में? बताइए 666-22-107 पर, और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी विद सफा ऑन स्केप रूम।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखिए।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एस्केप रूम विद सफा ऑन एफएम 107, जहां पर हम एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं उस एक गहरे अंधेरे टनल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एंशिएंट मिस्ट्रीज का एक हिस्सा है। अभी तक मामला ये हुआ है कि आप गिरे एक गहरे अंधेरे टनल में, आपने बहुत भरपूर कोशिश की कि अपने आप को संभालने, लेकिन आप ना संभाल पाए और हुआ ये कि आप उस अंधेरे टनल में जा गिरे, आपके पैरों से जमीन खिसकती चली गई और एक ऐसी सुरंग में जा गिरे जहां पर आप अपना हाथ तक ना देख पा रहे थे खुद का। आपके हाथ में अचानक से चलते चलते दीवारों के सहारे जब आप चलते जा रहे थे तो आपके हाथ में एक लकड़ी की कोई चीज लगी और आपने कहा ये क्या चीज है, पता चला कि ये मशाल है। आपने उसको जलाया, अब आप आगे की तरफ जा रहे हैं और आपको दूर दूर तक सुरंगें ही सुरंगें नजर आ रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस सुरंग में जाया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। तो भाई आगे का सफर तय करते हैं, तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हमने हिम्मत करके इस एस्केप रूम से बाहर निकलना है। जाने से पहले मैंने आपसे सवाल ये किया था कि जरा मुझे बताएं कि ये क्या चीज है जो साइंटिफिक वे में जब दीवारों से टकराती है तो ये लौट कर हमें वापस जवाब देती है। तो भाई आप लोगों का मैसेज आया है एको, और जो लोग इस रिडल को सॉल्व कर पाए उनके नाम हैं अब्दुलरहमान, यूसुफ और जकी, बाकी तो सब पीछे रह गए। अब हम आगे का सफर तय करते हैं। अब मामला ये है कि आप आगे चलते हुए जा रहे हैं, सुरंग बहुत लंबी चौड़ी आपको दिखाई दे रही है, आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई बस किसी तरीके से ना मुझे रास्ता मिल जाए। आपको बिल्कुल सही जगह पर एक पुराना सा चलते चलते दरवाजा दिखाई देने लगता है। आपने उस पुराने इजिप्शियन स्कार्प को के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सही, वही इजिप्शियन पुराना स्कार्प आप उठाते हैं और आहिस्ता से उसे गोल निशान की तरफ, आपके सामने एक दीवार है जिसके अंदर एक गोल सा निशान बना हुआ है। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये स्कार्प जो नीचे गिरा हुआ है ये क्या है, दीवार के अंदर गोल निशान बना हुआ है, ये क्या मसला है, ये क्या मामला है। आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है। आप एक बड़ी सी स्टोन वॉल के सामने खड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ना कोई दरवाजा है, ना कोई हैंडल है, ना कोई लॉक नजर आ रहा है, सिर्फ एक छोटा सा गोल निशान है जिसके किसी खास चीज पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये खास चीज इसके अंदर फिक्स होगी। आप नीचे देखते हैं और जमीन पर एक छोटी सी पत्थर की कार्विंग पड़ी होती है। जब आप उसे उठाते हैं तो ये देखते हैं कि भाई ये एक पुरानी इजिप्शियन बीटल की कार्विंग है। पुराना इजिप्शियन बीटल, हजारों साल पहले लोग इस सिंबल को हिफाजत, खुशकिस्मती और नई जिंदगी की निशानी समझा करते थे। क्या है ये? कहीं ये इस दरवाजे की चाबी तो नहीं है? कहीं ये दीवार जो आपके सामने है जिसके अंदर एक गोल सा निशान है, कहीं ये इसको खोलने के लिए तो नहीं है? लेकिन मामला ये है कि आपने अभी अपनी इस तीसरे क्लू को सॉल्व करना है बाहर निकलने के लिए, और क्लू ये है कि मैं एंशिएंट इजिप्ट का एक बीटल हूं। मुझे पत्थर में तराशा गया था, लोग मुझे गुड लक, प्रोटेक्शन और रीबर्थ यानी दोबारा जिंदगी की निशानी समझा करते थे। क्या हूं मैं आखिर? आपको बस करना इतना है कि आपने इस बीटल का नाम बताना है हमें। ये जो बीटल की कार्विंग आपको मिली है इसका नाम बताना है। इजिप्शियन लोग अपने जमाने में जो सिंबल बनाया करते थे बीटल का, जिसको हिफाजत, खुशकिस्मती और नई जिंदगी की निशानी समझा करते थे, वो उस बीटल का नाम क्या था? आपने सिर्फ वो नाम बताना है। अगर आपका सही जवाब हुआ तो ये सीक्रेट वॉल खुल जाएगी और आप एस्केप रूम से आजाद हो जाएंगे। अपना फाइनल आंसर हमें जरूर लिखकर भेजें 666-22-107 पर। याद रखिए, इस एस्केप रूम से निकलना नामुमकिन नहीं है। ये आखिरी रिडल सॉल्व करके, ये इस इजिप्शियन बीटल का नाम मुझे बताकर आप इस एस्केप रूम से बाहर निकल सकते हैं, इस एस्केप रूम के चैंपियन बन सकते हैं। क्या पहचान पाएंगे आप, या फिर ये पुरानी सुरंग आपको हमेशा के लिए अपने अंदर छुपा लेगी? बताएं हमें, क्या कहते हैं उस बीटल को? सुन रहे हैं आप एस्केप रूम विद सफा ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एस्केप रूम विद सफा ऑन एफएम 107।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देखिए।
0: तो भाई साथियों, मामला कुछ ऐसा चल रहा है कि आप गिर गए हैं एक बहुत ही पुरानी अंधेरी सुरंग के अंदर और आप अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बाहर का। ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम चल रहा है, जल्द से जल्द आपको बाहर निकलना है। आपने जलाई एक मिसाल, आपने अपनी आवाज़ के एको को फॉलो करते हुए, दीवारों का सहारा लेते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। आप कोशिश कर रहे हैं सुरंग का एंड ढूंढने की और इतने में आपको एक दीवार ऐसी नजर आती है जिसके अंदर एक सुराख है और सुराख के साथ ही आपको एक गोल सा कोई कार्विंग सी मिलती है जिसके अंदर एक बीट

बीटल बना हुआ है, एक ऐसा बीटल जिसको एंशियंट जमाने में लोग कहते थे कि भाई ये नई जिंदगी की निशानी है, ये खुशकिस्मती की हिफाजती तौर की निशानी है। और जिन लोगों ने इसका सही जवाब भेजा है वो हैं यूसुफ, वो हैं जकी, वो हैं मिस्टर खान और अब्दुल रहमान। इन्होंने बिल्कुल सही सही बताया कि वो एक्चुअली में उसको कहा जाता है स्कार्प। बिल्कुल सही, आप उस पुराने इजिप्शियन स्कार्प को उठाते हैं और आहिस्ता से उसे उस गोल निशान में फिट कर देते हैं और फिर आपको आवाज आती है कुछ ऐसी, पूरी सुरंग हिलने लगती है, पत्थर की दीवारें कांपने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुराना कोई राज दोबारा से जिंदा हो रहा हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भारी सी स्टोन की वॉल खुलने लगती है, तेजी से एक रोशनी अंदर आती है, इतनी रोशनी कि कुछ लम्हों के लिए आपकी आंखें झुंझला सी जाती हैं। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो भाई आपको नजर आता है खूबसूरत सा, आपकी आंखों को नजर आता है वो खूबसूरत सा म्यूजियम का हिस्सा जहां म्यूजियम का गार्डन बना हुआ था और आप वापस आ चुके थे, आप बच गए। क्या तो जबरदस्त सफर था ना साथियों, एक छुपी हुई सुरंग, पुराने जमाने के क्लूज और एको की आवाजें और एक एंशिएंट स्कार्ब ने आपको वापस रोशनी तक पहुंचा दिया। तो साथियों ढेर सारी मुबारकबाद उन लोगों को जो कि इस एस्केप रूम से बाहर निकल पाए। और अब भाई आप सभी को ये चैलेंज जीतने के लिए मुबारकबाद। और अब भाई वक्त हो चुका है हमारे चैंपियंस के नाम अनाउंस करने का। तो भाई हमारे चैंपियंस रहे यूसुफ, अब्दुल रहमान, जकी और खान। आप लोगों को ढेर सारी मुबारक हो, जीत गए आप। और भाई आज के मास्टर आर्कियोलॉजिस्ट का खिताब आप लोगों को दिया जाता है, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने इस चैलेंज को जीत लिया है, बल्कि साबित कर दिया है कि आपका दिमाग क्लूज ढूंढने और मुश्किल पहेलियां सॉल्व करने में मुकम्मल तरीके पर एक्टिव है। तो भाई साथियों इस एडवेंचर का सफर आज यहीं पर कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए एडवेंचर पे। कल भी मेरी और आपकी मुलाकात रहेगी एक और नए चैलेंज के साथ। क्या आप एस्केप रूम फिर से ज्वाइन करेंगे या कल ज्वाइन करके कहीं किसी एस्केप रूम में फॉरएवर लॉक्ड इन रह जाएंगे? सोचिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। और भाई जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा। स्केप रूम से बाहर निकलने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई आप सुन रहे थे सफा के साथ स्केप रूम ऑन FM 107 दिल से देसी। मेरी तरफ से साइनिंग आउट, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच का एक और एपिसोड FM 107 कतर पर, जहां हम बात करते हैं उन डेली वर्क प्लेस हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो भाई आज का टॉपिक है सस्टेनेबल ऑफिस मीटिंग्स, यानी ऐसी मीटिंग्स जो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होती हैं। साथियों, ऑफिस मीटिंग्स हर वर्क प्लेस का नॉर्मल हिस्सा होती हैं, लेकिन इन मीटिंग्स के पीछे जो पेपर यूसेज, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं, वो अक्सर अननोटिसेबल ही रह जाती हैं। इको स्विच हमें ये याद दिलाता है कि हर मीटिंग सिर्फ एजेंडा नहीं बल्कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी क्रिएट करती है। जरा सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग है जहां 6 लोग बैठे हुए हैं, हर किसी के सामने प्रिंट आउट्स हैं, नोट्स हैं और प्रेजेंटेशंस के लिए प्रोजेक्टर चल रहा है। मीटिंग सिर्फ 20 मिनट की होती है, लेकिन उसमें 10 से 15 शीट्स पेपर हर पार्टिसिपेंट के लिए प्रिंट होता है। मतलब सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग में लगभग 60 से 80 शीट्स पेपर यूज हो ही जाता है। भाई अगर इको स्विच पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम डिस्कशन के साथ साथ फॉरेस्ट का छोटा सा हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं। चलिए भाई, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको सरप्राइज कर रख देंगे उनकी तरफ चलते हैं। साथियों, ग्लोबली ऑफिसेज हर साल बिलियंस ऑफ शीट्स पेपर सिर्फ मीटिंग्स और रिपोर्ट्स के लिए यूज करते हैं। एक एवरेज A4 शीट बनाने में लगभग 10 लीटर पानी यूज होता है। अगर एक ऑफिस 50% मीटिंग्स को डिजिटल कर दे तो वो साल भर में हजारों लीटर पानी और हजारों दरख्तों को सेव कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अननेसेसरी प्रिंटिंग ऑफिस के कार्बन फुटप्रिंट का सिग्निफिकेंट पार्ट होती है, स्पेशली रिपीटेड ड्राफ्ट्स एंड मीटिंग नोट्स की वजह से। साथियों, इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, मीटिंग्स को पेपर हैवी से डिजिटल फ्रेंडली बनाना। जब हम सस्टेनेबल मीटिंग्स अडॉप्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली वेस्ट रिड्यूस करते हैं और एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक मिड साइज कंपनी अपनी मीटिंग्स को फुली डिजिटल कर दे तो वो अपना पेपर कंजम्पशन 40% तक रिड्यूस कर सकती है। साथ ही एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाता है जब अननेसेसरी प्रिंटिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलिमिनेट होती है। तो भाई जरा सोचिए ना, मीटिंग के लिए ब्यूटीफुली प्रिंटेड एजेंडा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मीटिंग के एंड तक वो एजेंडा टेबल पर ही रह जाते हैं और 80% यानी 80% लोग उसे यूज ही नहीं करते। बाद में या तो फिर वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं या वेस्ट बिन में। तो साथियों, इको स्विच अप्रोच कहता है कि अगर वही एजेंडा ईमेल, शेयर्ड डॉक्यूमेंट या ऐप पर हो तो सेम इन्फॉर्मेशन जीरो पेपर वेस्ट के साथ डिलीवर हो सकती है। तो भाई अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सिंपल इको स्विच टिप्स की जो हर ऑफिस फॉलो कर सकता है। पहला ये कि पेपरलेस मीटिंग्स अडॉप्ट करें, यूज डिजिटल टूल्स लाइक शेयर डॉक्स और टैबलेट्स। दूसरा, अननेसेसरी प्रिंटिंग अवॉइड करें और ड्राफ्ट डिजिटली रिव्यू करें। तीसरा, प्रोजेक्टर या स्क्रीन शेयरिंग यूज करें इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड प्रेजेंटेशंस। चौथा, मीटिंग ड्यूरेशन ऑप्टिमाइज करें ताकि अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीयूजेबल स्टेशनरी या व्हाइट बोर्ड्स यूज करें इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज पेपर नोट्स। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि मीटिंग सिर्फ फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं होती बल्कि एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी का टूल भी बन सकती है। जब हम मीटिंग्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं तो हम सिर्फ एनवायरमेंट को नहीं बचाते बल्कि टाइम और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कंपनीज डिजिटल मीटिंग्स अडॉप्ट करती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग स्पीड भी बेहतर ही होती है। आखिर में भाई, इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि हर मीटिंग का इम्पैक्ट सिर्फ बोर्ड रूम तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि एनवायरमेंट तक भी जाता है। हर सेव पेज, हर अवॉइडेड प्रिंट आउट और हर डिजिटल नोट एक छोटा सा

0: स्टेप है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। तो भाई अगली बार जब आप मीटिंग अटेंड करें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन करें। कैन दिस मीटिंग बी पेपरलेस? यस इट कैन बी। तो भाई इसी के साथ मैं हूँ जफा, आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर डिस्कशन सिर्फ टॉक टॉक नहीं होता बल्कि एक ग्रीन एक्शन भी होता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारते दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी RJ माविश खान और आज हम बात करेंगे रोजाना जिक्र की अहमियत पर। अल्लाह का जिक्र दिल को सुकून देता है और इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जिक्र का मतलब है अल्लाह को याद करना, चाहे जबान से हो चाहे दिल से। रोजाना की जिंदगी में जब हम छोटे छोटे जिक्र जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ते हैं तो ये हमारे दिल को रोशन रखते हैं और नेगेटिव सोच को दूर करते हैं। जिक्र के लिए किसी खास जगह या वक्त की पाबंदी नहीं, बल्कि ये हर वक्त किया जा सकता है। आज के बिजी रूटीन में जरूरी है कि हम अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र में जिंदा रखें। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल अमल है। आज का अमल ये है कि दिन भर छोटी छोटी फुर्सत के लम्हों में अल्लाह के जिक्र की आदत डालें और इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है। और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: हवा के झोंके आज मौसमों से टूट गए।
5: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने।

0: इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। ये टॉपिक है क्लीनिंग द प्लैनेट विद टेक। देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है पोल्यूशन। समंदर प्लास्टिक से भरे हुए हैं, हवा पोल्यूटेड है और जमीन भी सेफ नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है। आजकल AI और रोबोट्स पोल्यूशन साफ करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ओशंस में स्पेशल रोबोट्स और ड्रोन्स प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। ये रोबोट्स खुद डिसाइड करते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा कचरा है। अंडरवाटर रोबोट्स भी यूज हो रहे हैं जो समंदर के नीचे जाकर प्लास्टिक और वेस्ट निकालते हैं, जहाँ इंसान का पहुँचना मुश्किल था। AI सिस्टम सेटेलाइट डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करते हैं कि पोल्यूशन कहाँ जमा होगा, ताकि उसे पहले ही कंट्रोल किया जा सके। जमीन पर भी रोबोट्स वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करते हैं, प्लास्टिक अलग, मेटल

0: अलग, ऑर्गेनिक चीजें अलग, जो रिसाइकलिंग प्रोसेस को फास्ट और इफेक्टिव बनाती हैं। दोस्तों, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि ड्रोन्स ऑटोमेटिकली पोल्यूशन डिटेक्ट करें और शायद एयर को भी हवा से निकाला जा सके, उसे क्लीन किया जा सके। ये बात समझना आपके और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि प्लैनेट बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम AI और रोबोट्स का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी जमीन को फिर से क्लीन और हेल्दी बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम कचरा कम मिनिमाइज करने की आदत तो अडॉप्ट करें, एटलीस्ट इसकी शुरुआत हम घर से ही कर लेते हैं। अपने घर के कचरे को जो है वो प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना, उसके अलावा जब आप पब्लिक प्लेसेस पर जाते हो तो कौन सा कचरा कहाँ फेंकना मुनासिब है, आप देख रहे होते हो कि डिफरेंट बिन्स होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है, मेंशन होता है कि यहाँ पर आप पेपर डालिए, यहाँ पर आप प्लास्टिक डालिए एक्सेट्रा, तो आप जो है थोड़े से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो और जहाँ पर जो कचरा लिखा है जिस तरह का उसको वहीं डालिए जिससे उसको रिसाइकिल किया जा सके। क्योंकि अगर हम अभी से नहीं सोचेंगे और अपने फ्यूचर को परेशानी से और मुसीबत से भरेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम आज से थोड़े से सतर्क रहें और इन चीज़ों का ख्याल रखें। चलिए, ये तो एक अच्छी बात, एक अच्छी न्यूज़ है कि प्लैनेट को क्लीन किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, वाकई जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता वहाँ पे रोबोट्स पहुँच के समंदर से प्लास्टिक, कचरा और हवा जिस तरह से पोल्यूट हो रही है, जो ज़मीन अनसेफ होती चली जा रही है, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कम करने, मिनिमाइज करने में कितनी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मशीन और AI के आने के सिर्फ ड्रॉबैक्स हैं या हम सिर्फ ये डरते ही सोचते रहें, बल्कि AI जो है हमारी लाइफ को आसान भी बना रही है। टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ हमेशा आसान हुई है, लेकिन हाँ, छोटे मोटे चैलेंजेस तो हमेशा आते ही आते हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिल रहा है। बस इसी तरह से एक गुड बैलेंस के साथ टेक्नोलॉजी को अगर इस्तेमाल किया जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो तो चीज़ें आसान ही होंगी। फिलहाल दोस्तों, वक्त है कि मैं आपसे इजाजत लूँ इस टॉपिक पे। कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक पे हम मिलकर बात करेंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: FM 107. Time check. Time
1: check. हाँ जी हबीबी, टाइम फॉर द टाइम चेक. एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:01 और अभी से लेकर 5 बजे तक हमारा और आपका साथ होने वाला है और आपके अपने मर्जी के गाने भी होने वाले. क्या है हाल चाल यार, संडे का दिन है, 2 दिन का गैप ऐसा लगता है, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ठीक भी है. कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर आज भी बातें हो जाती आप लोगों से तो मज़ा आता है, नहीं फ्राइडे सैटरडे के दिन. लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है यार 3 दिन हो जाते छुट्टी है, वो वाला हो जाए जैसे जापान आपान में चल लिया, 4 दिन काम करो 3 दिन छुट्टी करो, ऐसे यूरोप वाला. और कहीं कहीं तो ये भी बातें चल रही है कि 3 दिन काम करो 4 दिन छुट्टी करो. मुझे भी इस कंपनी में अपनी सीवी देनी है, ऐसी कंपनी में जहां 4 दिन छुट्टी 3 दिन काम, मजा आ जाएगा नहीं. लेकिन कहां भाई, अपनी किस्मत ऐसी कहां है, अपने को तो करते रहो मजदूरी. बाकी इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे, ये शो द रिक्वेस्ट शो जहां पर आपकी अपनी मर्जी के गाने प्ले होते हैं. और देखो भाई क्या है कि आज भी ऐसे ही शुरू करेंगे, आपके अपने मर्जी के गाने होंगे और हर रोज की तरह या हर दिन की तरह एक थीम होता है, उस थीम के बेसिस पर ही हम गाने प्ले करते हैं. और आज की थीम क्या है उस पर आते हैं. और आज की थीम में बहुत दिन हो गया यार, वो लोग कहते हैं ना कि फला वाला गाना बजा दो और वो फिर 1997 का निकलता है.

0: 1998 का निकलता है, जैसे उदित ने, अलका ने गाया हो या लता जी ने गाया हो, वो गाना फिर प्ले नहीं कर पाते। मैंने कहा यार एक ऐसा दिन होना चाहिए कि उदित चाचा का दिन आए, अलका दीदी गाएं साथ में, तो क्यों ना आज उस दिन को रखा जाए, उस दिन का थीम रखा जाए। तो उस दिन को आज हमने एक दिन यानी कि आज के दिन ले आए जहां पर लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें उदित नारायण के गाने होते हैं, अलका याग्निक के गाने होते हैं, उदित और अलका दोनों के गाने होते हैं। तो अगर आप आज मुझसे गाने के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए। जिन्होंने पहले रिक्वेस्ट की है उनकी रिक्वेस्ट भी, उदित वाली और अलका वाली, वो भी आज प्ले होगी। तो आ जाओ 666-22107 पे, 666-22107 पे। फिलहाल 4:03 हमारे स्टूडियो की घड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो हल्के ऐसे मैसेज पे जरा बढ़ लेते हैं, और ये नया मोबाइल हमारे हत्थे चढ़ गया है। सबसे पहले ये मैसेज है किस भाई का, हुसैन साहब का, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है भाई, लगा दो फिर मैं निकला गड्डी लेके ओल्ड वाला कर दो। अरे यार ये वाला गाना, मैं निकला, ये गाना मिल जाए, किस मूवी का था ये, मैं निकला, अरे वो था ना जिसमें भाई कहीं दूसरे मुल्क चले जाते हैं, वहाँ बवाला वाला काट लेते हैं, फिर उनको हैंडपंप से बहुत प्यार होता, वही वाली ना। मैं निकला गड्डी लेके। चलो अपन पुराना वाला ढूंढते हैं, अगर ये मिलता है तो बिल्कुल मिल ही जाएगा, इसलिए डिलीट भी कर दिया क्या। खैर एक और मैसेज है मोहम्मद फैजान का, कहते हैं चांद छुपा बादल में, आय हाय जहरीला गाना, ठीक है मैं ये भी गाना निकाल लूंगा। फिर एक और ये मैसेज किस भाई का है, हैप्पी संडे इवनिंग, हैप्पी संडे इवनिंग यूसुफ भाई, आपको भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फिर एक और मैसेज है, सलाम वालेकुम फजल भाई, खादिर अब्दुल हादी, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग, अस्सलाम वालेकुम, मौका मिलेगा तो हम तुमको बता देंगे। ओके कितना प्यार करते खादिम भाई, ठीक है मैं प्ले कर दूंगा इंशाल्लाह, ढूंढता हूँ। मोहम्मद कासिम ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम फजल भाई, कैसे हैं आज, करण औजला का लगा दे, ले भाई थीम तो सुन लो मेरा भाई, उसके बाद रिक्वेस्ट करो, फज्जू भाई कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, थैंक यू सो मच। अच्छा गाना ये गाना कह रहे हैं यार, मैं मुझे लगा मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैंने थैंक यू सो मच बोल दिया, बहुत ज्यादा ही मैं रिदम में था। अशफाक मियां प्ले करता हूँ आपका, थोड़ा सा रुक के, हिशाम भाई का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। करण अर्जुन वाला प्लीज, करण अर्जुन वाला कौन सा गाना, शेख अरफान अलकासमी सलाम कर दें, वालेकुम अस्सलाम, करण अजला वाला लिख दिया है, करण अर्जुन वाला आई मीन। फिर एक ऑडियो है, उस ऑडियो को कुछ देर में हम पढ़ेंगे सुनेंगे आई मीन। फिर उसके बाद ये एक और मैसेज किसका है, सलाम अनीश अलखोर से हैं, सॉन्ग डीजे वाले पर, ये भाई कौन, अलका ने कॉल, उदित ने ये गाना गाया है डीजे वाले, बाबू मेरा गाना बजा दिएगा। अनीश भाई थोड़ी करेक्शन होने का, करेक्शन ये है कि आज की थीम है कि उदित और अलका के गाने ही प्ले होंगे, और उदित अलका ने डीजे वाले बाबू गाए नहीं है, सोचो अगर गाए होते तो कैसा गाया होता, अगर वो गाया भी होता तो मैं चलाता नहीं भाई, मैं अपने कान में गरम तेल डाल लेता अगर इन दोनों ने गाया होता ही गाना। ईयर्स में, ईयर्स ईयर्स जहां से सुनाई देता है वहां गरम तेल डाल लेता। आगे बढ़ेंगे हल्के हाथ से, फैसल भाई ने मैसेज किया है ऑडियो में, मैं पढ़ूंगा यार, थोड़ा सा रुक के आप अपनी प्रोफाइल पे नाम ही चेंज कर लो मेरा भाई। मोहम्मद बिलाल कहते हैं हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, वो ऐसे पुराने गाने, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, ठीक है। खादिर भाई ने रिक्वेस्ट की थी तुमसे मिलने की तमन्ना है, ओफो पहले गदर मचाएंगे गदर के गाने से, दोस्त कहाँ है वो वाला गाना, अब ये पुराने जमाने वाली गदर है, डिलीट कर दिया क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई, पुराने जमाने वाली गदर किधर गई यार, ये क्या हो जाता है, पुराने जमाने वाली गदर किधर है, ये लो गदर एक प्रेम कथा 2000, हाँ एक ही मिली, उड़ जा काले कावा, ये तो दिख गया है, लेकिन अपने को ढूंढना है हुसैन भाई की रिक्वेस्ट पे, मैं निकला गड्डी लेके, कहाँ है यार ये गाना? हाँ निकला, आया, ये 2023 का और ये 2001 का। चलो 5 मिनट का गाना भाई मेरा, उदित नारायण की आवाज में आज का आगाज दोस्तों हम करेंगे। मैं निकला गड्डी लेके, फिर उसके बाद तुमसे मिलने की तमन्ना है कादिर अब्दुल की रिक्वेस्ट पे, फिर इंजीनियर भाई मोहम्मद फैजान ने का चांद छुपा बादल में, 3 गाना बैक टू बैक आप लोगों के लिए आ रहा है FM 107 पे, एंजॉय कर रही है।
2: मैं निकला गड्डी लेके।
0: लिफ्ट मिलेगी क्या पाजी? एप्लीकेशन से बुक करेंगे? नहीं, एप्लीकेशन नहीं, लिफ्ट दे दो यार, अपन पहुंच जाएंगे। अलखोर जाना था? हाँ कह रहे हैं,

0: वक्त ही शुरुआत है दोस्तों। सलाम अलैकुम,
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: क्या कह, थोड़ी देर हो गई आते आते, कोई बात नहीं, बिल्कुल परफेक्ट समय पे आए हो। जल्दी से मोबाइल उठाओ, 6662 2107 इस नंबर को लिखो और व्हाट्सएप पर आ जाओ। 666-22-107 पे आज उदित और अलका के गाने आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अलका कुमार सानू हो सकती हैं, कोई मसला नहीं, हो सकते हैं सॉरी तो ये दोनों भी हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है यार, कोई टेंशन ही नहीं है। और ये ऐसे गाने हैं जो कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं और मुझे पता कई दिल जले आने वाले, बहुत ज़्यादा लोगों को ये गाना इसलिए भी पसंद आएगा क्योंकि ये गाना सुनने के बाद ना आप किसी चीज़ से कनेक्ट कर लेते हैं। या तो आप गर्मियों की छुट्टी से कनेक्ट कर लेंगे, नानी के घर से कनेक्ट कर लेंगे, नानी के घर में जब घूमते हैं तो मोहल्ले में बहुत से दोस्त लोग रहते हैं ना, उनको कनेक्ट कर लेंगे, अपने ही मोहल्ले में कनेक्ट कर लेंगे, अपने मोहल्ले छोड़ो, अपने आप स्कूल से किसी को याद करते होंगे ना आप, दोस्तों को, उनसे आप कनेक्ट कर लेंगे। वो चीज है यार अलका और उदित और कुमार सानू जैसे बेहतरीन सिंगर में। कुमार सानू वाले पर भी आएंगे किसी और दिन, लेकिन आज अलका या फिर उदित दोनों में से कोई एक जरूर होने चाहिए, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप का नंबर है 666-22-107, 666-22-107। बाकी तीन गानों पर आते हैं। पहला गाना है पहली पहली बार मोहब्बत की है, अलका और कुमार सानू की आवाज में। उसके बाद का गाना है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, उदित और अलका याग्निक की आवाज में। उसके बाद है गाना हर किसी के दिल में, ये भी बड़ा अच्छा ही गाना है, उदित नारायण और अलका का है, और ये है 2002 की मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया। बहुत ही लाजवाब ये गाना है, ऑल्दो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, लेकिन जिनके बीच फेमस है उनके बीच फेमस है। किन किन लोगों ने रिक्वेस्ट की है इन गानों की, वो मैं आपको बता दूं। सबसे जो पहला गाना है पहली पहली बार मोहब्बत की है, वो रिक्वेस्ट किया है सुहेल भाई ने, मोहम्मद सुहेल, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, वन रिक्वेस्ट पहली पहली बार मोहब्बत की है। ओके, तो आपका गाना पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, ये मैसेज किया है मोहम्मद अशफाक ने, इनका गाना दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हर किसी के दिल में ख्याल, ओ क्या बात है मोहम्मद बिलाल भाई। तो इन तीनों को रिक्वेस्ट पे ये तीन गाने जो हैं आ रहे हैं बैक टू बैक, इंजॉय करिएगा मज़े से, क्योंकि आज की थीम है अलका और उदित के गाने। बाकी मैसेज पर एक मैसेज है, सलाम फजील भाई, पश्तो सॉन्ग, भाई पश्तो में किसी का नाम उदित और अलका है तो मैं चला दूंगा, मैं वादे से मुकरता नहीं हूं, बस थीम पर रहता हूं, ये मसला है जावेद भाई। अगर कोई है उदित नाम का मेरे को बता दो, मैं चला दूंगा, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। ये क्या मौका मिलेगा बन, अच्छा ये खादिम भाई की रिक्वेस्ट, खादिम भाई की रिक्वेस्ट थोड़ी रह गई थी, मौका मिलेगा तो बता देंगे, मौका मैं देख लेता हूँ, अगर ये गाना मुझे मिलता है तो मौका मिलेगा तो अपन चला देंगे। हिचकी आ गई। हाँ तो थोड़ा सा अभी ये तीन गाना अपन सुनाते हैं आपको, और फिर जब वापस आएंगे तो ये मौका वाला गाना भी लेकर आएंगे। सुंदर FM 107, रिक्वेस्ट करो 666-22-107 पे।

0: उदित और अलका की आवाज में हर किसी के दिल में। ये गाना FM 107 पे। क्या गाने की रिक्वेस्ट है बाबा यार, है तो यार लोगों का टेस्ट गाने में है तो लाजवाब, मानना पड़ेगा भाई साहब आपने जो अपना टेस्ट डेवलप किया है। रिसेप्टर्स अच्छे हैं।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: तो भाई 4:37 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, बाकी 3 गानों की जल्दी से बारे में बात कर लेते हैं। उदित और अलका के अगेन जो गाने आ रहे हैं, सबसे पहला गाना खादिम भाई की रिक्वेस्ट पे, मौका मिलेगा तो, क्या बात है ये भी गाना यार। वैसे भी यार अलका के जो गाने रहे हैं, उदित के, कुमार धानो के जो गाने रहे हैं, वो आप आज से 10 साल बाद भी प्ले कर दे तो अच्छा लगेगा यार, है ना, मजेदार। ये मीका सिंह है दोनों, तीनों एक्चुअली उस जमाने के, लेकिन आज तो फिलहाल हम सिर्फ अलका और उदित के बारे में बात कर रहे हैं। एक और गाने की रिक्वेस्ट थी, वो मैंने प्ले नहीं करी, मैं भूल गया था, और वो इसलिए नहीं प्ले की थी क्योंकि वो बाल सुब्रमण्यम का गाना था, मैंने जब चेक किया तो। बाकी उदित का पहला जो गाना आ रहा है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, फिर ये रिक्वेस्ट किसने की है, ऑब्वियसली खादिम भाई ने, फिर यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे है दिल लगा लिया है, मैंने तुमसे प्यार करके, क्या गाना, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता, उदित और अलका का है ये। तीसरे नंबर पे एक गाना है, सोचेंगे तुम्हें प्यार, कुमार सानू का है लेकिन ये गाना। तो तीसरे नंबर वाला जो गाने की रिक्वेस्ट की थी भाई ने, वो अपन तो प्ले नहीं कर पाएंगे, बट एक है जिस दिन देखेंगी तुमको नजर, दीवाना मूवी का ट्रैक है। तो ये गाना एक्चुअली किसी और नाम से है, तो मैं इसको अभी भी सर्च करने पर लगाऊँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ये प्ले कर दूंगा, और अगर नहीं मिला तो फिर माजरत मेरा भाई। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये मुझे लगता है शायद इसी की एक आखिरी लाइन है, लेकिन इसके गायक जो है ना वो कुमार सानू, अगर असल में ये नहीं निकला तो। बाकी 2 गाने तो आ रहे हैं, मौका मिलेगा खादिम का और दिल लगा लिया है यूसुफ भाई का, बाकी सोचेंगे तुम्हें प्यार मुझे जो लगता है वही लाइन है जो भाई ने रिक्वेस्ट की है। उसके बारे में अभी थोड़ा रिसर्च कर ले फिर, वरना थीम से अगर हटे तो कोड़े वाले भाई बाहर तैयार हैं, उनकी चाबी तैयार है, कोड़े रूम में ले जाके वहां पर सुताई हो जाती है। FM 107 पे इन 2 गानों को एंजॉय करें, दिल से देसी।

0: में प्यारा गाना। मैं इतने पुराने जमाने का नहीं हूँ, लेकिन जब भी गांव जाता था ट्यूबवेल में नहाने, तो ये गाने मैंने कई बार सुने। आम की बगिया में वो बंदा जो डंडा लेकर दौड़ाता था, वो अपने रेडियो पे यही गाना सुना करता था, और हम आम तोड़ते हुए भागते थे मेरा भाई। ये गाना मैंने सुना है ऑटो में बैठते हुए, स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, और क्या कुछ आपको नहीं याद आया होगा। आई एम श्योर नदी में नहाते हुए या गांव के तालाब में नहाते हुए दूर से ये गानों की आवाज़, या फिर एक चचा जो भैंस चराने आए और लाठी लेके साथ में, रेडियो चल रहा है और फिर मोहल्लों में ये गाना, और फिर गाने के साथ साथ कई यादें। पक्का तुम्हें याद तो आया होगा नहीं?
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: वैसे पता नहीं मेरी इन बातों से कितने लोग सहमत होंगे। मुझे लगता है कि उदित ने, अलका जी ने एक गलती ये करी है कि उस जब यू नो इनका वक्त चल रहा था, तो एक साथ बहुत ज़्यादा गाने गा दिए। उस बहुत ज़्यादा गानों में जो सच में अच्छे गाने फेमस होने चाहिए थे, वो वाले नहीं हो पाए। ऑल दो ऑब्वियसली इनके इतने सारे हिट हैं कि आप मुझे लगता है कि 10 दिन लगातार सुन लें और हर दिन आप 20-25 गाना सुन रहे हो, फिर भी वो गाने कम पड़ जाएंगे, है ना। हर 200-250-400-500 से कहीं ज़्यादा मतलब इन्होंने दिए हैं ऑब्वियसली, लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छे जो हिट वाले गाने थे ना, वो छूट गए, वो रह गए, वो नहीं सुन पाए। तो ये यहाँ नुकसान हो जाता है कि जब लगातार इतने हिट दे रहे हो, उनमें जो एक अच्छा गाना होगा, दो अच्छा गाना होगा, वो रह जाता है। हालांकि वो 10 गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो 11वां 12वां छूट गया, तो वो एक नुकसान हो जाता है। वेल, अपनी अपनी लोगों की ओपिनियन है। फिलहाल 4:49 पहचान कौन का वक्त है, लेकिन कुछ मैसेज जल्दी से पढ़ देता हूँ। बहुत से लोगों के मैसेज जो हैं वो रह गए। फजील भाई प्लीज़ ये कन्वे कर दीजिए आगे कि इस रिक्वेस्ट शो का टाइम 2-3 घंटे होना चाहिए। ये टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत सारे लोग एग्री होंगे। मैं देखिए, रिक्वेस्ट शो एक ऐसा शो है जिसमें आप 5 घंटे भी कर देना तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट ऑब्वियसली लोगों की मुख्तलिफ होती है, अपने अपने शौक हैं गाने सुनने के। और इन्होंने लिखा भी है एवरीवन लव्स द रिक्वेस्ट शो, वरना आप 99% लोग यही कहेंगे एवरीवन लव्स द रिक्वेस्ट शो। बिल्कुल सही मेरा भाई सैफ, और इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे तो हो सकता है 2 घंटे के साथ आए। इब्राहिम भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज तो आग लगा दी, एक्सीलेंट सॉन्ग्स, फजील भाई रॉक्स। फजील भाई पत्थर, ये तो मेरे बीवी कहती है तुम पत्थर हो। आगे आगे यूसुफ भाई ने कहा है, फजील अलका याग्निक इज अ लेजेंडरी सिंगर, गिवन लॉट्स ऑफ हिट्स, 1 एपिसोड इज नॉट इनफ। ऑब्वियसली हम फिर से वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मुमताज ने सलाम किया है, और अच्छा ये भी है कि उदित ने इकलौते नहीं तो ऐसे बहुत से सिंगर, बट उदित जी उन सिंगरों में से भी हैं जिन्होंने नेपाली सॉन्ग भी गाया। अगर आप ये कहते कि यार एक नेपाली सॉन्ग हो जाए तो मैं बिल्कुल प्ले करता, लेकिन अब लेट हो चुका है। इकबाल भाई कहा है धड़कन भित्रा लुकाई दिना, इसका नाम इसका मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन मुमताज भाई ने रिक्वेस्ट की है, उदित नारायण ने गाया इस गाने को। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो नेपाली सॉन्ग प्ले कर दो और वो उदित नारायण ने गाया भी है। वेल, लेकिन ऑब्वियसली अब टाइम जो है वो जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, गुड इवनिंग। अच्छा ये इकबाल की रिक्वेस्ट नहीं, मुमताज़ की रिक्वेस्ट थी। इकबाल ने दूसरा मैसेज किया, आज के प्रोग्राम में दिल टूटा लोग डिमांड है और याद रखा जैसे, ठीक है बस ये वाली बात ज़्यादा नहीं पड़नी। वैसे दिल टूटा वाली बात नहीं, ऑब्वियसली इनके गाने तो ऐसे रहे हैं कि लाजवाब, कोई भी दिल टूटा हो ना टूटा हो लोग सुनते हैं। मकसूद कहते हैं मुझे नींद ना आए दिल फिल्म का प्लीज़ प्ले कर दें, अब लेट हो गया है मेरा भाई। अच्छा जिनका मैसेज मैं नहीं ले पाया, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में अलका उदित के पक्का प्ले करूंगा। अस्सलाम वालेकुम ना कजरी की धार, कायमुद्दीन अंसारी भाई लेट हो गया, माजरत मेरा भाई। फिर पश्तो सॉन्ग कहा है हसीब खान ने, भाई पश्तो में कोई गाना नहीं गाया उदित ने और अलका ने, थैंक यू वेरी मच। सुहेल का मैसेज, फिर उदित खान है, मैंने कहा था कि कोई उदित अगर है पश्तो में मैं प्ले कर दूंगा, एहतराम कह रहे हैं उदित खान है। फिर

मैसेज, साजन मूवी का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दें, नाम नहीं लिखा, आरके बस लिखा हुआ है। खलील पाचा कहते हैं दिल लगा लिया मैंने, प्ले कर दिया आपके लिए खलील भाई। फिर ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, कुछ कुछ होता है, थोड़ा लेट हो गया हनीफ भाई, माजरत। जान मूवी जानो मेरी जान सॉन्ग एहसान अली, अगेन सॉरी मेरा भाई, थोड़ा लेट हो गया। अजय देवगन का गाना सुनना चाहते थे, मौका मिलेगा तो वो हमने प्ले कर दिया है नाजिर हुसैन की रिक्वेस्ट पे फ्रॉम द मूवी दिलवाले। नाउ अब हम खेल लेते हैं पहचान कौन गेम, 4:52, जल्दी से ये गेम खेलते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि आज की थीम है उदित और अलका, तो इन्हीं के गाने को बीच से मैंने काट लिया है और अब मैं प्ले करने जा रहा हूँ। कुछ इतने ज़्यादा फेमस गाने हैं कि मुझे मजबूरन म्यूजिक या कहें इंस्ट्रूमेंट प्ले करना होगा कि थोड़ा सा गेम को टफ रखा जा सके। तो पहला जो गाना आ रहा है या इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, इंस्ट्रूमेंटली पहला प्ले कर रहा हूँ, वो है ये।

अगर आप उनमें से हैं कि गाना नहीं समझ में आया, म्यूजिक नहीं समझ में आया, गाने का नाम नहीं पता है, तो फिर आप एक काम करिए, मैं श्योर हूं कि आपको गाने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, है ना, अगर आपको नहीं समझ में आया। या फिर ये भी मैं मान सकता हूं कि स्पेसिफिक कोई ख़राब मोमेंट आपका चल रहा हो, आपने सुना ना हो ये गाना, बस तब आपको नहीं याद होगा या पहचान ना पाए आप इस गाने को, वरना आसानी से लोग इसे पहचान जाएंगे। जल्दी से मैसेज की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये गाना बिल्कुल सही पहचाना है, डीपी लिखा हुआ है प्रोफाइल पे, नेपाल, दीपन फ्रॉम नेपाल। फिर उसके बाद इमरान खान ने सही जवाब दिया है, शाम ने सही जवाब दिया है, फिर ये कौन है, मनी भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, जस खान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा। दिलबर अली क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका भी, दानिश आज़ाद का सही जवाब, ओए होए मुमताज़ का सही जवाब, अब यार इस वाले में तो आ ही जाएगा, अगर तुम मिल जाओ फलक ने कहा है, और ये जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा। इसी के साथ यूसुफ भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, गाने का नाम है

सलाम शरीफ भाई, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, बाकी दो गाने उम्मीद है गुलाम भाई सबसे पहले पहचानेंगे। सेकंड नंबर पे जो गाना आ रहा है पहचान कौन का, वो है ये।

सही जवाब देने वालों के परसेंटेज में भयानक कमी आने वाली है। मुझे लगता है कि जितने लोगों ने पिछली बार जवाब दिया उसमें से 50% लोग ही, 50 नहीं 30% लोग ही सही जवाब दे पाएंगे। लेट्स सी, जवाब तो खैर आ रहे हैं फिर भी। इमरान ने, अरे यार सही जवाब, दानिश नहीं पहचान पाए। अरे वही तो मैं कह रहा था, कितनी बेचैन हो के, नहीं कितनी बेचैन हो के, ये गाना नहीं है। दानिश भाई भी नहीं समझ पाए और फलक भी नहीं समझ पाए। फिर उसके बाद ये मैसेज है, अरे यार क्या बात है, हिशाम भाई समझ गए, नहीं पता मेरा भाई। मनी भाई भी नहीं पहचान पाए। उदित नारायण और ये है साधना सरगम का गाना, बिल्कुल सही, और फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रही। वाह लियो, बात ही खत्म कर दी कि गाने का नाम पता नहीं है लेकिन गाया इसने, बिल्कुल सही पहचान लिया है कि गाया किसने, गाने का नाम है तेरे प्यार में। भाई कुछ भी हो, जिन्होंने सही जवाब दिया है उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। हिशाम इसने, इन भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हिशाम के साथ साथ फिर इमरान ने सही जवाब दिया है, क्या बात है यार। मतलब वैसे लोगों को तो कहना पड़ेगा कि क्या बात, आप मुंबई आ रहे हैं। तीसरे नंबर का गाना अगेन, मुझे लगता है आएंगे 100% लोग सही जवाब के साथ आएंगे। तीसरे नंबर पे है गाना ये,

अगर ये नहीं बता पाए तो फिर तो मतलब अगली बार गाने की रिक्वेस्ट करने के लिए आपको आंखें बंद करने, मतलब शर्म से, मतलब कि अरे यार गाने की रिक्वेस्ट कैसे करें। बहुत बहुत ज्यादा फेमस ये गाना है, उदित नारायण का गाया हुआ।

दानिश ने बिल्कुल सही पहचाना है, उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, शाम ने सही पहचाना है, फिर ये किसका मैसेज है, जस खान ने बिल्कुल सही पहचाना, देखा मैं कह रहा हूँ परसेंटेज वाली बात हो जाती है फिर। एक और मेरा भाई यूसुफ भाई ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, दीपन ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, इमरान ने थोड़ा लेट ज़रूर किया बट ठीक है, गजब का खेल का मुजाहरा करते हुए लोगों ने सही जवाब दिया और गाने का नाम है

बिल्कुल बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को अब दीजिए इजाजत। उदित नारायण की आवाज में एक बेहतरीन सा ट्रैक आपके लिए प्ले करके जा रहा हूँ, जमाना छोड़ देंगे हम। बहुत मजा आया खेलते हुए, बहुत मजा आया गाना प्ले करते हुए, आपकी रिक्वेस्ट लेते हुए। कल शाम 4 बजे मेरे साथ एक बार फिर से जुड़िएगा नई थीम के साथ और ब्लॉकबस्टर गानों के साथ। सुनते रहे FM 107। फजील था आपके साथ अभी तक, दिल से देसी।

0: टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: एक सेकंड, क्या टाइम चेक? हमें जी यहाँ के थानेदार, सबसे पहले अपनी गाड़ी का लाइसेंस दिखाओ और गाड़ी में रेडियो कौन सा चल रहा है वो दिखाओ। भाई डम्बल ब्रिज जी, किसी की गाड़ी आगे नहीं जानी चाहिए, पहले रेडियो चेक करो अंदर।
3: गाड़ी का वॉल्यूम दिखाओ पहले कितना है। 20 के आसपास है तभी जाने दूंगा। दिखाओ, कोई बहाने नहीं, सही से है वॉल्यूम, ठीक है? चलो ठीक है, बड़े साहब आ रहे हैं हमारे, ठीक है? ज़रा मैसेज कर देना, हमारी थोड़ी सी वो सिफारिश कर देना।
2: जाने दे भाई, इनकी गाड़ी को जाने दे।

ने अच्छा को गया भाई जी, हर गाड़ी में एफएम 107 होना चाहिए और वॉल्यूम 20 के आसपास होनी चाहिए। वो बढ़िया चल रहा है सब, मामले कैसे हैं भाई? शानदार। आज तो मौसम भी थोड़ा अजीब सा ही कन्फ्यूज सा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा उसे कि गर्मी होनी है कि क्या होनी है, कुछ भी चल रहा है। खैर आपको मौसम तो ठीक है, सबका हमारा एक बराबर है, बाकी आपका वीकेंड कैसा रहा अभी, क्या किया आपने? कुछ किया नहीं किया जब पड़े। मैं तो फर्नीचर था भाई घर पे, मेरा वीकेंड इज सिमिलर, मैं एक फर्नीचर की तरह कोने पड़ा रहता हूँ, नोबडी डिस्टर्ब्स मी, हर किसी को लगता है कोई पूछता है ये कौन है, ये हमारा नया सोफा है बस बैठ नहीं सकते इस पे। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है आपके? बढ़िया चल रहा भाई, छुट्टी वट्टी हो गई? एक तो ये संडे की सुबह आँख नहीं खुलती है यार, दोपहर में भी नहीं खुलती है। अस्सलाम वालेकुम, कुछ मैसेजेस पढ़ देता हूँ मैं, फिर ज़रा आगे बढ़ेंगे। भाई ने गाड़ी का वीडियो भेजा, थैंक यू सो मच भाई, आपका नाम नहीं जानता मैं पर थैंक यू सो मच। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम अमन भाई, भाई को बहुत सारा प्यार क्या। और मुबीन भाई कहते हैं ब्रदर ऑलवेज कम्स विद फुल एनर्जी एंटरटेनमेंट द बेस्ट आरजे, मेरा भाई ये टाइटल के लिए मैं कितना वो हूँ, हंग्री एंड थर्स्टी। थैंक यू सो मच मुबीन भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच। अजीज़ खान साहब वालेकुम अस्सलाम, और खादिम साहब लिखते हैं सर जी की स्टोरी में 4 बार सुन चुका हूँ भाई, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम खादिम भाई, एक मैसेज है वॉल्यूम 30 पे मोहम्मद भाई, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, आपके रेडियो स्टेशन, आपकी रेडियो स्टेशन है। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम शरीफ खान साहब, इनके बाद यूसुफ भाई लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम, कैसा आपका वीकेंड? इट वाज जस्ट फैंटास्टिक यूसुफ भाई, फैंटास्टिक। इजाम साहब वालेकुम अस्सलाम, भाई मकसूद ने गाड़ी की फ़ोटो भेजी है, कह रहे हैं वॉल्यूम एकदम दबा के चलाए। इनके बाद सैयद हमजा साहब ने मैसेज किया है, गुड इवनिंग कबीर ब्रो, वी ड्रोव टू सऊदी अरेबिया ऑन फ्राइडे एंड एंजॉयड योर स्टोरीज ऑल द वे टिल द मम एंड बैक, थैंक्स फॉर द वंडरफुल, थैंक्स फॉर मेकिंग आवर जर्नी वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मैं चलो किसी काम तो आया मैं। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि ऐसे कैसे एक तरफ कोने में पड़े रहते हैं, वीकेंड का तो सभी इंतज़ार करते हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, मैं नहीं करता। वो गाना सुना आपने, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। एक और मैसेज है, एक सेकंड भाई, मैंने व्हाट्सएप ही बंद कर दिया, क्या हो गया मुझे। अस्सलाम वालेकुम अपना बंदा हाजिर जी भाई, बंदा हाजिर है यूसुफ भाई, अबू यूसुफ भाई थैंक यू सो मच। और बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, सारे पढ़े जाएंगे भाई, बढ़िया करके। अच्छा मैं कहानी का थोड़ा सा बता दूँ आपको, मैं जस्ट टीज़र वीज़र मैं दे देता हूँ। आज जो स्टोरी है मेरे पास वो बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही वियर्ड है। मैं जिसको भी ये कहानी बता रहा हूँ, जब पूछता हूँ मैं अक्सर अपने आसपास कि भाई सुनाऊँ ना सुनाऊँ, तो रिएक्शन दो होते हैं, सुना दो अच्छी है, या फिर रिएक्शन होता नहीं, नहीं यार कोई और चीज़ चुन लो, मज़ा नहीं आ रहा। ये वाली कहानी कैसी है, मैंने पूछा कि भाई सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, तो रिएक्शन पता क्या आ रहा है? अच्छा पता नहीं यार तो ये वो वाली कहानी है जिसको लेकर रिएक्शंस ऐसे हैं कि पता नहीं यार, तो मैं देखता हूँ, बट आई रियली होप कि कहानी आपको अच्छी लगे, बिकॉज भाई बड़ी मुश्किल से मिली है ये कहानी, मैं इसके बारे में छानबीन कर रहा था, पूरा डिटेक्टिव बन गया आपका भाई, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी कहानी, बट दैट विल कम एट 5:30। एक मैसेज है, कबीर भाई को रॉबरी की स्टोरी सुनाएं कभी, ठीक है डन मुबीन भाई, इस वीक लेके आता हूँ। सैयद हुसैन साहब कह रहे सुना अभी थोड़ी खादिम

0: और टाइम खादिम और क्या मैसेज आया है. गुड इवनिंग ब्रो अनुज भाई वाली जो गुड इवनिंग. और ये भाई व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन मेरे मुंह पे क्यों आ रहे हैं. गुड इवनिंग ब्रो अनुज भाई थैंक यू सो मच हैप्पी वीकेंड बहुत बहुत शुक्रिया. और एक मैसेज है दिन तो बताना मैं ऑफ पे ना हूँ बस है दिन में ही बताना मैं ऑफ पे ना हूँ. कबीर भाई इसके अंदर क्या है ये सोपी हूँ मतलब. अच्छा इसके अंदर भाई आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड बहुत बढ़िया लग रहा है यूसुफ भाई शानदार लग रहा है यार कौन सी गाड़ी है ये. गुड इवनिंग कबीर भाई. ख्याल भाई का मैसेज है. ख्याल साहब सलाम अलैकुम. फैया सईद ने मैसेज किया माशाल्लाह खैर कबीर भाई. मुझे भी भाई इंशाल्लाह चाय पियेंगे आपके साथ आप क्यों नहीं मिलते. भाई मेरे पे मुझ पर इल्ज़ाम है मिलूंगा भाई. अस्सलाम वालेकुम शेब भाई वालेकुम सलाम भी वीकेंड. चलो भाई 11 मिनट 2 सेकंड के बाद आपसे मुलाकात होगी. आपको बताइए शाम के इतकार फिर मिलेंगे. लेकिन ऐसी गानी सच में बहुत क्या कहते हैं उसे बहुत वियर्ड है काफ़ी वियर्ड है बट कमाल की. तो आई टेक यू ऑन अ जर्नी जिसके लिए आप तैयार हो जाइए. संडे की शुरुआत थोड़ी अलग होनी चाहिए ना वैसे ही थर्सडे का एंड भी होगा तो तैयार हो जाइए बस. अब मज़े आ जाएंगे आपको और दुआएं करते रहिएगा और साथ में मैसेज भी. आपको तो पता ही है आप बेस्ट जगह पर हैं. और सुनो इतना मेरी बात सुनो इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा एंटरटेनमेंट ठीक है. हाँ खाम खा क्या हाँ रुको यहीं पर.
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं. आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर.

सरदार ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। 5:20 हो गए, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। क्या है भाई साहब, बढ़िया चल रहा है सबकी जिंदगी में, शानदार है माहौल। तो मैं ये कह रहा था भाई, मैं एक दो मैसेज और पढ़ दूं। मैं इकरम साहब, वालेकुम अस्सलाम मेरे जान, क्या हाल है आपके। और मैं ये कह रहा

0: था कि जैसे मैंने कहा आज की जो जो कहानी इट हैज अ वेरी डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. मतलब मैं वाइब के हिसाब से जाता हूँ, मुझे लगता है कि वाइब बड़ी जरूरी है. ऐसी कहानी होनी चाहिए कि आदमी उसने बोले आएंगी इस रिएक्शन के लिए जो है इंसान जीता है, स्पेशली स्टोरी टेलर्स. तो आज आपको ऐसी कुछ सुनने को मिलेगा. भाई तलहा कैसे पार्टी, भाई कैसे पार्टी? एकदम बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, शानदार शानदार. ऑयल चेंज करवाने जा रहा हूँ, सुन नहीं पाऊंगा. जकी भाई, जकी भाई क्यों, जकी भाई वाई, जकी भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ भेजने की. और नवी गाड़ी, ओए होए गाड़ी ले ली तला भाई, मुबारक हो मेरे भाई, क्या बात है, क्या माशाल्लाह. तला भाई जब से अमेरिका से होके आए हैं एकदम भाई साहब फिरंगी लगने लगे हैं. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ऐसी स्टोरी क्या ऐसी स्टोरी, मैं नहीं समझ पाया. खलील भाई दोबारा भेजिएगा. अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा था बिफोर वी गो ऑन विद द स्टोरी. एक सिचुएशन होती है जहाँ पे दोस्तों के बीच में पंगे हो जाते हैं, आपके दो बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, दोनों के बीच में पंगा हो गया है, ये आपका क्या स्टांस रहता है, किस तरीके से डील करते हैं? मान लीजिए दोनों के दोनों आपके मनाने पर मान नहीं रहे, वो कह रहे ना जी मैं तो नहीं मानूंगा, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने वो कर दिया. ये दोनों दोस्तों में जो पिसने वाली कहानी होती है वो अक्सर लोगों के सामने आती है. व्हाट डू यू डू एक्चुअली, हाउ डू यू डील विद इट, ये मेरे को आज बताओ, जनता को बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस परेशान हैं. नॉट मी, प्लीज डोंट इंक्लूड मी, तो कहीं बाहर भी नहीं जाता भाई, तो मेरे जितने दोस्त हैं इट्स ऑल जस्ट ऑन द फोन. लोग सोचते हो कितना वियर्ड आदमी है, एलियन हो क्या? देखो मेरा सीन हटा दो, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, बट आई वांट टू आस्क यू कि दो दोस्तों में पंगा हो गया, आपके दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, व्हाट इज योर स्टांस? एक कॉल आ रही है, पहले कॉल उठा लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है भाई के? भाई साहब रजिस्टर खोल लिया, लंगूठा मार दो उस पे. क्या चल रहा भाई आज? तो कतई जगे हुए लग रहे हो मेरे भाई.
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अब तो उठ जाता हूँ 3 बजे, क्योंकि आज तो मैच चल रहा है ना, मैच देख रहे थे तो 2 बजे उठ गया.
0: अच्छा ओहो, जब भी मैं कहूँ, मैंने कहा इतना ज्यादा आपने जहमत उठाई, ये तो बड़ी बात है यार, आदमी जगा हुआ है, दिस इज ह्यूज थिंग. कैसा जा रहा है सब कुछ? अच्छा दो दोस्तों में अगर फड्डे हो जाए तो
1: यार, वही तो मैं सोच रहा था, मैंने भाई ने बताया तो दो दोस्तों वाला अपना तो यार एक ही है, हमारे तो अगर कभी लड़ाई झगड़े हुए तो आपस में सॉल्व कर लिए, तीसरा हमारे बीच में कभी कोई आया ही नहीं.
0: अच्छा ये ओके, पर करते क्या आप, आपके दो दोस्तों में अगर भिड़ंत हो जाए, व्हाट योर टेक, क्या करते हैं आप अगर ऐसा हो जाए तो?
1: भाई दोनों को जो है ना उनको ऊपर छोड़ देंगे, आपस में लड़ लो, आप दोनों की लड़ाई
0: आपस में लड़ लो, मुंह पे ना है टाइम.
1: आराम से बैठ के देखो क्या रिजल्ट निकलेगा.
0: वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या दुनिया है, वाह वाह वाह वाह वाह, बिल्कुल मतलब वकालत करनी ही नहीं है.
1: क्योंकि यार अब यार एक चीज है ना, अगर दोनों जब दो दोस्त हैंगे ठीक है, तीसरे हम जो हैंगे बीच में जाके समझा, एक को समझाने जा रहा है, वो कहेगा तू मुझे क्यों समझा रहा, उसको समझा, वो कहेगा मुझे क्यों समझा रहा, उसको समझा.
0: अच्छा तो आप पढ़ना ही नहीं चाहते मतलब? हाँ
1: वो दोनों सुनेंगे ही नहीं ना, वो कहेगा मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, तो दोनों तो ना दोनों की गलती है कि तुम दोनों आपस में सॉल्व कर लो, हम देखते रिजल्ट दे जो है ना रिजल्ट दे.
0: स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही दोस्तों की कमी है और रहनी भी चाहिए. अरे यार अच्छा ठीक है, मुझे लगा वकालत वगैरह करोगे. नहीं नहीं नहीं मैं बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे. अच्छा नो ट्राइज,
1: मजे लेंगे,
0: मजे लेंगे,
1: पॉपकॉर्न मंगा लेंगे साथ में बैठ के भाई.
0: ये तो खाला वाली हरकत है कि मैं इधर की उधर करूंगी, उधर की इधर करूंगी, बीच में बैठ के मौज करूंगी.
1: खाला खाला ऐसे नहीं करती है, खाला को बदनाम मत करो, पप्पो का नाम लो.
0: अच्छा सॉरी सॉरी, ओ करेक्शन करेक्शन, पप्पो पप्पो करेक्शन. अब ठीक है ठीक है, नहीं अच्छी बात है, ये भी सही है भाई, ये इसमें भी अपने आप को किसी किसी को चस आ जाती है तो बढ़िया है, ये भी सही है. कभी वैसे आज तक हुआ नहीं ना ऐसा आपके साथ?
1: नहीं हमारे कभी पहले पहले जो है ना, पहले शुरू शुरू में अगर जैसे कभी हो जाती थी तो एक आध दिन जो है ना साइलेंट रहते थे, बाद में पता चलता था ना कि घर वाले जो है ना डांट के, मम्मी वगैरह डांट के भेजते थे कि तू क्या हो गया, क्या बात है, तो लड़ गए आपस में, बस तो जाके सॉल्व करो, क्या प्रॉब्लम है.
0: हाँ ओके,
1: अगर कोई दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जाके सॉल्व करो.
0: ओके ठीक है,
1: ये तो बस सही है. तो हमें जो है ना घर वाले समझाते थे, तो तीसरा कोई बाहर वाला नहीं समझाता था.
0: पर समझे नहीं आप बिल्कुल भी कोई बात? अच्छा ठीक है जयस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मोटिवेशनल छाओं के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके जयस भाई.
1: थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया.

0: अरे अच्छा अम्बई पर्ची फाड़ दी, वाह वाह शेरा वाह, ठीक है खाम खा बदनाम करो। हाँ हाँ जरूर जरूर क्यों नहीं, मैं ही हूँ ना खाम खा मुझसे पर्चा फटता रहता भाई। ठीक है कोई बात नहीं जयस भाई,
1: अरे वैसे तो कोई पर्चे फट नहीं रहा है कि लाओ ये वाले पर्चे फाड़ रहे
0: हैं। ठीक है भाई ठीक है जयस भाई,
1: ठीक है
0: ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो भाई जयस भाई तो कर नहीं रहे वकालत, साफ सीधी बात है, एक जरा कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बड़े साहब?
0: बढ़िया भाई एकदम शानदार, आप सुनाएं क्या हाल है भाई के?
2: दो मिनट बैठिएगा ललन। ओ छोटे
0: चीनी मार के डेढ़ चम्मच चीनी, हाँ बढ़िया वाली एकदम, हाँ खुशबू आनी चाहिए भाई
2: वाले कबीर वाले, वही वही
0: हाँ खोलती हुई। अब बताओ क्या करोगे, दो दोस्तों में भिड़ंत हो गई तो?
2: भाई ये तो टॉपिक बड़ा मजे का छेड़ दिया आपने।
0: हाँ तो बता दो फिर
2: भाई। खुद लड़वाया है, खुद लड़वाया आंखों के सामने बिठा के।
0: अरे खुद लड़वाया, वाह जी वाह, किस बात पे लड़वाया आपने, कौन सी बात थी
2: भाई? दोनों तरफ आग भड़काई है, सामने बैठे थे इसको बोले, जब तूने इसको ये बोला अब वो दोस्ती का करके बोला यार छोड़ ना क्या है, दूसरा बोला दूसरे को बोला तूने इसको ये बोला था बढ़वा के चला गया, ये मोहब्बत वाली थी।
0: वाह
2: अरे तक मेरा अजीब है, वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ मेरा जो पर्सनल असूल है कि बंदे को कैसे चलना चाहिए, उसमें ये है कि अगर अगला वाला आपसे कोई बात इस तरह की कर देता है जो आपको नागवार गुजरती है, और आप उससे मुंह पे पूछते हो कि भाई तूने ये काम किया है, अगर तो वो एक्सेप्ट बोल दे कि आया ठीक है भाई मिस्टेक हो गया, अब खत्म होगी बात, ठीक है फिर अपना रिश्ता वैसे चल रहा है दोस्ती वाला जैसे बरकरार है,
0: ठीक है।
2: और अगर वो सेटल हो गया कि हाँ किया क्या कर सकता है तू, वहाँ काम खराब है, वहाँ मामला इतने के खराब है ना कि एक बार अगर बोल दिया अगर तुमसे बात नहीं करनी है तो नहीं करने की बात।
0: तो क्या वजनदार पार्टी की तरफ जाते हो क्या, मतलब वैसा कुछ सीन है कि वजन किस तरफ है?
2: क्या
0: जैसे वजनदार पार्टी होती है ना, एक तरफ लगता है मेरा फायदा थोड़ा ज्यादा है तो उस तरफ झुकाव रहता है, या फिर न्यूट्रल गियर डाल के चलते हो?
2: ना ना ना, न्यूट्रल, फिर फायदा या नुकसान, चाहे नुकसान भी बड़ा क्यों ना हो जाए ना, फिर नहीं,
0: मतलब फिर नहीं।
2: एक बात जनता को बोल दी।
0: क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही लोग इनकलाब लाएंगे। हाँ
2: मुझे आपकी बात से अपना 9th क्लास का वाक्य याद है, और मुझे लड़का भी अभी तक अच्छी तरह याद है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त है।
0: अच्छा
2: ठीक है, और अल्लाह पाक खुश रखे उसको जिधर भी है वो, तो से मेरी इस तरह अनबन हुई और मैंने उससे सिर्फ एक बार बोला कि हाँ ये बात है कि नहीं, उसने बोला नहीं जी मैं फोन होता है बोलने वाला।
0: अच्छा
2: ठीक है जी, मैंने उसको उस दिन बोला कि भाई आज से तेरी मेरी खत्म, आज के बाद मैं तेरे को शक्ल नहीं दिखाता।
0: रे रे रे
2: तकरीबन 2012 की बात है,
0: और दिल टूटे यहाँ भर तो तारा। अच्छा फिर तब से बात नहीं,
2: आपकी बात से वो बंदा मुझे याद आया, अदरवाइज मैंने उससे मिला नहीं हूँ दोबारा, ना मैंने जगह लिखी है।
0: कोई नहीं यार याद आ जाएगा, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोशिश करो हो सके तो बातचीत कर लेना, वैसे अब तो बहुत लेट हो चुके हैं, पूरे 4 साल लेट हैं तो कह नहीं सकते, 14 साल सॉरी इनफैक्ट ज्यादा ही लेट है। ओके
2: दिल से बात है, खुश रहे, लेकिन ये है कि दोबारा दिल नहीं करता बात करने का।
0: अरे अरे अरे मेरा भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं माजरा चाहता हूँ, मैंने याद दिलाया मगर क्या करूँ।
2: वो कहता है ना कि एक बार जो दिल से उतर गया फिर वो ना जाने के डर गया।
0: आए हाय हाय हाय हाय, क्या हो गया भाई को, सेंटी कर दिया भाई को एकदम से?
2: नहीं नहीं यार सेंट नहीं रहते, हम हंसमुख बंदे हम सेंट नहीं रहते।
0: ठीक है भाई खुश रहो, बस हमेशा
2: इंतजार कर रहा
0: हूँ, क्या चीज,
2: और आदि की सुनूंगा, आदि मैं फिर बाद में सुनूंगा क्योंकि मेरे टाइम ऑफ हो गया।
0: डन डन डन डन, आदि तो सुन पाओगे, डन मैं शुरू कर रहा हूँ बस मैं।
2: ठीक हो गया
0: बस, डन मेरा भाई, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। तो उसमें मैंने मैसेज किया भाई के बाद, वो लिखते हैं सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बहना क्या हाल है, मैं बढ़िया, और एक भाई लिखते हैं सलाम जी, ये अबू साद साहब ने मैसेज किया सलाम सर गुड लक, बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच, और एक भाई जो है वो इस पे कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, भाई व्हाट्सएप पे लग गया है कॉल, मैं इधर ही कर लूँगा एक सेकंड रुको, तला भाई मैं आपको कॉल मिला रहा हूँ, तला भाई व्हाट्सएप पे क्यों कॉल कर रहे हैं, एक सेकंड तला भाई आई एम कॉलिंग यू ब्रो, एक सेकंड रुको, अब आ गई कॉल, चलिए कॉल, एक सेकंड तला भाई आई एम कॉलिंग यू राइट अवे, कितने गया नंबर, मिल गया नंबर, एक सेकंड बस तला भाई बस लग गई कॉल, बस शाबाश शाबाश शाबाश, तला भाई आपको कॉल नहीं लग रही है, आई एम ट्राइंग वंस मोर, इस बार अगर लग गई तो बहुत ही बढ़िया है, पता नहीं क्यों नहीं लग रही है, अब लग गई है शायद। अस्सलाम वालेकुम,
2: वालेकुम सलाम, मतलब देखो तुम्हारी नियत

0: गंदी है, तुम्हारी नीयत में खोट है, जब भी कॉल नहीं लगे।
1: वही तो, अच्छा वो आपने नीयत बचाने में कब से ये बताना चाह रहा था आपको, अब जाके समझे आप। चला भाई गाड़ी की मुबारकबाद सबसे पहले तो
0: चाह रहा हूँ गरीबों से ताल्लुका मुंतका कर दूं तो सरे फेरिस्त तुम्हारा नाम आया।
1: मेरे मेरे घर की तरफ जो है मंसूर है बहुत सारे कबूतर हैं, वो गाड़ियां ढूंढ रहे हैं उन पे बैठने के लिए, तो कहीं तो आपकी तरफ भेज दूं।
0: भाई देख मुझे पता कांच कांच वाली बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग
1: बिल्कुल
0: फला फला फ्लोर फ्लेट नंबर फला फला
1: फला फला
0: अंदर घुस जाऊंगा बता रहा हूँ मैं।
1: अंदर
0: घुस जाऊंगा चल भाई तेरी पसंदीदा शर्ट कौन सी है, टी शर्ट नई वाली ब्रांड न्यू टी शर्ट निकाल, उसी से सफाई होगी पूरे। उन्हीं कबूतरों को जो किया है ना वो करे कोई भरे कोई होगा फिर।
1: अरे मेरा भाई तो ये बताएं सर, चॉइस किसकी थी गाड़ी की, आपकी थी भाभी की थी?
0: तुम्हारा भाई
1: यार, तुम्हारा भाई से तुम हल्का, तेरा भाई इससे कम है। तो तेरा भाई ये बताओ, ये जो अमेरिका की ट्रिप मारी आपने, ये सब कुछ लुक वुक चेंज हो गया यार, किसी ने कुछ वहां को कहा क्या आपको?
0: यार बस माहौल का फर्क है भाई,
1: माहौल का फर्क है
0: यहाँ पे। आपका भाई एक पांच ऊपर एक पांच नीचे कर ही चलता है अक्षय कुमार की तरह। वहाँ आपका भाई रोबर्ट का कार्डलेस बन के घूमता।
1: क्या अकेले गए थे अमेरिका?
0: नहीं नहीं फैमिली के साथ।
1: अच्छा तभी दबी आवाज में बताया, नहीं नहीं नहीं फैमिली के साथ गया था। अच्छा तो तेरा भाई दो
0: पैकिंग अच्छी थी,
1: क्या अच्छी थी?
0: कुछ नहीं कुछ
1: बोलो बोला
0: कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, तो लाइफ
1: ठीक है हमने कुछ नहीं सुना। तेरा भाई दो दोस्तों भिड़ंत हो जाएगी तो क्या करोगे ये बताओ, व्हाट डू यू डू एक्चुअली? कभी तो हुई होगी
0: भाई अपन तो देख बहुत दफा ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है बाकी हमारे एक्चुअली ऐसा है सीन, क्योंकि तो तुम्हारे पास भी होगा एक ट्राइसाइकिल होता है, लाजमी होता है ट्राइंगल, लव ट्राइंगल कहते हैं, तीन दोस्त लाजमी होते हैं जिनमें से एक की बजरी होती है और दो बजा रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत दफा हुआ है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर मुझसे हो जाए पड्डा तो अपन तो भाई कर देते चीख गमक डम डम ना, क्या भी माफी मांग लेता भाई यार भाई नहीं है गलती हो ठीक है। और अगर दो का हो रहा है तो भाई हम जो है ना उनपे ना चैलेंजेस के पहाड़ बांध देते हैं। तूने उस टाइम पे कहा था, तूने उस टाइम पे करा था,
1: हिस्ट्री शीट निकाल लेते हो क्या भाई?
0: हाँ भाई अपन देख कैमरे की आंख बड़ी अच्छी है अपने पास। हम जो है कदम बा कदम जो ना वीडियो वगैरह बना के रखते हैं,
1: तो रिकॉर्ड आप रखते हैं लोग, उसके बाद डंक मारते हैं जब पंगा होता है।
0: बस बस बस जहरीला गन,
1: आज से आप बेस्ट फ्रेंड है हमारे।
0: सबसे दोस्त मेरे जो है ना जो क्लोज फ्रेंड जो दोनों ना कहते हैं अबे साले कभी भी लड़ लेंगे अपन ना, इसको नहीं बुलाएंगे क्योंकि कमर का टूटती है। चलो भाई पैचअप कराओ खाना खाने चलते हैं। अबे भाई बस कर दे यार अल्लाह के, मतलब तेरे कहारी यही है कुछ नहीं, चल यार आगे बैठते हैं, यार आगे बैठते का मकसद है यहाँ खाना खाने चले वहां चले ये करे वो करे।
1: जरा जरा सी बात पे लड़कों को पार्टी चाहिए होती है, ये बात तो है। जरा जरा सी बात, जरा जरा सी बात,
0: मोहब्बत का रास्ता पेट से चलता है यार मेरी जान।
1: क्या बात है भाई, बाहर जाके आदमी को बदलते हुए सुना था, देख भी लिया भाई, क्या बात है क्या बात है। आज समझ में आ रहा है मेरे। अगली ट्रिप कब है फिर?
0: अबे तुम तो शुक्राना करो, तुम शुक्र तुम तो मोहब्बत जो है ना बगैर खाए पिलाए के साथ है।
1: आए, ताना अरे आए अंदर की सांस निकली भाई। अरे तुलसी असली आईडी से आओ तुलसी। अरे बाप रे, नहीं पता गाड़ी के लिए सच्चे दिल से मुबारकबाद, क्योंकि आपने गाड़ी जो ली उसके लिए वेटिंग भी बहुत लग रही है आजकल, तो मुबारक हो मेरे भाई। आपकी गाड़ी में कभी पेट्रोल की कमी ना रखे और बहुत खुश रहे। अरे भाई आप खुश रहे, बस आप ऐसे खुश रहेंगे हमें अच्छा लगता है
0: भाई। आपको हम बबलू छपाकर बन के दिखाए।
1: ये क्या है यार,
0: यार एक बंदा अच्छा यार एक ना एक सवाल है भाइयों, सबसे सवाल एक कर दो के गाड़ी के पीछे क्या लिखवाओ,
1: गाड़ी के पीछे क्या लिखवाऊं? आप ऑप्शन दो, कोई ऑप्शन है क्या आपके पास?
0: टेक्सचर तो देखते
1: हैं।
0: हाँ ऑप्शन है,
1: क्या ऑप्शन है
0: मतलब आप सजेस्ट करें।
1: अच्छा आप सजेस्ट करें, ठीक है भाई। तला भाई गाड़ी के पीछे कुछ लिखवाना है प्लीज, कुछ बताएं बढ़िया सा कदर।

0: के हिसाब से बताएं।
1: मेरी चेक को देखते हो ना भाई, मुझे देखते हुए बताओ।
0: अरे तेज हो रही हो तुम, बहुत तेज हो रही है भाई। ठीक है तला भाई, मैसेज आता बताता हूँ मैं। ठीक है मेरा ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो तला भाई के लिए मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं, नॉटी शेरा एं, बहुत डेंजर नहीं है ये चीज़ पीछे लिखवाना अजीज भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, जीएस के साहब लिखते हैं, गुड इवनिंग ब्रो, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत डरते हैं मेरे से, हैं मेरा सुबह बहुत गर्म है, अगर वो लड़ भी पड़े मेरे तक बात पहुंचने तक सुलह कर लेते हैं। भाई कि क्या मतलब, आप मैं अपने आप में अदालत हूँ, आगे लिखते हैं, उन्हें पता है नहीं तो मैं फिर अपने हिसाब से इलाज करता हूँ। अरे भाई कैसे डॉक्टर घूम रहे मार्केट में, जिसके साथ बहुत डेंजर वाली बात कही है आपने। एक मैसेज, सलाम भाई कैसे हैं, मैं बढ़िया भाई, आप सुनाए क्या आला भाई के, चार्ली भाई इनका मैसेज क्या, यूसुफ भाई ने लिखते हैं, पहले तो दोस्त में लड़ाई हो नहीं सकती, और अगर हाँ हो गई किसी की आग लगाने से तो एज अ थर्ड पार्टी दोनों का आमने सामने बिठा के जो गलत फहमी है क्लियर करके बात ख़त्म कर दो, दोनों मान गए तो ठीक, और ना माने तो दोनों को अपने हाल पर छोड़ दो, जब सही वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह मेरा भाई। तला भाई, राजा नहीं जाता, ये ओएस भाई आपने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, और अमन भाई ने मैसेज किया है मुझे, अमन भाई मैं अभी सुनूंगा आपके मैसेजेस। या तला भाई को सलाम, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद भाई, और तबस्सुम मैं लिखती हैं कि वक्त सलाकत कुछ नहीं करनी कबीर भाई, ये दुनिया किसी को समझने लायक नहीं है वैसे, इस बस ग्रैब अ पॉपकॉर्न एंजॉय द शो वैन हाई फाइव ऑन दैट। याहिया भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जब दो दोस्त में पंगा हो जाए तो दोनों को उनके एग्जेक्टिव से डिस्क्राइब करो एक जगह बैठकर, और अल्टीमेटम दो कि एक दूसरे को मारो या फिर जाकर अच्छा कूद जाओ नाले में, उसके बाद फौरन छुट्टा बजाओ, फिर क्या चाय ख़त्म करने तक दोस्ती वापस, क्या इलाज दिया है। एक मैसेज है, कार के पीछे बना लें क्या ये सॉल्ट तला भाई की शादी को टाइम हो चुका चार्ली भाई, दिक्कत हो जाएगी। ओके तो अब मैं कहानी की तरफ बढ़ा हूँ। सो आज की स्टोरी, जैसे मैंने कहा इट्स क्वाइट अ वियर्ड स्टोरी, तो मुझे पता है कि इस पे ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि ये कहानी हमारे समझ में नहीं आई या कुछ भी रिस्पॉन्स, तो आई एम ऑल सेट फॉर इट, पर मैं ये आज की कहानी तो सुना के रहूँगा बिकॉज इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं भी खुद पहले छोड़ने वाला था पर मैंने कहा नहीं, एक काम करते हैं देखते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। सो आई एम ऑल सेट फॉर इट। क्या कॉल पिक नहीं कर रहा है, किसकी कॉल नहीं पिक करी, अरे भाई कर लेते हैं कॉल, ऐसी ही बात करते, देखो ये यहाँ मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, कोई अगर बोले कि कॉल नहीं पिक कर रहे तो मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, फिर मुझे कॉल करनी पड़ती है। मोमिन भाई मैं कॉल कर रहा हूँ भाई, एक वैसे रहा नहीं जाता लिखना था, अच्छा रहा नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम भाई मोमिन।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है।
0: बढ़िया मेरा भाई, क्या हाल है भाई के।
2: ठीक ठाक कबीर भाई, एक तो आपका शो इस तरह का है, बंदा कॉल करने का दिल नहीं करता सिर्फ इस वजह से कि यार पूरे शो का वो जो रिदम है ना वो सब बर्बाद हो जाएगा।
0: अरे मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यार मेरे भाई को।
2: एक तो मैं इस वजह से कॉल नहीं करता, दूसरा मैंने कॉल की आपने पिक भी नहीं करी।
0: अरे माजरत माजरत मेरे भाई, शायद मैसेज पढ़ाऊंगा उस टाइम।
2: हम दोनों में कौन सुलह कराएगा अभी ये बताया ना।
0: अरे मैं कर लेता हूँ सुलह भाई, क्या दिक्कत है, भाइयों को नहीं खो सकते हम भाई। माजरत
2: सॉरी वाली क्या बात है, मजाक जस्ट फॉर फन ब्रदर।
0: मैं बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए मुबीन भाई क्या चल रहा है।
2: कबीर भाई मुझे अभी वो आपने वो एक टॉपिक छेड़ा ना, मुझे एक बात याद आई, अभी दो दिन पहले मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की।
0: अच्छा।
2: मैंने बोला भाई कहाँ पे हो, कहता है बाबा, मैंने बोला मैं भी इधर ही हूँ। तो मैंने बोला आ जाओ यहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे वो चाट वगैरह मिलती है जाके खाते हैं।
0: अच्छा।
2: तो उसको मैंने वहाँ पे बुलाया, मैं भी उधर चला गया। खैर हम गए, हमने वहाँ से ली, जब खाने बैठे ना तो हमारा एक और तीसरा दोस्त है, मैंने पिक्चर बनाई उसको मैंने सेंड की।
0: अच्छा।
2: और मैंने बोला कि मुझे ये खिला रहा है इस टाइम पे बैठा के।
0: अरे
2: और उसने वो खिला रहा है, मैंने उसको विद प्रूफ, मैंने उस लड़की की भी तस्वीर सेंड की और जो हम खा रहे थे उसकी भी मैंने पिक्चर सेंड की। फिर हमने अगले दिन मैंने उसको कॉल की, मैंने बोला अभी मैंने उसको मैंने बता दिया था कि भाई अलग वो नहीं खिला रहा था बेचारा, हम दोनों खुद ही कर रहे थे, लेकिन अभी उसको तंग करना है कि भाई ये सारी चीजों। अभी जब उसने कॉल किया किसी से कहते हैं तो भाई तुम मुझे मिल जाओ एक बार, मैं तुम्हें देख लेते जो तुम बशर को खिला पिला रहे हो ना अकेले में, अब बीच में भी इसके साथ अकेले जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा अब।
0: अरे यार भाई आपने तो बिल्कुल फुप्पो वाली हरकत करी मोमिन भाई, क्या खामों का आगे लगाई है बेचारे में। तो अभी क्या मामला आगे बढ़ा है अटका हुआ है वहाँ पे, नहीं
2: अभी आज जाना है ना, अभी आज शायद हम लोग जाएंगे बीच पे, तो अभी वो देखना उसको यही बोलेगा भाई मुबशर के साथ जाओ, मैंने नहीं जाना।

0: लग जाओगे ना खुद ही।
1: अरे मेरा भाई,
0: आज सामने बढ़ेगा, कल मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा।
1: मुझे रिजल्ट रिजल्ट जानना है भाई, आई एम रियली एक्साइटेड, मुझे रिजल्ट तो जानना है डेफिनेटली।
0: हाँ, और एक तो मेरा ये तस्वीर के दो रुख होते हैं ना, एक तो मेरा ये रुख हो गया और दूसरा ये हो गया कि भाई कल ही मैंने एक साल पुरानी लड़ाई मैंने खुद से खत्म की
1: अच्छा
0: और
1: माशाल्लाह। हाँ,
0: खुद से सुलह भी की और सारा कुछ खुद से ही किया है।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: हाँ, ये मेरे दो रोके हैं तस्वीर के, तो फिर मैंने बोला ये भी मैं साथ ही बता दूं। फिर ये ना बोला कि भाई पक्का ही फुफ्फो वाला काम
1: क्या
0: करता
1: कवर अप किया
0: रहता
1: भाई, क्या कवर अप किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, खेल गए भाई।
0: देखे बताना चाहिए, देखे बताना तो चाहिए ना, क्या कहते हैं।
1: नहीं नहीं सही है सही है सही है मोमिन भाई, मैं ऑल द बेस्ट, और आज का जो सीन हो मुझे बताना फिर, अपडेट देना ठीक है।
0: बताऊंगा बताऊंगा, लाजमी बताऊंगा।
1: डन है मेरे भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच।
0: आप भी आ जाए, आज हमें ज्वाइन करें, क्या कहते हैं।
1: और फिर आग लगा देंगे आप, मेरा मेरा फोटो खींच के भेज देंगे आप, ये पार्टी दे रहा है मुझे। नहीं मोमिन भाई, आपकी मोहब्बत
0: आपके साथ इस तरह नहीं करते, आपके साथ इस तरह नहीं करते हम।
1: थैंक यू सो मच मेरे भाई, इंशाल्लाह जरूर, बहुत बहुत प्यार मोमिन भाई, कहानी सुनिएगा आप वक्त मिले तो ठीक है।
0: जी जी बिल्कुल जरूर, कहानी के बगैर तो सांस ही नहीं आती।
1: डन मेरा भाई, अभी चलाता हूँ फिर मैं, शुरू कर रहा हूँ।
0: ठीक है कभी,
1: ओके मेरा भाई, ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज। तो भाई के बाद एक मैसेज आया है, तला भाई के लिए दो मैसेज किए हैं कि गाड़ी के पीछे लगाओ, भाग मेरी बुलबुल, तुझे सुकून।

0: तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आज हर कहानी बनेगी यादगार। सरवर भाई भी छुट्टी पर हैं, जब बनेंगे आपको इंशाल्लाह सुनने को मिलेगा ये खास शो। बाकी तो कहानी शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर दे दें भाई और फलक साहब वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं। कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इट इज़ वन वियर्ड वियर्ड स्टोरी। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स बिगिन। वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। तो मैं आपकी नजरों के सामने एक पूरी तस्वीर जो है वो पेंट करना चाहता हूं, तो इमेजिनेशन के जितने पर्दे हैं वो उठा लीजिएगा। तो आज के किस्से को सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 2 अप्रैल की रात को। साल था 1899, तो कई सालों पीछे जाएंगे हम आज कहानी सुनने के लिए। 1899 2 अप्रैल और रात का वक्त था। इस वक्त एक काउबॉय, जो घोड़े पे घुड़सवारी जो करते हैं, जो हैट पहनते हैं, काउबॉय की इमेज तो आपके जहन में होगी। तो एक काउबॉय था जिसका नाम था चार्ल्स कैस्मर। वो अपने घोड़े पे थे और ब्लिजर्ड में से जा रहे थे। मतलब अब आप तस्वीर समझिएगा, ये उस जगह पे थे जहां पे चारों तरफ ब्लिजर्ड, बर्फ ही बर्फ, कुछ नहीं नजर आ रहा। लिटरली कोहरे की डबल चादर लगी हुई है और ऊपर से तूफान लगाया हुआ है। एंड वो इस वक्त अपने घोड़े पे थे और ब्लिजर्ड में जा रहे थे। रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। ये जगह थी न्यू लेमन काउंटी, साउथ डकोटा, और यहां से वो होते हुए जा रहे थे। वो अकेले नहीं थे क्योंकि उनके आगे जो शख्स था वो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। जो आगे बंदा था वो भी एक काउबॉय था और उसका नाम था फ्रैंक हैपा। वो अपने घोड़े पे सवार था। दोनों के दोनों जो थे एम्प्लॉई थे, एक बड़े से रैंच पर काम करते थे। टिपिकली इन लोगों की टीम्स एक साथ बाहर निकलती थी, लेकिन हुआ ये कि इस बार इन्हें जाना था और कुछ कैटल जो इनके भेड़ बकरे होते हैं वो खो गए थे, तो ये उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे। टीम साथ में थी लेकिन पूरी की पूरी टीम तितर बितर हो गई मौसम खराब होने की वजह से। तेज हवाएं, बर्फीली हवाएं, बर्फ की चादर, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, और अभी दोनों ही बच गए थे। कुछ भी ढंग से दिख नहीं रहा था। चार्ल्स जो था, जो पीछे चल रहा था, वो बहुत डरा हुआ था। वो इसलिए नहीं डरा हुआ था कि तूफान आया हुआ है, उसने बहुत तूफान देखे हैं ऐसे ब्लिजर्ड वाले, सो ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ द वेदर। उसका जो मेन डर था, जो घबराहट पैदा कर रहा था, वो था वो शख्स जो उसके आगे था, फ्रैंक। उसके लिए फ्रैंक आखिरी बंदा है दुनिया का जिसके साथ वो मौसम में फंसना चाहता है, क्योंकि चार्ल्स को फ्रैंक की एक बात पता लगी थी। उसे ये पता लगा था कि तकरीबन 5 साल पहले फ्रैंक ने अपने बिजनेस पार्टनर की जान ले ली थी बुरी तरह से। पैसों को लेकर बहस हुई और फिर उसकी जान चली गई। मगर जब सजा की बारी आई और कटघरे में खड़ा किया गया फ्रैंक को, तो फ्रैंक ने कहा कि सेल्फ डिफेंस था, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, इट वाज अ सेल्फ डिफेंस। पर चार्ल्स ये बात जानता था कि सेल्फ डिफेंस नहीं, झूठ बोल रहा है, बिकॉज उसके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की जो बॉडी मिली थी उसके चाकू पीठ में गड़ा हुआ था। तो यह कैसा सेल्फ डिफेंस हुआ? पर अभी वो उसका कोवर्कर था, साथ में काम कर रहा था, पहली मर्तबा, क्योंकि अमूमन क्या होता है ग्रुप में होते हैं तो उसे फ्रैंक से डर नहीं लगता था, लेकिन अभी वो अकेला हो चुका था, एक आइसोलेशन पहली मर्तबा हुआ था, तो उसका डर बहुत बड़ा हुआ था कि यार मैं किसके साथ फंस गया हूं। विजिबिलिटी बहुत बुरी थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और चार्ल्स को इस पूरी लोकेशन का इतना अंदाजा नहीं था। फ्रैंक जो कि आगे अपने घोड़े पर सवार था, उसे पता था इस एरिया का, इसलिए चार्ल्स

मजबूर था उसे साइलेंटली फॉलो कर रहा था। दोनों ही दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बस फ्रैंक ने शुरुआत में कहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ। इवेंचुअली चार्ल्स जो था, जो पीछे चल रहा था, उसने नोटिस किया कि जिस घोड़े पे वो सवार है वो घोड़ा थक सा गया है, चल नहीं पा रहा है, कुछ दिक्कत है, और वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। ऊपर से अंधेरा, ऊपर से ब्लिजर्ड। और फिर अचानक से उसे कुछ दिखा, सामने जो चीज दिखी उसे यकीन नहीं हुआ कि अरे ये छोटा सा शेल्टर, एक शैक दिखा, बेसिकली लकड़ी का बना हुआ, यू समझ लीजिए वुडन कैबिन, वो उसे नजर आया। और फिर घोड़े पे से उतरा फ्रैंक उस शैक के पास जाके, और अब चार्ल्स सोच रहा था यार इसका पीछा करना तो ठीक था, अभी इस बंदे के साथ इस कैबिन में रहना पड़ेगा, इस छोटे से कैबिन में। खैर वो मजबूर था, तूफान में मर सकता था, तो दोनों ने अपने घोड़ों को साइड में लगाया और खुद इस शैक के अंदर चले गए। चार्ल्स अंदर गया साथ में फ्रैंक के, और चार्ल्स कुछ देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद, आग जलाने की कोशिश कर रहा था ताकि थोड़ा हीट अप हो सके, बिकॉज इतनी बर्फ थी चारों तरफ के कुछ भी समझ आना मुश्किल था, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो चार्ल्स जो था वो जैसे जैसे आग लगाने की कोशिश कर रहा था, वो नोटिस कर रहा था इस पूरे पुराने कैबिन में, लकड़ी का बना हुआ कैबिन, इसके चारों तरफ धूल मिट्टी जमी हुई थी। उसने देखा एक कोने में फ्रैंक जो है वो अपने गियर्स निकाल रहा, जो भी उसके पास चीजें थी वो सारा का सारा बैग निकाल के रख रहा था, और चार्ल्स जो है वो बस बोल रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दोनों बहुत देर से चुप थे। तो चार्ल्स ने बोला यार फ्रैंक हमारी कितनी अच्छी किस्मत है ना, हम बच गए यार, वी आर सो लकी, इस तूफान में हमें ये वुडन कैबिन दिख गया। उसके ऊपर फ्रैंक ने कुछ सेकंड का पॉज लिया और फ्रैंक बोला अरे नहीं यार, लक नहीं है ये, कोई ऐसे अबेंडेंट नहीं है, ये मेरा ही घर था, मैं यहां रहता था पहले। और चार्ल्स को समझ में आया अच्छा तभी ये इस तरफ बढ़ रहा था। और फिर चार्ल्स को ये भी याद आया कि अरे इसने अपने बिजनेस पार्टनर की जान ली थी, कहीं ये वही जगह तो नहीं है जहां फ्रैंक ने अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया था। फिर वो फ्रैंक की तरफ कुछ बोलने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ बोला नहीं क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। उसने देखा फ्रैंक अब एक बैग में उसने कैन निकाला और बीन्स खा रहा था। चार्ल्स पूरी तरह से कांप रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, कि कहां फंस गया यार मैं इस बंदे के साथ। वो बस बाहर जाना चाहता था, उसे लग रहा था कि तूफान ही बेहतर है, इस बंदे ने कुछ कर दिया तो। एंड वो चुप था, फ्रैंक वाज कंप्लीटली साइलेंट। चार्ल्स उसे पूछना चाहता था क्या ये वही जगह है जहां बिजनेस पार्टनर मरा तेरा, लेकिन उसने नहीं पूछा। उसे लगा खामखा से गुस्सा आया और इसने कहीं मुझे मार दिया तो बिना किसी प्लान के चार्ल्स जो था वो उठा और बातें बनाने लगा। बोला यार वो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर होके आता हूँ। फ्रैंक ने बोला अरे बाहर तू कहाँ जा रहा है, बाहर तूफान है। बोला बस ऐसे ही यार, थोड़ी सी फ्रेश एयर चाहिए, समझ रहा ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अंदर, भी आग वाग जलाई है ना। आई विल बी फाइन, मैं बस आता हूँ मैं। और चार्ल्स जो था वो इस डर के मारे कि भाई इस बंदे ने किसी की जान ली, मैं इसके साथ यहाँ नहीं बैठ पाऊँगा, और तूफान होने के बावजूद बाहर ब्लिजर्ड है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकला। एंड बाहर निकल के उल्टा तूफान में उसे सुकून मिल रहा था, यार अभी अच्छा लग रहा है। वो अपने घोड़े की तरफ बढ़ रहा था, इस तूफान में उसकी आंखें ऐसी बिल्कुल धुंध छाई हुई थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था, बट ही हैड अ क्लू कि इस तरफ मैंने घोड़ों को बांधा है, उस तरफ वो जा रहा था। वो जैसे अपने घोड़े के पास पहुंचा, उसे एकदम से पीछे से आवाज आई, और जो आवाज आई बड़ी अजीब सी थी। बहरहाल यहां तक कहानी को रोके, मैं इसके अगले दिन जाना चाहता हूं। नेक्स्ट डे इस शेल्टर में जहां पे ये दोनों रुकने के लिए आए थे तूफान के बाद, इसके पास में ही कुछ रेंचर्स रहते थे जो खेती बाड़ी पे काम करते हैं, जो रेंच वेंच बनाते हैं, तो वो लोग फेंस फिक्स कर रहे थे, जोड़ रहे थे, जैसे फेंस बनाते हैं ना पूरा, तो फेंस फिक्स कर रहे थे। वो तूफान से टूट गया था, तो उन्होंने देखा

के दूर से एक बंदा जो है बर्फ में अपने घोड़े पर आ रहा है, काउबॉय है, और नजर आ रहा था कि बंदा बड़ा वीक सा लग रहा है, जैसे अभी गिर जाएगा ये घोड़े पे से। वो आधा टेढ़ा हुआ हुआ था, लग भी नहीं रहा था कि ये घोड़े को चला रहा है, ऐसा लग रहा था घोड़ा बस उसे लेकर आ रहा है। और रेंजर्स भी सोच रहे थे यार ये क्या हुआ इसको, बट दे वर ऑल्सो हैप्पी कि चलो हम हैं, हम इसका ख्याल रख लेंगे। इस काउबॉय को जब उन्होंने देखा, क्योंकि वो करीब गए देखने के लिए, तो उन्हें नजर आया कि काउबॉय जो था उसके होंठ एकदम नीले पड़े हुए थे, आंखें उसकी ऐसी फटी हुई थी जैसे कोई शॉक महसूस किया हो। रेंचेस ने उसे फौरन घोड़े पे से उतारा, उसे ब्लैंकेट दिया, उसे ब्लैंकेट में पूरा लपेट के अपने एक कैबिन में ले गए, और उसके बाद उसको हॉट कॉफी दी, और कुछ मिनटों के बाद लगा कि अभी सब ठीक है। तो रेंचेस ने पूछा उससे, आर यू ओके? और फिर ये जो कॉबॉय था ये बोला, आप लोग मेरे साथ चलिए प्लीज, मेरे साथ अभी के अभी चलिए। तो बोले कहाँ चलना है? तो बोले मैं ऊपर की तरफ एक कैबिन में था, आप लोग प्लीज मुझे लेके चलेंगे। तो रेंजर्स ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन कितनी दूर है? तो बोले सर पास में ही, आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए। और रेंजर्स जो थे वो जैसे जैसे इसके कहने पर, इसके बताए हुए रास्ते पर बढ़ रहे थे, उन्हें अंदाजा हो रहा था कि ये कौन से शेल्टर में ले जाना चाह रहा है, कौन से कैबिन में ले जाना चाह रहा है, क्योंकि रेंचर्स यहां पर सालों से रह रहे थे ये लोग, उन्हें पता था आसपास क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और 5 साल पहले इन रेंचर्स ने मदद करी थी एक क्राइम सीन की सफाई करने में, एक शेरिफ की, और ये वही क्राइम सीन था जिसमें फ्रैंक ने अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया था। और रेंचर्स सोच रहे थे कि यार ये काउबॉय हमें इस तरफ क्यों ले जा रहा है। जब बिल्कुल ये लोग शेल्टर के पास पहुंचे तो काउबॉय, जो काउबॉय था, उसने कहा चलिए मेरे साथ प्लीज अंदर चलिए। ये उसके साथ अंदर गए इस कैबिन में, एंड उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दे कुड नॉट बिलीव जो उन्होंने देखा, ऐसा लगा जैसे डेजा वो हुआ हो, क्योंकि ऐसा ही क्राइम सीन उन्होंने 5 साल पहले देखा था। उन्होंने देखा जमीन पर फेस डाउन मुंह के बल एक शख्स पड़ा हुआ है कवर्ड इन ब्लड, और उसकी पीठ पे एक चाकू है। रेंचर्स ने ये क्राइम सीन देखा, फिर काउबॉय को देखा, और रेंचर्स ने फौरन अपनी गन निकाली और बोले बताओ किसने किया है, यहां क्यों लेके आया तुम हमें, हा? तुमने किया ना ये। और जो काउबॉय था वो बड़ा कंफ्यूज था, बोले मैंने नहीं किया है। पर रेंचर्स बड़े कंफ्यूज थे, क्योंकि ऐसा ही सेम सीन उन्होंने देखा था 5 साल पहले। उसे पकड़ के ले गए, और 2 महीने बाद जून 1899 ग्रैंड जूरी, सारे के सारे वकील और पूरी जूरी मेंबर्स बैठे हुए थे, वो डिस्कस कर रहे थे 5 साल पहले वाले केस को। डिटेल्स दोनों केसेस की एकदम सेम थी, मिडल ऑफ नोवेयर, सेम वुडन कैबिन, सेम तरीके से बॉडी मिली, सेम चाकू पीठ पर। इट वाज वियर्ड, ऐसा लग रहा था कि 2 सेम केसेस हैं 5 साल के डिफरेंसेस में, मगर एक मेजर डिफरेंस था। पिछले केस में फ्रैंक जो था वो सस्पेक्ट था, उसने मारा था, इस वाले में जो मर गया था वो फ्रैंक था। ग्रैंड जूरी के सामने चार्ल्स खड़ा हुआ था, वही चार्ल्स जो कि बिल्कुल पेल हालत में पहुंचा था रेंचेस के पास, उन्होंने खुद कैबिन की तरफ ले गया था, वो जूरी मेंबर्स के सामने कटघरे में खड़ा था। और उम्मीद थी सारे लोगों को कि यह भी यही बोलेगा कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, या फिर यह मान लेगा कि मैंने किया। लेकिन चार्ल्स ने जो सारे जूरी मेंबर्स और अदालत में जो बयान दिया वो बिल्कुल ही अजीब था। वो इतना अजीब था कि सबके सब उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, जितने भी लोग बैठे हुए थे। लोगों ने पूछा कि चार्ल्स आखिर हुआ क्या था, तो फिर चार्ल्स ने बात करना शुरू करी। उसने बोला
मैं जैसा अब रात में एकदम से पैनिक हुआ क्योंकि मुझे डर लग रहा था फ्रैंक के साथ, फ्रैंक की वजह से मैं डर के मारे बाहर आया। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं तो बाहर गया और मैं अपने घोड़े के पास जा रहा था, मुझे एकदम से पीछे से आवाज़ आई, मैंने सोचा शायद फ्रैंक होगा, मैं मुड़ा और मैंने सिर्फ परछाई दिखी सर, मुझे एक ही परछाई दिखी। मैं अंदर गया देखने के लिए फ्रैंक को, मैंने देखा कि फ्रैंक मुंह के बल पड़ा था और वो चाकू उसकी पीठ पे था, और सर वहां पे कोई नहीं था सर, हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, यकीन कीजिए मेरी बात का। सर मैंने नहीं मारा सर, किसी गोस्ट ने मारा है सर उसको, सर मैं बता रहा हूं आपको, मैंने नहीं किया। और उसके बाद मेरी किस्मत अच्छी थी, रेंचर्स मुझे मिल गए तो मैंने लेके गया वापस। ये स्टोरी जब उसने बोली, ये तमाम जगह फैल गई, मीडिया आउटलेट्स हर जगह हर किसी ने कवर किया, क्योंकि ये बहुत ही अजीब किस्म का बयान था। जर्नलिस्ट आ रहे थे और ये सेंसेशनलाइज कर रहे थे स्टोरी को कि एक भूत ने मार दिया। मगर ग्रैंड जूरी जो सामने बैठी थी, लोगों को उम्मीद थी कि जूरी मेंबर्स ये सब बकवास नहीं मानने वाले, मगर ग्रैंड जूरी ने इस बयान पर चार्ल्स को जाने दिया और सब के सब हैरान थे कि ये कैसे हो गया। मगर आखिर हुआ कैसे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसकी वजह से चार्ल्स की इस टेस्टिमनी को, इस बयान को सुनने के बाद ग्रैंड जूरी ने उसे जाने दिया। हुआ दरअसल ये था कि पांच साल पहले फ्रैंक ने जब अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया था और चाकू उसके पीठ में गड़ा हुआ था, जिसके बाद फ्रैंक ने कहा कि मैंने तो सेल्फ डिफेंस में मारा, तो वो जो चाकू था वो अदालत ने सील करवा दिया था एज एन एविडेंस और वो पुलिस वालों के पास बहुत सेफली मौजूद था। इन पांच सालों के दौरान चार्ल्स जो कि अभी पहुंचा था अदालत में, उसे कोई आइडिया नहीं था कि चाकू कहां पर है, किसके पास हो सकता है, कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है इनके। इनफैक्ट उसने तो फ्रैंक का केस फॉलो अप भी नहीं किया था, तो उसे कोई आइडिया नहीं था। मगर अब जब फ्रैंक की पीठ में चाकू मिला तो वो वही चाकू था जो एक्चुअली में एविडेंस के तौर पर पुलिस के पास लॉक्ड होना चाहिए। ये चाकू उनके पास से गायब होके फ्रैंक की पीठ तक कैसे पहुंचा, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एंड माइंड यू दिस वाज 1899, तो फिंगरप्रिंट्स लेना और उस पर पूरी तरह से रिलाई करना वाज नॉट अ फीजिबल थिंग। तो जूरी मेंबर्स ने पूछा कि जो चाकू मिला वो कौन सा था, तो पता लगा कि वही चाकू था जो पांच साल पहले फ्रैंक ने यूज किया था अपने पार्टनर को मारने के लिए, और अब भी ये वही चाकू है जो फ्रैंक की पीठ पर गड़ा हुआ है। मगर ये चाकू पुलिस वालों के पास से कब कैसे गायब हुआ ये कोई बता नहीं पा रहा था, बिकॉज चार्ल्स पुलिस वालों से कोई लेना देना नहीं, वो तो कहीं और से ही आया था, वो इस केस के बारे में जानता भी नहीं था। चार दिन पहले उसे फ्रैंक के बारे में पता लगा था कि फ्रैंक ने ऐसा ऐसा कुछ किया है, एंड इतिहास में ये पहली मर्तबा एक केस था जहां पर लिटरली जज साहब ने ये माना कि भाई तुम बाइज्जत बरी किए जाते हो चार्ल्स, फ्रैंक को किसी भूत ने मारा है। And the case was closed then and there, और चार्ल्स को रिहाई मिल गई। पूरी की पूरी हेडलाइन उस टाइम की साउथ डकोटा में यही थी कि गोस्ट किल्ड अ मैन इन आइसोलेशन। ये रिकॉर्डेड केस है और उसके बाद कभी इस पर री इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं हुई है। Nobody can explain कि वो चाकू जो पुलिस के पास एविडेंस के प्रूफ पे होना चाहिए था वो कैसे ब्लिजर्ड में पहुंच गया, तूफानों के बीच में, और जाके फ्रैंक की पीठ पे गड़ गया एंड फ्रैंक उसी फैशन में मरा जिस तरीके से उसने अपने बिजनेस पार्टनर को मारा था ये बोल के कि सेल्फ डिफेंस है। सो या दिस वॉज अ स्टोरी, अ वेरी वेरी वेरी वियर्ड वन। आई डोंट नो आपको क्या रिएक्शन है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की टेस्ट की कहानी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये भी स्टोरी जानना जरूरी है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड स्टोरीज वेर इन समथिंग वियर्ड हैपेंड। आपका क्या कहना है इस पे? 666-22107 नंबर है, 666-22107। अभी आपके हवाले है कहानी, बता दीजिएगा नंबर एक बार फिर से, 666-22107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई जी मैंने स्टोरी तो सुना दी है, एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं सबसे पहले। और 6:04 हो चुके हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है भाई?
2: बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, आप सुनाइए भाई, क्या हाल है भाई के?
3: भाई स्टोरी तो मैंने सुनी यार, बहुत मतलब बहुत अच्छी स्टोरी थी, नॉट बैड, बहुत मजा आया।
2: हाँ,
3: तो मैंने एंडिंग क्या सोचा मालूम है भाई? आपने जो कहा ना कि मतलब चाकू एकदम सेम पोजीशन, तो मुझे लगा, अब मैं हॉलीवुड मूवीज कुछ ज्यादा ही देखता हूँ, मुझे लगा कि वो मरा नहीं होगा और वो गांव वाले जो 5 साल पहले उसकी हेल्प किए थे, तो मेरे ख्याल से वो बच गया होगा और इसने बदला लिया होगा।
2: अरे ये आपने काफी वो एंटी हीरो वाली कहानी सोच ली मेरा भाई। बहुत
3: आपने तो एंडिंग बदल दिया। मैं बोला है ये क्या हो गया भाई, ये तो केस सॉल्व ही नहीं हुआ यार।
2: हाँ, वो एक्चुअली में सॉल्व हुआ है, एक्चुअली में सॉल्व हुआ है, बट बहुत ही अजीब तरीके से सॉल्व हुआ है, बिकॉज किसी ने भी चार्ल्स पे एक मर्तबा भी शक नहीं किया है, जो उसने एज इट इज बोला वो मानना पड़ा उन्हें, तो
3: मतलब किया उसी ने था,
2: किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, लोगों ने डाउट किया था मगर कोई साबित नहीं कर पाया उस चीज को।
3: यार ऐसे कातिल घूम रहे बाहर यार,
2: अजीब और गरीब मेरे भाई, अलग ही इन पे पिक्चरें बननी चाहिए।
3: हाँ यार, इन सब पे तो पिक्चर बननी चाहिए यार। मैं तो ऐसे देखूंगा कि शौक, मैं कहानी सुनते शौक रह गया यार, केस सॉल्व नहीं हुआ, बताइए किसने मार, मैं अभी यही सोच रहा था।
2: हाँ।
3: अभी आपने बोला ना कि इसकी एंडिंग हुई, तब मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है।
2: हाँ।
3: नहीं तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार आखिर मारा कौन होगा यार।
2: हाँ, वो किसी को नहीं पता, तो उन्होंने जो अखबारों में भी छपाया वो यही है कि गोस्ट किल्ड अ मैन इन आइसोलेशन, ऐसा लिखा हुआ है। तो कोई जज साहब ने बयान भी यही दिया, उन्होंने सुनाया ये कि मैं इसको बाइज्जत बरी करता हूँ, मुझे नहीं पता किसने मारा।
3: मतलब उसको सजा मिली है क्या?
2: किसको सजा मिलेगी, कोई है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि इसको सजा देनी है। हाँ, वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई किसी भूत में मारा, हमें नहीं पता, तो ये वो किसको सजा देंगे, दे कुड नॉट पनिश एनीबॉडी। तो ये है केस। अरे भाई बहुत ढूंढनी पड़ती है भाई, क्या बताऊं,
3: बहुत मजा आता है यार,
2: मैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
3: बहुत बहुत बढ़िया भाई,
2: जज़ाकअल्लाह मेरी जान, ऐसी कहानी मिलती रहेगी इंशाल्लाह, बस ऐसी प्यार देते रहिए, थैंक यू।
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई उसी के लिए तो रहते हैं, नहीं तो यार ऑक्सीजन नहीं है आजकल। स्टोरी है आपकी यार, आपका साथ है तो ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं तो गर्मी में आदमी भुने भाई।
2: भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह देखो कल परसों और भी इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे संडे से थर्सडे तक, देखो अब तक क्या करते
3: हैं। इस बार का वीकेंड तो इतना लंबा था, पता नहीं कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे।
2: नहीं भाई इंशाल्लाह इस बार की वीकेंड की कहानी बहुत तगड़ी देंगे, कोई टेंशन नहीं, इस बार बहुत बढ़िया कहानी देंगे। ठीक है मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो भाई के बाद जो है एक और मेरे पास मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है तब उसमें लिखती हैं, इट्स रियली अ वियर्ड स्टोरी कबीर भाई, आई रियली लाइक सस्पेंस स्टोरीज, आई थॉट इट वाज द सेम पर्सन हु किल्ड बोथ, बट नो, अमेजिंग नरेशन, थैंक यू सो मच बहन, आई नो इट वाज वन ऑफ अ काइंड स्टोरी, थोड़ी अलग है

0: फलक भाई लिखते हैं जबरदस्त कहानी कबीर भाई, दिल बजा भाई को बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच भाई। आई नो ये सबके टेस्ट की कहानी नहीं है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक द स्टोरी, मगर मुझे तो अपने दिखाली थी भाई ये किलर घोस्ट, इट वाज अ नाइस स्टोरी। अमन भाई लिखते हैं थैंक यू सो मच। और एक मैसेज है भाई, ये कहाँ से निकालते हैं आप कहानी, कितने बजे ढूंढते हैं, कितने बजे ढूंढते हैं हीरो भाई, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। अब भाई मैं कितने बजे का तो क्या बताऊँ, ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है, पर जैसे ही शो खत्म होता है चाय के बाद फिर मैं ढूंढने लग जाता हूँ। अभी मेरा क्या हो गया ना, कहानी ढूंढने के चक्कर में मैं रिसर्च करने में बहुत माहिर हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सही बता रहा हूँ मैं। एक कहानी को ढूंढने के लिए सारे अखबार निकाल लेता हूँ मैं जितने भी छपे हैं उस एरा के, तो सब इंशाल्लाह मिल जाएगा आगे भी, यही उम्मीद है। और अंधी गाड़ी की तरह भगाता हूँ बस मैं कहानी ढूंढने के टाइम पे। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मेरा भाई, भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं
1: भाई। वो वाली कहानी हो गई,
0: क्या
1: बाहर नहीं निकलना नहीं तो गब्बर आ जाएगा
0: यहाँ ये एक्चुअली वही है, बाहर मत निकलना वो बाबा उठा के ले जाएगा, बाबा आ जाएगा, बाबा बूढ़े बाबा आ जाएगा तो यहाँ
1: ये कोई सॉल्व नहीं हुआ,
0: ये सॉल्व हो गया ना, मतलब सॉल्व भी हुआ और नहीं भी हुआ, क्योंकि उन्होंने चार्ल्स जो बंदा था उसे तो बाइज्जत बरी कर दिया कि भाई तुम जा सकते हो, नो प्रॉब्लम।
1: अच्छा मेरी ना थोड़ी सी बीच में सेंटर से ना कहानी थोड़ी सी वो हुई, जिस वक्त वो बाहर निकल के गया और जिस वक्त घोड़े पे आया इसके सेंटर के पीस थोड़े से मिस हुआ मेरे से,
0: उसे पीछे से आवाज आई कुछ शोर शराबे की आवाज आई, क्योंकि तूफान तो ऑब्वियसली थोड़ी कम ही आई होगी उसे आवाज, वो मुड़ा वापस जाके उसने देखा, और फिर मैंने कहा कि अगले दिन की तरफ कहानी शिफ्ट कर दी थी, जब चार्ल्स जो था वो बेचारा बहुत शॉक्ड हालत में गांव वालों के पास गया, उनसे कहा कि भाई मेरी मदद करो और मेरे साथ जरा कैबिन में चलो, तो हाँ तो ये थी कहानी।
1: यार ये जहां तक हमारा अंदाजा बैठता है ना भाई, ये इसने कहानी मनगढ़ंत गढ़ी है अपने आप को बचाने के लिए
0: भाई, पता नहीं ये तो देखो, पर कोर्ट ने उसे रिहाई दे दी।
1: पहले वाला कत्ल हुआ ही ना हो, इसने दूसरा वाला कत्ल भी पहले वाले की तरह करके
0: हाँ।
1: तो कर दियो। अब मैं कल एक केस सुन रहा था इसके, इस तरह ना मैं अपने कराची पे ना थोड़ी सी वो चल रही थी, तो वो मैं देख रहा था।
0: अच्छा
1: तो उसमें ना बहुत टाइम पहले जना एक सीन हुआ था कि हमारे जो सोसाइटी थी ना उस सोसाइटी में एक घर के ऊपर पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिली जी यहाँ पे ना इलीगल असला वगैरह और बाकी चीजें हैं, ठीक है। तो बताया किसने जी, उधर जो एक काम करता था बच्चा, बच्चे ने बात बताई, और बच्चे ने भी किसके थ्रू बताई, दूसरे घर में जो काम बच्चा करता उसके थ्रू आगे।
0: अच्छा।
1: और अपने मालिक को, और उसके मालिक ने जाके एजेंसी को बात बताई थी, और ये रियल स्टोरी है।
0: क्या बात है यार,
1: बड़ा जिस वक्त बात पता चली, जिस वक्त उसने जब बताया कि जी इसका असला जाता है, और उस घर में जो जिस घर का ये बता रहा था उसमें एक बूढ़ी माई जो पहले बीमार थी बहुत सारी, बहुत ज्यादा बीमार थी, उनके लिए एक डॉक्टर आती थी डेली बेसिस पे, और एक अंकल जिन्होंने पिकांटो गाड़ी रखी हुई थी।
0: अच्छा
1: ठीक है। अच्छा उस बच्चे ने इतना जना वो हाइप क्रिएट कर दी थी कि एजेंसी के बड़े बड़े बंदे और फुल जना प्रोटोकॉल के साथ उस घर पे छापा पड़ा था, ठीक है। और छापा जब पड़ा अंदर से कुछ भी इस तरह नहीं मिला, ठीक है। जब कहानी खत्म हुई तो बच्चे से पूछा गया, तो बच्चे ने बोला जी इन्होंने मेरे को एक बार डांटा था, और इन्होंने मेरे को ना समझ लिया कि वो गलत वीडियोस देखते हुए पकड़ लिया था, तो इन्होंने मुझे बेइज्जत किया था, और ये बात मेरी बार जना लीक हो गई थी, और उस वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं इनसे बदला लूंगा, तो ये मैंने बदला लिया।
0: अरे भाई साहब ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये कहीं अखबार वगैरह में हो तो मुझे देना, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा।
1: क्या ये फेसबुक पे है, मैं आपको
0: अगर हो तो सेंड कर, हां तो लिंक मुझे भेजना एक बार, आई वुड लव टू।
1: ओके करो, कल मैं सुन के यार मैं इतना भी शौक हुआ रहा पानी के, यार थर साइड का हमारा जो थर का इलाका है ना, समझ लेके वो जैसे आपका राजस्थान है ना, और उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ बिल्कुल ही बैकवर्ड चले जाते हैं जो, ठीक है, वो हमारा थर का वो सीन है, और वहाँ के बच्चे मीन्स की जो फैमिलीज होती है ना वो समझ लेके पुश्तों से जो है वो क्या करते आ रहे हैं, मुलाजमत करते आ रहे हैं घरों के अंदर जो है वो काम करने वाले जो है इस तरह के नौकर देना, वो चलते आ रहे हैं।
0: नहीं
1: तो
0: ये,
1: उसके वालिद की जगह वो बच्चा आया।
0: ये कहानी तो मुझे भेजना भाई, मैं देखता हूँ इसमें कुछ ना कुछ मैं पढ़ूंगा, देखते हैं अगर इसमें अल्लाह की जरूर सुनाई।
1: तो मुझे भी अभी सीन ये वही समझ आ रहा था कि इसने भी वही कहानी की है कि अपने आप को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी।
0: कब की तो वैसी कहानी आपने बताई, कब की है ये कहानी?
1: यार ये केसेस शुरू हुए थे, जो कराची वाला केस है ये तकरीबन 2011-12 का मेरे ख्याल से। 2011-12
0: ओके ठीक है, मुझे भेजना अगर लिंक मिले तो मुझे भेजना, ठीक है।
1: ओके ओके जरूर,
0: ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: ठीक है, खुश रहे।
0: वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। और भाई आप लोग भी, जैसे भाई ने बताया, अभी कोई स्टोरी अगर आपको लगता है कि सुनानी चाहिए, कोई सेंसेशनलाइज कहानी, तो प्लीज़ सेंड कर दिया करें, नो प्रॉब्लम। सोने भाई वालेकुम सलाम, तब उसमें लिखती हैं, वी ऑल फैमिली आर एट नियर बाय चाय की दुकान, और उनकी बिटिया जो कह रही है चार्ल्स ने ही किया है मम्मा, एंड शी वॉज ऑल्सो लिसनिंग सो इंटेंसली, मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा बिटिया को अपनी, थैंक यू सो मच। और एक मैसेज आया है, भाई ये फिल्म उस कहानी पर बन गई है आपने जो सुनाई थी, वर्टिकल लिमिट नहीं भाई, वर्टिकल लिमिट तो हाँ, अच्छा वो वाली कहानी जो मैंने वो सर्वाइवल वाली जो सुनाई थी शायद, हाँ उसमें वर्टिकल लिमिट है, वर्टिकल लिमिट ही बनी होगी उस पर, आई एम नॉट श्योर, पर शायद उस पर यही मूवी है, यू आर राइट, वर्टिकल लिमिट इज अ ग्रेट मूवी बाय द वे, इसे देखनी है वो जरूर देख सकता है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस मूवी। ओके सो 666-22107 नंबर है, ड्राइव सेफली मगर स्पीड से बढ़ो, लेन को घेरो मत, और गाने भी कुछ कहना है तो मैसेज कर दो भाई 666-22107 पर।
2: सिंपल सा उसूल है,
0: हाँ भाई,
2: या तो भीड़ में सड़ो
0: या फिर स्पीड से,
2: या स्पीड से बढ़ो।

AK Speed, السلام عليكم. بدوها ولا كبير F107 بيو.

आभासी तो मिलनी चाहिए कतर को। क्या क्या खबरें आ रही हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी खबर तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने हाईलाइट किया, एक इम्पॉर्टेंस बताई कि डिजिटल सिटीजनशिप कोर्सेज कितने ज़रूरी हैं। इसमें फ़िलहाल स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए रखा गया है ताकि वो नॉलेज गेन करें और एक नया स्किल सेट उनके माइंड में ओपन हो और वो नेविगेट कर सकें डिजिटल वर्ल्ड में एकदम सेफली और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंट्री का मकसद है इस बार के जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है वो लोगों में बढ़ाई जाए और यंग लीडर्स और यंग लर्नर्स को और आगे बढ़ावा मिले। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ जहाँ पर एक्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ई लर्निंग एंड डिजिटल सोल्यूशन ने इस बारे में बात करी एंड काफ़ी कुछ हुआ। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी खबर है जो इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि थर्ड साइबर सिक्योरिटी यूथ कैंप जो है वो हुआ है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी यानी NCSA उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ द साइबर सिक्योरिटी यूथ कैंप 2026। ये 3 हफ्तों चल रहा है और यूथ कैंप

जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ. इसे डिलीवर किया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एकेडमी ने और यूथ कैंप जो है ये वाला, ये रीअफर्म करता है एजेंसी की कमिटमेंट को, जिसका मकसद है कि डिजिटली अवेयर बनाया जाए आज की जनरेशन को और उन्हें केपेबल बनाया जाए कि वो साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़े और साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट कर सकें. सो साइबर सिक्योरिटी यूथ कैंप 2026 इज टेकिंग प्लेस कतर साइंस और टेक्नोलॉजी सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज में, और इसमें 400 ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 200 लड़के हैं, 200 लड़कियां बच्चियां हैं, एंड एज ग्रुप इसमें रखा गया है 13 से 17, एंड वेरियस पब्लिक स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स उसमें इन्वॉल्व किया गया है अक्रॉस द कंट्री. इसके साथ साथ जो मौसम का हाल अहवाल है सरल भाई के स्टाइल में, तो फिलहाल जो है टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31. पता नहीं कौन से दुनिया में 31 हो रहा है, हमने तो देखा नहीं 31. क्या है ये, हवाओं की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्ट ऑफ विंड, सो इट डजेंट रियली मैटर कौन गाड़ी की शीशा खोल के चला रहा है अनटिल और अनलेस आपका एसी ख़राब है. प्लीज़ भाई एसी सही रखना, कुछ भी हो जाए. मेरे भी एक बार एसी ख़राब हुआ था, चीखें निकल गई थी भाई, चीखें, चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि शीशे खुले हुए थे. दूसरी बात, ह्यूमिडिटी का लेवल कल से ज़्यादा है 56%, सो इससे ऊपर अगर गया तो मेरे जैसे जितने चश्मे पहनने वाले लोग हैं भाई हम परेशान हो जाते हैं. तो बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह में इतनी ह्यूमिडिटी प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल में मालिक. सो 666-22107 कहानी के ऊपर बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन देना चाहें किसी सीरीज़ मूवीज़ का तो वो दे सकते हैं, और साथ में आप जो है मुझे ज़रूर बताइए ट्रैफिक का हाल क्या है. और जब मैं यहाँ पर हूँ तो ढांडा भाई का गाना नहीं चलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है ऐसा? हो सकता है नहीं, आप बताओ. डांडा नहीं होली वाला.

0: भाई बहुत बढ़िया लिखा कर रहे हैं हमारे डांडानियोली वाला भाई। भाई ने एक लाइन लिखी है इस गाने में, बहुत प्यारी लाइन है वो, कोई दुश्मन चाहे बेटी की हो मारे घर महफूज मिलेगी। क्या भाई यार, एंड करा एंड भाई।
1: हम भी वो है।

0: तो अहमद भाई को भी वही लाइन अच्छी लगी गाने की, थैंक यू सो मच। वैसे मैं क्यों थैंक यू कर रहा हूँ, डांडा भाई गाना, पर ठीक है भाई, हम बहुत बड़े फैन हैं डांडा भाई के। अच्छा मैं अभी ज़रा ट्रैफिक अपडेट दे दूँ आपको, तो अगर आप जो हैं ये अहमद बिन अली स्ट्रीट की तरफ से जा रहे हैं, खलीफा स्ट्रीट से कनेक्ट होंगे, तो आपको सिग्नल्स के पास ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप और कॉर्निश के पास हैं, कॉर्निश के पास आप आ रहे हैं मस्जिद सुल्तान स्ट्रीट से, तो आपको ट्रैफिक के सामना करना पड़ सकता है। बाकी कॉर्निश पर इतना कुछ भारी भरकम तो जाम को नहीं भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा ऐसा कुछ। आपको कहीं मिल रहा हो लेटेस्ट तो भाई मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, बता देना। बाकी एयरपोर्ट रोड पे ट्रैफिक है, अगर हम यहाँ से सीरिंग रोड से कनेक्ट करेंगे तो आपको एयरपोर्ट रोड पे थोड़ा बहुत स्टॉपेज मिल सकता है। इसके अलावा ये रौदातुल खैल की तरफ जो है, चारों तरफ जितनी भी सड़कें हैं रौदातुल खैल से अगर आप अल्दीवान स्ट्रीट की तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक है। अगर आप बी रिंग रोड पर हैं तो भाई मुबारक हो आपको, यहाँ लागे है जाम बढ़िया आला। और इससे भी ज़्यादा जाम की अगर आपको तलाश है तो इब्न जायद स्ट्रीट से अगर आप जा रहे हैं और यहाँ से कनेक्ट होते हुए अल महमूद स्ट्रीट की तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक मिलेगा आपको, और अल जजीरा स्ट्रीट की तरफ और इब्न महमूद स्ट्रीट की तरफ बढ़िया भर के जाम लगा हुआ है यहाँ पे। सो प्लीज ड्राइव सेफली, स्पेशली वो लोग जो किसी गाड़ी के पीछे बिल्कुल चिपका के चलाते हैं मोहब्बत दिखाने के लिए, इतनी मोहब्बत जरूरी नहीं है। अल रियान रोड पर ट्रैफिक लगा हुआ है सीरिंग रोड से अगर आप आएंगे, बट दैट इज नियर द सिग्नल्स। बाकी ताजी एकदम क्लियर है, बाकी और कहीं है कि ट्रैफिक में देख रहा हूँ जहाँ जहाँ लाल लाइनें लग जाएंगी वहीं जाकर दिखा दूंगा। अच्छा मुशारिफ के पास भी इस एरिया में वादिल मुशारिफ स्ट्रीट, एंड यहाँ से निकलते हुए अगर आप जाएंगे तो चारों तरफ से ट्रैफिक मिलेगा आपको। अल खैल स्ट्रीट की तरफ है, अल दीवान स्ट्रीट की तरफ है, अल रैयान रोड पे, मगर दैट इज़ नियर ये अपना कॉर्निश की साइड वाले जो रियान रोड है वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। अब बाकी कहीं और जाम लगा हो तो बताइएगा 666-22-107 पे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ऑफकोर्स, क्योंकि अजान का वक्त हो गया, तो इंशाल्लाह अजान के बाद आपसे मुलाकात होगी। कुछ भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, कुछ भी, जरूरी थोड़ी टॉपिक होगा तभी बोलेंगे भाई, कुछ भी आप बोल सकते हैं 666-22-107 पे। थैंक यू सो मच, आपने आप लोगों ने इतने सारे मैसेज किए। एक और मैंने मैसेज किया है कुरेशी भाई, थैंक यू सो मच, जजाकला, एंड हमजा भाई थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मिलते हैं कुछ देर में, जाना नहीं है आपने, बेस्ट जगह पर हैं आप, स्टे ट्यून्ड।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है के दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

मिलते हैं गाने के इस पार। भाई ड्राइव के लिए बहुत बढ़िया गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है, फॉरएवर 666221107 नंबर है।

फॉरएवर। अरे भाई बहुत कर रही शायरी कर गया भाई अपने। हाँ जी क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है, सब शानदार है। और बताओ क्या हाल है? देखो क्या है कि इतने सारे मैसेजेस जो आप लोग कर रहे हैं कहानी के लिए, इतना सराहना मिल जाती, इतनी तारीफ मिल जाती, इसी के लिए बंदा जीता। थैंक यू सो मच कि आपको कहानी अच्छी लगती है। ऑब्वियसली कोई ना कोई तो होगा इसे कहानी नहीं पसंद आती होंगी, बट आई कैन नॉट हेल्प देम, आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको सुनना ही पड़ेगा अगर कहानी सुनी तो। अच्छा फिलहाल आज के दिन कुछ इंटरनेशनली मार्क्ड दिन है, उनके बारे में बात करूंगा। आज भाई साहब पेड़ का दिन है, आज है ट्री डे, और ट्री डे के बाद है आज बेगल फेस्ट डे, होता है कुछ डोनट जैसा होता है ना ये बेगल, हाँ तो उसका भी दिन है आज। हम तो इसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, कुछ कहते हैं, भूल गया, मैं नाम भूल गया इसका। और इसके बाद है डॉग फोटोग्राफी डे। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैंने खुद अपनी अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा भी है। तो एक खातून है और उनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब वो क्या है, उनसे कह रहे हैं अपनी वाइफ से, कहते देखो 4 साल हो गए तो माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी लिखी हो, तो नौकरी वोकरी ढूंढनी चाहिए, अब तुम्हें लगता नहीं कि अब ज़्यादा हेल्प हो जाएगी? तो उन्होंने उसके जवाब में क्या कहा, एक होता इंसान बोल सकता कि यार अभी मन नहीं है नौकरी करने का, सब सही चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि मेरी बिल्ली का क्या होगा। तो उनके हस्बैंड का चेहरा देखने वाला था, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया उसके बाद। वो कैसे बताएगी, उसकी बीवी कह रही कि नहीं मैं क्या है कि इसलिए नहीं जॉब करना चाहती क्योंकि मेरी बिल्ली अकेली पड़ जाएगी, उसका क्या होगा तुम वो नहीं सोच रहे। तो यस, हालांकि आज बिल्लियों का दिन नहीं, आज है डॉग फोटोग्राफी डे, तो जिनके पास जो है पपीज हैं जो भी है फोटोग्राफी कीजिए, टुडे इज द राइट टाइम टू। मगर भाई यार इतना पैसा चाहिए मेरे को, इतना पैसा चाहिए, कोई मुझसे बोले कि कबीर साहब आजकल आप शो क्यों नहीं कर रहे, भाई वो मेरी बिल्ली अकेली पड़ जाएगी घर पे यार, ये इतना पैसा चाहिए। तब है मज़ा, क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसी रईसी जो है ना मुझे आसपास देखने को मिलती है, मुझे यकीन नहीं होता है क्या कितना पैसा होगा। नहीं अंदर अंदर मैं यही सोचते रहता हूँ, सबसे पहले कैलकुलेशन करता हूँ कितना पैसा होगा यार कि इंसान ही बोल पा रहा कि मेरी बिल्ली अकेली रह जाएगी। भाई साहब तो ये है कहानी, तो क्या बोले भाई। एनीवे आज है आंट एंड अंकल डे, अंकल आंटी जिनको हम लोग पूपा खाला चाचा ताऊ कुछ भी कह सकते हैं, अंकल की हमारी और आंटी कैटेगरी बहुत बड़ी है, पर किसी भी 30s में आए हुए ताज़ा ताज़ा शख्स को आप अंकल बिल्कुल ना कहें, अंटिल और अनलेस आप एक बच्चे हैं, बच्चा बोल सकता है मुझे अंकल, लेकिन अगर किसी ने अंकल बोला जो मुझसे 5 साल छोटा है, भाई साहब छोड़ने का नहीं मैं। इसके बाद है ऑल फॉर नथिंग डे, आई डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट दिस बट या दिस इज अ डे। आज आंटीज डे अलग से भी है, आज कॉफी मिल्क शेक डे है। कहें कॉफी मिल्क शेक, ये क्या होता है यार, मैं धोखा खो गया क्या, मुझे क्या पढ़ा हुआ, कॉफी मिल्क शेक डे है भाई आज, आई डोंट नो व्हाट इट मींस। अब है तो है, इस्माइल भाई कह रहे हैं सलाम अंकल। इस्माइल भाई इसका बदला तो मैं लूंगा, अलग से मैसेज करूंगा मैं आपको, देखो कैसे मैसेज धनिया बोलता हूँ मैं। डॉग फोटोग्राफी डे मनाते हुए फलक भाई ने एक डॉगी का फोटो भेजा, भाई ये कौन सी ब्रीड है, मैं इन नस्लों के नॉलेज में बहुत कम हूँ, लेकिन मुबारक हो आपका ये मुझे बताइएगा। एंड मलिक वका साहब क्या कह रहे हैं, सलामुअलैकुम भाई क्या हाल है, आज तो ऑफिस से सो गया था अभी उठा हूँ, याद किया आपका शो चल रहा है वरना स्टोरी मिस, पहले 2 दिन का वेट करना होता है। नो प्रॉब्लम ब्रो, मैं भेज दूंगा, ऐसी कोई गाल नहीं है। क्या बिल्ली के लिए जॉब नहीं करनी, बिल्ली इज द रीज़न। हाँ बहन तब उसमें मैंने लिख रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके सामने ऐसा दिल दुखाने वाला रीज़न, मुझे भी इतना पैसा चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ ना बहन, इतना पैसा चाहिए मैं बोल सकूँ बिल्ली की वजह से नहीं करनी मुझे नौकरी।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं
0: भाई साहब? एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाए क्या हाल है भाई के?
1: जी अमन कतर बोल रहा हूँ।
0: हाँ भाई, मैं पता है भाई, कैसे नहीं पता भाई। तो अमन भाई क्या
1: लिया है ना?
0: बिल्कुल मेरा भाई, बिल्कुल बताइए क्या कहना चाह रहे हैं।
1: कुछ नहीं, स्टोरी सुनी थी, अच्छा था, अच्छी थी स्टोरी।
0: हाँ हाँ,
1: लेकिन उसको कभी सजा नहीं हुई?
0: नहीं भाई, वो उन्होंने कह दिया ना कि भूत ने मारा है, उन्होंने कहा नहीं भाई, चार्ल्स आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं।
1: उसको बाइज्जत बरी हो गया ना एंड में?
0: हाँ भाई, हाँ वो बाइज्जत बरी हो गया भाई। और
1: ऐसा कोई अपने लिए सिस्टम लागू होता है एचआर मैनेजर के लिए?
0: ट्राई भी नहीं करना भाई, ट्राई भी नहीं करना तो, वरना आपको भाड़ा के कहना पड़ेगा। वो बिल्ली की वजह से मैं नौकरी नहीं करना चाह रहा हूँ,
1: बिल्ली की वजह से।
0: देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है।
1: हाँ हाँ जी,
0: देख रहे हैं आप दुनिया में क्या क्या बहाने हैं नौकरी ना करने के।
1: सच में। और कोई टॉपिक था, मैं मेरे ध्यान में नहीं आया।
0: टॉपिक ये था भाई कि दो दोस्तों में अगर भिड़ंत हो गई तो आप क्या करते हैं, मतलब आपके दो दोस्तों में लड़ाई हो रही है, कोई मान नहीं रहा, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सो हाउ डू यू टैकल
1: इट? मेरा तो परम धर्म ये है कि मैं दोस्त हूँ उनका सच्चाई में, और मैं उनका वो करवाऊंगा कंसाइल, रिकंसाइल करवाऊंगा कि मिलो भाई, मिलजुल के रहो, बस मेरा ये।
0: और नहीं मान रहे वो, कह रहे नहीं तुम भी भाड़ में जाओ, क्या करोगे फिर?
1: फिर मैं उससे भी तोड़ दूंगा, अगर मुझे कहेगा भाड़ में जाओ तो मैं भी बोलूंगा कि तुम भी भाड़ में जाओ फिर।
0: अब तीनों में लड़ाई हो गई, वाह अब ठीक है, मैंने कलेश कर दिया बीच में।
1: अगर अगर हमारी दोस्ती की या हमारी जुबान की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर कौन सा दोस्त हुआ? फिर दोस्त तो वो है ना जो एक जुबान पे आ जाए, मर मिटने को तैयार हो जाए, वो दोस्त होता है ना।
0: ये हुई बात,
1: इसने बोला है तो करना है,
0: मान रखने वाली बात है, मान रखने वाली बात है।
1: हम लोग उनमें से है, मान रखने वाले लोगों में से है।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही,
1: हमने सीखा भी यही है कॉलेज में, घर से, अपनी सोसाइटी से यही सीखा कि अपने जो आपको सबसे प्यारा है अगर उसने कुछ बोल दिया ना तो पत्थर पे लकीर है, चाहे वो गलत है उसका साथ देने का, मतलब ज्यादा गलत नहीं है, जो ठीक ठीक ठीक ठाक लीगल गलत है, इलीगल गलत वाला नहीं है।
0: हमारा नेता कैसा हो, अमन भाई जैसा हो। भाई साहब चुनाव चिन्ह बनवा लीजिएगा, ठीक है, छुट्टी में जब टाइम मिले तो।
1: अभी कजन के साथ डिनर करने जा रहा हूँ जी, जायका रेस्टोरेंट में, आइए तो।
0: भाई वो एक्चुअली मैं, मेरे बिल्ली अकेली रह जाएगी घर पे, इसलिए मैं नहीं आ पाऊं।
1: अच्छा, जो आप जिसने आपको अंकल बोले ना, हाँ। उसके लिए अच्छे से धनिया भुनना मेरी तरफ से भी।
0: भाई मैं इस्माइल भाई को अभी देखो कैसे मैसेज करता हूँ, देखो ये मुझे ब्लॉक कर देंगे, इतने मैसेज करूंगा मैं।
1: आपने अभी आपने बोला कि मुझे किसी ने अंकल नहीं बोलने का,
0: हाँ।
1: अगले मिनट में आपको अंकल वाला मैसेज आ, देखो
0: भाई डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है, समझ रहे हैं आप, बताइए।
1: अच्छा धनिया बोने का, आगे से किसी को अपने अंकल को भी अंकल ना बोले, ऐसा धनिया बोने का
0: नहीं। अभी इस्माइल भाई में देखो मुझे कैसे ब्लॉक करते हैं, इस्माइल बोले कि भैया ब्लॉक करना पड़ेगा, आदमी सर पे चढ़ा गई।
1: अच्छा चलिए
0: नहीं, थैंक यू सो मच
1: कबीर भाई, सुन रहा हूं आपको अभी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
1: टेक केयर, हैव अ नाइस डे,
0: यू टू मेरा भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे मैसेज किया है अंकल बोल के, अरे नहीं मुझे पता है प्यार है अरुण भाई, बहुत बढ़िया डीपी लाई है अरुण भाई, चेंज कर ली भाई, और प्यार है इस्माइल भाई, कह रहे हैं इस्माइल भाई मजाक कर रहा है यार, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत प्यार। और एक भाई कह रहे हैं जर्मन शेफर्ड है, एकदम ओरिजिनल वाला, पाकिस्तान में है। भाई साहब पाकिस्तान में जर्मन शेफर्ड का खर्चा भी पाल रखा है आपने फलक भाई, इतना पैसा चाहिए मुझे भी, चाहिए इतना पैसा मेरे को भी चाहिए। दिशान भाई कह रहे हैं अंकल जी ये कॉफ़ी मिल्क शेक क्या होता है? दिशान भाई मुझे भी नहीं पता कॉफ़ी मिल्क शेक क्या होता है, सही बता रहा हूँ, कसम उड़ान चल रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने अभी देखा आज है कॉफ़ी मिल्क शेक डे, मतलब यार ये तो कोल्ड कॉफ़ी हो गई ना, कॉफ़ी में आपने दूध डाल दिया तो वो तो कोल्ड कॉफ़ी हो गई, और ठंडा कर दिया उसे, शेक कैसे बनेगा यार, ये मैं थोड़ा सा मुझे AI से पूछना पड़ेगा। इफ़ एनीबडी नोज अबाउट इट प्लीज़ मुझे बताइएगा, स्पेशली वो लोग जो जाके काउंटर पे बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। आई नीड माई कॉफ़ी टू बी लाइक दिस, बीन्स टू क्या बोलते हैं यार वो, ज़्यादा सेकने को, कम सेकने को, भाई बीन्स पे भी बात होती है, कॉफ़ी में जो कम सीखी हुई ज़्यादा सीखी हुई, मुझे यहाँ के पता लगा ये, इतना नहीं पता था मुझे, इतना भी मेलो ड्रामा होता है कॉफ़ी के चक्कर में, एंड देर आर सो मैनी ऑप्शंस, और एक कॉफ़ी मिल्क शेक और जुड़ गया उसमें, किसी को पता है कॉफ़ी मिल्क शेक क्या होता है प्लीज़ मुझे बताना, आई रियली वॉन्ट टू नो, फिर मैं आपको बैठ के जज करूँगा, मेरे साथ पूरा कतर आपको जज करेगा। क्योंकि हमें नहीं पता भाई, मुँह पे ना है टाइम ही पता करने का कि क्या चीज़ है ये। बाकी 666-22-107, और क्योंकि भाई मैं हूँ बहुत बड़ा फ़ैन, ठीक है, आवारा बन का बहुत ही बड़ा फ़ैन, तो मैं ये तो चलाऊँगा, नहीं मैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है चलाने से। अरिजीत सिंह के पास है आवारा बन का टाइटल ट्रैक है, क्या गाया भाई ने, आशिकों बाहर निकलो, याद करो उनको जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है व्हाट्सएप पे, आ जाओ, या आपने ब्लॉक किया, विच एवर वे सूट्स यू। 6:42 ऑन द क्लॉक, ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज़।

6:47 हो रहे हैं घड़ी में। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। और भाई क्या हाल है, बढ़िया। कोई सीरीज वगैरह फॉलो कर रहे हैं आप? देखो मेरा तो अभी चीप थ्रिल्स चल रहा है। वो क्या है कि मैंने बहुत अकलमंदी की मूवीज की बातें कर ली अपने इर्द गिर्द। मैंने कहा मैं जो हूँ छुपते छुपाते कुछ ऐसा

0: ऐसा दिखता हूँ जो कतई चीप थ्रिल्स में आ जाए. तो मैं आजकल लॉकअप और अलायंस दिख रहा हूँ. आई डोंट नो इफ यू फॉलोइंग इट. लोग बोलेंगे यार तुम बिग बॉस ही देख लो इससे बढ़िया. नहीं भाई देखो साफ सीधी बात, मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा. एक मरतबा पहले सीजन देखा था बस. उसके बाद अभी मैं लॉकअप शॉकअप देख रहा हूँ मैं. और वो जितना भी बुरा शो है उतना ही मजा आ रहा है मुझे. क्रिंज कंटेंट कंज्यूम करने की आजकल आदत सी हो गई है. बढ़िया टाइम पास है, ज़्यादा अकल लगाने नहीं पड़ते. तो मैं आजकल लॉकअप और अलायंस देख रहा हूँ. अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी दिखाई अपने दोस्तों को और मूवी का नाम था द डिसेंट. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट, हाईली हाईली रिकमेंडेड. मैं इस वक्त रिकमेंडेशन देता हूँ तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ. 2005 में आई थी आई गेस ये मूवी. बहुत अच्छी थी यार. तो नहीं देखी तो देखना है. कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम भाई. भाई किसपे देख रहे हो लॉकअप?
0: क्या देख रहा हूँ?
1: लॉकअप शॉकअप किस पे देख रहे हो आप?
0: भाई ओटीटी पे देख रहा हूँ भाई. वो जो एन से शुरू होता है और एक्स पे खत्म होता है.
1: भाई मैं किया था लेकिन मुझ पे तो नहीं आते इंडियंस.
0: भाई हमको आइडिया नहीं भाई. मैं तो उसी पे देख रहा हूँ मेरी जान. मैंने तो यही वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा है. कतर में ही आके सब्सक्रिप्शन लिया.
1: वो मैंने नहीं, मैंने लिया था एक बार, मतलब मैं ऑन किया था, उसके बाद वो आया ही नहीं. खाली कतर के आ रहे थे तो मैंने अनइंस्टॉल मार दी.
0: नहीं नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ का सब्सक्रिप्शन लिया है. मैंने इंडिया वाला सब्सक्रिप्शन नहीं रखा. यही वाला सब्सक्रिप्शन है, फिर भी आता है उस पे.
1: चलो मैं आज करता हूँ क्योंकि नया चालू हुआ है ना, तो मुझे भी देखना है.
0: हाँ अरे आप अभी बहुत सारे एपिसोड एक साथ देख डालोगे भाई. बहुत मतलब ऐसा है कि मैं ये तारीफ नहीं कर सकता. और ये बड़ा हाईली इंटेलिजेंट शो है. वो जितना घटिया उतना अच्छा है, वो वाली बात है. थोड़ा चीप थ्रिल से तो देखना अच्छा. वैसे भी यहाँ पे आसपास लोग एक दूसरे से लड़ते हुए नजर नहीं आते, तो मैंने कहा शो ही देख लूं.
1: क्या हुआ?
0: मैंने कहा लोग आपस में लड़ते हुए नजर नहीं आते ना बहुत टाइम से, तो मैंने कहा चलो शो ही देख लूं ऐसा जिसमें लोग लड़ रहे हो तो थोड़ा सा मजा आ जाता है.
1: वही ना, मुझे नहीं, मैंने देखी थी, मुझे देखना था वो, लेकिन मैं सोच रहा था कि कैसे देखूं. अभी आप बता रहे हो कि उस पे होता है तो मैं अब फिर से उस पे कोशिश करता हूं.
0: क्यों, आपका कहां का सब्सक्रिप्शन था? आपने यही वाला सब्सक्रिप्शन लिया था या कहीं और से लेके आए थे सब्सक्रिप्शन?
1: नहीं यहाँ वाला ही लिया था मैंने.
0: अच्छा यहाँ वाले था, फिर तो यार आना चाहिए भाई. मेरा यहीं का सब्सक्रिप्शन है, यहाँ वाले पे आ रहा है. अच्छा अच्छा खासा आ रहा
1: है. चलो ठीक है, मैं फिर से करूँगा. अगर नहीं आएगा तो मैं फिर आपको कॉन्टेक्ट करूंगा भाई.
0: डन है भाई. प्लीज प्लीज जरूर देखें, जरूर देखें. ठीक है मेरे भाई. ओके भाई, अल्लाह हाफिज़. तो भाई की बात, एक और मैसेज आया है. ये लियाकत अली भाई ने मैसेज किया. थैंक यू सो मच भाई. लियाकत में क्यों नहीं होना चाहिए? ये के से आप किस स्पेलिंग है? लियाकत होना चाहिए ना, कौफ होना चाहिए. पर मैं कौन होता हूँ आपको स्पेलिंग बताना? मतलब आपकी मर्जी भाई, जैसी मर्जी लिखो. बताते बताते टाइम हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का. तो 6:50 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन. कल इंशाल्लाह वापस मुलाकात होगी शाम 5 बजे. मगर सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. एंड मुझे भी ढूंढ लीजिएगा, दुहा वाला कबीर FM107. दुहा वाला कबीर KABER, नहीं KABER FM107. फॉर नाउ दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. इंशाल्लाह होगी आपसे कल मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं. मा सलामा.

0: السلام علیکم, میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پر. لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف, آئی ایم یور ٹیک گائی. آج مجھے بڑی خطرناک وہ والی فیلنگ آتی ہے, کافی انٹلیکچوئل فیلنگ آتی ہے جب میں گیجٹس اور ایپس اور ان سب کے بارے میں بات کرتا ہوں. بٹ کیپنگ دیٹ اسائیڈ, نو ایگو. لویرا فون نہیں بج گیا, ٹڈنگ, تو نوٹیفیکیشن آپ کے فون پہ بہت سارے آئیں گے. کیونکہ ٹیک شو کا معاملہ ہی ایسا ہے, اتنے سارے ایپس ڈاؤن لوڈ میں کروا دیتا ہوں. لوگوں نے مجھ سے بولا بھائی یہ بھی ڈاؤن لوڈ کرا دیا, وہ بھی. دیکھو آپ کے اوپر ہے بھائی, چوائس آپ کی ہے. پر جو میں آپ کو ایپس بتاؤں گا آج کے شو میں بھی, ساری کی ساری آپ کے کام ہی آنے والی ہیں. اینڈ میجرلی بیفور آئی بگن, یہ نوٹیفیکیشن جو لوگ آن رکھتے ہیں, کیا مزہ کیا آتا ہے ہر ایپ کا کیوں آن رکھتے ہیں آپ, آپ اس کے بارے میں سوچیں. میں شو شروع کر دیتا ہوں. سو ویلکم ٹو ٹیک انوویشن. سب سے پہلے ایپس, دین گیجٹس, دین خبریں. آج کی جو ایپس ہیں بھائی, ون آف مائی فیوریٹ ایپس دس ویک, مزہ آنے والا ہے آپ کو. تو شروع اسی سے کر لیتے ہیں, ایپس دس ویک میں. سو جی, میں دوہا والا کبیر انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا آج کی اس ہفتے کی ایپ نمبر ون. اٹ از ناٹ رینکڈ, ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں. ایپ نمبر ون ہے یو بی کیو ٹی یا او بی کیو ٹی, میں اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں, پروننسیشن میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. یو بی آئی کیو یو آئی ٹی وائی, یو بی آئی کیو یو آئی ٹی وائی, او بی کیو ٹی, وائی فائی مین. آئی نو یہ نام تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن کام کی ایپ ہے. اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی تو آپ کے گھر کا وائی فائی ہو, کہیں کا بھی وائی فائی ہو, یہ آپ کو باقاعدہ ایک گراف کے ذریعے بتائے گا کہ کون سے سیکشن میں وائی فائی زیادہ تگڑا آ رہا ہے, کون سے سیکشن میں وائی فائی کم آ رہا ہے, اور کون سے سیکشن میں میڈیم رینج دے رہا ہے آپ کو. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سگنلز ٹیسٹ کر سکتے ہیں ریئل ٹائم میں, ساتھ میں آپ کے کنیکشن کی جو اسٹیبلٹی ہے ساری گراف کے ذریعے آپ کو بتائے گا. سو دیٹ یو نو کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کوئی ڈیوائس لگانی ہے, کوئی موڈم چینج کرنا ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, یہ بہت کام کی چیز ہے. اینڈ آلسو اٹ ٹیسٹس دی اسپیڈ ان ریئل ٹائم. بہت بڑھیا ایپ ہے, کام کی ایپ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر فون میں ہونی چاہیے. اٹ از فار آئی او ایس اینڈ اینڈرائڈ, دونوں کے لیے کام کیے. ڈاؤن لوڈ کیجیے, میں پھر سے نام بتا دیتا ہوں, یو بی کیو ٹی وائی فائی مین. لیٹ می اسپیل اٹ آؤٹ فار یو یٹ اگین بیکاز تھوڑا کمپلیکیٹڈ نام ہے. یو بی آئی کیو یو آئی ٹی وائی, اسپیس دیکھیے, وائی فائی مین, ڈبلو آئی ایف آئی ایم اے این. ٹھیک ہے, موونگ آن. اب یہ جو ایپ ہے یہ بہت بہت انٹریکٹیو ہے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور جو لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں یا پینٹنگ کرتے ہیں, یا نہیں ہماری جتنی نہیں, میں اپنے آپ سے کمپیئر کرنے والا تھا, سوری, گستاخی معاف ہو, کیونکہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا بھائی. کینوس پہ میں پینٹنگ کرنے کا خیال بھی میرے ذہن میں آج تک نہیں آیا, بچپن سے ابھی تک. پر جو لوگ کینوس پینٹنگ کرتے ہیں یا پھر ٹھیک ٹھاک ان کا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے, ان کے لیے بہت کمال کی. آرٹسٹک نیچر والے بچے, بڑے جو بھی ہوں, ان سب کے لیے ہے یہ ایپ, جس کا نام ہے دا ونچی آئی. ڈی اے اسپیس دے کے ونچی, وی آئی این سی آئی اسپیس دے کے آئی, آنکھ والا, ای وائی ای, دا ونچی آئی. ہوگا کیا کہ یہ جو ہے ایک موڈ آن کرتا ہے, اے آر موڈ آن کر دے گا. اس کے بعد آپ کینوس پہ جب اس کو پلیس کریں گے, ایک سگنل دیکھے, اور اس کے بعد سارے اسٹیپ جو آپ کے سامنے آئیں گے انہیں فالو کریں گے, تو آپ کسی بھی آبجیکٹ کو جو آپ کے فون میں فوٹو ہے یا کچھ بھی ہے, اس کو وہ سیدھا کینوس پہ آپ کو پروجیکٹ کر دے گا. سو آل یو نیڈ ٹو ڈو از فالو دا پروجیکشن. آپ کا فون ایک جگہ پہ اپنے ٹرائیپوڈ سٹینڈ پہ لگایا, اس نے پروجیکٹ کیا آپ کی کینوس پہ, اور آپ اس کو فالو کر کے اس پہ ڈرا کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ وے یو کین do canvas painting. میں صحیح بتا رہا ہوں, this is the most creative way of doing it. مجھے بھائی پرسنلی بہت اچھا لگا یہ, اور مجھے لگا یار یہ, مجھے سچی بتا رہا ہوں, ایپ دیکھ کے مجھے کانفیڈینس آ گیا کہ میں کچھ بھی بنا سکتا ہوں. بیکاز ہمارے جو میری کیٹیگری کے لوگ ہیں ان سے صرف تین پہاڑ, ایک چڑیا, دو چڑیا ایکچولی, نیچے ایک جھوپڑی اور ایک جھرنا بنتا ہے. بٹ this made me realize that I can do something with it. میں ٹرائی نہیں کروں گا, میری اتنی ہمت نہیں ہے, اتنی حماقت نہیں کروں گا, مگر جو لوگ کینوس پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں, شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کے گھر میں بچے ہیں, کافی انٹریکٹیو وے ہے ان کی اسکلس کو ٹرین کرنے کا. اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دا موسٹ امیزنگ ایپس آؤٹ دیئر. نام پھر سے بتا دیتا ہوں, دا ونچی آئی, ڈی اے اسپیس دیکھے ونچی, وی آئی این سی آئی اسپیس دیکھے ای وائی ای, دا ونچی آئی, موونگ آن. اب اگلی جو ایپ ہے یہ بھی بہت اچھی ہے, انفیکٹ یہ بڑی کمال کی ہو سکتی ہے آپ کے لیے. یہ ہے کلپ بورڈ ریموٹ. کلپ بورڈ ریموٹ یہ کیا کرتی ہے, یہ بیسکلی آپ کے فون سے ہر ایک چیز کو کنیکٹ کر سکتی ہے. یہ اینڈرائڈ یوزرز پہ میں زیادہ अब फोकस करना चाहूंगा बिकॉज उनके काम की चीज है ये। आप मान लीजिए आपने कुछ फोन पे कॉपी किया, ठीक है, अब आपके फोन में कुछ कॉपी किया, अब आपको डायरेक्ट जो है वो पीसी पे देना है या लैपटॉप पे देना है। जरूरी नहीं कि आपका जो फोन है वो iOS है, मतलब एप्पल यूज करें तो आप डेस्कटॉप पे नहीं दे सकते, आप एंड्रॉयड है तो आप मैक पे नहीं दे सकते। एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड, एवरीथिंग। हालांकि ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है इस पे, एप्पल पे अगर आप जाके देखेंगे, बट स्टिल ये जो क्लिपबोर्ड रिमोट है ये बहुत काम की ऐप है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं, सारी डिवाइसेज अगर सेम वाईफाई से चल रही हैं, कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर। अब आप जो फोन में कॉपी करेंगे वो प्रॉम्प्ट आपके लैपटॉप पे पीसी पे आएगा एंड यू कैन सी इट राइट देयर। सो ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा है एंड इट इज सच अ यूजफुल टूल। जहां पर आपको काम में थोड़ी तेजी लानी है, मल्टीपल चीजों पे आप काम कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन यूज एंड मेरी बड़ी काम की है बिकॉज आई लव्ड इट। सो ये क्लिप बोर्ड रिमोट उन लोगों के लिए जो एक से ज्यादा डिवाइसेस पर एक साथ काम करते हैं एंड ट्रस्ट मी दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहें, इट डजंट मैटर इवन इफ यू हैव अ मैक या फिर एक डेस्कटॉप या दोनों अलग अलग उस पर रन कर रहे हैं, एक iOS है एक एंड्रॉयड है, इट स्टिल वर्क्स। सो क्लिप बोर्ड रिमोट ट्राई दिस आउट एंड मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा इस पे बिकॉज आई हैव ट्राइड इट ऑन एप्पल एंड अच्छा चलता है भाई, काम की चीज है। ठीक है, बस मेक श्योर करें कि आपकी जितनी डिवाइसेज हैं वो एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं। दैट इज समथिंग यू नीड टू बी श्योर अबाउट। ठीक है जी, अब बड़े गैजेट्स की तरफ आ जाओ।
1: गैजेट्स।
0: सो गैजेट्स दिस वीक, एक गैजेट तो भाई बहुत काम का है, बहुत काम का है, नन्ना सा छोटो सा, बहुत ही क्यूटी पटूटी सा, लेकिन कति काम का भाई। इसका नाम है स्मार्टफोन IR रिमोट। स्मार्टफोन IR, आई एज इन आइसक्रीम, आर एज इन रेट, IR रिमोट। ये जब आप अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, जरा सी डिवाइस है ये और USB डिवाइस है, तो आपके फोन से कनेक्ट करने के बाद ये बहुत सारे अप्लायंसेस आप इससे यूज कर सकते हैं, चीजों को, डिवाइसेस को, आपका टीवी, आपका AC इजीली कंट्रोल होगा। अब आप मुझे पलट के बोलेंगे काउंटर आपका ये रहेगा, अरे ये तो बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है, उस तरीके का नहीं है। उसमें क्या है, ऐप डाउनलोड करो, ये खरीदो, वो कार्ड लो, नहीं, ये बहुत ही सस्ता माल है भाई और बहुत ही कर्रा माल है। तो स्मार्टफोन IR रिमोट एक छोटी सी USB ड्राइव की तरह दिखता है, इसको आप अपनी किचन में लटका सकते हैं और आप इसको अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। सो इट कनेक्ट्स विद AC, विद TV एंड और कोई डिवाइस जिसके अंदर ब्लूटूथ के इसके फीचर होंगे, तो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर पाएंगे। एंड वो NPC कार्ड होता था, वो NPC कहते, क्या कहते हैं उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, उस चीज़ से कनेक्ट होते थे पहले के ज़माने में। अभी आप इजीली अपने फ़ोन को ही रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं, यूनिवर्सल कंट्रोल टू यूज़ डिवाइसेज एंड अ लॉट ऑफ डिवाइसेज एट योर होम। सो ये जो स्मार्टफोन IR रिमोट है कतर में भी इजीली अवेलेबल है, यू कैन सर्च इट, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से है एंड काफ़ी सस्ता गैजेट है और उतना ही काम का है। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं भाई। अगला जो गैजेट इस लिस्ट में, ये है गिफ्ट देने लायक। मैं सही बता रहा हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए किसी को, ये बहुत बहुत काम का, बहुत क्रिएटिव है एंड जब आप इसे प्रेजेंट करेंगे, अपने लिए भी लेंगे, तो आपको उतनी खुशी मिलने वाली है। इसका नाम है सिंक पेन डिजिटल नोटबुक सेट। सिंक SYNC, सिंक पेन लिखने वाला पेन, डिजिटल नोटबुक सेट, ये बहुत कड़वी चीज है। आपके सामने एक डायरी होगी, इसमें से सेट में से निकालेंगे आप डायरी, डायरी इज वेरी नॉर्मल, आपको लगे नॉर्मली तो इसमें क्या है, फिर इसका डिजिटल पेन जब आप यूज करेंगे तो जो जो आप अपनी डायरी में लिखेंगे इन रियल टाइम वो आपके फोन में लिखा जाएगा, नोट्स डायरेक्टली इन योर फोन। नॉट जस्ट दैट, डायरी अभी खत्म नहीं हुआ, तो उसमें क्या है, डायरी में नीचे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बोल्ड, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर्स हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाटएवर कलर यू वांट टू चूज, एंड देन यू राइट इन द डायरी एज यू यूजुअली डू, उसके बाद लिखें, मिटाएं, जो मर्जी करें आप, और वो डायरेक्टली नोट आपके फोन में जाएंगे इन रियल टाइम। इट इज सच एन एक्यूरेट थिंग, और इतना एक्यूरेटली टाइप करता है इन रियल टाइम, मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत कमाल की चीज है। आई डोंट नो इफ इट इज अवेलेबल इन कतर एज इफ नाउ, बट अगर कोई ट्रेवल करा है स्पेशली इंडिया का, मैं बता सकता हूँ, तो इंडिया में अवेलेबल है ऑन Amazon एंड यू कैन चेक इट ऑन Amazon एज वेल, इट इज इजीली अवेलेबल। मैं नाम फिर से बता देता हूँ, सिंक पेन डिजिटल नोटबुक सेट, भाई गिफ्टिंग के लिए एक नंबर, और कोई महंगी डिवाइस नहीं है। वन टाइम है और बहुत अच्छी, स्पेशली जैसे मेरे ऐसे लोग हैं जिनके लिखने का काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, जस्ट वांट टू राइट एंड कीप इट इन योर फोन एज वेल, आपको फोटो वोटो खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत अच्छे नोट्स आपके फोन में डायरेक्टली बन सकते हैं, आपको फोन भी अपने हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट असाइड एंड देन यू कैन राइट इन योर नोटबुक और सीधा रियल टाइम में आपके फोन में टाइप करें, मतलब हैंड राइटिंग में आपकी जो ऑब्वियसली आपने डायरी में लिखी है. Such a grateful, grateful नहीं, such a great device, grateful, great device, okay? समझ गए ना आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. All right, अगली device. मैं keyboards का बहुत fan हूँ. जो keyboards बड़े fancy से होते हैं, उनका तो fan हूँ ही, लेकिन वो keyboards जो काम के होते हैं, उनका तो double, triple fan हूँ. जिस keyboard की मैं आज बात करने वाला हूँ, इसके ads आपने आपकी reels पर देखे होंगे, क्योंकि कतर में भी अवेलेबल है. इसका नाम है Samsers, SAMSERS, Samsers Foldable Bluetooth Keyboard, और इसमें है टच पैड भी. तो ये क्या करता है, ये ना फोल्ड हो जाता है पूरा. इसकी तीन तय होती हैं, और तीन क्या मतलब, दो जगह से फोल्ड होता है और आपकी जेब में आपको आप रख सकते हैं, घूम सकते हैं. आपको कहीं पे कुछ टाइप करना है, आपका फोन आप सामने रखिए, कीबोर्ड उससे कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ से, एंड यू जस्ट टाइप. अल्ट्रा सिम है भाई, एकदम स्लिम पतला. और ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, विंडोज के लिए, iOS के लिए, टैबलेट के लिए, लैपटॉप के लिए बहुत बहुत अच्छा है. हर किसी चीज से कनेक्ट हो जाता है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस कीबोर्ड. मतलब मोहब्बत है भाई ये. और इतना ही नहीं, इसमें कलर्स अवेलेबल है, तो आपको गोल्ड चाहिए, आपको रोज गोल्ड चाहिए, आपको आई थिंक ब्लू भी है, और इसमें ब्लैक भी है, वाइट भी है, हर रंग मिल जाएगा आपको. और ज्यादा प्राइसिंग भी नहीं है इसके ऊपर, तो बहुत बहुत अच्छे प्राइस टैग पे बहुत अच्छी डिवाइस है. सो गो ऑन विद इट, एंड आई थिंक आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाली डिवाइस है. सो गो फॉर इट नाउ. अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तरफ, क्योंकि खबरों में बहुत कुछ है. ओके, लेट्स मूव ऑन. लेटेस्ट टेक न्यूज़. टेक न्यूज़ तो खबरों में छाया हुआ है. अगेन एप्पल जाता ही नहीं है भाई खबरों से. देखो इस साल जो है एप्पल मनाने वाला है 20th एनिवर्सरी आईफोन्स की, और बहुत सारे रूमर्स बाहर आए हैं कि इस बार तो एप्पल कुछ ना कुछ अलग करके रहेगा. या तो एज टू एज वो डिस्प्ले लेके आएगा, इसमें कर्व्ड ग्लासेस होंगे सारी तरफ, या फिर वो कुछ विजुअली कुछ चेंज करेगा इस बार फोन में, डेफिनेटली जो दिखे सामने. और इस बार के आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स से बहुत बहुत उम्मीदें. लोग कह रहे हैं कि इस बार जो फोन का साइज होगा वो बड़ा होगा पिछले तमाम फोन से. सो उम्मीद की जा रही है 6.9 इंचेस साइजेस की भी. आई एम नॉट श्योर कि एप्पल ये रिस्क लेगा, इट्स नॉट रियली अ रिस्क, मगर एप्पल ऐसा कुछ करेगा कह नहीं सकते. बट फॉर नाउ यही खबर है, तो अभी रूमर्स हैं, जब पक्की हो जाएगी बता दूंगा. बट फिलहाल 20th एनिवर्सरी, सो कुछ तो उम्मीद है इतनी बड़े टेक जायंट से. ओके, अगली खबर गेमिंग की दुनिया से.
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट.
0: देखो भाई, विचर 3 के फैंस वो जरा प्लीज असेंबल. विचर 3 के डीएलसी के अनाउंसमेंट के बाद सबके सब ऐसे हो गए, अरे भाई कब आ रहा है ये. देखो विचर 3 के जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि 25 अगस्त को कुछ ना कुछ हो सकता है. इनका नाम है जॉफ केली, और इन्होंने कहा कि जो गेम अवार्ड्स होंगे समर गेम फेस्ट, उसमें विचर 3 सॉन्ग ऑफ द पास्ट जो है वो दिखाया जाएगा, और बहुत सारी चीज हो सकती है. तो गेम्स कॉन की ओपनिंग नाइट लाइव 2026 इसी साल होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी समथिंग ह्यूज, एंड मुझे ना सिर्फ विचर 3 के डीएलसी की उम्मीद है कंप्लीट रोल आउट की, पर साथ में आई रियली होप रेजिडेंट इविल रिक्वायम की डीएलसी भी आ जाए. सो गेमर्स हाई फाइव ब्रो, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हमें, हैं? वैसे भी पूरा साल लॉक्ड है. ऑन दैट नोट, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है, प्लीज गेट इन टच विद अस. एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: हेलो,
6: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट
5: सुनिए
4: Qatar Business News with RJ Sarwar Mirza. Daily Live with Morning News Bulletin only on FM 107. Dil se Desi. Desi.
7: दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से न सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: क्रिकेट हो
1: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे दैट्स फोर रन
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी

अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे रोजाना जिक्र की अहमियत पर। अल्लाह का जिक्र दिल को सुकून देता है और इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जिक्र का मतलब है अल्लाह को याद करना, चाहे जबान से हो चाहे दिल से। रोजाना की जिंदगी में जब हम छोटे छोटे जिक्र जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं तो ये हमारे दिल को रोशन रखते हैं और नेगेटिव सोच को दूर करते हैं। जिक्र के लिए किसी खास जगह या वक्त की पाबंदी नहीं, बल्कि ये हर वक्त किया जा सकता है। आज के बिजी रूटीन में जरूरी है कि हम अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र में जिंदा रखें। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल अमल है। आज का अमल ये है कि दिन भर छोटी छोटी फुर्सत के लम्हों में अल्लाह के जिक्र की आदत डालें और इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच का एक और एपिसोड FM 107 कतर पर, जहां हम बात करते हैं उन डेली वर्क प्लेस हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो भाई आज का टॉपिक है सस्टेनेबल ऑफिस मीटिंग्स, यानी ऐसी मीटिंग्स जो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होती हैं। साथियों, ऑफिस मीटिंग्स हर वर्क प्लेस का नॉर्मल हिस्सा होती हैं, लेकिन इन मीटिंग्स के पीछे जो पेपर यूसेज, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं, वो अक्सर अननोटिसेबल ही रह जाती हैं। इको स्विच हमें ये याद दिलाता है कि हर मीटिंग सिर्फ एजेंडा नहीं बल्कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी क्रिएट करती है। जरा सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग है जहां 6 लोग बैठे हुए हैं, हर किसी के सामने प्रिंट आउट्स हैं, नोट्स और प्रेजेंटेशंस के लिए प्रोजेक्टर चल रहा है। मीटिंग सिर्फ 20 मिनट की होती है, लेकिन उसमें 10 से 15 शीट्स पेपर हर पार्टिसिपेंट के लिए प्रिंट होता है। मतलब सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग में लगभग 60 से 80 शीट्स पेपर यूज हो ही जाता है। भाई अगर इको स्विच पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम डिस्कशन के साथ साथ फॉरेस्ट का छोटा सा हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं। चलिए भाई, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको सरप्राइज कर रख देंगे उनकी तरफ चलते हैं। साथियों, ग्लोबली ऑफिसेज हर साल बिलियंस ऑफ शीट्स पेपर सिर्फ मीटिंग्स और रिपोर्ट्स के लिए यूज करते हैं। एक एवरेज A4 शीट बनाने में लगभग 10 लीटर पानी यूज होता है। अगर एक ऑफिस 50% मीटिंग्स को डिजिटल दे तो वो साल भर में हजारों लीटर पानी और हजारों दरख्तों को सेव कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अननेसेसरी प्रिंटिंग ऑफिस के कार्बन फुटप्रिंट का सिग्निफिकेंट पार्ट होती है, स्पेशली रिपीटेड ड्राफ्ट्स एंड मीटिंग नोट्स की वजह से। साथियों, इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, मीटिंग्स को पेपर हैवी से डिजिटल फ्रेंडली बनाना। जब हम सस्टेनेबल मीटिंग्स अडॉप्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली वेस्ट रिड्यूस करते हैं और एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक मिड साइज कंपनी अपनी मीटिंग्स को फुली डिजिटल कर दे तो वो अपना पेपर कंजम्पशन 40% तक रिड्यूस कर सकती है। साथ ही एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाता है जब अननेसेसरी प्रिंटिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलिमिनेट होती है। तो भाई जरा सोचिए ना, मीटिंग के लिए ब्यूटीफुली प्रिंटेड एजेंडा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मीटिंग के एंड तक वो एजेंडा टेबल पर ही रह जाते हैं और 80% यानी 80% लोग उसे यूज ही नहीं करते। बाद में या तो फिर वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं या वेस्ट बिन में। तो साथियों, इको स्विच अप्रोच कहता है कि अगर वही एजेंडा ईमेल, शेयर्ड डॉक्यूमेंट या ऐप पर हो तो सेम इन्फॉर्मेशन जीरो पेपर वेस्ट के साथ डिलीवर हो सकती है। तो भाई अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सिंपल इको स्विच टिप्स की जो हर ऑफिस फॉलो कर सकता है। पहला ये कि पेपरलेस मीटिंग्स अडॉप्ट करें, यूज डिजिटल टूल्स लाइक शेयर डॉक्स और टैबलेट्स। दूसरा, अननेसेसरी प्रिंटिंग अवॉइड करें और ड्राफ्ट डिजिटली रिव्यू करें। तीसरा, प्रोजेक्टर या स्क्रीन शेयरिंग यूज करें इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड प्रेजेंटेशंस। चौथा, मीटिंग ड्यूरेशन ऑप्टिमाइज करें ताकि अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीयूजेबल स्टेशनरी या व्हाइट बोर्ड्स यूज करें इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज पेपर नोट्स। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि मीटिंग सिर्फ फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं होती बल्कि एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी का टूल भी बन सकती है। जब हम मीटिंग्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं तो हम सिर्फ एनवायरमेंट को नहीं बचाते बल्कि टाइम और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कंपनीज डिजिटल मीटिंग्स अडॉप्ट करती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग स्पीड भी बेहतर ही होती है। आखिर में भाई, इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि हर मीटिंग का इम्पैक्ट सिर्फ बोर्ड रूम तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि एनवायरमेंट तक भी जाता है। हर सेव पेज, हर अवॉइडेड प्रिंट आउट और हर डिजिटल नोट एक छोटा सा स्टेप है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। तो भाई, अगली बार जब आप मीटिंग अटेंड करें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन करें। Can this meeting be paperless? Yes, it can be. तो भाई, इसी के साथ मैं हूँ सफा, आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर डिस्कशन सिर्फ टॉक टॉक नहीं होता बल्कि एक ग्रीन एक्शन भी होता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: मैक्सिमम म्यूजिक।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज कतर फुटबॉल टीम के हेड कोच यहां फुलेन लोप्तगी के बारे में मैं बात करूंगा। फुलेन लोप्तगी कतर की कौमी फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं और उन्हें 2025 में कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने टीम की क्यादत सौंपी। पहले ये स्पेन के हेड कोच थे, उसके बाद रियल मद्रिद के कोच भी थे एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसी वजह से कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने समझा कि ही इज़ द बेस्ट मैन टू गाइड कतर फुटबॉल। उन्होंने पहले स्पेन की कौमी टीम, FC पोर्टो, रियल मद्रिद, सीविया और प्रीमियर लीग के क्लब्स को कोच किया है। कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें 2027 AFC एशियन कप तक के कॉन्ट्रैक्ट पर मुकर्रर किया है ताकि टीम को दुनिया के बेहतरीन मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सके। विच मीन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद लोप्तेगी का नेक्स्ट चैलेंज होगा अगले साल जो सऊदी अरब में होने जा रहा है AFC एशियन कप। लोप्तेगी अपनी टैक्टिकल समझ, डिसिप्लिन और पोजीशन बेस्ड फुटबॉल के लिए मशहूर है। स्पेन की कौमी टीम के साथ उनका रिकॉर्ड काफ़ी मजबूत रहा है जहां उन्होंने कई अहम फतूहत हासिल की। कतर में उनका मकसद एशियन चैम्पियंस की बुनियाद पर एक मजबूत और मुनज्जम टीम तैयार करना है। उनकी क्यादत में कतर ने 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन हासिल की और इसी तरह से कतर सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम एज क्वालिफाइड फॉर द फुटबॉल्स मेगा प्लेटफॉर्म दैट इज़ द वर्ल्ड कप। लोप्तेगी ने स्क्वाड में तजुर्बेकार खिलाड़ी जैसे अकरम अफीफ, अल मोइज़ अली और पेड्रो मिगल पर भरोसा किया है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
1: One Step to 2030.
0: और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे. ये टॉपिक है क्लीनिंग द प्लैनेट विद टेक. देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है पोल्यूशन. समंदर प्लास्टिक से भरे हुए हैं, हवा पोल्यूटेड है और जमीन भी सेफ नहीं है. लेकिन गुड न्यूज ये है कि टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है. आजकल AI और रोबोट्स पोल्यूशन साफ करने के लिए यूज किए जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर ओशंस में स्पेशल रोबोट्स और ड्रोन्स प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं. ये रोबोट्स खुद डिसाइड करते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा कचरा है. अंडर वाटर रोबोट्स भी

0: यूज हो रहे हैं, जो समंदर के नीचे जाकर प्लास्टिक और वेस्ट निकालते हैं, जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल था। AI सिस्टम सैटेलाइट डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करते हैं कि पोल्यूशन कहां जमा होगा, ताकि उसे पहले ही कंट्रोल किया जा सके। जमीन पर भी रोबोट्स वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करते हैं, प्लास्टिक अलग, मेटल अलग, ऑर्गेनिक चीजें अलग, जो रिसाइकलिंग प्रोसेस को फास्ट और इफेक्टिव बनाती हैं। दोस्तों, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि ड्रोन्स ऑटोमेटिकली पोल्यूशन डिटेक्ट करें और शायद एयर को भी हवा से निकाला जा सके, उसे क्लीन किया जा सके। ये बात समझना आपके और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि प्लैनेट बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम AI और रोबोट्स का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी जमीन को फिर से क्लीन और हेल्दी बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम कचरा कम मिनिमाइज करने की आदत तो अडॉप्ट करें, एटलीस्ट इसकी शुरुआत हम घर से ही कर लेते हैं। अपने घर के कचरे को जो है वो प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना, उसके अलावा जब आप पब्लिक प्लेसेस पर जाते हो तो कौन सा कचरा कहाँ फेंकना मुनासिब है, आप देख रहे होते हो कि डिफरेंट बिन्स होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है, मेंशन होता है कि यहाँ पर आप पेपर डालिए, यहाँ पर आप प्लास्टिक डालिए एक्सेट्रा, तो आप जो है थोड़े से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो और जहाँ पे जो कचरा लिखा है जिस तरह का उसको वहीं डालिए, जिससे उसको रिसाइकल किया जा सके। क्योंकि अगर हम अभी से नहीं सोचेंगे और अपने फ्यूचर को परेशानी से और मुसीबत से भरेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम आज से थोड़े से सतर्क रहें और इन चीजों का ख्याल रखें। चलिए, ये तो एक अच्छी बात, एक अच्छी न्यूज है कि प्लैनेट को क्लीन किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, वाकई जहाँ इंसान नहीं पहुंच सकता वहां पे रोबोट्स पहुंच के समंदर से प्लास्टिक, कचरा और हवा जो इस तरह से पोल्यूट हो रही है, जो जमीन अनसेफ होती चली जा रही है, सारी चीजों को कहीं ना कहीं कम करने, मिनिमाइज करने में कितनी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मशीन और AI के आने के सिर्फ ड्रॉबैक्स हैं या हम सिर्फ ये डरते ही सोचते रहे, बल्कि AI जो है हमारी लाइफ को आसान भी बना रही है। टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ हमेशा आसान हुई है, लेकिन हाँ, छोटे मोटे चैलेंजेस तो हमेशा आते ही आते हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें मिल रहा है। बस इसी तरह से एक गुड बैलेंस के साथ टेक्नोलॉजी को अगर इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तो चीजें आसान ही होंगी। फिलहाल दोस्तों, वक्त है कि मैं आपसे इजाजत लूँ इस टॉपिक पे। कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक पे हम मिलकर बात करेंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2020.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर. स्पोर्ट्स

0: रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न

0: और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जामे हदीस पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार नहायत अहम हिदायत अता फरमाई। ये चारों हिदायत एक मुसलमान की इबादत और दीनी शऊर को दुरुस्त रुख अता करती हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 ग़ज़वात में शरीक हुए, फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चार बातें सुनी जो मुझे बहुत पसंद आई। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोई औरत दो दिन की मसाफत का सफर अपने शौहर या महरम के बगैर न करे, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन रोजा न रखा जाए, फजर के बाद सूरज तुलू होने तक और असर के बाद सूरज गुरूब होने तक नफल नमाज न पढ़ी जाए, और खास फजीलत की नीयत से सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ सफर किया जाए, मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। सामने किराम, इन चार बातों में सर फहरिस्त जो नुकता है कि कोई औरत दो दिन की मसाफत का सफर अपने शौहर या महरम के बगैर न करे, इसकी वजह यह है कि इस्लाम ने औरत को इज्जत, एहतराम और तहफ्फुज़ दिया है। इसीलिए इस्लाम ने औरत के सफर के हवाले से ये कहा है कि अपने शौहर या महरम के बगैर सफर न करे। इस हुक्म का मकसद औरत पर पाबंदी लगाना नहीं बल्कि उसकी हिफाजत, इज्जत और सहूलत को यकीनी बनाना है। और सर इस्लाम के तमाम अहकाम रहमत और हिकमत पर मबनी है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
2: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिस्टनर्स, आज हम बात करेंगे कि शोर के उन असरात के बारे में जो हमारे दिल, दिमाग और जहनी सेहत पर मुरतब होते हैं। जब हम मुसलसल शोर वाले माहौल में रहते हैं तो हमारा जिस्म उसे एक खतरे के तौर पर महसूस करता है, जिसके नतीजे में जिस्म में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स, यानी जो कि मेंटल हेल्थ को मुतासिर करते हैं, वो हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनालिन है, कॉर्टिसोल है, वो ज़्यादा मकदार में खारिज होते हैं। ये हार्मोन्स जब ज़्यादा मकदार में खारिज होते हैं तो उससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर वो बढ़ा सकते हैं, और अगर ये कैफियत तवील अरसे तक बरकरार रहे तो फिर दिल की बहुत सी बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर और फालिज का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। यानी ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं। शोर की वजह से जहनी दबाव भी बढ़ता है, यानी हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। बहुत से अफराद शोर वाले माहौल में काम करते हुए जल्द थक जाते हैं और इनकी तवज्जो बढ़ जाती है, उसका असर कारकर्दगी और उनकी जो फैसला करने की सलाहियत है उस पर पड़ता है। नींद की खराबी भी शोर के बड़े नुकसान में शामिल है। अच्छी नींद ना मिलने से दिन भर थकावट रहती है, कमजोरी महसूस होती है, सर दर्द और मिजाज में तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। बुजुर्ग अफराद और छोटे बच्चे शोर के असरात के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा हसास होते हैं। इस तरह वो अफराद जो पहले से दिल की बीमारी में मुबतला हों, जहनी दबाव का शिकार हों या समात के मसाइल का शिकार हों, तो उन्हें इजाफी जो एहतियात है उसकी ज़रूरत होती है। और अगर आपको महसूस हो कि शोर की वजह से सर दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन आपको ज़्यादा महसूस होता है, नींद की कमी या कानों में सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, तो ये एक बहुत अहम इशारा हो सकता है कि आपका जिस्म शोर के मनफी असरात महसूस कर रहा है। याद रखिए कि पुरसकून माहौल सिर्फ सुकून ही नहीं देता बल्कि अच्छी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है।

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो प्रोग्राम जहां हम खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे टेनिस के अजीम खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बारे में। इनफैक्ट उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ जितने भी रिकॉर्ड्स उसने कायम किए हैं टेनिस के दुनिया में और टेनिस के स्पोर्ट में, उसके बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम है रिकॉर्ड्स के बारे में, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो नोवाक जोकोविच के पास क्या क्या रिकॉर्ड्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। नोवाक जोकोविच नाम मॉडर्न टेनिस में अगर हम बात करें तो जाना पहचाना नाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स ऑफ मॉडर्न टेनिस। जी हाँ दोस्तों, लीडिंग लेजेंड मतलब समझ लीजिए आप, समझ जाइए आप कि लीडिंग लेजेंड का मतलब होता क्या है, कि इक्का दुक्का टूर्नामेंट जीतने का मतलब नहीं है, वो स्टार भी नहीं बनते हैं, वो तो होता है कंसिस्टेंसी की बात। और इस कंसिस्टेंसी की अगर मैं यहाँ पे ये वर्ड, ये अल्फाज अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी, तो नोवाक जोकोविच एक ब्राइट एग्जांपल है। और दुनिया के जितने भी अजीम खिलाड़ी आए हैं और उन्होंने अपना जितना भी टैलेंट सबके सामने दिखाया है, तो उन टैलेंटेड प्लेयर्स, उन अजीम खिलाड़ियों में नोवाक जोकोविच को शुमार किए जाते हैं। जोकोविच की पैदाइश सर्बिया में, और सर्बिया यूरोपियन कंट्री है, और ऑब्वियस बात है कि टेनिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर स्पोर्ट अदर देन फुटबॉल। सो जोकोविच ने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन, सब्र और मेंटल स्ट्रेंथ की बुनियाद पर टेनिस की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम प्लेयर्स को नसीब होता है। अच्छा, पिछले फ्रेंच ओपन, मैं पिछला क्यों कह रहा हूँ, अभी हाल ही में जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट तो ख़त्म हुआ है, इसमें थर्ड राउंड तक पहुँचने में नाकाम रहा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें पूछा गया कि आप क्या अगली दफ़ा फ्रेंच ओपन में खेलेंगे, तो नोवाक जोकोविच ने बताया क्या कहा, आई डोंट नो। दूसरी मरतबा उनसे पूछा गया क्या आप दूसरी मरतबा रोला गारो में आएंगे, तो उन्होंने दोबारा वही जवाब दिया, आई डोंट नो, सर को खुजलाते हुए। कुछ अजीब तरह से नोवाक जोकोविच जो है, लोगों को ही बताया, मीडिया को ही बताया कि उनको भी नहीं पता है कि वो अगली दफ़ा फ्रेंच ओपन में आएंगे, या में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ या टेनिस से मैं अलविदा कह रहा हूँ, बस उन्होंने हल्का फुल्का कह दिया कि आई डोंट नो, आई डोंट नो। अच्छा, ये मैच जो उनको इस मैच में जिनके सामने उनको हारना पड़ा, वो एक ब्राज़ील के नौजवान खिलाड़ी और उनका नाम है फोंसेका। फोंसेका के साथ हारने का मतलब है कि नोवाक जोकोविच थोड़ा सा तो आई थिंक डाउन हो गए हैं, एंड अब बता नहीं रहे मीडिया के सामने या पब्लिकली, ही हैज़ नॉट सेइंग दैट वेदर ही कैन कंटिन्यू विद टेनिस। लेकिन अगर आज मॉडर्न स्पोर्ट्स की बात करूं मैं, तो मॉडर्न स्पोर्ट्स में चंद ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे लेजेंड्स हैं जो कि उम्र का बिल्कुल उम्र, मैंने अपनी उम्र को नज़रअंदाज करते हुए, दे आर कंटिन्यूइंग। फुटबॉल में रोनाल्डो, मेसी, और क्रिकेट में अगर बात करूं तो विराट कोहली या रोहित शर्मा, तो इस तरह के खिलाड़ियों के साथ नोवाक जोकोविच भी उस तरह के खिलाड़ी, जो कंसिस्टेंसी, फिटनेस और एक अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रहे हैं, और आज भी दुनिया के जितने भी जवान टेनिस खिलाड़ी हैं तो उनको मुसलसल चैलेंज दे रहे हैं कि आओ खेलो। हारना जीतना ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, तो इसमें नोवाक जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा इन द फ्रेंच ओपन रिसेंटली। उनका नाम आज दोस्तों बता दूं, हार, जैसे मैंने कहा, हार और जीत एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट है, लेकिन उनका नाम आज ग्रैंड स्लैम टेनिस के साथ लाजमी तौर पर जुड़ा हुआ है। हल्के में मत लीजिए नोवाक जोकोविच को, क्योंकि उन्होंने सिंगल्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। सो ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप लोग सुन लीजिएगा, दिस इज जनरल नॉलेज फॉर मी। फॉर ऑल योर यू नो स्पोर्ट्स एक्सपर्टीज या स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज, जिनको भी पसंद है ये बात जो है, ये जो फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था नोवाक जोकोविच ने। 25वां टाइटल जो है आज भी वो तलाश कर रहे हैं कि 25th टाइटल मैं जीतूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है उनसे। अच्छा, ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी, प्रेशर हैंडलिंग और डेकेड्स तक टॉप लेवल परफॉर्मेंस देने की मिसाल है। यही बात है कि लेजेंड हमेशा यू नो इक्का दुक्का मैच जीत के हम उसको लेजेंड नहीं कह सकते या स्टार हम नहीं कह सकते हैं। जोकोविच की पैदाइश 22 मई 1987 को बेलग्रेड में हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। जब वो छोटे थे तब सर्बिया सियासी और माशी मुश्किलात का सामना कर रहा था, और इस मुश्किल माहौल के बावजूद दोस्तों जोकोविच के वालिदैन ने उनकी सलाहियतों को पहचाना और उन्हें टेनिस की तरफ रागिब किया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने रैकेट उठाया और कोर्ट्स पर अपनी काबिलियत का इजहार करना शुरू कर दिया। टैलेंट को कहीं भी छुपा नहीं सकते आप, टैलेंट को छुपाना मुश्किल है। अगर किसी बच्चे में टैलेंट है वो उनके माँ बाप ही देख लेते हैं, या पड़ोसी कोच होते हैं तो वो देखते हैं, या कोई भी उनके रिश्तेदार नोट कर लेते हैं भाई इस बंदे में तो दम है। तो जोकोविच वॉज वन ऑफ द काइंड ऑफ अ प्लेयर जिनको उनके पेरेंट्स ने नोट किया कि भाई इनमें कुछ तो बात है। जोकोविच बचपन से ही गैर मामूली फोकस रखते थे। जब उनकी उम्र सिर्फ चंद साल थी तो कोचेस ने महसूस कर लिया था कि ये बच्चा मामूली टैलेंट नहीं रखता। उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त थी और वो रोजाना घंटों प्रैक्टिस करते थे। हर सेशन के बाद वो अपनी कमजोरियां नोट करते और उन पर काम करते। इसी आदत ने उन्हें बाद में दुनिया का नंबर वन प्लेयर बनने में मदद दी। आज भी मैं बता रहा हूँ, आप भी सोशल मीडिया में अगर नोवाक जोकोविच को थोड़ा फॉलो करेंगे तो उनकी जितनी भी बातचीत है, कई पॉडकास्ट हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट भी मैंने सुना और देखा भी कि जोकोविच की कुछ बातें जो हैं इज नथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी और इट्स रिलेटेड टू हिज मेंटल प्रिपेयर्डनेस की किस तरह वो बैटल यानी मैच को किस तरह वो लेते हैं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बता रहे थे, ब्रीदिंग कि मैच पॉइंट के दौरान वो अपने आप को वो जो एक मिनट दो मिनट का जो वो ब्रेक उसमें

ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके। इनके साथ सिर्फ टैलेंट और टेक्निक की बात नहीं है दोस्तों, इनके साथ भी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और ना जाने तमाम चीजें हैं जिससे जोकोविच को आज जोकोविच बनाया। प्रोफेशनल सर्किट में कदम रखने के बाद जोकोविच को शुरू में काफी चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ा, ये होता है, स्ट्रगल तो है ही, लाजमी है। और उस वक्त टेनिस की दुनिया पर दो अजीम नाम हुक्मरानी कर रहे थे, रॉजर फेडरर और राफेल नदाल। फेडरर अपनी एलिगेंस और एफर्टलेस गेम के लिए मशहूर थे, जबकि नदाल क्ले कोर्ट्स, यही फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट्स के बादशाह समझे जाते थे। बहुत से लोगों को लगता था कि इन दोनों के दरमियान किसी तीसरे खिलाड़ी के लिए जगह बनाना नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों जोकोविच आ गया। आज जोकोविच ने सबको गलत साबित कर दिया था, तो ही बिकेम द थर्ड प्लेयर इन दैट ट्रॉयका, इन दैट पिरामिड। 2008 में जोकोविच ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में कामयाबी हासिल की, हिज फर्स्ट विन इन ग्रैंड स्लैम, और ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। अब आपको मैं बता दूं कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है। ग्रैंड स्लैम दरअसल चार टॉप टेनिस इवेंट्स हैं जिसको हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहते हैं। आप समझ लीजिए कि बेसिकली आई वुड से कि मास्टर्स के बाद अगर पीएचडी है तो ये पीएचडी टूर्नामेंट्स समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलियन ओपन फॉलोड बाय द फ्रेंच ओपन जो कि मई में और फ्रेंच यानी पेरिस में होता है, और थर्ड जो है विंबलडन जो कि इंग्लैंड में है, लंदन में, और फोर्थ नंबर पर यूएस ओपन जो कि न्यूयॉर्क में। तो ये टाइटल्स, ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स है, इसको जीतने का जो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा सिंगल्स, वो नोवाक जोकोविच के पास है, 24 इन नंबर। सो उनका पहला, अगर मैं देखूं कि सक्सेस वाज इन 2008, ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, और इस जीत ने दुनिया को बता दिया कि टेनिस में एक नया सुपरस्टार आ चुका है। इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में लगातार बेहतरी आती गई और वो एलिट लेवल के खिलाड़ियों में शामिल हो गए। तीन साल के बाद यानी 2011 का साल जोकोविच के करियर का सबसे यादगार साल माना जाता है। यहाँ इस साल उन्होंने लगभग हर बड़ा टूर्नामेंट जीता और फेडरर और नदाल दोनों को कई मरतबा शिकस्त दिया, और यहीं पर एक्सपर्ट समझने लगे कि हाँ, दिस इज द प्लेयर हु कैन रियली चैलेंज द टू ऑलरेडी सुपरस्टार्स, फेडरर एंड राफेल नदाल। जोकोविच की फिटनेस, मूवमेंट, डिफेंसिव स्किल्स ने टेनिस के स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए। कोर्ट्स पर उनकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बेहतरीन थी कि नामुमकिन लगने वाले पॉइंट्स भी वो जीत लेते थे। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में भी जोकोविच के कई मैचेस में सेट पॉइंट्स या मैच पॉइंट्स में भी हमने ये नोट किया है कि ये बंदा झुकने वालों में से नहीं था, ये बंदा वो है जो कि डटा रहेगा, खड़ा रहेगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। सो दिस इज व्हाट जोकोविच इज ऑल अबाउट, फिटनेस। जोकोविच की सबसे बड़ी खूबी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ मानी जाती है। जब भी मैच प्रेशर में होता है और फैसला कुन लम्हात आते हैं, वो अक्सर अपना बेहतरीन टेनिस खेलते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, साइकोलॉजी, यू नो द माइंड गेम्स, द मेंटल प्रिपेयर्डनेस। कई दफा ऐसा हुआ कि वो मैच हारने के करीब थे मगर उन्होंने कमबैक करके जीत हासिल की, और इसी वजह से उन्हें टेनिस हिस्ट्री के सबसे मेंटली टफ एथलीट्स में शुमार किया जाता है। रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनते दोस्तों, हमी हाथ में रैकेट उठा लिए, हाथ में बल्ला उठा लिया और आपने सेंचुरीज मारने की सोच ली कि मैं जो है रिकॉर्ड सेंचुरीज कर लूँ, और इस तरह के हर कोई हर दिन सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली पैदा नहीं होते। और वैसे ही अगर देखा जाए कि जोकोविच जैसे खिलाड़ी या फेडरर जैसे खिलाड़ी कभी नहीं आते हैं, दे यू नीड सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन यू, सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर। सिर्फ टेक्निक तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स दिखा चुके हैं, लेकिन टिकना इतने देर तक, इतना यू नो 18 साल तक टेनिस खेलना, डिफिकल्ट, इट्स नियर इम्पॉसिबल। ऑस्ट्रेलियन ओपन उनका सबसे कामयाब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रहा है। मेलबोर्न के हार्ड कोर्ट्स पर जोकोविच ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने इस इवेंट को इतनी मर्तबा जीता कि लोगों ने इसे उनका घर समझना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनकी डोमिनेंस ने उन्हें हार्ड कोर्ट का बादशाह बना दिया। विंबलडन में भी जोकोविच ने लाजवाब परफॉर्मेंसेस दी हैं। ग्रास कोर्ट पर खेलना हर खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, मगर जोकोविच ने अपनी एडेप्टेबिलिटी से साबित किया कि वो हर सरफेस पर कामयाब हो सकते हैं। विंबलडन के फाइनल में उनकी कई यादगार जीतें

0: हैं, टेनिस हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं। फ्रेंच ओपन में अगर रफाल नडाल की डोमिनेंस था, इसके बावजूद जोकोविच ने खुद को साबित किया है। क्ले कोर्ट उनकी फेवरेट सरफेस नहीं थी, इसमें मिट्टी वाले जो सरफेस हम कहते हैं, मिट्टी के, लाल मिट्टी, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत और स्ट्रेटजी के जरिए फ्रेंच ओपन का टाइटल भी कई मरतबा जीता। अच्छा, नडाल को फ्रेंच ओपन में हराना टेनिस की सबसे मुश्किल अचीवमेंट में से एक माना जाता है, और जोकोविच ने ये करके दिखाया कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप इनवेंसिबल हैं, मैं हरा सकता हूं आपको, और जोकोविच ने करके दिखाया। नाउ मूविंग ऑन टू यूएस ओपन, जो कि लास्ट ग्रैंड स्लैम है इस साल का, और उस यूएस ओपन में भी उनकी कंसिस्टेंसी काबिले दाद रही। न्यूयॉर्क के एनर्जेटिक क्राउड और इंटेंस एटमॉस्फेयर में परफॉर्म करना आसान नहीं होता। द रोरिंग क्राउड, द रोरिंग फैंस, उनके सामने आप परफॉर्मेंस करते हुए अगर मतलब प्रेशर आपका अगर गिर गया, द मेंटल प्रेशर, जो प्रेशर वो उसको अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो ना आप गए। मगर जोकोविच ने कई मरतबा प्रेशर को हैंडल करते हुए टाइटल अपने नाम किया। और हाँ, ये जो टाइटल्स, ये जो मैच जीतना, इसके पीछे फिटनेस का भी एक रोल है। ये मैंने आपसे शुरू में कह दिया था, टेक्निक हर एक के पास होता है, टैलेंट हर एक के पास होता है। क्या आप फिट हैं स्पोर्ट्स में? नहीं है तो फिर आप बैठ जाइए। लेकिन जोकोविच के फिटनेस रूटीन अगर देखें तो उनकी कामयाबी की अहम वजह है। वो अपनी डाइट पर बहुत तवज्जो देते हैं और फिटनेस को अपनी परफॉर्मेंस का बुनियादी हिस्सा समझते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी तब्दीलियां की जिनसे उनकी एनर्जी और रिकवरी बेहतर हुई, और इसी वजह से वो 30 साल की उम्र के बाद भी नौजवान खिलाड़ियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, करते रहे नहीं बल्कि कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनकी जो राइवलरी थी अगेंस्ट रॉजर फेडरर और रफाल नडाल, उनके साथ, ये फेडरर के साथ और नडाल के साथ, ये राइवलरी टेनिस हिस्ट्री की सबसे मशहूर राइवलरीज में शुमार होती है। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा दौर पैदा किया जो शायद दोबारा देखने को ना मिले। हर मैच में स्ट्रेटजी, स्किल और इमोशंस का बेहतरीन कॉन्कॉक्शन नजर आता था। फैंस दुनिया भर में इन मुकाबलों के इंतजार करते थे। अब तो चलिए वो हिस्ट्री है, अब सिर्फ जोकोविच ही अकेला रह गया है। लेकिन दोस्तों, आज भी हम याद करते हैं जोकोविच के मैचेस अगेंस्ट रॉजर फेडरर और अगेंस्ट रफाल नडाल। इनफैक्ट अभी जो फ्रेंच ओपन में उनका जो हार, जिस मैच में अगेंस्ट सेकंड राउंड ऑफ फ्रेंच ओपन अगेंस्ट ब्राजील्स फोंसेका, उस मैच को भी हम याद करेंगे आगे जाकर कि क्या ये बंदा था जिन्होंने नौजवान हाफ ऑफ द एज उनके मुकाबले में उन खिलाड़ियों के अगेंस्ट भी डटकर बैटल करते रहे, लड़ते रहे, और वो सरफेस पर जो उनका फेवरेट नहीं था, लेकिन वहां पर भी ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। सो ये थी कहानी नोवाक जोकोविच के वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टेनिस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल्स टाइटल वन बाय अ टेनिस प्लेयर, नोवाक जोकोविच। दोस्तों, लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर हम मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर, स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस प्रोग्राम में आप सभी का दोबारा इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और आप अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो, तो पसंद आ चुका हो, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पर, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑन ट्विटर, जिसको हम एक्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड और नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पर हम क्विक फायर रिकॉर्ड्स अक्रॉस ऑल द डिसिप्लिन्स के बारे में हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं। आज एथलीट्स की दुनिया के एक मशहूर खिलाड़ी के बारे में हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉपिक उनके नाम पर भी है, अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जमैका के लेजेंडरी स्प्रिंटर उसैन बोल्ट। यहाँ दोस्तों, दुनिया कि अगर सबसे तेज तरीन इंसान अगर कोई है तो वो उसैन बोल्ट है। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान मर्दों की

0: सिर्फ 9.58 यानी 9.58 सेकंड्स में कंप्लीट करके दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है और इसी वजह से उनको द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। जब ये रिटायर हो गए थे ये बोल्ट साहब, वो फुटबॉल में भी थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने फुटबॉल में भी अपना थोड़ा सा जमाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ही ट्राई टू प्ले इन द ऑस्ट्रेलियन सॉकर लीग, तो वहाँ पर थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा यू नो समझाने की कोशिश की, मैं फुटबॉल भी खेल सकता हूँ बिकॉज मेरे पास स्पीड है। लेकिन दोस्तों, हमेशा जो आपके पास जो टैलेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्पोर्ट में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ उसेन बोल्ट का, अभी ही इज़ एन एंटरटेनर, बिग एंटरटेनर। जो उनका वो जो स्टाइल था, जो विक्ट्री ट्रायम्प या विक्ट्री पोडियम में जो वो पोज देते थे, आज भी वो मशहूर हैं, आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। तो उसेन बोल्ट द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ये आप याद रखिएगा, अपने बच्चों को बताइएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट उसेन बोल्ट। मूविंग ऑन टू क्रिकेट, और क्रिकेट की तारीख का एक लाजवाब वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, किसके नाम? हाँ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ना ना ना ना ना ना ब्रायन चार्ल्स लारा के नाम है। यहाँ वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी बैट्समैन ब्रायन लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 400 रन नॉट आउट बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर का रिकॉर्ड कायम किया। सो नो सचिन तेंदुलकर, नो विराट कोहली, नो बाबर आजम, नो सौरव गांगुली, नो राहुल द्रविड़, मैन नॉट इवन सुनील गावस्कर। तो ब्रायन लारा के नाम ये रिकॉर्ड है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट, 400 नॉट आउट। और ये हिस्टोरिक इनिंग्स एंटीगा में खेली गई थी और आज तक कोई भी बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में इस स्कोर को क्रॉस नहीं कर सका। याद रखिएगा, किसी भी बल्लेबाज में इतना दम तो नहीं है कि इस रन को क्रॉस कर सके। और आज 2026 है और 2004 की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स, तो अभी समझ लीजिए कि 22 साल हो चुके हैं और आज भी ये रिकॉर्ड अनब्रोकन है। लारा की स्टाइलिश बैटिंग और लॉन्ग इनिंग्स खेलने की सलाहियत ने उनको क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में शामिल कर दिया। अब आ रही है फुटबॉल में, देखते हैं फुटबॉल में क्या रिकॉर्ड है। जी, फुटबॉल की दुनिया का एक और लेजेंडरी वर्ल्ड रिकॉर्ड लियोनेल मेसी के नाम है। मेसी साहब अपना 6th वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। जी हाँ, ये जो 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, इसमें मेसी अपना 6th, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अपीयरेंस, अलोंग विथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन ये रिकॉर्ड कुछ और है, और इस रिकॉर्ड में कि एक कैलेंडर ईयर यानी 2012 में क्लब और कंट्री के लिए मिलाकर 91 गोल स्कोर किए, जो फुटबॉल की तारीख में एक साल में सबसे ज्यादा गोल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार ने अपनी ड्रिबलिंग, क्रिएटिविटी और फिनिशिंग से दुनिया भर के फुटबॉल फैंस को मुतासिर किया और ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम हमेशा के लिए फुटबॉल हिस्ट्री में लिखा दिया। दिस इज ऑल अबाउट लियोनेल मेसी। आप टेनिस के बारे में बात कर लेते हैं, और टेनिस की तारीख का अजीम खिलाड़ी जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले बताया था, रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर के नाम एक रिकॉर्ड है। फेडरर ने विंबलडन मेन सिंगल्स टाइटल 8 मर्तबा जीतकर दुनिया का हिस्टोरिक रिकॉर्ड कायम किया। ग्रास कोर्ट पर उनकी एलिगेंट स्टाइल, परफेक्ट फुटवर्क और आउटस्टैंडिंग शॉट मेकिंग ने उन्हें किंग ऑफ विंबलडन बना दिया। स्विट्जरलैंड के इस लेजेंडरी खिलाड़ी को टेनिस हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्टार्स में शुमार किया जाता है। अब बास्केटबॉल को थोड़ा टटोल लेते हैं, बास्केटबॉल में किन का क्या रिकॉर्ड है। बास्केटबॉल की तारीख का एक लेजेंडरी वर्ल्ड रिकॉर्ड विल चैम्बरलेन के नाम है। यहाँ दोस्तों, विल चैम्बरलेन ने 1962 में NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अमेरिका में मुनाकिद किया जाता है, और इसके एक मैच में 100 पॉइंट स्कोर करके दुनिया का हिस्टोरिक रिकॉर्ड कायम किया। और ये मैच फिलाडेल्फिया वॉरियर्स और न्यूयॉर्क निक्स के दरमियान खेला गया था। आज तक कोई भी बास्केटबॉल प्लेयर एक NBA गेम में 100 पॉइंट्स का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। जस्ट लाइक ब्रायन लारा, उनके 400 रन का ये रिकॉर्ड किसी भी नहीं तोड़ पाया, किसी बल्लेबाज ने नहीं कर पाया। तो वैसे ही ये रिकॉर्ड जो कि विल चैम्बरलेन के नाम है, एक मैच में 100 पॉइंट्स एक बास्केटबॉल प्लेयर का ये रिकॉर्ड आज तक नोबडी हैज ब्रोकन इट। अब एक इम्पोर्टेंट एक कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वेट लिफ्टिंग। और वेट लिफ्टिंग की दुनिया का एक हिस्टोरिक वर्ल्ड रिकॉर्ड नईम सुलेमानोग्लू के नाम है। तुर्की के लेजेंडरी वेट लिफ्टर नईम सुलेमानोग्लू को पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। छोटी हाइट के बावजूद उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ ने दुनिया को हैरान कर दिया और उनको वेट लिफ्टिंग हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एथलीट्स में शामिल कर दिया। नईम सुलेमानोग्लू, छोटा पॉकेट हरक्यूलिस, देखिएगा। वो अभी भी है सोशल मीडिया पे, उनके कुछ शॉर्ट्स हैं जो आपको देखने में बड़ा ताज्जुब लगेगा कि ये इतना छोटा सा बंदा, इतना छोटा सा कद में आप, मतलब किस तरह से इतना हेवी वो वेट उठाना, हमें नामुमकिन लगता है। कभी कभार बहुत ही अजीब लगता है कि भाई हम तो देखते हम खुद हैरान हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे या तो बेहोशी हो जाएंगे। ये वेट कैटेगरी उठाना, समथिंग इज कहते हैं कि इनर स्ट्रेंथ, समथिंग कॉल्ड इनबॉर्न टैलेंट। ये कुछ खिलाड़ियों में जैसे हमने बताया कि रॉजर फेडरर, जैसे ब्रायन चार्ल्स, लारा चैम्बरलेन और नोवाक जोकोविच, ये सारे मशहूर नहीं बल्कि लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनका अंदर में कुछ और सलाहियत थी, है। इट्स जस्ट नॉट टेक्निक, इट्स जस्ट नॉट टैलेंट, कुछ और भी, मेंटल प्रिपेयर्डनेस। मैं हमेशा कहता हूँ जिनका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, हर स्ट्रगल को ओवरकम करने की सलाहियत रखता है, वो बंदा ही आगे जाके कुछ ना कुछ, आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट बंदा, देयर आर फीमेल एथलीट्स आल्सो हु आर इक्वली एडेप्ट एंड क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, जो हमें आम लगता हो, हमें बड़ा लगता है कि अरे यार ये तो दिस इज समथिंग एनीबॉडी कुड डू, लेकिन हैरान कुन परफॉर्मेंसेस देकर इन सब स्पोर्ट्स के जितने भी लेजेंड्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो परफॉर्म करके हमें बता दिया कि देयर आर समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ एनीबॉडी। बहुत कम लोग ये सब मकाम हासिल कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू साइकिलिंग। जी हाँ दोस्तों, साइकिलिंग की दुनिया का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड मिगेल इंडुरायन के नाम है और ये स्पेन के लेजेंडरी साइकिलिस्ट थे और इन्होंने लगातार 5 मरतबा टूर डे फ्रांस जीतकर साइकिलिंग हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड कायम किया था। उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टैमिना, स्पीड और माउंटेन स्टेजेस में कंसिस्टेंसी ने उनको दुनिया के ग्रेटेस्ट साइकिलिस्ट में शामिल कर दिया। 1990s के दौर में इंदुरायन ने प्रोफेशनल साइकिलिंग पर जबरदस्त डोमिनेट की। एंड सैल्यूट टू दिस ग्रेट ग्रेट साइकिलिस्ट, जिन्होंने बताया कि जिन्होंने दिखाया यू नीड नॉट ओनली जस्ट स्टैमिना, यहाँ पर भी वही बात है, मेंटल प्रिपेयर्डनेस, योर मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग। अब एक मोटर स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लें। जी हाँ, मोटर स्पोर्ट्स सबको पसंद होगा, सबको पसंद भी है। और मोटर स्पोर्ट्स की तारीख का एक शानदार रिकॉर्ड एलन प्रोस्ट के नाम है। फ्रांस के लेजेंडरी फॉर्मूला 1 ड्राइवर एलन प्रोस्ट ने अपने करियर में 51 ग्रांड प्री रेसेस जीतकर एक वक्त में सबसे ज्यादा फॉर्मूला 1 विंस का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। उनको द प्रोफेसर कहा जाता था क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रैटेजिक ड्राइविंग के लिए मशहूर थे। प्रोस्ट ने अपने काम अप्रोच और कंसिस्टेंसी की वजह से फॉर्मूला 1 हिस्ट्री में एक खास मकाम हासिल किया। यहाँ पे हम एक छोटा सा मैं पर्सनल एनेक्डोट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जब मैं स्कूल में था, एक स्पोर्ट्स मैगजीन को फॉलो करता था और हमारे उस टाइम में स्पोर्ट्स मैगजीन वॉज इक्वली टीवी से ज़्यादा, अभी टीवी तो हर टाइम आप कलर फोटो तो देख नहीं सकते थे, हर एक के घर पर तो कलर टीवी तो उस टाइम होता नहीं था, तो ये स्पोर्ट्स मैगजीन, कलर मैगजीन। और मैं आपको बताऊं, एलन प्रोस्ट फर्स्ट टाइम मैंने उनको उसी मैगजीन पे नोट किया था। एलन प्रोस्ट आज भी मुझे याद है और उसी दिन मैं याद कर रहा था जब ये लिख रहा था ये स्क्रिप्ट। और इत्तेफाक की बात है, अगले दिन मैंने इनके बारे में एक न्यूज़ नोट की। वो न्यूज़ क्या है कि इनके घर पर एक बर्गलरी यानी चोरी हुई है और एलन प्रोस्ट को बहुत बुरी तरह घायल करके वो चोरों ने उनका जितने भी तमाम घर के जितने भी कीमती चीज़ें थी और सब लेके भाग गए। तो एलन प्रोस्ट को वहाँ पर मैंने याद किया, तो अगले दिन देखिए ये क्या होगा। एनीवे, टॉकिंग अबाउट ट्रेजेडीज, नॉट टॉकिंग अबाउट बैड थिंग्स, बट टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट इन मोटर स्पोर्ट्स। दोस्तों, आखिरी में कतर एंगल के बारे में बात करना लाजमी है और कतर के एक जो स्टेडियम है जिसके बारे में हमने पिछले बार भी जिक्र किया था, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम दोहा का एक मशहूर स्टेडियम है जहाँ 1970 की दहाई से ही कई फुटबॉल इवेंट्स हुए हैं और हाल ही में अमेरिका का 50th एडिशन का फाइनल भी होस्ट किया गया था। और इसके साथ साथ सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खलीफा स्टेडियम ओनली होस्टेड अमेरिका, इट ऑल्सो होस्टेड 2019 को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कई मैचेस भी यहाँ पर मुनक्किद किए गए थे। दैट मेक्स खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम वन ऑफ द पायनियर्स, वन ऑफ द लेजेंडरी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइकॉनिक स्टेडियम्स इन दिस रीजन, इस अरब खत्ते में, जो कि एक यू नो हिस्ट्री लेकर आज भी खड़ा हुआ है, बताता है। हाँ, भूल गया मैं यहाँ पे कहना, 2006 का एशियन गेम्स भी शामिल है इसमें। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह नोवाक जोकोविच बने दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग टेनिस स्टार्स। ये रिकॉर्ड दोस्तों सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये है लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एक्सीलेंस का रिकॉर्ड। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। अगले किस्त में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
6: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
7: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें, ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हो। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वादे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए।
8: हम भी वो हैं जो कभी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: ओ चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी,

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस मुबारक हलके में आपका खैर मकदम है। आज की गुफ्तगू का आगाज हम एक ऐसे मौजू से कर रहे हैं जो पूरी उम्मत मुस्लिमा की रिवाइवल, उसकी स्ट्रेंथ और उसके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। सामिन इकराम, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो उम्मत के मुख्तलिफ हिस्सों में आजमाइशें, जुल्म, जंग, बेघरी और तकलीफ के मनाजिर दिखाई देते हैं। खुसूसन फ़िलिस्तीन और गज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए हर साहिब ईमान का दिल तड़प उठता है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वह हमारे मजलूम भाइयों और बहनों की हिफाजत फरमाएं, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएं, जख्मियों को शिफा अता फरमाएं, शुहदा की मगफरत फरमाएं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इज्जत, इत्तेहाद और नुसरत अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ दुआ काफ़ी है या हमें उस सवाल का जवाब भी तलाश करना चाहिए कि आखिर उम्मत इस मकाम तक पहुंची क्यों? सामिन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक हैरत अंगेज हकीकत बयान फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंकरीब मुख्तलिफ कौमें तुम्हारे खिलाफ इस तरह एक दूसरे को दावत देंगी जैसे खाने वाले एक दूसरे को अपने दस्तरखान पर बुलाते हैं। ज़रा इस मिसाल पर गौर कीजिए, जब दस्तरखान पर खाना रखा जाता है तो लोग इत्मीनान से बैठकर उसे तकसीम करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि यह मुज़ाहमत नहीं करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुख्तलिफ ताकतें मुसलमानों के खिलाफ उसी एतमाद के साथ इकट्ठी होंगी। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये सुनकर हैरान हुए। उन्होंने फौरन सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम होगी? क्योंकि उनके नज़दीक अगर मुसलमान कमज़ोर हो सकते थे तो शायद तादाद की वजह से। लेकिन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद

रात बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। यानी क्वांटिटी बहुत होगी लेकिन क्वालिटी कमजोर होगी, यही असल मसला है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। समझने का ये बहुत गहरा जवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि मुसलमानों की शिकस्त की वजह सिर्फ हथियारों की कमी होगी, ये भी नहीं फरमाया कि वसाइल की कमी होगी, बल्कि बीमारी दिल की बताई है। दुनिया से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान रोजगार न करे या घर न बनाए। इस्लाम तो मेहनत, तिजारत और तरक्की की तालीम देता है। असल मसला तो ये है कि जब दुनिया दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की जगह ले ले, जब कॉम्फर्ट लाइफ दीन पर गालिब आ जाए, जब स्टेटस अल्लाह की रजा से ज्यादा अहम हो जाए, जब इंसान हर फैसला दुनियावी फायदे की बुनियाद पर करने लगे, तब दिल आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। और जब दिल कमजोर होता है तो इंसान सेक्रीफाइस से घबराने लगता है, हक बात कहने से डरने लगता है, अदल कायम करने से पीछे हटने लगता है, और यही कैफियत वहन कहलाती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और उसूल बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें रिज़्क भी दिया जाता है और मदद भी दी जाती है तुम्हारे कमजोर लोगों की वजह से। पहली नजर में ये बात हैरान करती है। हम समझते हैं कि ताकत सिर्फ मईशत और टेक्नोलॉजी से आती है या फिर अस्करी ताकत से, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह की नुसरत उन कमज़ोर लोगों की वजह से आती है जिनके दिल अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं, उनकी दुआओं की वजह से, उनके इखलास की वजह से, उनके आंसुओं की वजह से। यहाँ कमज़ोर से मुराद जिस्मानी कमज़ोरी नहीं, बल्कि वो लोग जो दुनिया की निगाह में शायद मामूली हों, जिनका कोई बड़ा मनसब ना हो, कोई शोहरत ना हो, लेकिन उनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो, उनके दिल रिया से पाक हो, उनकी जबान जिक्र से तर हो, ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक बड़े मकबूल होते हैं। सामने कराम, अगर आज हम सब अपने दिलों को दुनिया की ग़ुलामी से आज़ाद कर लें, अपनी नीयतों को खालिस कर लें, अपने दिलों से हसद, रिया, तकब्बुर और ख्वाहिशात की आलूदगी निकाल दें, तो यही उम्मत की असल ताकत है, क्योंकि उम्मत अफराद से बनती है और फ़र्द का मरकज़ उसका दिल है। आज का दौर वैसे मटेरियल वर्ल्ड का दौर है, टेक्नोलॉजी, इकॉनमी, मिलिट्री पावर, ये सब अपनी जगह अहम है, इस्लाम उनकी नफी नहीं करता, लेकिन अगर दिल अल्लाह से कट जाए तो ये सब वसाइल भी इंसान को हकीकी कामयाबी नहीं दे सकते। इस हकीकत को सहाबा कराम ने अपनी ज़िंदगी में साबित किया है। ग़ज़वा मुता के मौके पर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3,000 थी, जबकि रूमी अफवाज और उनके इत्तेहादियों की तादाद उससे कहीं ज़्यादा थी। जब मुसलमानों ने दुश्मन की बड़ी तादाद का सुना तो फितरी तौर पर एक लम्हे के लिए हैरानी हुई। इस मौके पर अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए। उन्होंने फरमाया, लोगो, जिस चीज़ से तुम घबरा रहे हो, दरअसल तुम उसी की तलाश में निकले थे। फिर फरमाया, हम लोगों से अपनी तादाद या हथियारों के ज़रिए जंग नहीं करते, बल्कि उस दीन के ज़रिए लड़ते हैं जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। यानी उनकी ताकत ईमान था। तारीख में एक और खूबसूरत वाकया हमें मिलता है। मशहूर सिपा सालार कुतैबा बिन मुस्लिम एक मारके की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सब सिपाही अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ हैं, लेकिन एक अजीम ताबिई मोहम्मद बिन वासा रहिमहुल्लाह नज़र नहीं आए। तलाश करने पर मालूम हुआ कि वो लश्कर के पीछे खड़े हैं, अपने नेज़े का सहारा लिए हुए आसमान की तरफ उंगली उठाए और पूरे इखलास के साथ अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। जब ये मंजर कुतैबा बिन मुस्लिम को बताया गया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, मोहम्मद बिन वासे की एक उठी हुई उंगली मेरे नज़दीक 1,000 तेज तलवारों और 1,000 बहादुर नौजवानों से ज़्यादा कीमती है। सैनिक कराम, ये ईमान की जबान थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आसमान से मदद आनी है तो वो पहले दिलों के इखलास की वजह से आएगी। खुलासा कलाम ये है कि उम्मत की कमज़ोरी ये दिलों का मसला है। जब दिल दुनिया से भर जाता है तो खौफ पैदा होता है, और जब दिल अल्लाह से भर जाता है तो उम्मीद, हिम्मत और इस्तकामत पैदा होती है। इसीलिए उम्मत की इस्लाह का आगाज़
हमेशा दिल की इस्लाह से होता है। अब अगर आप एक मोमिन की ज़िंदगी देखें और दूसरी तरफ दुनिया से वाबस्ता इंसान की ज़िंदगी देखें, एक मोमिन भी दुनिया में रहता है, मादी वसाइल को देखता है, ताकतवर ममालिक, जदीद असलहा, टेक्नोलॉजी, इकॉनमी, सब कुछ वो मुशाहदा करता है। दूसरी तरफ दुनिया से वाबस्ता इंसान भी इन्हीं चीज़ों को देखता है। तो फिर दोनों में फ़र्क कहाँ है? मोमिन का दिल मादी ताकत को किस नज़र से देखता है और दुनिया से चिमटा हुआ दिल उसे किस अंदाज में देखता है? समझ कर, मोमिन जब इन चीज़ों का मुशाहदा करता है तो वो ये नहीं कहता कि वसाइल की कोई अहमियत नहीं, वो ये नहीं कहता कि प्रिपरेशन, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, और उनके मुकाबले के लिए जितनी ताकत तुम्हारे बस में है उसके मुताबिक तुम तैयारी ले लो। तो यहाँ फरमाया गया, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पूरी तैयारी करो, अपनी इस्तेआत के मुताबिक प्लानिंग करो, दिफाई, इल्मी, इक्तसादी और तकनीकी सलाहियत पैदा करो, लेकिन नतीजा सिर्फ इन्हीं वसाइल से वाबस्ता न समझो। यही मोमिन की पहचान है कि उसका दिल अल्लाह पर भरोसा करता है, स्ट्रेटजी बनाता है, मगर अपनी स्ट्रेटजी को माबूद नहीं बनाता। वो जानता है कि असबाब ज़रूरी हैं, लेकिन असबाब को मौसर बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। यहाँ एक खूबसूरत बैलेंस है, और बैलेंस ये है कि प्रिपरेशन विदाउट डिपेंडेंस ऑन प्रिपरेशन, यानी पूरी तैयारी मगर एतमाद तैयारी पर नहीं, कामिल मनसूबाबंदी मगर तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर। उसके मुकाबले में अब दुनिया से वाबस्ता जो दिल है वो सिर्फ ज़ाहरी ताकत देखता है। वो देखता है कि किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, किसके पास ज़्यादा सोल्जर्स हैं, किसके पास ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है, फिर वो अपने तमाम फैसले इन्हीं ज़ाहरी आदाद शुमार पर कायम करता है। अगर अपनी तादाद ज़्यादा दिखाई दे तो वो गुरूर में मुबतला हो जाता है, इसी तरह कभी खौफ उसे तबाह करता है और कभी एतमाद नफ्स के नाम पर गुरूर। लेकिन मोमिन का दिल दोनों इंतहाओं से महफूज रहता है। वो ना बेबुनियाद कॉन्फिडेंस या एतमाद में मुबतला होता है, ना मादी ताकत देख कर मायूस और होपलेस हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को सूरह तौबा में वाज़ह फरमाया, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا يقيننا الله نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ بعض افراد کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے، یعنی ایک لمحے کے لیے اٹینشن اللہ کی نصرت سے ہٹ کر نمبرز کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ ظاہری طور پر فوج موجود تھی، سامان موجود تھا، مجاہدین موجود تھے، لیکن دل کے ایک چھوٹے سے انحراف نے ایک غیر متوقع صورتحال پیدا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین، اور زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کی صفوں میں اضطراب پیدا ہوا، اچانک حملہ ہوا، صفیں منتشر ہوئیں اور بہت سے لوگ مختلف سمتوں میں پیچھے ہٹنے لگے۔ اس لمحے ظاہری تعداد فائدہ نہ دے سکی، اس نازک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ثابت قدم رہے، آپ کے گرد صرف چند جان نثار صحابہ باقی رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ اعلان محض تعارف کا نہیں تھا، یہ کانفیڈنس آف فیتھ تھا، یہ اعلان تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں رسالت سچی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور میدان میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ صحابہ کو پکاریں، انہوں نے بیعت رضوان والوں اور قرآن سے وابستہ اہل ایمان کو آواز دی، یا اصحاب السمرہ، یا اصحاب سورة البقرہ، یعنی اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، اے سورہ بقرہ کے پڑھنے اور سمجھنے والوں۔ یہ پکار سن کر صحابہ کو اپنا عہد یاد آیا، انہیں قرآن یاد آیا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری یاد آئی، انہیں یاد آیا کہ ہماری اصل طاقت ہمارا ایمان ہے۔ روایت کے مطابق وہ تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے لگے، جیسے اپنے بچوں کی آواز سن کر
जानवर भी इख्तियार उनकी तरफ लपकते हैं।

के जाल से बच सकता है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, इन इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं होगा। इसलिए शैतान की पूरी कोशिश ये होती है कि दिल को अल्लाह से हटा दिया जाए। कभी वो दिल में एक मामूली ख्याल डाल देता है, किसी के खिलाफ बदगुमानी, किसी की नेमत पर हसद, किसी पुरानी तकलीफ की याद, अपनी बर्तरी का एहसास या ये ख्याल कि मैं उससे बेहतर हूँ। यही छोटे थॉट्स वसवसे अगर रिजेक्ट न किए जाएं, अगर ये बाकी रह जाए तो आहिस्ता आहिस्ता दिल की मुस्तकिल कैफियत बन जाते हैं। सूरह नास में हम पढ़ते हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले के शर से। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मनकूल है, इस आयत का मफहूम उन्होंने ये बयान किया कि शैतान इंसान के दिल के करीब रहकर वसवसा डालता है। जब इंसान गाफिल होता है तो वो वसवसा देता है, और जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो वो पीछे हट जाता है। इसीलिए उसे अल-खन्नास कहा गया, यानी बार बार पीछे हटने वाला। तो सामिन कराम, यहाँ हमें एक अहम प्रिंसिपल मिलता है, वो ये कि गफलत वसवसे को दावत देती है, जिक्र उसे कमज़ोर करता है। दिल जितना अल्लाह के याद से खाली होगा, उतना ही शैतान के लिए उसमें मनफी ख्यालात डालना आसान होगा। अब शैतान दिल में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा करने की कोशिश करता है, हसद, कीना, गुस्सा, बदगुमानी, तकब्बुर, इंतकाम की ख्वाहिश। ये भी एक बड़ी बात है कि बंदा वो पीछे की बातों को याद करके इंतकाम की आग में जल रहा होता है। लोगों की बुराई तलाश करना और दूसरों की नेमत ख़त्म होने की तमन्ना करना। अगर इंसान इब्तदा ही में इन ख्यालात को रोक ले, इनके खिलाफ अल्लाह की पनाह मांगे और अपने दिल को दूसरी तरफ मोड़ दे तो वो ख्यालात कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इंसान उन्हें तकवीत देते रहता है, फीड करता रहे, बार बार सोचता रहे, दूसरों से बयान करे और अपने गुस्से को दलीलें फराहम करता रहे तो वसवसा इमोशन बनता है। इसी तरह मसाइल आगे बिगड़ जाते हैं। यहाँ एक फितरी सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स मुझ पर जुल्म करे, मुझे तकलीफ दे, मेरी इज्जत मजरूह करे, तो क्या उससे नाराज़ होना भी दिल की बीमारी है? नहीं, बात ऐसी नहीं। इस्लाम इंसान के फितरी जज्बात का इनकार नहीं करता। जुल्म पर गुस्सा आना फितरी है, तकलीफ पर दिल दुखना फितरी है, नाइंसाफी को नापसंद करना दुरुस्त है। लेकिन फ़र्क है फितरी नाराज़ी और शैतानी नफरत के दरमियान। फितरी नाराज़ी एक हद तक होती है, इंसान जानता है कि मुझे फला शख्स ने तकलीफ दी है इसलिए मैं उसके अमल से नाराज़ हूँ। लेकिन शैतानी नफरत उस नाराज़ी को बढ़ाती रहती है, यहाँ तक कि पूरा दिल कीने से भर जाता है। फिर इंसान उसके बच्चों, ख़ानदान, कौम, कबीले, इलाके या पूरी नेशनलिटी को बुरा समझने लगता है। यहीं से जुल्म का रद्द अमल खुद एक नए जुल्म में बदल जाता है। सामने की राम, अगर के एक ख़ास जबान या कौम या ख़ानदान किसी फ़र्द ने आपको नुकसान पहुँचाया है तो उसके जुल्म की बुनियाद पर पूरी कौम को बुरा समझना इंसाफ नहीं है। एक फ़र्द के अमल को सब पर अप्लाई कर देना दिल की ख़राबी है। आज बहुत सी नस्ली, कौमी और समाजी तासुबात इसी तरह पैदा होते हैं। एक शख्स ने बुरा सलूक किया, फिर हम कहते हैं ये पूरी कौम ऐसे ही है, उस इलाके के लोग काबिल एतमाद नहीं, उस ख़ानदान में सब एक जैसे हैं। ये इंसाफ नहीं बल्कि शैतान के लिए ख़तरनाक एंट्री पॉइंट हम इसे कह सकते हैं। कुरान का उसूल है, वला तज़िरु वाज़िरतुन वज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तरफ पिछली उम्मतों की बीमारी सरकती हुई आ रही है, हसद और बुग्ज। फिर आपने उसे अल-हालिका फरमाया, यानी मूंड देने वाली चीज़, और वाज़े फरमाई है, बालों को नहीं मूंडती बल्कि दीन को मूंड देती है। कितनी सख्त वार्निंग और तंबीह है, यानी मुसलसल दुश्मनी, कीना और हसद ये सिर्फ इंसान का मूड ही ख़राब नहीं करते, ये उसके ईमान को भी खाने लगते हैं। नमाज मौजूद रहती है मगर दिल में नफरत, तिलावत हो लेकिन दिल में हसद, जिक्र है ताल्लुकात में इंतकाम, ये तजाद अगर हो तो आहिस्ता आहिस्ता दीन की रूह को ख़त्म कर देता है। जब इंसान मुसलसल किसी के ख़िलाफ़ सोचता रहता है तो उसकी रूहानी जो पावर है, स्पिरिचुअल जो तवानाई है, ज़ाय होती है। वो नमाज में भी उस शख्स को याद करता है, दुआ में भी उसके ख़िलाफ़ सोचता है, गुफ्तगू में भी उसकी बुराई बयान करता है। इस तरह दिल अल्लाह की याद के बजाय दुश्मनी का एक बड़ा स्टोरेज बन जाता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबाग़दू वला तहासदू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो, और अल्लाह के बंदो वकूनू इबादल्लाह इख़्वाना, और अल्लाह के बंदो भाई

भाई बन जाओ, एक दूसरे से ताल्लुक न तोड़ो। इस्लाम में दो झगड़ने वालों के दरमियान सुलह कराना बहुत बड़ी नेकी है। इसकी वजह यह है कि तनाज़ सिर्फ दो अफराद का ताल्लुक ख़राब नहीं करता, वो दोनों के दिल भी खाता है, उनके ख़ानदानों को तकसीम करता है और फिर कई दूसरे लोगों को भी दुश्मनी में शामिल कर लेता है। इसीलिए शरीयत ने इस्लाह दातिल बैन यानी बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त करने को बहुत बुलंद मुकाम दिया है। अहादीस में सुलह कराने के लिए ऐसी बात कहने की गुंजाइश दी गई है जिसका मकसद खैर पैदा करना हो। अहादीस में सुलह कराने के लिए ऐसी बात कहने की गुंजाइश दी गई है जिसका मकसद खैर पैदा करना हो, मसलन एक फरीक की अच्छी बात दूसरे तक पहुँचाना या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो नफरत कम करे। यानी अगरचे बनी बनाई बात हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किस्म का झूठ जायज हो गया। मकसद धोखा देना नहीं बल्कि दिलों को करीब लाना और फसाद रोकना है। बहुत मुबाहसे के हवाले से अगर बात करें तो कई मरतबा मुशाहदे में इस तरह आता है कि इंसान इब्तदा में मसला वाजे करने के लिए बात शुरू करता है लेकिन कुछ देर बाद असल मकसद हक जानना नहीं रहता, मकसद सामने वाले को शिकस्त देना बन जाता है। आवाज़ बुलंद होती है, तंज शुरू होता है, पुराने वाकयात निकाले जाते हैं और फिर हक का मसला पीछे रह जाता है, दिल की दूरी बढ़ जाती है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के किनारे घर की जमानत देता हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। यहाँ मुराद हक छुपाना नहीं बल्कि बेफायदा जिद और अना पर मबनी आर्ग्यूमेंट छोड़ना है। कभी इंसान दुरुस्त होता है लेकिन अगर गुफ्तगू आगे बढ़ाने से सिर्फ ताल्लुक खराब होगा तो खामोशी ज्यादा हकीमाना होती है। समीन कराम, फर्ज कीजिए आप जानते हैं कि आप सही हैं, दूसरा शख्स किसी बात को नहीं समझ पा रहा। आपने दलील दे दी, बात वाजे कर दी लेकिन अब वो सिर्फ जिद कर रहा है। इस मकाम पर बहस जारी रखना दिल में कीना पैदा कर सकता है। अगर आप ताल्लुक की हिफाजत, दिल की सफाई और अल्लाह की रजा के लिए बहस छोड़ देते हैं तो एक कमजोरी नहीं। कभी खामोश रहना बात करने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कभी ताल्लुक बचाना अपनी बात मनवाने से ज्यादा कीमती होता है। बुजुर्गान दीन में से बाज़ का तर्ज ये था कि जब कोई आकर कहता कि फला शख्स ने आपके बारे में ये कहा है तो वो उसे रोक देते और कहते, मैं अपने भाई के बारे में अपना दिल साफ रखना चाहता हूँ। समझ कर एक अजीम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है कि हर खबर सुनना ज़रूरी नहीं, हर क्रिटिसिज्म जानना ज़रूरी नहीं, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। कुछ मालूमात इंसान को फ़ायदा नहीं देती, सिर्फ उसका दिल ख़राब करती हैं। एक नहायत खूबसूरत कौल मनकूल है कि किसी शख्स से कहा गया, फ़लाँ ने तुम्हारे बारे में ऐसी बात कही है। उसने जवाब दिया, उस शख्स ने मेरी तरफ तीर चलाया था लेकिन वो मुझे नहीं लगा, तुमने वो तीर उठाया और मेरे दिल में पेवस्त कर दिया। कितनी गहरी बात है कि जिस शख्स ने पीठ पीछे बात की उसकी बात आप तक नहीं पहुंची थी। आप अपने हाल में मुतमइन थे लेकिन खबर लाने वाले ने वो बात आप तक पहुंचा दी। अब आपके दिल में गुस्सा, बदगुमानी और नफरत पैदा हो गई। इसीलिए नमीमा यानी लोगों की बातें फसाद के लिए एक दूसरे तक पहुँचाना बहुत बड़ा गुनाह है। सही हदीस में आया है कि नम्माम यानी चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी ये ऐसा संगीन गुनाह है जो अल्लाह की सजा का सबब बन सकता है जब तक अल्लाह माफ न फरमाए। क्यों? क्योंकि चुगलखोरी ये दिल खराब करती है, दोस्तियां तोड़ती है और खानदानों में दुश्मनी पैदा करती है। अब गीबत और चुगली में क्या फर्क है? गीबत ये है कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी ऐसी बात बयान की जाए जो उसे नापसंद हो अगरचे वह बात उसमें मौजूद हो। और नमीमा या चुगली ये है कि एक शख्स की बात दूसरे तक उस नीयत या अंदाज से पहुंचाई जाए जिससे फसाद और दुश्मनी पैदा हो। दोनों ख़तरनाक हैं लेकिन चुगली एक कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है, खुसूसन दो दिलों के दरमियान ये आग लगाती है। तो समझने के लिए जैसे कि हमने कहा कि हर खबर सुनना ज़रूरी नहीं, उसी तरह हर मनफी बात जानना भी ज़रूरी नहीं। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हम हर कॉमेंट पर रिप्लाई और क्रिटिसिज्म जानना चाहते हैं। किसी ने क्या लिखा, किसी ने हमारे खिलाफ बात की, किसी ने हमारी पोस्ट का मजाक उड़ाया। ये मुसलसल मॉनिटरिंग इंसान के दिल को थका देती है। कभी अपने सुकून और ईमान की हिफाजत के लिए ज़रूरी होता है कि इंसान कुछ डोर्स बंद कर दे, हर बात का जवाब न दे, हर तबसरा न पढ़े, हर इल्ज़ाम की तहकीक न करे। अगर बात झूठी है तो अल्लाह जानता है, अगर इस्लाह की ज़रूरत है तो हिकमत से इस्लाह करें लेकिन अपने दिल को हर शख्स की ज़बान के हवाले न करें। कुरान फरमाता है, इन्ना अल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनु, बेशक अल्लाह ईमान वालों की तरफ से दिफा फरमाता है। अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी बात कही, आप पर गलत इल्ज़ाम लगाया, आपकी नीयत पर हमला किया तो कभी कभार मामला अल्लाह के सुपुर्द करना भी इबादत है, बल्कि हर वक्त अल्लाह के सुपुर्द करें।
इसका मतलब ये नहीं कि आप दफा छोड़ दें, बल्कि ये है कि

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज कतर फुटबॉल टीम के हेड कोच यहां हुसैन लोफ्तगी के बारे में मैं बात करूंगा। हुसैन लोफ्तगी कतर की कौमी फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं और उन्हें 2025 में कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने टीम की क्यादत सौंपी। पहले ये स्पेन के हेड कोच थे, उसके बाद रियल मद्रिद के कोच भी थे एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है और इसी वजह से कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने समझा कि ही इज़ द बेस्ट मैन टू गाइड कतर फुटबॉल। उन्होंने पहले स्पेन की कौमी टीम, एफसी पोर्टो, रियल मद्रिद, सीविया और प्रीमियर लीग के क्लब्स को कोच किया है। कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें 2027 AFC एशियन कप तक के कॉन्ट्रैक्ट पर मुकर्रर किया है।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
5: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
6: द रिक्वेस्ट शो
5: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ।
6: फजील के साथ
5: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
6: दिल से
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिस्टनर्स, आज हम बात करेंगे कि शोर के उन असरात के बारे में जो हमारे दिल, दिमाग और जहनी सेहत पर मुरतब होते हैं। जब हम मुसलसल शोर वाले माहौल में रहते हैं तो हमारा जिस्म उसे एक खतरे के तौर पर महसूस करता है, जिसके नतीजे में जिस्म में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स, यानी जो कि मेंटल हेल्थ को मुतासिर करते हैं, वो हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनालिन है, कॉर्टिसोल है, वो ज़्यादा मिकदार में खारिज होते हैं। ये हार्मोन्स जब ज़्यादा मिकदार में खारिज होते हैं तो उससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर वो बढ़ा सकते हैं, और अगर ये कैफियत तवील अरसे तक बरकरार रहे तो फिर दिल की बहुत सी बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर और फालिस का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। यानी ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं। शोर की वजह से जहनी दबाव भी बढ़ता है, यानी हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। बहुत से अफराद शोर वाले माहौल में काम करते हुए जल्द थक जाते हैं और इनकी तवज्जो बढ़ जाती है, उसका असर कारकर्दगी और उनकी जो फैसला करने की सलाहियत है उस पर पड़ता है। नींद की खराबी भी शोर के बड़े नुकसान में शामिल है। अच्छी नींद ना मिलने से दिन भर थकावट रहती है, कमजोरी महसूस होती है, सर दर्द और मिजाज में तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। बुजुर्ग अफराद और छोटे बच्चे शोर के असरात के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा हसास होते हैं। इस तरह वो अफराद जो पहले से दिल की बीमारी में मुबतला हों, जहनी दबाव का शिकार हों या समात के मसाइल का शिकार हों, तो उन्हें इजाफी जो एहतियात है उसकी ज़रूरत होती है। और अगर आपको महसूस हो कि शोर की वजह से सर दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन आपको ज़्यादा महसूस होता है, नींद की कमी या कानों में सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, तो ये एक बहुत अहम इशारा हो सकता है कि आपका जिस्म शोर के मनफी असरात महसूस कर रहा है। याद रखिए कि पुरसकून माहौल सिर्फ सुकून ही नहीं देता बल्कि अच्छी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच का एक और एपिसोड FM107 कतर पर, जहां हम बात करते हैं उन डेली वर्क प्लेस हैबिट्स की जो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. तो भाई आज का टॉपिक है सस्टेनेबल ऑफिस मीटिंग्स, यानी ऐसी मीटिंग्स जो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि इको फ्रेंडली भी होती हैं. साथियों, ऑफिस मीटिंग्स हर वर्क प्लेस का नॉर्मल हिस्सा होती हैं, लेकिन इन मीटिंग्स के पीछे जो पेपर यूसेज, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं, वो अक्सर अननोटिसेबल ही रह जाती हैं. इको स्विच हमें ये याद दिलाता है कि हर मीटिंग सिर्फ एजेंडा नहीं बल्कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी क्रिएट करती है. जरा सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग है जहां 6 लोग बैठे हुए हैं, हर किसी के सामने प्रिंट आउट्स हैं, नोट्स हैं और प्रेजेंटेशंस के लिए प्रोजेक्टर चल रहा है. मीटिंग सिर्फ 20 मिनट की होती है, लेकिन उसमें 10 से 15 शीट्स पेपर हर पार्टिसिपेंट के लिए प्रिंट होता है. मतलब सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग में लगभग 60 से 80 शीट्स पेपर यूज हो ही जाता है. भाई अगर इको स्विच पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम डिस्कशन के साथ साथ फॉरेस्ट का छोटा सा हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं. चलिए भाई, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको सरप्राइज कर रख देंगे उनकी तरफ चलते हैं. साथियों, ग्लोबली ऑफिसेज हर साल बिलियंस ऑफ शीट्स पेपर सिर्फ मीटिंग्स और रिपोर्ट्स के लिए यूज करते हैं. एक एवरेज A4 शीट बनाने में लगभग 10 लीटर पानी यूज होता है. अगर एक ऑफिस 50% मीटिंग्स को डिजिटल कर दे तो वो साल भर में हजारों लीटर पानी और हजारों दरख्तों को सेव कर सकता है. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अननेसेसरी प्रिंटिंग ऑफिस के कार्बन फुटप्रिंट का सिग्निफिकेंट पार्ट होती है, स्पेशली रिपीटेड ड्राफ्ट्स एंड मीटिंग नोट्स की वजह से. साथियों, इको स्विच का यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, मीटिंग्स को पेपर हैवी से डिजिटल फ्रेंडली बनाना. जब हम सस्टेनेबल मीटिंग्स अडॉप्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली वेस्ट रिड्यूस करते हैं और एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं. एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक मिड साइज कंपनी अपनी मीटिंग्स को फुली डिजिटल कर दे तो वो अपना पेपर कंजम्पशन 40% तक रिड्यूस कर सकती है. साथ ही एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाता है जब अननेसेसरी प्रिंटिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलिमिनेट होती है. तो भाई जरा सोचिए ना, मीटिंग के लिए ब्यूटीफुली प्रिंटेड एजेंडा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मीटिंग के एंड तक वो एजेंडा टेबल पर ही रह जाते हैं और 80% यानी 80% लोग उसे यूज ही नहीं करते. बाद में या तो फिर वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं या वेस्ट बिन में. तो साथियों, इको स्विच अप्रोच कहता है कि अगर वही एजेंडा ईमेल, शेयर्ड डॉक्यूमेंट या ऐप पर हो तो सेम इन्फॉर्मेशन जीरो पेपर वेस्ट के साथ डिलीवर हो सकती है. तो भाई अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सिंपल इको स्विच टिप्स की जो हर ऑफिस फॉलो कर सकता है. पहला ये कि पेपरलेस मीटिंग्स अडॉप्ट करें, यूज डिजिटल टूल्स लाइक शेयर डॉक्स और टैबलेट्स. दूसरा, अननेसेसरी प्रिंटिंग अवॉइड करें और ड्राफ्ट डिजिटली रिव्यू करें. तीसरा, प्रोजेक्टर या स्क्रीन शेयरिंग यूज करें इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड प्रेजेंटेशंस. चौथा, मीटिंग ड्यूरेशन ऑप्टिमाइज करें ताकि अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट ना हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियूजेबल स्टेशनरी या व्हाइट बोर्ड्स यूज करें इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज पेपर नोट्स. साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि मीटिंग सिर्फ फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं होती बल्कि एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी का टूल भी बन सकती है. जब हम मीटिंग्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं तो हम सिर्फ एनवायरमेंट को नहीं बचाते बल्कि टाइम और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करते हैं. इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कंपनीज डिजिटल मीटिंग्स अडॉप्ट करती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग स्पीड भी बेहतर ही होती है. आखिर में भाई, इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है कि हर मीटिंग का इम्पैक्ट सिर्फ बोर्ड रूम तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि एनवायरमेंट तक भी जाता है. हर सेव पेज, हर अवॉइडेड प्रिंट आउट और हर डिजिटल नोट एक छोटा सा स्टेप है सस्टेनेबिलिटी की तरफ. तो भाई अगली बार जब आप मीटिंग अटेंड करें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन करें. Can this meeting be paperless? Yes, it can be. तो भाई इसी के साथ मैं हूँ जफा, आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर डिस्कशन सिर्फ टॉक टॉक नहीं होता बल्कि एक ग्रीन एक्शन भी होता है. सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ

0: आपकी आरजे मावश खान और आज हम बात करेंगे रोजाना जिक्र की अहमियत पर। अल्लाह का जिक्र दिल को सुकून देता है और इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जिक्र का मतलब है अल्लाह को याद करना, चाहे जबान से हो चाहे दिल से। रोजाना की जिंदगी में जब हम छोटे छोटे जिक्र जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ते हैं तो ये हमारे दिल को रोशन रखते हैं और नेगेटिव सोच को दूर करते हैं। जिक्र के लिए किसी खास जगह या वक्त की पाबंदी नहीं, बल्कि ये हर वक्त किया जा सकता है। आज के बिजी रूटीन में जरूरी है कि हम अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र में जिंदा रखें। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल अमल है। आज का अमल ये है कि दिन भर छोटी छोटी फुर्सत के लम्हों में अल्लाह के जिक्र की आदत डालें और इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
3: Qatar ka pehla Desi radio station, FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी. One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
3: One Step to 2030.
2: और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे. ये टॉपिक है क्लीनिंग द प्लैनेट विद टेक. देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है पोल्यूशन. समंदर प्लास्टिक से भरे हुए हैं, हवा पोल्यूटेड है और जमीन भी सेफ नहीं है. लेकिन गुड न्यूज ये है कि टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है. आजकल AI और रोबोट्स पोल्यूशन साफ करने के लिए यूज किए जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर ओशंस में स्पेशल रोबोट्स और ड्रोन्स प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं. ये रोबोट्स खुद डिसाइड करते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा कचरा है. अंडरवाटर रोबोट्स भी यूज हो रहे हैं जो समंदर के नीचे जाकर प्लास्टिक और वेस्ट निकालते हैं जहाँ इंसान का पहुँचना मुश्किल था. AI सिस्टम सेटेलाइट डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करते हैं कि पोल्यूशन कहाँ जमा होगा ताकि उसे पहले ही कंट्रोल किया जा सके. जमीन पर भी रोबोट्स वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करते

बना सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम कचरा कम मिनिमाइज करने की आदत तो अडॉप्ट करें, एटलीस्ट इसकी शुरुआत हम घर से ही कर लेते हैं, अपने घर के कचरे को जो है वो प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना। उसके अलावा जब आप पब्लिक प्लेसेस पर जाते हो तो कौन सा कचरा कहाँ फेंकना मुनासिब है, आप देख रहे होते हो कि डिफरेंट बिन्स होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है, मेंशन होता है कि यहाँ पर आप पेपर डालिए, यहाँ पर आप प्लास्टिक डालिए एक्सेट्रा। तो आप जो है थोड़े से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो और जहाँ पे जो कचरा लिखा है जिस तरह का उसको वहीं डालिए जिससे उसको रिसाइकिल किया जा सके। क्योंकि अगर हम अभी से नहीं सोचेंगे और अपने फ्यूचर को परेशानी से और मुसीबत से भरेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम आज से थोड़े से सतर्क रहें और इन चीजों का ख्याल रखें। चलिए ये तो एक अच्छी बात, एक अच्छी न्यूज है कि प्लैनेट को क्लीन किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ वाकई चाहे इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां पे रोबोट्स पहुंच के समंदर से प्लास्टिक कचरा और हवा जिस तरह से पोल्यूट हो रही है, जो जमीन अनसेफ होती चली

0: हेल्प कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि मशीन और एआई के आने के सिर्फ ड्रॉबैक्स हैं या हम सिर्फ ये डरते ही सोचते रहे, बल्कि एआई जो है हमारी लाइफ को आसान भी बना रही है. टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ हमेशा आसान हुई है, लेकिन हाँ छोटे मोटे चैलेंजेस तो हमेशा आते ही आते हैं. बट डिस्पाइट ऑफ दैट, सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें मिल रहा है. बस इसी तरह से एक गुड बैलेंस के साथ टेक्नोलॉजी को अगर इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तो चीजें आसान ही होंगी. फिलहाल दोस्तों वक्त है कि मैं आपसे इजाजत लूँ इस टॉपिक पे. कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक पे हम मिलकर बात करेंगे. अल तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2020.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। स्कैम
1: अलर्ट। आपके कार की चाबी आपके कार के अंदर लॉक हो जाए तो ऐसे में फ्रॉड कोई कैसे कर सकता है, स्कैम कैसे कर सकता है? भाई साहब, मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे फजील के साथ हैं इस्तकबाल आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। और ऐसे मामले भी आजकल सामने आ रहे हैं फ्रॉड को लेकर जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। लोग सामने खड़े होकर फ्रॉड कर रहे हैं, अपना चेहरा दिखा के फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। वेल, आज इस शो में हम बात करने वाले हैं

0: एक ऐसे ही फ्रॉड की जहां पर ये फ्रॉडस्टर आपके सामने आता है और सामने से स्कैम कर जाता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। वेल, ये स्कैम कैसे काम करता है? मिसाल के तौर पे अगर आपकी गाड़ी की चाबी आपके कार के अंदर लॉक हो गई, आपने की मास्टर को कॉल किया, आमतौर पे ये की मास्टर आपके घर के आसपास के होते हैं या फिर हो सकता है कि आपने किसी वेबसाइट के थ्रू या कहीं और से नंबर जुगाड़ा हो, आपने कॉल किया हो, उसने कहा हो अरे ये काम तो बड़ा आसान है, 30-40 कतरे रियाल या फिर आपके पाकिस्तान के जो रुपीज चलते हैं या बांग्लादेशी टका में, भाई इतने कम पैसे में हो जाएगा। और आपको लगेगा कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा, वेबसाइट पे मैंने देखा, जो पैसे थे कार की को रिट्रैक्ट करने का या कार की को उस कार के अंदर से निकालने का, वो तो महंगा दिखा रहा था लेकिन ये बंदा तो बहुत कम पैसा बता रहा है। ठीक है, हाँ भाई कॉल पे कहते हैं आ जाइए आप। वो आता है, चेक करता है और कहता कि भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। देखिए, अगर असल में कॉम्प्लिकेटेड है तो पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मामला इस तरह से पेचीदा होता है कि कार के अंदर से चाबी निकालना आसान नहीं होता, पेचीदा मामला होता है। पैसे वहां पर थोड़े बहुत बढ़ जाएं ठीक है, लेकिन 40-50 कतरे रियाल से बिल्कुल से 150-200-250 कतरे रियाल बढ़ जाए तो आपको लगता है कि इतना तो कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें। मामला ये है कि आपको ये एहसास होता है कि भाई अब जब आ ही गया है, वो कह रहा है 150, चलो ठीक है 150 दे दो, क्योंकि वो टूल लेकर आया है, दूर से कहीं से आया है, बिल्कुल कोई मशीन लेकर आया, और आपको एहसास होता था भाई इतना खर्चा हो रहा है उसका तो चलो फिर थोड़ा कर देते हैं। तो यहां आपके साथ हो जाता है स्कैम, क्योंकि आमतौर पर ये जो आपको अमाउंट कोट करते हैं ये बहुत कम करते हैं जानबूझ के कि आप इनको बुलाएं, लोकेशन पे बुलाते हैं, फिर पूरी बात चलती है और आपको गेट खोलने से पहले कहते हैं कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि चाबी निकालने से पहले ही आपको कहते हैं कि पेमेंट आपको करना ही करना पड़ेगा। आप पेमेंट करते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में आप फंसे हैं, अगर नहीं करेंगे तो 1-2 घंटा और लगेगा, किसी दूसरे बंदे को बुलाएंगे, अगर ये कर देगा तो ये ज्यादा पैसा लेगा, क्योंकि आप टाइम बचाना चाहते हैं और ऐसे में आप ये उससे वादा कर लेते हैं कि ठीक है हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, और वो सामने से ज्यादा पैसे लेता है, काम वैसा ही करता है जैसे आमतौर पर नॉर्मल काम होता है, है ना, जिसका सच में पैसा बहुत ज्यादा 80 या 100 कतरी रियाल से ज्यादा नहीं होता है, 120-150 मैक्सिमम, लेकिन 200-250 कतरी रियाल चाबी निकालने के लिए कार के अंदर से इससे ज्यादा नहीं होता है। एक बार ऐसे इस मामले में मैं फंस चुका हूं, लेकिन वो बंदा जेन्युइन था और उसने नेगोशिएशन मैंने उससे किया और उसने 150 से कम करे पैसे और थोड़े और कम हुए, लेकिन आपके साथ फ्रॉड ना हो इस वजह से मैंने आपको आज का ये स्कैम बताया जो कि आम तौर पे कई मुल्क में कई जगहों पे हो रहा है और इसके बिल्कुल सबूत भी है, रियल भी है। वेल, आपको बचना है, आपको रहना है होशियार, इसीलिए इस तरह के शो, इस तरह के फ्रॉड के बारे में हम हर हफ्ते बात करते रहते हैं। वेल, कभी इस तरह का फ्रॉड हुआ हो, कभी आपके साथ किसी ने कुछ बातें ऐसी की हो या कुछ कम पैसे में कहा हो कि आपका काम हो जाएगा, तो डू लेट अस नो ऑन आर नंबर 666-22107, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या आपके साथ कभी भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है या कैसा भी फ्रॉड हुआ हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बाकी अगले हफ्ते मिलेंगे इसी शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, एक नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: Scam alert. Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं RJ कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। Top 10 countdown. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने कई अजीम मौजजात अता फरमाए जो ना सिर्फ उनकी नबूवत की दलील थे बल्कि उनके दुश्मनों के लिए इबरत और अहले ईमान के लिए यकीन की बुनियाद बने। सबसे पहला और मशहूर मौजजा उनका ऐसा था, ये लकड़ी का एक सादा सा डंडा था जिसे अल्लाह के हुक्म से जमीन पर डालने पर वो एक जबरदस्त अस्तहा बन जाता और जब मूसा अलैहि सलाम उसे हाथ में लेते तो दोबारा असा की शक्ल अख्तियार कर लेता। यही असा उनके सबसे बड़े इम्तिहान के मौके पर जादूगरों के मुकाबले में गालिब आया और उनके जादू को निकल गया। ये मौजज़ा इस बात की अलामत था कि अल्लाह की ताकत हर बातिल की चाल पर गालिब है। दूसरा मौजज़ा यदे बिदा था, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना हाथ गरेबान में डाले और जब बाहर निकालते तो रोशनी से जगमगा उठता लेकिन किसी बीमारी या नुक्स के बगैर। कि नूरानी हाथ अल्लाह की तरफ से खुला निशान था जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते। तीसरा मौजज़ा वो था जब बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे और उनके पीछे फिरौन का लश्कर था। उस वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि ऐसा समंदर पे मारो। समंदर के लगते ही पानी फट गया और 12 रास्ते बन गए। हर कबीला अपने रास्ते से गुजर गया और पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ आया तो पानी दोबारा मिल गया और वो सब गर्क हो गए। ये मौजज़ा इस बात का ऐलान था कि अल्लाह अपने नबी और अहले ईमान को नामुमकिन रास्तों से भी निजात दिला देता है। चौथा मौजज़ा मनु सलवा का नज़ूल था। जब बनी इसराइल सहरा में भूखे और प्यासे हुए तो अल्लाह ने उनके लिए आसमान से मनु सलवा उतारा। ये लजीज ग़िज़ा थी जिससे वो पेट भरते और ताकत पाते। इस बात की दलील थी कि अल्लाह अपने बंदों को मुश्किल वक्त में रिज़्क़ के लिए ऐसे ज़राए से नवाजता है जो इंसानी अक्ल के तसव्वुर में भी ना आए। पांचवा मौजज़ा चट्टान से 12 चश्मों का निकलना था। बनी इसराइल ने जब प्यास की शिकायत की तो अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि वह अपने असा से चट्टान पर ज़र्ब लगाएं। जैसे ही उन्होंने असा मारा चट्टान से 12 चश्मे फूट पड़े और हर कबीले ने अपनी पहचान के मुताबिक पानी पिया। ये मौजज़ा अल्लाह की रहमत और कुदरत का रोशन सबूत था। इन मौजज़ात के अलावा भी अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को बारहा अपनी मदद के निशान दिखाए, कभी तूफान, कभी जिद्दिदल, कभी मेंढक और खून की बला। ये सब फिरौन और उसकी कौम पर निशानियाँ थीं ताकि वो समझ जाएं कि अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है। लेकिन चूंकि उनका दिल ज़िद्द और तकब्बुर में बंद थे वह बार बार वादा करते और फिर अहद तोड़ देते। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजज़ा उनकी फसाहत और खताबत थी। अल्लाह ने उन्हें बली कलाम अता किया था कि वो फिरौन जैसे सरकश के सामने भी बिला झजक और वजाहत के साथ हक बयान करते रहे। यही उनका किरदार मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की दावत के काम में नुमाया हुआ। ये सब मौजज़ात हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की कुदरत नामहदूद है। वो चाहे तो एक लकड़ी के असा को अजदहा बना दे, एक हाथ को नूरानी कर दे, पानी को रास्ता बना दे या सहरा में आसमान से खाने उतार दे। ये मौजज़ात ईमान वालों के लिए यकीन और कुफार के लिए हुज्जत तमाम करने के लिए थे। हज़रत मूसा अलैहि सलाम और हज़रत हारून अलैहि सलाम दोनों जलीलुल कदर अंबिया हैं जिनका जिक्र कुरान में बार बार आया है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कलीमुल्लाह का शर्फ हासिल हुआ, यानी वो नबी जिनसे अल्लाह ने बराहे रास्त कलाम किया कि मर्तबा किसी और नबी को नहीं किया गया। वादी तौर पे अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम से गुफ्तगू फरमाई, उन्हें रिसालत अता की और अपनी अजीम निशानियों का हामिल बनाया। हज़रत हारून अलैहि सलाम को अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम का वज़ीर और साथी बनाया। मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की थी कि मेरा भाई मेरी ज़बान की कमी पूरी करे और दावत में मेरा शरीक हो। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की और फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है मूसा। इससे जाहिर होता है कि हारून अलैहि सलाम का मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना बुलंद था کہ انہیں نبی بنایا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے فرعون جیسے ظالم کو للکاریں۔ قرآن میں کئی جگہ ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دیں اور کھلی دلیل عطا کی، دونوں کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا اور دونوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।